इंसान थुड़दिला पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक मुकर्रर हक है, जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के आजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके रब का आजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई बेखौफ हो, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं,

عقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سامعين الكرام ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید قرآن کے

खून। आज मैंने उनके सबर का यह बदला दिया है कि यही लोग हकीकत में कामयाब हैं। यहाँ लफ्ज अल्फाइजून आता है, कामयाब होने वाले, हकीकी तौर पर जीतने वाले। यूं सूरत में एक पूरी मानवी सिलसिला दिखाई देता है, फलाह, फौज, भारी मीजान, नजात, अजर और कामयाबी, और दूसरी तरफ अदम फलाह, खसारा, हलाकत, जिल्लत और अंजाम बद। सूरह मोमिनून का पैगाम यह है कि अल्लाह एक है, आखिरत हक है, अंबिया सच्चे हैं। उसके साथ फौरन दूसरा सवाल ये भी लाया गया है कि अगर ये सब हक है तो तुम उस हक के साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि हकीकत को जान लेना एक मरहला है और इस हकीकत के मुताबिक जिंदगी गुजारना दूसरा मरहला है। यही वजह है कि सूरह मोमिनून के आगाज में अकीदे की मुजर्रद तारीफ नहीं बल्कि मोमिन के आमाल और सिफात बयान होती हैं। गोया ईमान जब सच्चा हो तो इंसान के रवैये, इबादत, अखलाक और जिम्मेदारियों में नजर आता है। और फिर आखिर में मालूम होता है कि ये सब क्यों अहम था, क्योंकि एक दिन मिजान कायम होगा। एक तरफ कहा जाएगा फ़ाउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही कामयाब हैं, और दूसरी तरफ फ़ाउलाइका लज़ीना खसरू अन्फुसहुम, ये वो हैं जो खुद अपना सबसे बड़ा सरमाया खो बैठे। इसलिए सूरह मोमिनून का आगाज ही हमारे शऊर को एक लफ्ज के साथ बेदार करता है, कद अफलाह, कामयाब हो चुकी है। फिर सवाल ये नहीं रहता कि दुनिया हमें कामयाब समझती है या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी उस फलाह के रास्ते पर है जिसे कुरान फलाह कहता है। और यही शायद इस सूरत के मरकजी पैगामात में से हैं कि हक सिर्फ मानने के लिए नहीं आता, हक अपने साथ एक अंजाम भी लाता है, जो उसे थाम ले उसके लिए फलाह और फौज है, और जो उसे मुंह मोड़ ले उसके लिए खसारा, और सबसे बड़ा खसारा तो खुद अपने आप का खसारा है। सामने किराम, अब बढ़ते हैं एक निहायत गहरे रब की तरफ जो हमें सूरह मोमिनून में बार बार सामने दिखता है, और वो है बास बादल मौत का मसला, यानी मरने के बाद दोबारा उठाया जाना। दिलचस्प बात यह है कि सूरत के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से ही में इंसान की तखलीक के मुख्तलिफ मराहिल बयान करने के बाद अचानक आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون, फिर उस सब के बाद तुम्हें जरूर मरना है और फिर क़यामत के दिन तुम जरूर उठाए जाओगे। तो यहाँ कुरान का इस्तदलाल बहुत वाज़ह है। जो अल्लाह पहली मर्तबा इंसान को पैदा कर सकता है, क्या वो उसे दोबारा पैदा नहीं कर सकता? कुरान बार बार इसी हकीकत की तरफ इंसान को मुतवज्जे करता है। एक मकाम पर फरमाया, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, वही है जो पहली मर्तबा पैदा करता है फिर दोबारा पैदा करेगा। और एक दूसरे मकाम पर इंसान का एतराज नकल किया है, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, उन बोसीदा हड्डों को कौन जिंदा करेगा? जवाब मिला, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, कह दीजिए वही उन्हें जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा उन्हें पैदा किया था। सूरह मोमिनून के आगाज में भी यही बुरहान है, पहली तखलीक दूसरी तखलीक की दलील है। लेकिन हैरतअंगेज़ बात यह है कि सूरत के अख्तिताम पर जब बास और अल्लाह की तरफ वापसी का जिक्र दोबारा आता है तो दलील का जाविया बदल जाता है। इरशाद होता है, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم, क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? बस बहुत बुलंद है अल्लाह, हकीकी बादशाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं।

हमेशा दलील की कमी नहीं होता, बाज़ औक़ात दलील सामने होती हैं, निशानियां मौजूद होती हैं, मुश्किल भी आती है, राहत भी मिलती है, लेकिन दिल अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर फरमाया, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, हमने उन्हें अजाब में पकड़ा लेकिन न वो अपने रब के सामने झुके और न आजिजी के साथ गिड़गिड़ाए। और आखिर में वही रवैया अहले ईमान के साथ है, فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, तुमने मेरे बंदों को मजाक का निशाना बना लिया, यहाँ तक कि उन्हीं का मजाक उड़ाते उड़ाते मेरी याद भूल बैठे। सामने किराम, अगर इन तमाम आयात को एक साथ रखा जाए तो एक पूरा नफसियाती नक्शा सामने आता है। पहले गफलत, फिर इस्तेबाद और हैरत, फिर इनकार, फिर तकबर, फिर इसरार और जिद, और फिर अहले ईमान का मजाक, और नतीजा वही जिसका जिक्र सूरत के आगाज और इख्तिताम में बार बार आया है, फलाह या खसारा। सामने किराम, प्रोग्राम के इख्तिताम में इस नहायत अहम तकाबुल पर बात खत्म करेंगे कि एक तरफ अहले ईमान की बात आ गई और दूसरी तरफ वो लोग जो हक से मुंह मोड़ते हैं। यानी सूरह मोमिनून में अगर आप इब्तदाई आयात को देखें तो यहाँ अहले ईमान की सिफात बयान करते हुए सूरत के आगाज ही में फरमाया गया, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, यानी कामयाब वो अहले ईमान हैं जो अपनी नमाजों में खुशु रखते हैं और लघु से एराज करते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ लघु बहुत माना खेज है। लघु सिर्फ बेफायदा बात नहीं, हर वो मशगूलियत, हर वो गुफ्तगू, हर वो सरगर्मी जो इंसान को बड़ी हकीकतों से गाफिल कर दे, उसे हक से दूर ले जाए, उसके शऊर को सतही बना दे, वो इस मफहूम में दाखिल हो सकती है। और फिर यही सूरत मुनकरीन के एक बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज को सामने लाती, जैसे कि हमने पहले भी कहा, उस आयत को मेंशन किया था, मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, यानी तुम तकब्बुर करते हुए रात की मजलिसों में बैठते और ऐसी बातें करते हैं जो हक से दूर ले जाने वाली थीं। मुफस्सिरीन ने यहाँ सामिरन को मक्के की रात की मजलिसों बैतुल्लाह के सामने बैठने और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में नामुनासिब गुफ्तगू, तमस्खुर और तानो तशनी से जोड़ा है। जरा दोनों तस्वीरों को साथ रखिए, एक तरफ वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून और दूसरी तरफ मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून। एक गुरुह लघु से खुद को बचा रहा है और दूसरा अपनी मजलिसों को ही लघु इस्तेहजा और हक की मुखालफत से भर रहा है। फिर यही माना सूरत के आखिर में एक और जगह निहायत शदीद अंदाज में सामने आता है, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यकूलूना रब्बना आमन्ना फाग़फिर लना वरहमना वअंत खैरुर राहिमीन فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, मेरे बंदों में एक गुरु ऐसा था जो कहता था, ये हमारे रब हम ईमान लाए, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तू सब रहम करने वालों से बेहतर है, लेकिन तुमने उन अहले ईमान को मजाक का निशाना बना लिया। और कुरान एक अजीब तामीर इस्तेमाल करता है उनके लिए, हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या अहले ईमान ने वाकई मुनकरीन को अल्लाह की याद भुला दी? असल हकीकत यह है कि अहले ईमान का मजाक उड़ाने में उनका अपना इन्हिमा कितना बढ़ गया कि उसी मशगूलियत ने उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। ये बहुत अहम इंसानी और रूहानी नुक्ता है। इंसान कभी कभी किसी शख्स, किसी गुरु, किसी मुखालफत या किसी नफरत के गिर्द अपनी पूरी जहनी जिंदगी बना लेता है, फिर उसकी गुफ्तगू का मौजू भी वही, मजलिस का मरकज भी वही, तबसरे भी उसी पर, इस्तेहजा भी उसी से, गुस्सा भी उसी पर, रफ्ता रफ्ता वो ये नहीं देखता कि जिस चीज़ के खिलाफ वो मुसलसल बोल रहा है उसके नतीजे में वो खुद किस चीज़ से महरूम हो रहा है। सूरह मोमिनून कहती है, तुम अहले ईमान पर हंसते रहे यहाँ तक कि मेरी याद ही भूल गए, यानी दूसरों को गिराने का मंसूबा आखिरकार खुद इंसान की रूहानी तबाही का मंसूबा बन सकता है। यही मिजाज कुरान एक और जगह मुजरिमों के बारे में बयान करता है, إن الذين أجرموا

0: FM 107. Time check. Time check.
1: गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन कबीर स्पीकिंग. बंटी एयरलाइंस में आपका स्वागत है. 6:01 और 6 से 9 बजे की दोहा से दोहा की दूरी हम 3 घंटे में पूरी करेंगे. हमारे जहाज के 2 दरवाजे हैं, दोनों ही हमने बंद किए हुए हैं और अंदर से कुंडी इसकी तोड़ रखी है, तो आप कहीं भी भाग नहीं सकते हैं. और जलपान की सेवा अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी. आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. टिंग टिंग टिडिंग.

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: सुबह उठना अच्छी बात है, फलाना फलाना फलाना, लेकिन मैं आपको गिनाता हूँ भाई सबसे बढ़िया बात, भाई शो करने के बाद ना सीधा खाली दिन भाई पूरा, अरे भाई साहब मौज आ जाती है सबसे। और वीकेंड में क्या मेरी पढ़ाई नहीं होती ना, वीकेंड हो जाता तो फिर अभी कहानी तो ढूंढनी नहीं है, एकदम बढ़िया एकदम, जैसे बच्चे भी छुट्टी पे जाएंगे ना वैसे ही मेरा सीन हो जाता भाई। मैं अभी बालक ही हूँ भाई, तो सारे बच्चों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सारे माँ बापों को जितने भी सुन रहे हैं अभी अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए या अभी तैयार हो रहे होंगे, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार बहुत सारा सलाम। और मैं जी दो हवाड़ा कबीर आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड जी, लिफ्ट गार्ड के जारी है यहाँ पर, कहीं भी किसी को जाने नहीं देंगे भाई, ठीक है। और मैं कहूँ मैसेज कर दिया करो भाई, आपके मैसेज से ही शुरुआत होती है। मैं अपना क्यूट सा छोटा सा थर्मस लेके आया हूँ, मैं तैयार है एकदम, और भाई मौज करा देंगे, जमा जहज बना देंगे शो को, पर आपका ना बहुत जरूरी है। मैसेज पढ़ दूं सबसे पहले तो मैं, एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग यूसुफ भाई क्या हाल है। और इनके बाद मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम भाई अब्दुल जब्बार, और भाई क्या नाम है भाई का, अब्दुल जब्बार, जब्बार का नाम सुनता है दुनिया कांपने लगती है। कहते हैं गोइंग टू मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी लॉन्ग टाइम टू सी, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार, लॉन्ग टाइम नो सी मेरा भाई। संजीव भाई ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग संजीव भाई, कितना। और खादिर अब्दुल्लाजी भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, हैप्पी वीकेंड मेरा भाई। कहते हैं फ्लाइट का नाम, भाई फ्लाइट का नाम बंटी एयरलाइंस। और एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है कबीर भाई, उम्मीद है आपकी सुबह हमेशा की तरह खुशगवार ही गुजरेगी, लेट्स स्टार्ट अ थर्सडे विद सम प्रेयर एंड स्माइल, बहुत सारा प्यार भाई को। और ये मुझे मैसेज किया सैयद हैदर, सैयद अली हैदर शाह साहब ने, बहुत प्यार भाई को। और भाई किसने कर दी मैसेज, एक मैसेज है जुनेद भाई का, भाई जुनेद वालेकुम अस्सलाम भाई जुनेद। और खादर अब्दुल्लाह भाई लिखते हैं उड़ान का डेस्टिनेशन, भाई दोहा से दोहा की दूरी हम पूरी 3 घंटे में पूरी करेंगे खादर भाई, जहाज सिर्फ आसमान में उड़ेगा और दोहा में रहेगा भाई, बाहर को नहीं जावेगा भाई। एक मैसेज है गुड मॉर्निंग ब्रोज, गुड मॉर्निंग ब्रोज, हैशटैग गुड मॉर्निंग ब्रोज, आज बाय गुड मॉर्निंग ब्रोज। अच्छा मैं कुछ बात बता दूं आपको, आज जो कहानी 7:30 बजे आएगी ना, मैं बता रहा हूँ मैं जितना आपको सुना के हैरान होने वाला हूँ ना उससे कम नहीं तो 10 गुना आप हैरान होने वाले हैं। आज मैं आपको वीकेंड स्पेशल ऐसी कहानी सुनाऊंगा भाई, ऐसी कहानी सुनाऊंगा ना आप ये बोलेंगे भाई ये थी कहानी, मतलब ये वीकेंड वाली कहानी है। इसके बारे में आप फ्राइडे भी सोचेंगे, सैटरडे भी सोचेंगे, और आप संडे को भी सोचेंगे इसके बारे में, हफ्ते भर आपके जहन में रहेगी ये कहानी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये

0: आप कहानी भुला नहीं पाएंगे, ऐसी कहानी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग स्टोरीज। और आज आपको भाई मैं अलग ही जोन में ले चलूंगा भाई, और आप गाड़ी साइड में लगा लेंगे, बोलेंगे भाई साइड में लगा के सुनो, ये कहानी में कुछ तो बात है। सो 7:30 द स्टोरी विल कम, और बस मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, बट इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी शॉकिंग। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, फ्लाइट का दरवाजा खोलो, हमको भी बैठना है। आने दो भाई इनको, 2D आपकी सीट है अंसारी साहब, आके बैठ जी, ये 2D में बैठ जी, फैमिली और भी साथ में, प्लीज़ बैठ जी। जहाज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है हमारी, टिकट को नहीं होता भाई। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं आपके साथ सुबह में सच में बहुत मज़ा आता है, थैंक यू सो मच। ढोल बजा दो भाई, सुबह सुबह ढोल बजा नहीं सकता मैं समझ रहा हूँ भाई, वो क्या है अभी सुबह, अभी जगेंगे ना लोग, तो इसलिए मैं अभी ढोल थोड़ी देर में बजाऊंगा। इट इज़ टू अर्ली टू प्ले द ढोल, पर बजाऊंगा जरूर। एंड ऑल द किड्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, बहुत सारा प्यार बच्चों को, बच्चों को भी तो हैप्पी वीकेंड होता ना भाई। मेरी तरह मैं सच में ये सोच रहा हूँ, मैं भी बस बुस लगा लूँ भाई, स्कूल बस लगा लूँ, कोई सा स्कूल की जो बस है वो मुझे भी छोड़ दे भाई ऑफिस में, क्योंकि मुझे बच्चों वाली ही फीलिंग आने लगी है। पढ़ाई करके आता हूँ मैं डेली, आप मेरा एग्जाम ले लेते हैं, है ना, तो ऐसा है मुझे भी अब स्कूल बस लगा लेनी चाहिए, गाड़ी गुड्डी में आने का कोई मतलब नहीं है भाई। तो तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड जितने भी लोग सुन रहे हैं। सो अभी तो सुबह सुबह की अदकार, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बट आई एम रियली रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि आज की कहानी बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप लाइव सुनेंगे ना आज की कहानी, अरे अरे अरे भाई, मैं मेरे पेट में ना तितलियां उड़ रही है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है फॉर द स्टोरी। आई थिंक आपके आपके लिए आज तक मैंने जितनी भी कहानी सुनाई है राइट फ्रॉम 2021, ये टॉप 5 में तो आ जाएगी कहानी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे लिए तो है भाई ये कहानी। एक मैसेज आया भाई, कल से भेज दूंगा वो स्कूल बस आज भाई, ठीक है भाई। और पता कौन सी सीट, वो तो भाई ड्राइवर के साइड वाली सीट नहीं होती भाई, जहाँ से सामने का दिखा कर एकदम क्लियरली, वो वाली सीट चाहिए भाई, पीछे को नहीं बैठता भाई मैं, तो आगे वाली सीट जो है मुझे वो दिलवा देना आज से भाई, ठीक है भाई। मैं अपना टिफिन भी वहीं खा लूँगा सवेरे सवेरे का, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे लोग FM 107 पे, मेरा हो लिया भाई, आराम से सोते हुए आऊँगा मजे करके कौन खोले सुबह आके गाड़ी चलाते हुए, क्या एकदम फिक्स से क्या भाई, थैंक यू सो मच भाई, ऐसे होने चाहिए भाई लोग। बाकी सुबह के अधिकार शुरू हो रहे हैं, 10 मिनट 33 सेकंड के बाद से मुलाकात होगी। एक मैसेज है, VIP सेट है, VIP सीट है हाँ तारिक भाई, यही तारिक भाई, VIP नहीं मेरे भाई, वो क्यूट से बच्चे नहीं होते जो थोड़े से शाय होते हैं, जिन्हें थोड़ी सी वो आती है ना झिझक सी आती है, बाकी बच्चों से दोस्ती नहीं पाती, मैं बहुत शाय बच्चा हूँ भाई, तो इसलिए आगे बैठ रहा हूँ भाई मैं, आप भी ना VIP है 10 मिनट 33 सेकंड के बाद मुलाकात हो रही है, जाना आपने नहीं। एंड जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच गई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आपका मैसेज जरूर आना चाहिए, बिकॉज आपके मैसेज से मेरी सुबह की शुरुआत होती है, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। बाकी तमाम बच्चों को मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट फॉर द डे। चलो शुरू करते हैं दुआओं से आज का दिन।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

सी, ये बेटे आपको आदत करनी पड़ेगी. मैं वेट करूंगा जब आप स्कूल के बाद कुछ खा लेंगे रेड वेलवेट. ये केक का ही है ना बर्थडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं गलत हो सकता हूँ. अवेज भाई ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइट शिफ्ट के

0: बातोरी है तो अलीना आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट, मुझे लगा सच में ये केक पॉप ग्रुप है, बट अलीना टेल मी ये कोरियन जो हैं ये सारे के सारे ऐसे नाम क्यों रखते हैं बेटे, ये क्यों है बेटा एंड क्यों? तो रेड वेलवेट सिर्फ केक का नाम नहीं है, आज मुझे पता लग रहा है कि के पॉप बैंड का भी नाम है, ग्रुप है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सुम्बल मैन गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं ज़रा एक सवाल पूछना चाहता था आप सभी से बिफोर आई गो टूवर्ड्स द स्टोरी, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत बहुत बहुत बिजार है। इट्स अ वीकेंड स्पेशल स्टोरी और ये ऐसी स्टोरी है कि मेरे पेट में लिटरली अभी तितलियाँ उड़ रही हैं कि मैं आपको बस सुना दूँ, अभी सुना दूँ मैं। 7:30 बजे का वेट कीजिए, 7:30 बजे आज डॉट में शुरू कर दूंगा हर हाल में। बट राइट नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, आपको याद है जब चीज़ें फ्री मिला करती थी, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री मिला करती थी, वो वाला नहीं सीन नहीं कह रहा मैं, आज वाला सीन नहीं कह रहा मैं, जैसे 20% ऑफ बाय वन गेट वन फ्री, वो वाला नहीं मैं ये कह रहा हूँ भाई, वो वाला जो था ना दौर जब एक साबुन की टिकिया के साथ एक ब्रश फ्री वो टाइम याद है आपको? पता नहीं अब क्यों नहीं है वो, क्योंकि जब भी ग्रोसरी के लिए जाता हूँ मैं, हमेशा से मेरे अंदर का जो बच्चा है वो यही मुझसे कह रहा होता है यार काश वो दिन लौट आते। वो पहले होता था ना एक टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री। तो आपको याद है कुछ चीज़ें जो फ्री में मिलती थी, कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती थी कि यार ये चीज़ जो फ्री मिलती है ये बहुत बढ़िया। भाई चिप्स के पैकेट में पोकेमोन निकलते थे भाई, उसकी बात ही कुछ और थी भाई वो मैं जानता हूँ, 5-5 रुपए के मैंने इतने चिप्स खाए, भर भर के पोकेमोन कलेक्ट करता था मैं बहुत सारे। बट अभी उस लेवल पे नहीं मिलता ना सुम्बुल बहन, मतलब वो वाला जो टाइम था जैसे वो सब कुछ फ्री कहाँ मिल रहा है मुझे बताओ, मैं सबसे पहले लेने जाऊँगा। आली बी द फर्स्ट वन, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज क्या है मुझे बिलाल भाई ने, बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड मेरे भाई, ओके तितली सॉन्ग सुना दो आसिफ भाई नॉटी बॉय। लेकिन मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि क्या वो फ्री चीज़ें जो आप मिस करते हैं जो पहले कभी मिला करती थी। पहले याद है एक बहुत टाइम पहले मुझे याद है इंडिया में एक वो चला था पूरा का पूरा कैंपेन, उसमें कहते थे कि साबुन के टीके को पूरा का पूरा घिस दो उसे, उसके अंदर निकलेगा सोने का सिक्का, अगर वो सोने का सिक्का आपको मिल गया। आज तक नहीं निकला वो, मैं किसी भी शख्स को नहीं जानता ना खबरों में ना अखबारों में ना कहीं पर कि किसी का साबुन का टिकिया घिसने के बाद सोने का सिक्का निकला हो। आई डोंट रिमेम्बर। और उस टाइम पे लोगों को ये था भी, अभी तो कोई भी नहीं मानेगा, अभी अगर कोई कह भी देना कि हमारी साबुन की टिकिया में सोने का सिक्का मिल सकता है nobody will believe, मैं सच बता रहा हूँ नहीं मानेंगे लोग, मुझे नहीं लगता। बट उस टाइम पे लोग मान लेते थे, उस टाइम मतलब मैं भी मान लेता था भाई, मुझे लगता था कि यार होता तो होगा यार, ये कह रहे हैं तो होता होगा। और वो होता था कि कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन होते थे उसमें से फ़ोन का रिचार्ज निकला करता था इंडिया में स्पेशली, एंड इट वाज वेरी वेरी स्पेशल, लगता था कितने का रिचार्ज निकलेगा भाई, कभी 8 रुपये निकल रहे हैं कभी 10 रुपये निकल रहे हैं, आज तक मैंने किसी के 10 रुपये से ऊपर नहीं देखे, पर्सनल ओपिनियन। एक मैसेज है वेस भाई का, वो कह रहे हैं कि एक स्टोरी है, कौन सी स्टोरी है मतलब समझ नहीं, कॉल करूँगी आपको मैं, स्टोरी सुनाएंगे आप लेट मी नो इफ यू वॉन्ट, मैं वेस भाई आपको कॉल कर लूँगा, नॉट ए प्रॉब्लम। एंड एक मैसेज है मेरे पास, अच्छा मैं वेस भाई को पहले कॉल कर लेता हूँ, वेस भाई के पास कुछ है बताने के लिए, लेट मी कॉल, मैं नंबर से मिला रहा हूँ क्या, एक तो मैं सुबह सुबह मेरा ना दिमाग ग्लिच कर रहा होता है, मैं कुछ भी नंबर डायल कर सकता हूँ इसलिए मुझे अपने आप से ही थोड़ा सा डर लगता है, बट लेट मी कॉल हिम। वेस भाई उठाई लो, नंबर सही मिलाया मैंने, हाँ नंबर तो सही मिलाया, वेस भाई फोन नहीं उठा रहे हैं। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: वेस भाई रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो वरना डबल ट्रिपल आवाज सुनाई देती रही, बहुत बढ़िया काम किया आपने बताइए वेस भाई कैसे भाई, नाइट शिफ्ट कैसी रही आपकी?
1: नाइट शिफ्ट जबरदस्त रही है, थोड़ा सा गाड़ी में एसी में भी प्रॉब्लम आ रहा है,
0: अरे रे रे रे,
1: तो चलिए अभी जा
0: है क्या,
1: मैं एसी को ठीक
0: कराने भाई, भाई सबसे पहले ये काम कराइए भाई, बाकी काम होते रहेंगे भाई, नींद वींद भी बाद में हो जाएगी, पहले ये एसी ठीक होना चाहिए वेस भाई, मेन है ये। हाँ तो बताइए भाई,
1: स्टोरी आपको सुनानी है। हम लोग जब छोटे थे तो अभी भी बहुत बड़े नहीं है लेकिन जब छोटे थे तो टॉप ऑफ के नाम से था पाकिस्तान में,
0: अच्छा
1: उसमें से ऊपर निकलता था छोटा सा, तो लाइक यू कैन से 3 times सिम साइज, तो वो 7 आपने इकट्ठे करने होते थे,
0: अच्छा
1: तो आपको एक पैकेट फ्री मिलता था।
0: आए।
1: तो कुछ देर तो हम ये करते रहे,
0: हाँ।
1: और बाद में हमने उसको कोड एक ये क्रैक किया कि अंकल को बोला सर बात ये है कि आप हमें 6 कूपन हमारे पास है,

0: आप हमें फ्री वाला दे देना, और फ्री वाला निकालेंगे उसमें से जो कूपन निकलेगा।
1: हाँ, फ्री वाला
0: जो फ्री वाला है उसमें से भी कूपन निकलना था ना।
1: हाँ हाँ,
0: तो हम तो बोलते थे कि 6 कूपन मेरे हाथ में है, आप मुझे फ्री वाला पहले दें।
1: बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद थी देसी लोगों से।
0: नहीं वो उससे खुशी और भी तो भाला हो जाती थी, कभी कभी 2 कूपन भी निकल आते थे गलती से एक ही पैकेट में।
1: हाँ अच्छा, तो ये क्या किस चीज का पैकेट था, किस चीज का पैकेट था ये?
0: जैसे ये यहाँ पर भी एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जैसे पॉप्स होते हैं वो कॉर्न के बने हुए, जैसे कौन से पॉप्स बने होते हैं ना वो,
1: राइट। हाँ,
0: तो यहाँ पर भी एक कतर का भी
1: ब्रांड। यार क्या दिन थे यार रोहित भाई, वो क्या दिन थे यार, कितने जबरदस्त दिन थे वो, जब ऐसा कुछ निकलता था पैकेट्स में से।
0: मतलब आपने बात की ना, मेरे एकदम से जहन में आ गई, मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ। दिस इज वेरी बाय द वे, मतलब हम लोग शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे।
1: हाँ,
0: तो घर के पास दुकान थी, उनसे लेते थे।
1: नहीं यार, ये आपने अच्छा किया शेयर किया, बिकॉज दिस इज द प्राइम एग्जांपल कि मैंने ये बात ही क्यों छेड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी चलो ठीक है मिलती हैं कुछ चीज़ें फ्री, लेकिन वो मज़ा नहीं है, वो वाइब नहीं आती यार, जो पहले आती थी ना, वो पैकेटों में से निकलती थी उसकी बात ही कुछ और थी यार।
0: है नहीं? और ये बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वाली बात भी मुझे याद आई आपकी बात से, तो हाँ, उसमें भी ये था कि उसका जो कप है वो मिलता था क्रिकेट के साथ, आपको पता है ज्यादा चीजें लिंक होती हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनके वो सब बैच निकल रहा है और इस तरह की चीजें। 99 का वर्ल्ड कप था, तो इन लोगों ने बोला कि जी ठीक है आप ये जो है ना इसमें से दें तो आपको बैट मिलेगा, उसमें जितने भी पाकिस्तान का उस टाइम टीम की स्ट्रेंथ थी उनके सिग्नेचर
1: आए।
0: तो क्रेजी के भाई ये मिलेगा जबरदस्त है ओरिजिनल, और जब बैट आया तो उसके ऊपर वो स्टिकर ही लगा था।
1: और पता है वो जो बैट हमारे यहाँ देते थे ना, वो चूने का बैट होता था, वो चूने का बना हुआ, उससे आप खेल नहीं सकते। अरे यार
0: उसके ऊपर जो स्टिक वो था ना, वो जो वो पूरा ही लंबा स्टिकर लगा हुआ था।
1: हाँ हाँ,
0: तो उसके भी सिग्नेचर थे वसीम अकरम सब लोगों के। तो हम पता कि शायद बैट सिग्नेचर होंगे ज्यादा वैल्यू होगी देखेंगे, लेकिन वो तो बस स्टिकर ही था।
1: अरे यार रोहित भाई, पर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, ये मतलब मेमोरी में अनलॉक किया होगा आपने बहुत सारे लोगों के लिए, थैंक यू सो मच भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम। और रोहित भाई ने जो बात कही ना, मैं सही बताऊं, ये बैट निकलना ना बहुत आम बात थी। और एक और चीज थी, वो ये कॉफी के साथ मग दे देने का जो रिचुअल था, मग तो दे देते थे भाई, लोग मांगते थे, अरे फ्री लिखा है तुम दे नहीं रहे हो। एक कॉल आ रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम। बस भाई ये फ्री फंड की बातें कर रहे हैं भाई, तो क्या आपको फ्री मिलता था किसी जमाने में, कुछ याद है तो बहुत अच्छा लगता होगा किसी चीज के साथ कुछ चीज फ्री मिलती थी पहले।
0: फ्री में तो गालियां, थप्पड़, चाटे।
1: नहीं भाई, अब मैं चीजों की बात कर रहा हूँ, इतना साइकोलॉजिकल गेम मत खेलो मेरे साथ। मैं चीजों की बात कर रहा हूँ, कोई चीजें याद है आपको?
0: मैं आपको शाम को सुनने वाला बंदा, आज मैं फ्री हुआ अभी, कहीं बैठे थे।
1: हाँ,
0: तो मैं क्या भाई से बात कर ले, फिर पता नहीं कब बात हो गई, 3-4 दिन हो गए तो बात हो ही नहीं, जब से 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है आपका मॉर्निंग का। मैं अपना नाम बताना चाहूंगा, मनी बोल रहा हूँ।
1: हाँ मनी भाई, वो तो मैं समझ गया था भाई, मनी भाई आपके पास तो याद है मुझे। बात हो चुकी
0: है, खेल रहे थे पहले।
1: हाँ,
0: उसके बाद बैठ गए, तो अभी वहां से फ्री हो, मैं क्या कबीर भाई आए होंगे तो भाई से बात कर लेता हूँ, फिर पता नहीं किस दिन बात होगी दोबारा।
1: नहीं भाई ऐसा नहीं है यार, आपने तो मुझे वो बना दिया एक्सटिंक्ट, वो जो चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई, मैं हूँ, टेंशन नहीं है, आप जब भी पुकारेंगे मैं चला आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मणि भाई बहुत सारा प्यार भाई को।
0: आप सुबह में आ गए ना, तो सुबह में तो अभी अभी जा रहा हूँ घर, अभी जाके सोऊंगा मैं
1: भाई। ये बता, ये डिटेल की जरूरत नहीं थी, चढ़ा रहे हो क्या? क्या अभी बस सोने जा रहा हूँ मैं।
0: अभी घर जाऊंगा, अभी जाके देखो सोऊंगा, फिर शाम को उठूंगा, शाम को आप नहीं मिलोगे।
1: अरे भाई कोई बात नहीं भाई, मिस करेंगे आप, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि चलो आपको याद आ रही थी कि शाम में
0: पाँच बजे आपको शाम को।
1: थैंक यू भाई, शुक्रिया।
0: आपकी स्टोरी हम सुन के उसमें खुश हो लेते हैं कि कबीर भाई की आवाज तो सुनने को मिल गई।
1: मेरा भाई बहुत बहुत प्यार भाई, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच मणि भाई, अच्छे से नींद पूरी करो भाई, आप जम गए एकदम।
0: अभी मैं घर के लिए निकला हूँ तो अभी जाके सोएंगे।
1: ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट भाई,

0: अच्छे सपने देखो भाई ठीक है
1: सपने बड़े बड़े
0: बड़े बड़े देखो भाई, छोटे सपने देखते को नहीं भाई, हम तो वैसे ही आपको बताइए उस तरफ के हम
1: और आप बताओ कैसे हो?
0: बढ़िया भाई एकदम, चौकस चल रहा है बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अब तो आदत पड़ गई है, अभी तो मुझे एक दिन लगता है भाई बैटरी पूरी रिचार्ज होने में, अभी आदत पड़ गई है, कोई टेंशन नहीं
1: लेट हो रहे हो कि नहीं?
0: नहीं भाई लेट होने की तो गुंजाइश ही नहीं है भाई, हर हाल में 6 बजे से पहले आपका भाई तैनात होता है दरवाजे पे
1: भाई आपका हिम्मत है आपकी, आप सुबह में उठ रहे हो। मैंने एक बार वीक की शिफ्ट की थी, मैं गया था
0: भाई, होता है वो, आदत नहीं है भाई, जब आदत नहीं होती ना तो ही होता है, अभी आदत पड़ेगी तो फिर ऑफिस से कहा जाएगा चलो शाम को करो तो ये खेल है भाई हमारे साथ, कोई टेंशन नहीं है, चलता रहेगा भाई। बाकी मनी भाई थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी भाई,
1: है ठीक
0: है, डन डन डन भाई, ख्याल रखें अपना,
1: शुक्रिया,
0: ओके मेरा भाई, खुदा हाफिज, ख्याल रखें, ख्याल रखें। और मणि भाई के बाद कुछ मैसेज पढ़ना चाहूंगा मैं, फराज भाई ने मैसेज किया, फराज भाई कह रहे हैं सलाम भाई, मणिलाल फ्रॉम आवारा पागल दीवाना एक मैसेज आया, आई रिमेम्बर टेनिस बॉल मिलती थी जूतों के साथ, भाई ये मुझे भी याद है उस्मान भाई, टेनिस बॉल मिलती थी जूतों के साथ, ये मुझे भी मिल चुकी है भाई, तब उससे मैंने मैसेज किया है, लिखती हैं मेरे अब्बा बोलते थे बड़ी वाली टूथपेस्ट लाना उसमें एक ब्रश फ्री मिलेगा, और दुकानदार ना दे तो मांग कर लेना, बहन ये बिल्कुल सही बात है, मांगना पड़ता था वो, अंकल इस पे ब्रश लिखा है फ्री आप दे क्यों नहीं रही हैं, गलत बात होती है, कॉल आ रही है अंकल की, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, जनाब खैरियत?
0: अंकल ये लिखा है इसके साथ ब्रश फ्री है, आपने क्यों नहीं दिया पहले तो मुझे बताइए।
2: अरे बेटा वो यूज कर लिया था,
0: यूज कर लिया था
2: हमारे पास भी खत्म हो गया था,
0: शटर लगवा दूंगा दुकान पे अंकल, सही बता रहा हूँ मैं, जे मेरी अड़की गरारी
2: बेटा शटर लगने की जगह नहीं है, खिड़की है छोटी सी
0: अरे यार वो वाली दुकाने याद आ गई अजय भाई, वो वाली दुकाने याद आ गई सही में, खिड़की वाली तो जैस भाई कैसे हैं आप, सबसे पहले बताएं भाई।
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है,
0: सब
2: भाई भाइयों की दुआएं हैं,
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैस भाई कोई फ्री चीज बताओ यार आपको जो कभी मिलती हो, क्योंकि जैसे लोगों ने बताया ना भी जूते के साथ टेनिस बॉल भी मिलती थी भाई, आपको कुछ चीज याद है जो फ्री में मिलती थी, मजे आते थे भाई पहले मिलती थी
2: फ्री में? ऐसा फ्री में जो दुकान पे सामान लेने जाते थे ना, टॉफी वोफी मिल जाती थी, कभी चूरन वूरन मिल जाता था
0: वो तो जब दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं होते वो देता था ये टॉफी ले लो पूरे
2: कॉन्फिडेंस से, वो अलग से देता था, वो कमीशन कमीशन, क्योंकि हम जाते थे ना।
0: अच्छा
2: जो फ्री वाले
0: कमीशन, हाँ ये तो फैक्ट है, कमीशन के तौर पे मिलती थी, ये अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं।
2: दुकानदार पहले वाले बहुत चालाक थे ना, ग्राहकों को ना समेटने के लिए ना कमीशन बहुत तगड़ी देते थे, कभी टॉफी दे दी, कभी चूरन दे दिया, कभी कचरी ये दे दी, वो आते थे ना पापड़ वाले टाइप वाली कचरी
0: मुझे याद है भाई पहले एक दो रुपए जब बचते थे ना तो उसका वो एक चटपटा सा आता था और उस पे हाथी बना होता था, वो वाली गोलियां देता था वो खाने के लिए और ऐसा लालच होता है ना बच्चों के लिए वो, कि जब भी घर वाले कुछ मंगाते हैं वहीं जाके लेते हैं कि अंकल वो चूरन दे देंगे।
2: अरे छोटा मोटा कोई जैसा सामान पड़ा होता था वो आते थे ना साइकिलों पे रिक्शों में आते थे, वो उनके पास ना पूछते थे बेटा जाओ लिया कुछ लिया चूरन देंगे ये देंगे, अंकल है ही नहीं, अरे लो बेटा पहले ले लो बाद में लिए हो तुम जाके लेके तो आओ ढूंढ के लेके आओ। अरे
0: वो सर्च भाई, वो सर्च आज याद दिलाया अपने जैस भाई, वो एक जो खोजने वाली चीज है ना उसका मजा ही कुछ और है। बाकी जैस भाई इतनी सुबह सुबह 6:34 पर भाई ये कैसे हुआ हादसा भाई?
2: अब तो मैं 5 बजे उठ रहा
0: हूँ। अरे भाई साहब क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है
2: भाई? भाई भाई हमारे तो ड्यूटी बजा रहे हैं तो हम कैसे सोते रहेंगे
0: मेरा भाई, मुझे लगा रात की कॉल खत्म हुई है अभी कुछ देर पहले ऐसा तो नहीं है, सही बताओ?
2: नहीं नहीं यार भाई, सुबह सुबह रोज इंशाल्लाह रोज मिलेंगे, टेंशन मतलब हाजिरी बराबर लगाऊंगा सुबह सुबह,
0: फिर तो ठीक है भाई, मुझे लगा टाक टाइम चल रहा है इसलिए टाक टाइम खत्म हो
2: गया।
0: एक मैसेज आया आपके लिए जैस भाई, ये कह रहे हैं कि भाई प्लीज इस भाई से पूछो ना इनमें इसमें ग्रेविटी कहाँ है, ये कह रहे हैं आसिफ भाई पूछ रहे हैं।
2: ग्रेविटी ग्रेविटी कहीं तेल लेना
0: ये हर किसी से पूछते हैं आसिफ भाई, ये डेली पूछ रहे हैं कि ग्रेविटी कहाँ है ग्रेविटी कहाँ है
2: तो लगता आसिफ भाई की ग्रेविटी लुल हो गई है पता कौन से गोले में गई है।
0: आसिफ भाई आपकी तलाश जारी रखिए, यहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया है और नेटवर्क अभी बिजी है तो थैंक यू।

0: सो मच पर जयस भाई, थैंक यू सो मच भाई।
1: अरविंद भाई को बता दो पीला हेलमेट लगा के घूमना भैया, येलो को फोका एकदम पड़ेगा, ग्रेविटी मिल जाएगी।
0: पीला हेलमेट लगा घूमू भाई ऐसे, भाई पीला हेलमेट लगा घूमू, ठीक है भाई, आदेश दे दिया है। पर थैंक यू सो मच जयस भाई, सुबह सुबह आप मिल जा रहे, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, भाई को बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू भाई,
1: आपको भी बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज भाई,
0: अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज मेरा भाई। और भाई के बाद मैसेज आया सीधा लखनऊ से, उन्होंने बोला है भाई को ग्रेविटी से खास पंगा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है भाई। और एक मैसेज आया तबस्सुम मैन का, पूरा मैसेज पढ़ दूं मैं, उन्होंने लिखा है फॉर मी इट वाज नूडल्स, एक था हमारा लोकल नूडल और उसमें एक टॉफी मिलती थी फॉर श्योर, और कुछ नूडल्स में कूपन, 5 कूपन जमा करके जाओ एक फ्री नूडल, और मम्मी के लिए चावल की बोरी में क्या स्टील के चमचे या गिलास, बहुत अच्छी मेमोरी याद दिलाई आपने बहन, है ना, वो अलग मजा था वो। आटे की बोरी के साथ बर्तनों में वो एक या तो कटोरी देते थे छोटी सी या चम्मच देते थे, हमें, मैं जहाँ से आता हूँ दिल्ली पटला उसे, तो वहाँ पे लोग यही करते थे, वो क्या करते थे, अगर आपने मान लो 10 किलो का आटा ले लिया, 10 किलो 5 किलो की चीनी ले ली, आपने बोरी ले ली उनसे, तो वो साथ में आपको पकड़ा देंगे, ये लो 2 चमचे ले जाओ, कटोरी ले जाओ, थे अंकल ये क्यों, फ्री है बेटा, तो ये जो खुशी होती थी ना, आ हा हा हा, वो नहीं मिलती भाई, ये कूपन जमा करके चीज़ फ्री लेने का तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो मैं बोलूँगा नहीं। कमालुद्दीन शिक्षा वाले असलम, तो शिक्षा वालेकुम असलम, और हमें मैसेज किया है ये हसन भाई ने, हसन भाई क्या कह रहे हैं, हसन भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, वी हैड लॉट्स ऑफ डाइनोज फ्रॉम फास्ट फूड आउटलेट, देन एट वन टाइम वी ट्राइड टू कन्विंस आवर किड्स दैट वी हैड इनफ बट दे ऑलवेज कलेक्टेड। ये बात है, वो फास्ट फूड चेन में ना वो छोटे छोटे टॉय वो तो अभी भी मिल जाते हैं, बट इज जस्ट दैट क्या कहते हैं वो वाले जो टॉय हैं अभी उनकी वो वैल्यू नहीं रही है, वो कदर नहीं है। एक मैसेज है भाई, कुलचे नहारी की याद आ रही है, सुबह सुबह खाने का मजा ही अलग है। एक तो ये लखनऊ वालों से भाई, मैं सही बता रहा हूँ, लखनऊ वालों मत याद दिलाया करो ये चीज़ ना, मैं भी छुट्टी पर जाके खा के आऊँगा कुलचे नहारी। एक मैसेज और, अस्सलाम वालेकुम, और मैं पूछूंगा कोई तो मिलेगा, आसिफ भाई लगे रहो। और ये माज भाई ने बोला है कोलेस्ट्रॉल फ्री। माजू हर चीज को बेटे पर्सनल नहीं लगाते हैं दिल से, जब ये फ्री में मिल रहा है आपको मैं बताऊं। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा भाई कादर अब्दुल आदि भाई कह रहे हैं कबीर भाई आप जानते हो एक टूथपेस्ट का था, अच्छा ओके, जस्ट मैं क्या छोटा सा मिनिएचर मिलता था, किस चीज का, ओके मुझे ये पता नहीं भाई, आई डोंट नो, टेनिस बॉल और टूथ ब्रश भी फ्री का, धनिया बहुत लिया, अब लेके दिखाओ फ्री का धनिया किसी से, मान जाऊंगा भाई मैं। और एक मैसेज है, ये मीत भाई ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, पुराने टाइम में मम्मी के साथ सब्जी मंडी जब जाते थे, सब्जी वाला धनिया और मिर्ची फ्री में देता था, वो फ्री का धनिया और मिर्ची पाके मेरी मम्मी इतनी खुश, अलग ही खुश होती थी, अभी पता नहीं वो मिलता है नहीं मिलता भाई, अब कोई नहीं देता फ्री में धनिया और मिर्ची, वो आपका जान पहचान वाला सब्जी वाला और मोहल्ले वाला तो बात दूसरी है। इशाम साहब वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज है, हम तो तड़ भी रहे हैं भाई, नहीं नहीं नहीं लखनऊ वालों मत करो। और एक मैसेज है, आई गॉट अ विसल फ्रॉम चिप्स पैकेट व्हेन आई वाज इन इंडिया लास्ट ईयर, अलीना ने मैसेज किया, अलीना आई कैन रिलेट टू इट बेटा, वेरी नाइस। तो अलीना ने बताया कि पिछले साल वो जब गई थी तो उनको सीटी मिली थी एक चिप्स के पैकेट में से, अभी मिल रही है क्या, अरे वेरी नाइस यार। आई स्टिल रिमेम्बर वो छोटे से पन्नी में ना, छोटी सी पन्नी में पैक करके चिप्स के बीच में डाल देते थे पहले, और अभी भी मिल रही है तो आई एम रियली हैप्पी, आई वुड लव टू हैव इट अगेन, उसकी बात ही गुजार है, अनबीटेबल चीज़ है वो। एक मैसेज है, भाई की इंग्लिश बहुत हार्ड है क्या एकदम बाय। एक मैसेज है, बचपन में हमारे घर के नीचे एक बकाले में कैंडी मिलती थी, बाय वन गेट वन फ्री, मेरे उस अंकल से जाकर कहती थी फ्री वाली वो कैंडी दे दो, बेचारे अंकल देते थे, 5 दिन ऐसा चलता रहा, बकाले में घुसने नहीं दिया, 5 दिन बाद चलता रहा अच्छा। ये मुन्ना जी, ये जो आदत है ये आपने अभी कहीं दी है, इनहेरिट करवाई है किसी को, हस्बैंड को, जैसे आपके हस्बैंड माशाल्लाह ये जो माज हैं इनको भी सिखाइए ये सब बातें, और आप दोनों में से कौन बार्गेनिंग में अच्छा है ये भी बताइएगा। एक मैसेज है, मंडी जाओ वहाँ पर आज भी मिलता है फ्री में धनिया, मंडी की बात तो कुछ और है, दिल्ली की सब्जी मंडी में तो वहाँ पर तो लोग ऐसी खा लेते हैं, आपने देखा यहाँ पे कतर में भी सूक वाकिफ में जिन लोगों को खजूर वजूर ले जाने होते हैं वो पेट भर के आते हैं, लंच टाइम पे जाते हैं सूक वाकिफ, ये कैसी दिए खा लिया, ये कैसी दिए खा लिया, ये कैसी दिए खा लिया, तो वही इंडिया में करते हैं वो, सब्जियाँ लेने या फ्रूट फल फ्रूट लेने जाते हैं और खाते रहते हैं पूरे रास्ते। लेते वेते कुछ नहीं है, ये अलग किस्म का फ्रीडम है। और टैज़ो, हाँ ये तो मैं माज भाई कॉल करूँगा, टैज़ोस तो भाई इतने पोकेमोन के जेंजो क्या कहता जेंजो काट कहते थे जैजो, मैं नाम ही भूल रहा हूँ यार, मेरे पास अभी भी पड़े हैं और बता रहा हूँ मैं

0: सही में बहुत वैल्यू है उनकी, आज भी बिकेंगे बढ़िया वाली, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। बाकी माज भाई हमने कॉल करी है, अस्सलाम वालेकुम माज भाई।
1: अस्सलाम वालेकुम, मतलब बरकत, खैरियत?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार हो रहा भाई मामला, आप सुनाए।
1: भाई देखो, मैं थोड़ा लेट ट्यूनिंग किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बचपन में हमको फ्री क्या मिलता था उसकी टॉपिक।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें पहले होती थी ना मास भाई, जैसे एक टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री मिल गया भाई, उसकी खुशी और थी यार।
1: तो मैंने जो पहला मैसेज किया था ना कोलेस्ट्रॉल फ्री वाला,
0: हाँ हाँ
1: तो दिस इज लेजिट, मेरे आंखों के सामने हुआ है। मैं मतलब बहुत ही छोटा था जबकि बात कर रहा हूँ के काउंटर पे बंदे ने लड़ लिया।
0: अच्छा,
1: दुकान वाले से, मतलब वो प्रॉपर जैसा अपने ये सुपरमार्केट है, ठीक है, के तेल के बॉटल पे लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री, मेरे को ये चाहिए, किधर है? समझ रहे हो? वो बोल रहे नहीं सर, इसका मतलब फ्री लिखा है, मेरे को चाहिए दे दो। कहाँ चला कर देंगे भाई?
0: मुझे कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ये बोतल पे लिखा हुआ है, मुझे मतलब नहीं है तुम कौन से तेल बेच रहे हो।
1: ऊपर लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री, मेरे को कोलेस्ट्रॉल दे दो। तो ये मैं देखा हूँ बचपन में। और अच्छा, मैं उतना छोटा हूँ कि मुझे उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। डैड मेरे साथ में थे, डैड समझ के हंस रहे और मैं उनको पूछ रहा हूँ क्यों नहीं दे रहे, उनको दे दो। बच्चे मन के सच्चे, मैंने बोला क्यों नहीं दे रहे, दे दो, सही तो बात है।
0: सही सही बात है, सही बात है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सही बात है, बंदा मांग रहा है कोलेस्ट्रॉल दे दो उसको, ये बोतल में से लिखो नहीं। अरे
1: तो
0: भाई
1: ये था। और दूसरा भाई, टैजोर मिलते थे याद है, बच्चे जमा करके फिर लाके खेलते थे उसके साथ के, भाई देख मेरे पास ये वाला टैजो, मेरे पास वाला टैजो, एक टैजो और दूसरे वो
0: जेंगा कार्ड्स थे, जेंगा कार्ड्स थे ना, वो जेंगा कार्ड्स खिलाते थे, क्या खिलाते थे, जेंगा ही कार्ड्स।
1: वो टैजो के अंदर वो होल्स बने रहते थे, उसको ज्वाइन कर करके आपको
0: फेंक भी सकते थे और खेल भी सकते थे ना, वैसा वाला सीन था उसके साथ। ये क्या
1: वाला एक मेमोरी याद है कि भाई, आई थिंक इट वाज 97 96 97
0: में आते थे टैजोस। हां यार, क्या याद दिला दिए यार, इमोशनल एंगल है भाई। मैं तो स्कूल में जाके एक्सचेंज किया करता था कि मेरे पास ये वाला नहीं है, ये वाला तो दे दे, मेरे वाला ले ले। वो पोकेमोन के साथ बहुत किया है हमने, डेफिनेटली वही प्राइस। बस ये कोलेस्ट्रॉल वाली बात भाई आज याद रहेगी मेरे को, दिस विल रिमेन विद मी।
1: नहीं ये वाकई हुआ है, मैं मतलब इट वाज नॉट इन कतर, इट वाज इन यूएई।
0: अच्छा,
1: एंड मेरे सामने हुआ है।
0: ये मैं ट्राई करूंगा, पता है, ये आई वांट टू ट्राई दिस, सीरियसली बता रहा हूं, ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ और मुझे वीडियो बनाना है इस पे, मैं सामने
1: वीडियो बना सकते हैं, व्लॉग बनेगा इसका।
0: हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो आपने देखा ये कतर में कंटेंट कैसा चल रहा है, तो उस बीच मेरा कंटेंट भी चली जाएगा। क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। कल
1: जब जानवर छुट्टे खा के गिर सकते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं मार सकते?
0: बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, मैं कल से इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ माज भाई, अब मैं बात नहीं करूंगा, बड़ा आदमी बन रहा हूँ कल से। ठीक हो गया माज भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत
1: थैंक यू,
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और माज भाई ने जो बताया बिल्कुल सही बताया भाई, मैं उनके साथ हूँ, मैं कल से इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ भाई। एक कॉल आ रही है, रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, कैसे?
0: बढ़िया भाई, नदीम भाई क्या है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो क्या कहना चाहेंगे नदीम भाई, क्या
2: बचपन की बातें कर रहे हैं आप?
0: हाँ,
2: आप क्या सोच रहे हैं जो इतना सवाल आपके पुराने दिमाग में आया?
0: मेरे पास ना एक पोस्ट आया था, ठीक है, और उस पोस्ट पे सामने वो बना हुआ था जो फ्री में चीजें मिलती थी ना, जैसे आटे की बोरी के साथ दो चमचे, एक छोटी सी कटोरी, और ये जो था ना टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री में, अब तो मिलता नहीं है। हालांकि हमारी बहन सुम्बुल, उन्होंने मैसेज किया, वो तो कह रही है अभी फ्री का धनिया लेती
2: है। हाँ, ये कतर में भी बहुत सारे ऐसे आते हैं टूथपेस्ट जिनके डब्बे में ही ब्रश लगा हुआ होता है साथ में।
0: देखो मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है, अब क्या है, डब्बे में ब्रश लगा हुआ बात बहुत अलग
2: दिख रहा है।
0: हाँ दिख रहा है,
2: दिख रहा है, वो सरप्राइज नहीं है,
0: सरप्राइज नहीं है वो जो होता है ना कि सरप्राइज एलिमेंट खत्म है। तो आप तो उस पर लिखा है कि फ्री में ब्रश, वो जो अलग से वो दुकान के अंदर लेके आते हैं ना वो, आहा, उसकी बात हो रहा है भाई, साथ में चिपके मजा।
2: मैं बोल रहा था ये मास भाई जो बता रहे थे कोलेस्ट्रॉल फ्री, दुकानदार ने गलती से बैड कोलेस्ट्रॉल फ्री में दे दिया ना। लेने पड़ जाए
0: भाई, लेकिन वीडियो बढ़िया बनेगा, मैं बताऊं आपको, इस पे बढ़िया वीडियो बन सकता है, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है, व्यूज बहुत आएंगे। कंटेंट का मैंने आइडिया दे दिया।
2: मेरे को याद है कि जो अपना हॉर्लिक्स वगैरह होता था ना, उस पे ना फ्लाइंग सॉसर फ्री मिलती थी।
0: हाँ, अरे क्या याद दिलाया भाई।
2: वो और होती थी वो फ्लोरेसेंट मतलब रेडियम जो रात में चमकती थी
0: भाई,
2: वो लेने के लिए जो, क्योंकि वो टाइम पे इतना मतलब हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स तो एकदम बड़ी बात होती थी कि यार हॉर्लिक्स घर वाले लेने नहीं देते थे, तो वो फ्लाइंग सॉसर के लिए लड़ झगड़ के हॉर्लिक्स लिया था कि भाई मेरे को वो फ्लाइंग सॉसर चाहिए।
0: और उसी के साथ ऐसे कुछ और प्रोडक्ट थे जिसके साथ वो रेडियम मिलता था, रेडियम का कुछ मिलता था, रेडियम वाला,
2: बहुत सारे ऐसे, हाँ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अलग अलग, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव वाले थे, बट वो उस पे मिलते थे बहुत अच्छी अच्छी चीजें। और एक चीज मैंने को अभी तक याद है कि वो जो मिल्की बार और नेस्ले का वो सब जो चॉकलेट आते थे ना, तो उनके ना एक कूपन आते थे, तो वो आप सारे जमा कर लोगे ना हर एक कैडबरी के एक एक करके, तो आपको पूरा बॉक्स फ्री मिलेगा कैडबरी का।
0: ये कभी ऐसा कुछ ट्राई किया आपने, जमा करने वाला कभी ऐसा ट्राई किया?
2: मैं बताता हूँ, हमारे घर के बाजू में है ना एक कारखाना था प्रिंटिंग का, उसमें वो प्रिंट होते थे।
0: अरे अच्छा, ओके।
2: और भाई मेरे बहुत इंटरेस्ट लेते थे, तो भाई को पता चल गया कि इधर प्रिंट होते हैं, अब वो भाई लेके आके वो पूरा उनका जो वो रहता था सेट उस पे चिटका चिटका के वो पोस्ट करना होता था।
0: अच्छा,
2: तो वो पोस्ट करते थे और वहां से वो डब्बा आता था।
0: अरे यार,
2: उसके बदले में
0: क्या बात है,
2: इतनी चॉकलेट लाई है ना भाई ने उसमें, वो कार खा देते फ्री में उठा देते स्टिकर, पूरा ऐसा बड़ा लेबल चार्ट होता था, उसको काट काट के अलग अलग करके कूपन बराबर वो चिटका चिटका के भेजते थे, और वहां से वो नेस्ले के डब्बे आते थे।
0: भाई ये तो चीट कोड हो गया, ये तो चीट कोड मिल गया भाई को,
2: वो कारखाने में मिल गया था, और वो बहुत टाइम तक चला था, मतलब भाई ने इतनी चॉकलेटे उठाई उधर से।
0: सल्यूट भाई, सल्यूट भाई, ये तो यार जैकपॉट है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना बड़ा होने के बाद भी ये बात सुन के जलन हो रही है, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये।
2: मतलब हाँ, वो टाइम पे मेरे को भी पता है, मेरे को मिल्की बार बहुत पसंद थी बचपन में,
0: हाँ।
2: तो मेरे को वो डब्बे में से मिल्की बार मिल जाती थी। भाई कभी कभी वो मतलब कारखाने में एक ही दिन बार बार जा रहा है, तो वो लोग भी वो करेंगे ना, तो कभी मैं चले जाता था, कभी बहने चली जाती थी, कभी भाई चले जाते थे, तो हम लोग वो उठा उठा के लाते।
0: यार आपकी तो मुझे कहानी सुनानी चाहिए यार रेडियो पे, यार बहुत बढ़िया है, तो अलग ही स्कैमर्स का स्कैम चल रहा है।
2: तेजोस का जो बोल रहे ना बात भाई, वो पता है वो गोल वाला आता था,
0: हाँ,
2: कबीर भाई, वो साइड में उसके कट होता था, वो दोनों ऐसे जॉइंट होते थे, फिर उसको पीछे खींचो तो ऐसे
0: उड़ के जाते थे,
2: आगे जाता था।
0: यस यस,
2: वो बॉटल वॉटल लगा के तोड़ने के लिए,
0: हाँ हाँ हाँ,
2: वो मिलता था चिप्स के डब्बे में, वो बहुत क्रेजी था वो भी चीज।
0: और वो जो जेंगा कार्ड आते थे ना, मुझे याद है वो, हाँ, वो पोकेमोन आते थे उसमें,
2: ट्रम कार्ड
0: आते थे, वो सॉलिड वाले होते थे, प्लास्टिक वाले, और उसको ले जाके स्कूल में हम एक्सचेंज करते थे कि भाई मेरे पास आज जो है बल्बस हो रहे, तो भाई मुझे चार्जर दे दे, ऐसा होता था। तो वो भी याद है मुझे, वो 5 रुपए के पैकेट में निकलते थे, मजा आता था भाई। वो चीज थी भाई,
2: मैंने वो पता है वो टायर वाले पेपी, वो अभी भी मिलते हैं, पेपी आते थे वो,
0: हाँ,
2: हाँ। अंदर चिप्स होते थे वो टायर जैसे,
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: वो मेरे को बहुत पसंद है। और एक चीज बोल दो, मैं तो ये दो चीज ही लेता था।
0: पर भाई आपने जो ये बताया ना चीट कोड, ये उस टाइम का भाई मजा आ गया,
2: वो बहुत जबरदस्त था वो, मैं तो वो टाइम अभी भी याद करता हूँ कि साला मतलब कितने अच्छे अच्छे ऑफर्स निकलते थे, क्या क्या निकलता था।
0: अभी ना वो अभी मेरे को तो फील नहीं आती है, लोग कहते हैं अभी भी है, मैं मान रहा हूँ अभी भी है, पर वो जो पैकेट के साथ चिपका होता है ना, उसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं है,
2: वो चीजें अभी नहीं है। और अभी है ना वो चीजें भी नहीं है अपने जो बचपन की, अभी वो आपको याद होगा इंडिया में, मैं तो आज भी वीडियोस देखता हूँ,
0: हाँ।
2: वो लोग स्कूल के बाहर लगे खड़े होते थे, 3 कलर का वो मिंट वाला वो होता है, वो खींच के वो लोग शेप्स बनाते थे गंदी पे लगा के,
0: यस यस यस,
2: इतनी अच्छी होती थी ना वो। मैं आज भी इंडिया जाता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ कि भाई वो कहीं मिल जाए, वो बंदर खड़ा हुआ, वो कभी बर्ड बना के देते थे, कभी कोई एनिमल बना के
0: भाई
2: देते थे।
0: अभी मिल जाए तो पता नहीं, आई डोंट नो मिलेगा या नहीं मिलेगा, फोटो खींच लेना भाई, ये तो बहुत रेयर फोटो होगी, बता रहा हूँ मैं आने वाले 10 सालों के बाद।
2: बहुत जबरदस्त होता था वो, मैं इतना पसंद था वो, एकदम मतलब ठंडा ठंडा होता था, और वो बहुत मस्त बनता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: क्या याद दिलाया यार आपने, यार
2: चीजें खत्म हो गई है।
0: एब्सोल्युटली भाई, जब ही मैंने ये बात छेड़ी भी थी नदीम भाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
2: अपनी चीजें तो अपने बच्चे तो एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाएंगे अब तो।
0: आए हाय, लाइन दे दी भाई, क्लाइमेक्स दे दिया। पर आपने आज अच्छा किया कि स्टेशनैलिटी चलने से पहले पहले आपने कॉल कर ली, वरना हम दोनों जिंगल के टाइम ही बात कर रहे थे।
2: हाँ, थोड़ा कम बात हो जाती है। आज जल्दी छोड़ दिया ना बेटे को, अब उसके सामने बात करूँ ना तो फिर वो उतरता दिया गाड़ी से, बोलता बात करोगी तभी जाऊंगा, तो इसके लिए उसको छोड़ के बात कर।
0: वे यार बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार नदीम भाई, ऑलवेज बीन सो स्वीट एंड काइंड, थैंक यू भाई, ख्याल रखिए अपना बस। अब अल्लाह हाफिज मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। और नदीम मैंने जो याद दिलाना भाई, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें नहीं। एक मैसेज आया है, कोल्ड ड्रिंक्स क्राउन्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे भाई चीजें अभी भी मिल जाती हैं, लेकिन मसला है बचपन नहीं है। चीजें मिलती हैं लेकिन भाई वो अटैचमेंट करके दे देते हैं, वो जो दुकानदार अंदर जाता था निकाल के लेके आता, वो वाली फील नहीं है। गोल्डरेज भाई कह रहे देवा आप आ गए, मैं आ गया। एक मैसेज है आसिफ भाई के लिए, ग्रेविटी मिल गई, बोलो कि जल्दी से ट्राई करो, ग्रेविटी है भाई, प्रूफ चाहिए तो जंप मार के देखो। आसिफ भाई जंप मार के देखो। एक मैसेज है मणि भाई का, उन्होंने गुड नाइट बोला है, गुड नाइट मेरे भाई, सो जाओ। एक मैसेज है, सलाम अलैकुम मिसेज अहमद हेयर, उन्होंने लिखा है, आई रिमेंबर कि कतर में कभी माइक्रोवेव डिश फ्री मिला करती थी ऑयल या मिल्क के साथ। क्या सही में? तो वो डिश का चार या छः का सेट बनाने के चक्कर में इतना बाई किया जितना कि डिश नहीं, उतने का मिल्क और ऑयल घी लेकर आते थे। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। सच में मतलब इकट्ठा हो जाता होगा पूरा अनाज है घर में। और इक्रम साहब का मैसेज है, उन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम चॉकलेट भाई, क्या बात है, आई वी डूइंग वेल, देखो शेर आया। आयशा इक्रम सेइंग यू दिल से देसी अंकल कबीर, आयशा को बहुत सारा प्यार स्वीट हार्ट। और लिखा है आज लंच में बहुत कुछ है, क्या बात है, इसमें तो फ्रूट दिख रहे हैं, और ये क्या, ये नूडल है क्या है, ये चीज़ ये बढ़िया सी लग रही है भाई। और इनमें से कबीर भाई गुलाब जामुन पे कटोरी फ्री। ये तो है। मोइन भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और एक मैसेज है बारेन से, हैप्पी टू हेयर यू बैक इन द मॉर्निंग शो, थैंक यू सो मच एंड टन्स ऑफ लव। एक मैसेज है भाई की, स्टोरी का इंतजार है, कबीर भाई सलाम अलैकुम, मुझे याद है कॉफ़ी के साथ रेड मग, हाँ भाई स्टील के कप भी मिलते थे। और एक मैसेज है, लूँ क्या पंगा भाई, तुम बोलो बस किससे पंगा लेने का भाई। और एक मैसेज है विनेश भाई का, विनेश भाई कह रहे हैं हाउ आर यू, होप यू फाइन, बैक इन द डे आई रिमेंबर विद गुड अच्छो बिस्किट्स के साथ बोल वॉज फ्री। यार क्या दिन थे, यार क्या दिन थे। और भाईजान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई इकबाल नेपाली साहब का मैसेज है, नेपाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और हाँ तो ये कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास। और एक बात यदि मैंने और याद दिलाई है, वो कह रहे हैं कि और एक बात याद आई कबीर भाई, क्या घर में बर्तन वाले आते थे तो पुराने कपड़ों को एक्सचेंज, ये तो मुझे याद है जब वो बर्तन देने आते थे, मतलब उन्हें पता लगता था आवाज़ आ जाती थी, तो घर के जो कपड़े यूज नहीं होते उन्हें देके बर्तन मिलते थे, और उन बर्तनों को इतने जांच पड़ताल के साथ देखा जाता था ना, जैसे उन पे लिटरली चेक से ली जा रहे हों, पता नहीं कितना खर्चा कर रहे हैं उस पे। उन बर्तनों को लेने की जो फील होती थी ना, वो भाई वो हमारी अम्मा ही जानती हैं। एक मैसेज है, आपको याद होगा कि कुल्फी मिलती थी, कुल्फी वाले के पास लकड़ी के ऊपर कील लगी होती थी, मैं जब ट्राई किया मुझे फ्री कुल्फी मिलती थी, एक कुल्फी खरीदने के चक्कर में घुमाए दो कुल्फी फ्री। हाँ वो जो वो रोले खेलते, रशियन रोले खेलता था वो, एग्जांपल 10 टाइम चक्री घुमाई 7 दफ़ा फ्री कुल्फी, उसे पता था इतना तो ये खाएंगे भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसे खुद पता था इतना नहीं खाने वाले, वो तभी जानबूझ के ऐसे करते थे। और एक मैसेज आया मेरे पास बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने भेजा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वाज ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू योर शो, विश कुड शेयर इट बट नॉट पॉसिबल, यूज टू गेट फ्री गिफ्ट्स ऑन कलेक्शंस ऑफ ओके टी शर्ट्स वगैरह, मिनीचर्स ऑफ थम्स अप, आई स्टिल हैव अ साइंड क्रिकेट बैट ऑन कलेक्शन ऑफ बॉटल कैप्स, आई हैव द क्रिकेट बैट स्टिल विद मी, वेस्ट इंडीज टीम साइंड। अरे भाई साहब आपने तो डेडिकेशन दिखाया भाई, क्या डेडिकेशन है आपका, बहुत बढ़िया भाई, आई एम जस्ट सरप्राइज कि आपने इतनी मेहनत करी अभी तक वो बैट संभाल के रखा भाई ने। एक मैसेज है, आई एम मिसिंग, मेहर भाई ने लिखा है, आई एम मिसिंग वेरी मच, अच्छा मिसिंग ऑल दीज, थैंक यू सो मच भाई, मैं भी मिस कर रहा हूँ। और अभी से भाई कहते हैं हमारा टीचर बदल गया, जी भाई टीचर बदल गया, क्या कर सकते हैं। एक मैसेज भाई आज फ्री में मिलता है लेकिन जो हमारा बचपन था उसको इन्जॉय करने का वो गया, और वो सरप्राइजिंग फैक्टर भी चला गया भाई, दैट इज़ द थिंग। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई कैसे हो, गुड मॉर्निंग कबू बाय, थैंक यू मेरे भाई बहुत सारा प्यार। सलमान भाई को लिख रहे हैं कि साबुन पे स्लिप आती थी उसमें हॉट एयर बलून की राइड मिलती थी सिर्फ एड्स में। और एक मैसेज है, मिक्स पाउडर के साथ 8 कलर बॉक्स मिलता था बिग साइज ब्रीफ केस जैसा, हाँ और वो सबसे कूल चीज़ थी माज भाई उस टाइम की, वो इतनी कूल चीज़ थी ना, बच्चे उसके लिए मतलब ओ उसका जिद करने में मज़ा भी आता था यार, उसकी जिद करने में मज़ा भी आता था, वो एक आर्टिस्टिक एरा था भाई एक ज़माने का। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कभी किसी को सिक्का मिला है क्या साबुन, भाई मैं सुबह वही बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता साबुन घिसने के बाद किसी को सोने का सिक्का आज तक मिला होगा, आई डोंट थिंक सो। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: फैजान भाई मेरा नाम है कबीर, नाइस टू मीट यू भाई। कैसे है भाई?
3: जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
0: बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान भाई बताइए भाई,
3: अच्छा ये जो लोग मतलब ना लोग बता रहे हैं कि भाई वो कभी पॉप्स में से चीज निकलती थी कभी बिस्किट में निकलती थी तो ये तो कॉमन था। हमारे यहाँ एक आदमी था वो बहुत ही डेढ़ छाना था।
0: अच्छा
3: वो क्या करते थे जो आदमी कहते थे ना भाई साहब हम अब जाहिर है वो 10-10 साल के थे 12-12 साल के थे उस टाइम तो एक जो माचिस की तीली होती है ना वो एक ये जैसे गड्ढा नहीं होता जो गत्ता होता ये मतलब तो इसके ऊपर ये जो माचिस हम जलाते हैं ना तो साइड पे वो लगी होती है उसकी क्या कहते हैं उसको मसाला सा लगा होता है तो जब हम वो माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो इग्नाइट हो जाती है जल जाती है।
0: यस
3: उसने वो ना कहीं कहीं पे लगाया हुआ था और उसके पास ऐसा तरीका था कोई वो जब भी सुलगाता था ना तीली को तो ऑटोमेटिकली जल जाया करती थी वो और हम जो है ट्राई करते तो हमारी माचिस की तीली टूट जाया करती थी और एक वो जो तीली थी वो थी 1 रुपए की और अगर आपने जला ली तो आपको वो देगा 10 रुपए।
0: अरे क्या क्या क्या सही है यार तो बढ़िया स्कैम है तो।
3: जी जी जी जी
0: अच्छा
3: अब हम जो है बड़ा परेशान मैंने तकरीबन इस पे 40 रुपीज लगा दिए होंगे मतलब जाना उसको 10 रुपए देने ठीक है 10 दफा तीली लेनी वो तीली हल्के से करते थे उसको क्या कहते हैं जलाने की कोशिश करते थे तो वो जो थी ना तीली टूट जाए करती थी या पता नहीं उसने क्या कहते हैं उसे गीला किया हुआ था तीलियों को पता नहीं क्या लेकिन वो जब जलाता था तो फिर हम बाहर आए ना वहां से बाहर निकल के आए तो जो है ना चेहरे उतरे हुए थे तो एक ना बाबा जी बैठे हुए थे मतलब जो बेचारे अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हात को याद कर रहे होंगे तो वो बाबा जी बैठे कहते हैं बच्चों कहाँ से आ रहे हो हमने बताया जी इस तरह से बात है जो इधर है ना ये दुकानदार अशरफ ये ना लूटता सबको खुद जला लेते हैं इसके पास तो उन्होंने फिर बताया कि जो माचिस की तीली होती है ना उसको आपने पकड़ना ऐसे है कि मतलब वो जो है ना फोर्सफुली आपके हाथ में रहे मिसाल के तौर पे 3 उंगलियां आपने तीली पे रखनी है और जो आपका अंगूठा है ना वो आपने नीचे वाली साइड से रखना है उस पे तीली पे
0: ठीक है
3: तो वो स्ट्रांग हो जाएगी उसमें स्पोर्ट आ जाएगी और फिर जब आप किसी भी चीज का सर उसको रगड़ेंगे ना इस तरह लंबा सा करके तो वो जल जाएगी। अब उसने हमें ना बाबे ने हमें करके दिखा दी चीज हमने कहा यार वाह ये तो बड़ी सही चीज है। फिर हम जो है ना जाने लग गए उसके पास दोबारा उसको 1 रुपया देना और तीली हमने सुलगानी उसने हमें 10 रुपए दे देने फिर हमने ये वतीरा बना लिया हमने जो है वो बहुत सारे पैसे कमाए फिर उसने ये स्कीम ही बंद कर दी।
0: अरे यार ये अंकल ने क्रैक कैसे किया भाई मुझे तो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उन्होंने कैसे क्रैक किया ये।
3: अंकल थे ना वो क्या कहते हैं बस उम्र का एक्सपीरियंस था उनका तो अभी जो है वो चीज घर घर के ना फिर मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया आज भी मिसाल के तौर पर अभी शीशा है दरवाजा है या क्या कहते हैं गाड़ी का भी जो होती है ना विंड स्क्रीन होती है आप मुझे माचिस के तीली दे मैं आपको ऐसे जला के दिखा दूंगा उसके ऊपर रख के।
0: क्या बात कर रहे हो यार तो आप भी शुरू कर दो ये
3: ये जो स्किल है मैंने बचपन से सीखी हुई है वो होता है ना अक्सर फिल्मों के अंदर भी होता है कि एक आदमी जो है वो टिंडा होता है गंज होती है उसकी तो दूसरा वो माचिस की तीली लेके उसको सर से जला लेता है। हाँ हाँ हाँ तो जो है ना वो ये वाली जो स्किल है ये हमने छोटे होते सीखी थी तो इसका हमें जो है वो बड़ा फायदा हुआ था। और ऐसा ये जो बाकी सब चीजें हैं ये तो सबके साथ ही हैं कभी आपके चिप्स नहीं कराए उसके
0: तो फिर भाई मैं आपका चेला बन जाता हूँ मंजूरा में शुरू करते हैं जो जला लेगा उसको 10 रियाल दे देंगे।
3: जी जी कर लेते हैं बिल्कुल।
0: क्या स्किल है भाई क्या जबरदस्त टैलेंट है यार आज ये बात पता लगी फैजान भाई तो ये आपने घर में किसी के साथ शेयर करी है चीज या फिर अपने दिल में दबा के रखी है।
3: नहीं नहीं घर के अंदर मैं फिर क्या करता था अक्सर जाहिर हर घर में होता है कि माचिस खत्म हो जाती है या जो माचिस की डब्बिया है वो गीली हो जाती है लेकिन जो है ना वो तीलियां पड़ी होती थी घर में तो मैं फिर अपनी माँ जी को ना फ्रिज के साथ या दरवाजे के साथ ना मैं वो तीली को सुलगा के देता था।
0: अरे भाई साहब टैलेंट
3: है यार। फिर वो मेरी तरफ देखते थे और हंसते थे फिर मुस्कुराते थे कि भाई देखो मेरा बेटा कितना चाहा है
0: जादूगर गोगा घर के अंदर क्या बात है भाई।
3: जी।
0: अरे बहुत बढ़िया यार फैजान भाई वेरी गुड यार आपने स्टोरी मुझे सुनाई मुझे अच्छा लगा ये इसका मैं पक्का इसका वीडियो भी ढूंढूंगा क्योंकि मुझे लगता है मैंने कहीं सुना है ऐसा होता
3: है। आपको ना घर जाके ना आज मैं आपको घर जाके वीडियो भेजूंगा कल आप इसे टाइम देखिएगा।
0: डन डन डन डन फैजान भाई रियली एक्साइटेड फॉर दिस भाई थैंक यू सो मच भाई बहुत प्यार भाई ओके मेरा भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो यार टैलेंट है अरे तो जंगल चलाना पड़ेगा इस बात पे तो।

0: FM 107, Time Check.
1: घड़ी में हो रहे 7:02 और आप भी मेरा 7:02। मैं दुआ वाला कभी रहे उन्हें से उन्हें मजा आ रहा है भाई। आज तो बात करके सीरियसली, एक भाई ने मुझे एक बहुत पुराना खिलौना भेजा है, मुझे पता नहीं इसे कहते क्या है भाई। काश मैं जानता कि इसको कहते क्या है, पर कोई बात नहीं, हमें क्या कहते हैं ये हमारा ये जिंगल बता देगा। बहुत बढ़िया रैप बनाया आपके भाई ने।

0: wake up.
1: हाँ जी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कमालुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं फैजान भाई का जो ये टैलेंट है ये मुझे भी आता है। अरे बहुत कलाकार लोग हैं भाई, इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश में नेपाल भर भर के, और साथ दो तो भाई मैंने कर दिया बढ़िया करके। एक कॉल मुझे करनी भी करता हूँ। खादिर गुलादी भाई कह रहे हैं कबीर भाई इन दुबई आई नोटिस देयर इज एन ऑफर इन इंजन ऑयल है, देयर इज अ की इनसाइड द ऑयल, आई डोंट नो हू गॉट इट, अल्लाह नोज। इंजन ऑयल इज अच्छा ओके, तो मतलब उसके अंदर से चाबी निकालनी होती होगी। एक मैसेज है कबीर भाई, गुड मॉर्निंग, चिप्स के साथ टाजोज और पोकेमोन कार्ड आते थे उसमें कलेक्शन करना वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन अमंग चिल्ड्रंस दोज डेज। नथिंग भाई, भाई आपके भाई ने कलेक्ट किए हैं 150 ज्यादा जंगल कार्ड्स, अभी भी घर पे पड़े भाई। एक मैसेज है भाई चिंगम के साथ टैटू फ्री ये तो भाई का याद दिलाया है, वो चिंगम के उस टेम्पररी टैटू के लिए इतने खर्चे किए जिसकी हद नहीं। मेरा भाई कह रहे हैं बॉटल कैप में फ्री बॉटल मिलती थी, मुझे आज तक नहीं मिली भाई, और जिसको भी मिली है भाई मैं उससे बहुत जलता हूँ, मुझे तो आज तक नहीं मिली भाई, कसम से नहीं मिली। एक मैसेज, वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, किस बात के लिए, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैसेज और है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज क्या है मुझे उस्मान भाई ने, उस्मान भाई थैंक यू सो मच, आज मेरे नाम से पढ़ा है, नहीं पढ़ा इनका, उसामा तो नहीं बोल दिया, हाँ उस्मान ही बोला सॉरी भाई एक दो बार गलत पढ़ चुका हूँ। और एक मैसेज आया है जाकिर भाई ने, क्या भाई एआई का वीडियो बनाया मेरा, जाकिर भाई मजा आ गया भाई। तो मेरा अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अपना दुआ वाला कबीर और अपन दुआ वाला जकीर, ये जाकिर भाई, जकीर भाई क्या कोई कुछ बोल सकता है क्या। एक मैसेज है फराज भाई का, फैजान भाई का टैलेंट, वो कह रहे हैं एक तला भाई कॉल करते थे लास्ट टाइम वाले मॉर्निंग शो में, नहीं आए थे कल तो आए थे वो। और मैसेज है कबीर भाई, एक पहले मैं कॉल उठा लेता हूँ, एक अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, सर कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम गाढ़ा जो आपने सलाम किया ना, मतलब मजा ही आ गया एकदम, आइन आइन लगाया कि प्रॉपर कैसे हैं।
2: आज तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्राण बन जाऊँ सुबह सुबह।
1: आपकी जो मर्जी बन जाए सुबह, तो वैसे भी आज लोग होश में है नहीं, वीकेंड है, कोई टेंशन को नहीं। आप बताइए क्या चल रहा है
2: यार? हमारा क्या चलेगा, बस लोगों की ऊपर परवरदिगार बैठा है जमीन पे, हम हिफाजत कर रहे हैं, लोग आराम कर रहे हैं, वीकेंड मनाएंगे, हम काम करेंगे, और क्या करेंगे।
1: मुझे कभी कभार लगता है लिख के लाते हैं सब कुछ, इतने आराम से कैसे फ्लो में बोल देते हैं।
2: नहीं पता क्या बात है, जब हाँ। प्रोफेसर बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा, बड़ा दिलकश, बड़ा दिल नशी हो, लफ्ज का चुनाव की जरूरत नहीं, खुद निकलते हैं ये।
1: आज मेरा हो गया, आज मेरा हो गया भाई, घर जा रहा हूँ आपसे बात करके, फिर आऊँ बोलिया भाई। तो नहीं भाई
2: आप तो घर जाएंगे, बाकी सारी पागलखाने जाएंगे आपके जाने के बाद।
1: नहीं नहीं मतलब जल्दी थोड़ा था, आप मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं वकील साहब, आप मैं बताऊँ आपको। अच्छा, अच्छा तो बताएं आप, क्या आप फ्री, आप फ्री हो, कुछ याद है आपको फ्री बीज जो मिला करती थी चीजों के साथ?
2: फ्री तो मैं सबसे पहले वो हमारी जो प्यारी सी गुड़िया है माशाल्लाह अलीना, उन्होंने जो उसका रेड वेलवेट की बात की थी, और कल जिस तरह मैंने बताया था कि बेटी की बर्थडे थी, तो उसके लिए ना मेरी बेटी ने चॉकलेट केक, मतलब वो चॉकलेट बटर केक एंड रेड वेलवेट, वाह यकीन कीजिए रेड वेलवेट आप जुबान पे रखे तो लगता है कि आप रूई को मतलब टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे वो पिघलता है।
1: तो आप भी कुछ सीखिए भाई।
2: बता तो रहा हूँ आपको मैं।
1: अच्छा तो ये तो जो अलीना ने मुझे मैसेज किया था वो रेड वेलवेट केक का नहीं, उन्होंने कोरियन के पॉप ग्रुप का जिक्र किया था उन्होंने, मैं गलत था, मुझे लगा केक है, वो बता रही थी वो तो ग्रुप है वहां पे कोरियन का, ऐसा हुआ सुबह सुबह। पर
2: मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने केक खाया और विश करने का मैंने वो गुड़िया से भी कहा, बेटी से, कि उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी शुक्रिया पेश कर दीजिएगा सबका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और जावेद भाई आपने सुना आज किस बारे में बात कर रहे हैं हम?
2: मेरे भाई बचपन में तो अगर आप देखें ना, अगर आप जिस तरह चीजों को अगर काउंट करो तो बहुत सी चीजें थी, और इतनी खूबसूरत चीजें थी जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मेरे भाई और बहनों ने भी मैसेजेस किए, और एक बहन ने मैसेज किया बड़ा अच्छा कि बिल्कुल वो लंबी सी ट्रे मिला करती थी ऑयल की बोतल के साथ, तो यकीन करें कि ऑयल की बोतल तो छोड़े, उतनी ट्रे की कीमत ने जितना पैसा बर्बाद किया ऑयल पे।
1: अब वो तो है, बर्बर के लोग तेल खरीद रहे और दूध के टम्बलर खरीद रहे भाई, ये तो मैं खुद सुन के हैरान हूँ
2: भाई, पूरी पूरी फैमिली मार्केट जा रही है, वो पापा धो ले, मामा धो लिए।
1: आपका सबसे फेवरेट फ्रीबी क्या रहा है आज तक जावेद साहब, क्या सबसे ज्यादा
2: मेरा जो सबसे फेवरेट रहा ना, एक तो उसमें होते थे छोटी छोटी जो पहेलियां हुआ करते थे और पजल्स।
1: अच्छा,
2: और उसके साथ आपको पता है कि छोटे छोटे, हमें नहीं पता था बड़े होके हम सिपाही बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे सिपाही और वो जो फिगर्स बने होते हैं ना एक्शन फिगर्स लाइक किंग कॉन्ग, और वो बड़े जबरदस्त मुझे लगते थे
1: शमीर भाई। मुझे याद है, आई डोंट नो कि आपने देखा नहीं देखा, पहले ना एक ही मैन का छोटा सा एक्शन फिगर आता था और उसके पेट को अगर खोलो तो बीच में से रबड़ निकलती थी भाई।
2: एग्जैक्टली और बाज़ोकात ऐसे भी होता था कि ये जो चिप्स के पैकेट्स में से ये लकी कूपन भी निकलता था जो आपको फ्री चीज मिलती थी जिससे।
1: भाई हमारा तो आज तक निकला सही में, इतने चिप्स खा लिए आज तक निकला भाई।
2: चिप्स खा खा के पेट खराब हो गया, बाकी मेरा भी नहीं निकला।
1: कुछ बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके तो बॉटल कैप में भी भाई रिचार्ज निकले भर भर के 100-150 रुपए के रिचार्ज, वो भी उस टाइम पे, तो बहुत बड़ी बात है। लोगों के पता नहीं कैसे निकल गए, हमारा आज तक निकला भाई 5 रुपए से ज्यादा।
2: आप यकीन करें ऐसे ऐसे माशाल्लाह लोग देखें जो जिसके जो नसीब में ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो जब भी कूपन मतलब वो डालते हैं किस बॉक्स वगैरह में तो ऑटोमेटिक उनका नाम आता ही आता, उनको लाने लाना उस बंदे का नाम।
1: हाँ ये पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं, ये मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ उपाय बताइए इसका, पता कीजिए ये कैसे, चीट कोड क्या है इसका, कैसे हो रहा है ये।
2: अरे भाई मैं भी उसी लाइन में जिसका कुछ नहीं निकलता।
1: अभी भी आपको भरोसा है वैसे जो रेफरल कूपन वो सब लोग डालते हैं उस पे, अभी भी आपको यकीन है, आप करते हैं ट्राई करते हैं?
2: आप यकीन करें कि मतलब पहले सफारी में हुआ करता था, लेकिन अभी मतलब जब भी मैं सफारी जाता हूँ, एक अरसा हो गया है मेरे को मोर देन ईयर, कि अगर मेरे पास वो जो आपको पता है लंबी सी स्लिप देते हैं शॉपिंग की,
1: हाँ, भरने के लिए,
2: वो वेरी नेक्स्ट जो भी मेरे साथ है मैं उसको देता हूँ कि यार यू कैन टेक कूपन एंड गुड लक, बस मैं नहीं देता।
1: क्या बात है यार, क्या बात है, ऐसे लोगों ने चाहिए दान करने वाले, बहुत बढ़िया जेबी साहब। और क्या प्लान है वीकेंड का आपका?
2: वीकेंड का इंशाल्लाह ताला कल हमने एक छोटा सा जिस तरह आपको कहा था जो बड़े स्टाइल में कहा था कि सरप्राइज पार्टी।
1: ओह माय गॉड, सरप्राइज पार्टी हो रही है, ऑलराइट।
2: एग्जैक्टली, बट दिस इवनिंग डेफिनेटली वी विल गो फॉर अ पार्टी।
1: हाँ जी, चक्को पार्टी, मजे करो जावेद साहब, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार आपको।
2: एंड देन आपके लिए भी इनविटेशन है, आप भी आइए
1: भाई। मैं तो आज मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, आज मैं ना बहुत ही पढ़ के एकदम कोने में कोई कहानी वानी नहीं ढूंढने एकदम सो जाता हूँ मैं। हाइबरनेशन में चला जाता हूँ।
2: थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। आपके आने से जो एनर्जी माशाल्लाह माशाल्लाह एनर्जी आती है ना, वो बहुत मिस करते थे, और मैं आपको बाद में डॉट भेजता हूँ, मुझे आप जरूर कहानी भेज दीजिएगा, ठीक है?
1: जज़ाकअल्लाह, मैं बिल्कुल बिल्कुल डन डन डन डेफिनेटली।
2: थैंक यू, लव यू भाई,
1: लव यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद एक मैसेज आया, मोना जी ने मैसेज किया, वो कहती है हम तो बचपन में डॉक्टर के पास जाने के लिए एक्साइटेड होते थे, फ्री में लॉलीपॉप मिलती थी, ये तो है। मेरा वाला डॉक्टर टॉफी देता था बढ़िया वाली, और वो सामने रखता था, वो उठा लो बेटा कोई टेंशन नहीं। और उन्होंने लिखा है कि हमने 300 की शॉपिंग पे

0: रेटेड मिल्क का कैन जीता था। यकीन जानो वो 300 रियाल की चीज की कोई वैल्यू नहीं थी जितनी उस दूध के डब्बे की थी। हैं यार, अब आप लोग ना मुझे जला रहे हो, मैं आज तक नहीं जीता भाई, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा। मुमताज़ भाई कह रहे हैं कैसे हैं आप, वालेकुम सलाम कबीर भाई, आप क्या बचपन की याद दिला रहे हो, मेरी तरफ से जावेद भाई की बेटी को जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे। ओके जी, और एक मैसेज आया भाई का, ये कह रहे हैं मुझे तो बचपन में संडे को क्या है जंगलों में क्या मिलता था। मैं अजीज़ भाई मैं पढ़ नहीं पाया, हो सकता मैं नहीं पढ़ पाया, बता दूँ क्या लिखा भाई। भाई आज वीकेंड है आसिफ भाई, आज वीकेंड है कैसे झंझोड़ के याद दिलाऊं मैं। फरीद भाई ने मैसेज किया है फ्रॉम अल हस्सा सऊदी अरेबिया, और एक मैसेज है भाई मेरे फ्रेंड को 50 ग्राम गोल्ड निकला था। क्या बात कर रहे हो यार आप लोग, यार अब छेड़ रहे हो, मैं रो दूंगा सुबह सुबह वीकेंड पे। एक मैसेज जे बी भाई आज कल बूफे नहीं बता रहे, नहीं अब उन्होंने बहुत खून जला लिया, बूफे की बात नहीं करते वो। एक मैसेज कॉल मी कुछ शेयर करूंगा, अच्छा मैं अभी कॉल करता हूँ आपको भी। आप पीछे गाबा जी हैप्पी वीकेंड मेरे भाई को, क्या हाल है भाई के। गाबा जी एकदम एनालिसिस करने लग जाते हैं जब वो कॉल करते हैं ना उनको, नाजिया बहन को और सरवर भाई को, तो मैं सुनता हूँ एकदम एनालिसिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाना चाहिए, मैं पहले एक कॉल कर लूँ एक भाई को, उसके बाद मैं बाकी कॉल लगाऊंगा। एक सेकंड, पहले तो मैं भाई कॉल करूँ, भाई को मैंने बहुत देर से मैसेज किया हुआ, भाई ने मैंने कॉल नहीं करी थी, आई मिलेगी कॉल, उठाई ले, कॉल उठा लो, कॉल उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो। सैयद अली हैदर शाह साहब को कॉल लगाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: क्या हाल है भाई के।
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक
0: भाई। सॉरी आपको थोड़ी लेट कॉल करी है, माजरत चाहता हूँ उसके लिए।
1: नहीं नहीं मैं सुन रहा था, मैं मजे मजे की बातें, और वो क्या कहते हैं कल आपने हमें हमारी जवानी याद दिलाई कि हम कैसे रहते थे, आज हमने बचपन याद दिला दिया आपने हमें कि बचपन में नॉस्टैल्जिक बिल्कुल वो माहौल बन जाता है और क्या कहते हैं बिल्कुल याद आ जाती है जो घर की। सही बात है,
0: बढ़िया भाई। इसी बात पे आप बता दें आपने कुछ फ्री में कुछ आपका फेवरेट रहा हो जो चीज मिला करती थी एक टाइम पर।
1: जी जी बिल्कुल, देखें आपने अगर लाइफ अगर आपने अब्रॉड गुजारी है जिस तरह खासतौर पर जीसीसी में गुजारी है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। हम लोग दरअसल ज्यादा टाइम सऊदी में गुजरा है जो बचपन
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: तो उसमें ये होता था उस टाइम पे वो जो क्या कहते हैं मैं अक्सर कहता हूँ वो सच्चा और अच्छा दौर था, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं थी। हमारी भी अम्मी जो है ना वो उनको इंतजार रहता था कुकिंग ऑयल के साथ, हमें जो है ना वो ग्लास के बाउल और पता नहीं किचन की क्या क्या चीजें मिल जाती थी, जो नीडो दूध होता है क्योंकि भाई बहन वो ना दूध पीते थे नीडो वाला
0: अच्छा।
1: नीडो दूध के साथ कलरिंग बुक्स और पूरे पूरे गैजेट्स और इतना कुछ मिल जाता था। फिर एक चीज अभी तक जो मैंने नहीं सुनी, शायद जो सऊदी वाले बंदे और रिलेट करें, जिस तरह अभी वेकेशन हुई है ना समर वेकेशन, इसमें पेप्सी और कोक वाले ना ऑफर्स देते थे, आप जो कैप है ना जो बोतल का
0: या तो स्क्रैच करो जमा करके भेजो
1: जी वो जमा करके, और जो बड़ी बोतल है उसके 5 पॉइंट्स और कैन का 1 पॉइंट होता था
0: अच्छा।
1: तो वो फिर वो बैग मिलते थे जिसमें वो डाल के फिर वो काउंट करना होता था। कबीर भाई हमने बैग्स पेप्सी के, फुटबॉल, रेडियो, घड़ियां, हमने इतना कुछ लिया हुआ कि आप पूछे, इतना कुछ इकट्ठा किया हुआ उसका।
0: क्या बात है, मिलता था मतलब आपको जेन्युइनली।
1: जी जी हम लोग दरअसल वो जो क्या कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी कोक पेप्सी उनके पास जाते थे, वो देखते थे बैग गिनते थे और वहीं पे उन्होंने सब सामान रखा होता था। हमने वो क्या कहते हैं ये ट्रेवलर बैग्स, वो स्कूल वाले बैग, फुटबॉल, बड़ी बड़ी ये जो जिसमें कैसेट्स डलती थी वो टेप्स, और उसके बाद घड़ियां और बहुत कुछ आप ना पूछ। हम किसी घर में मान जाते थे ना तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी नजर खाने पे कम और पेप्सी की बोतलों पे ज्यादा होती थी कि इसका ढक्कन कौन उठाएगा।
0: यार ये सही यार, पता मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ पर भी गल्फ में भी ऑफकोर्स ऐसा एक टाइम रहा होगा जब चीजें मिलती होंगी, और ये आपने जो इनसाइट दिए ये अच्छा कि आपने बताया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। पर मुझे ये भी लगता है साथ में वो जो फ्री की कटोरी मिला करती थी, जैसे दिल्ली में मैं जाता हूँ वो एक स्टील के बर्तन की छोटी सी कटोरी मिलती थी, उसकी कदर बहुत होती थी भाई, और बार बार याद आता था कि भाई 5 किलो की चीनी लाए थे हम, ये मिली बहुत बढ़िया है।
1: अम्मी ने तो पूरा पूरा सेट, और वो बहुत अच्छे क्वालिटी के जो ग्लास के जिस तरह वो बहन मेरी ने बताया माइक्रोवेव के लिए जो ना वो प्लेट्स थी वो थी, और जो सालन डालने के लिए जिसको हम डोंगे बोलते हैं आजकल ग्लास के वो बाउल, और फिर पकाने के लिए चम्मच और ये वो, बाकी आपने वो जो स्कूल में जो लेज और चीतोस मिलती थी उसके टैजूस का तो आपने जिक्र कर ही लिया है। राउंड होते थे, उसके कट्स बने होते थे, उसमें वो टैजू फंसा के और उसकी शेप भी कुछ बनती थी, वो भी याद है, उससे वो भी खेला करते थे।
0: मिलना चाहिए, मिलना चाहिए भाई, मुझे तो लगता है कुछ
1: अभी बहुत, अभी तो सिर्फ स्कीम्स है, और मैं कहूँ ज्यादा स्कीम्स नहीं ज्यादा स्कैम्स है, जो बात सही है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: हमें तो सर चिप्स, हमने तो चिप्स खरीदी है उसमें से पैसे तक निकले हुए हैं, इस तरह का बचपन था। आपने लिया आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम खत्म हुई है, डंडी के ऊपर फ्री लिखा हुआ है, एक और वहीं से ले ली भाई और दो।
0: ये बात एकदम सही है, आपने कई बार तो नोट भी निकलाते थे, 5 रुपए के नोट या फिर ऐसा कुछ निकलता था हमारे टाइम भी।
1: जी जी बिल्कुल, बस वो क्या कहते हैं, और लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत कुछ होता था।
0: yes.
1: अभी कम हो रहा है, अभी तो सिर्फ बच्चों से पैसे निकलवाते हैं, उनको चीजें देने में कोई नहीं देता।
0: क्या पलट के घुमा के मारा है आपने, बहुत बढ़िया भाई आखिर में।
1: देखिए एक एक रियाल की चॉकलेट, एक एक रियाल की पेप्सी, एक एक रियाल का शोरबा तक हम लोगों ने खाया हुआ है। अभी चॉकलेट दिलानी हो ना तो आधी जेब खाली हो जाती है।
0: नहीं भाई भाई, थैंक यू सो मच कि आपने शेयर की यादें, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों की यादें ट्रिगर की होंगी। थैंक यू सो मच मेरे भाई शेयर करने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह जी,
0: जजाकल्लाह भाई, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़,
1: अल्लाह हाफिज़ भाई।
0: और कुछ कॉल्स और करनी है, मैं एक और कॉल कर लेता हूँ लगे हाथों, क्योंकि भाई ने बोला कि कॉल मी, कुछ किस्सा शेयर करना है। चलो भाई मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये इतना वीआईपी नंबर कहाँ से मिल रहा है लोगों को यार, हमें तो कोई देता नहीं। मुझे लग रहा है इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम व
2: रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: हाँ मेरा भाई, बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है?
2: जो किस्सा शेयर करना था वो तो मेरे भाई अभी करके चले गए।
0: अच्छा,
2: मैं नेपाल से हूँ, वही शेयर करना था।
0: अच्छा तो आप बोलो। हाँ,
2: कोको कोला पीता था, वही ढक्कन को स्क्वेज करके,
0: हाँ,
2: वही शेयर करना था।
0: अच्छा,
2: शेयर करके चले गए।
0: तो आप भी सऊदी अरब में रहते थे उस टाइम पे?
2: नहीं, मैं नेपाल से कोको कोला ज्यादा पीता था।
0: अच्छा, ये जो देसी स्कीमें चलती थी ना, एक तो स्कीम होती थी कुल्फी पे, आई डोंट नो नेपाल में कुल्फी का स्कीम होती थी नहीं होती थी, कुल्फी भी फ्री मिलती थी भाई, भर भर के बच्चों ने खाई है कुल्फियाँ, फ्री मिलती थी, वो डंडी पे फ्री लिखा है या फिर वो चक्री घुमा के मिलती थी, अलग अलग स्कीमें चली है, आई एम सो श्योर नेपाल में भी चलती होंगी। पर आपने, चलिए आपको किस्सा तो उन्होंने पूरा का पूरा बता दिया, आप कहानी जरूर सुन लेना भाई, 7:30 बजे शुरू हो रही है, ठीक है?
2: थोड़ा टाइम नहीं मिलता है सर, भेज दीजिए।
0: चलो मैं भेज दूंगा, टेंशन फ्री रहो यार, आप खुश रहो बस, ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखो, ओके। और भाई के बाद जो है मैं एक लास्ट कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला है, तो मैं इनको एक कॉल कर आ रही, उठा लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम।
3: सलाम, क्या हाल है कैप्टन साहब?
0: अरे बढ़िया भाई, क्या चल रहा है अब्बा जी?
3: बस एकदम मस्त चल रहा है भाई, जो भी चल रहा है।
0: अरे क्या चल रहा है भाई, फिर भी
3: बस भाई, ड्यूटी
0: इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी।
3: अच्छा कबीर भाई, मैंने एक बात शेयर करनी थी आपसे।
0: हाँ भाई।
3: अच्छा मैं ना वो मार्केट का नाम तो आपको बाद में बताऊंगा, इनबॉक्स में आपके,
0: बिल्कुल,
3: उसमें ना अभी ये 27 या 26 को रेफर ड्रा निकला है, कटक की ही मार्केट है वो।
0: अच्छा,
3: उसमें भाई एक ही बंदे के दो प्राइस तो 100% है।
0: अच्छा,
3: जहाँ तक मेरा आइडिया है तीसरा प्राइस भी उसी का है, एक ही रेफर ड्रा में बंदे के तीन प्राइस निकले हैं, देखो कबीर भाई।
0: तो फिर ये कैसे हो लिया भाई?
3: यार यही तो अपने आप में एक चमत्कार है यार, मैं तो खुद हैरान हूँ, दो तो 100% मैंने उसका नाम देखा है।
0: अरे यार ये कौन है?
3: उस दिन थोड़ा सा रश था मार्केट में, जहाँ तक मैं श्योर तो नहीं हूँ, मेरे को लगता है तीसरा नंबर भी उसका था, क्योंकि 50 से 60 वो निकले हैं कूपन उस दिन वो मार्केट में, दो तो 100% है।
0: ये मोर के पंख से लिखवा के लाया भाई, किस्मत जो भी आई। अलग हिसाब किताब है भाई ये तो, मतलब बहुत बड़ी बात है। पर काबा जी आप बताओ यार, पर्सनल उस पे लेवल पे क्या बढ़िया चीज लगती थी भाई?
3: यार कबीर भाई, जो फ्री बीज का ये जो सिस्टम है ना, ये तो यार कबीर भाई बहुत पुराना है।
0: हाँ, वो तो है ही, तभी हम पुरानी यादों में।
3: हम लोग देखिए, अगर हम लोग आज से 15-20 साल पीछे चले जाए ना, अगर हम लोग 1 रुपए की भी चीज लेते थे ना, तो डेफिनेटली हमको टॉफी या च्युइंगम या कुछ ना कुछ दुकानदार की तरफ से मिलता ही मिलता था। जब इतने ज्यादा वाटर कूलर वगैरह नहीं थे, कुछ और नहीं था सिस्टम, तो ज्यादा नहीं तो पीने का पानी तो मिल ही जाता था, मटके वाला।
0: भाई हमें तो कभी नहीं मिला मटके का पानी फ्री में। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो कुछ लोगों ने बताया उनके तो सोने के सिक्के भी निकले भाई, मतलब मैं तो सिर्फ अभी तक एड में ही सोचता था एड में निकलते हैं लोगों के निकले, कमाल की बात है ये। तो आपका फेवरेट क्या था भाई, फेवरेट चीज क्या थी जो फ्री?
3: कबीर भाई मेरा फेवरेट पता क्या था, एक ना वो गत्ते के ऊपर छोटी छोटी लॉटरीज लगाई रखी थी,
0: अच्छा
3: एक से लेके 100 नंबर होता था,
0: हाँ
3: और उसी गत्ते के ऊपर कोई गन है जैसे, हाँ छोटे छोटे टॉयज होते थे उसी गत्ते के

0: की तरफ उधर थे भाई, बहुत सारे मिले देखे भाई बरबर के
1: छतरपुर की तरफ, इधर जो करनाल बाईपास,
0: करनाल बाईपास पे भाई। यार क्या भाई, क्या याद दिला दिया यार, ले गए वहीं पे ले गए अभी भूल गए। और बताओ गाबा जी क्या चल रहा है भाई, सवेरे सवेरे मुझे लगा गाबा जी सुबह तो आते नहीं।
1: आप नहीं मेरे से लेके जाते कहीं भी।
0: अरे भाई अभी देखो सेट हो गया मामला आपका भाई, सुबह सवेरे एकदम गद्दी लगा के, इसके बाद जो है ना शाम थी एकदम फ्री, तो ये सेट कर लेंगे भाई, और एक सर्वर भाई को और पकड़ लेंगे। क्या कहते हो?
1: इसका मतलब कोई ना कोई और आएगा आपके शो में आने वाले टाइम में
0: है? नहीं भाई कोई नहीं आएगा, मैं तो भाई कल ही काफी हूँ, बताइए बाकी अभी सर्वर भाई को पकड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सुन भी रहे होंगे अभी वो, सुन भी रहे हो
1: नहीं? आप सर्वर भाई का जिक्र कर रहे हो ना, मैंने सोचा शायद उनकी भी गेस्ट अपीयरेंस होना जाए कहीं आपके शो में।
0: नहीं नहीं, दो तूफानों को एक साथ कंपनी नहीं रखेगी भाई, इसलिए उनको अलग रखा है अभी, इसी वजह से होता ना कि दो शैतान बच्चों को साथ में नहीं बिठाते।
1: अगर तूफान डिफरेंट डायरेक्शन के हो ना तो कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं होती।
0: अरे क्या बात कह दी भाई साहब, शेर का मतलब कह दिया, बहुत गहरी बात कह गए आप। पर शुक्रिया बहुत बहुत गाबा जी, और कहानी शुरू करने वालों में जरूर सुनना मेरे भाई, ठीक है?
1: बाकी मैं ना यार आपको कबीर भाई उस मार्केट का नाम भेजता हूँ।
0: मुझे भेजो भेजो भेजो, जानने
1: कभी आपने चाय दूध लेने जाना भी हुआ, चलो उस तरफ से ले लेना।
0: उधर ही जाऊंगा भाई मैं,
1: चेक जरूर करना वहाँ पे।
0: मैं उधर ही जाऊंगा भाई,
1: चेक करके आना और वहाँ पे रेफल जरूर डाल के आना आप भी।
0: डन है भाई, मैं भी दो तीन बार नाम निकलवाऊंगा अपना, देखना तो। थैंक यू।
1: हाँ ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे है, मैं आपको सेंड करता
0: हूँ। भेजो भेजो भाई, ठीक है भाई, डन हो गया।
1: ठीक है भाई, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। बस मेरे को लगता है ना आप थोड़ा सा वादा करके भूल जाते हो।
0: नहीं भाई वादा करके नहीं भूलता भाई, मेरी शिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है, मैं सिस्टम मिल गया है। बाकी आ जाओ व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, आ जाओ।
1: ओके जी, ओके भाई, थैंक यू,
0: थैंक यू भाई, टेक केयर, टेक केयर। और गाबा जी के बाद, मतलब गाबा जी कंप्लेन के बाद के लिए जरा मैं कॉल कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट। उस्मान भाई ने बोला है, उस्मान भाई कॉल डालो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है उस्मान भाई आपकी, माशाल्लाह है, क्या क्या हाल है उस्मान भाई?
2: गला बंद हुआ भाई,
0: आवाज़ क्या? गला बंद में इतनी शानदार आवाज़, माशा गला ठीक हो जाएगा तो आप तो आग लगा देंगे। आए बस बढ़िया उस्मान भाई, बताइए क्या कहना चाह रहे थे भाई?
2: भाई जो ये चीजों की बात आप फ्री का बोल रहे हो, तो एक कल भी आपको एक वो रोटी के टुकड़ों से सुनाई थी मेरी, जो जिंदगी ना ये रोटी के टुकड़ों की इर्द गिर्द लगता है घूम रही है।
0: अरे क्यों क्यों क्या हो गया?
2: नहीं ये जो फ्री का अभी कल तो बड़ा वो सेंटी वाला मॉल बन गया था, अभी थोड़ा फ्री वाला ही है।
0: अच्छा,
2: तो हमें मिलता था भाई जो घर में वो रोटी वोटी नहीं बच जाती, टुकड़े बच जाते थे वो स्टोर करते रहते थे। और अच्छा। अभी तो ऑयल की ये आते, तो पहले वो टीन के डब्बे आया करते थे पहले, मैं पुरानी बात कर रहा
0: हूँ।
2: तो वो हम जो खाली डब्बे ना घर पे, वो एक किसी जगह में मोटर की जगह जोड़ते रहते थे, तो जली में एक वो थैले वाला आता था उसमें, उसके बदले में मैं वो देता था कुछ सवैया ऐसी चीज, तो वही फ्री खाया हुआ। वरना तो भाई हमें तो फ्री में होटल वाला ग्रेवी नहीं देता, दूसरी बात। अगर टिश्यू मांग ले तो टिश्यू नहीं देता भाई, और टिश्यू भी कौन से, आपको पता है वो पराठे के नीचे एक पेपर रहता था अभी भी।
0: अरे पर वो नहाने के बाद फ्री की तरी तो देते हैं लोग आज भी, आपने ट्राई नहीं है कभी?
2: कौन से
0: नहारी के बाद वो तरी होती है जो उसका सालन होता है, फ्री में थोड़ा सा दे देते ना अभी भी
2: भाई, हमें नहीं दिया आज तक।
0: अरे अरे अरे
2: ये फ्री वाला नहीं है।
0: भाई आप कौन सा गुस्सा लेके जाते हैं दुकानों में? हेलो भाई, भाई उस्मान भाई कुछ की रही है, मुझे लग रहा है गुस्से में जाते हैं दुकान वालों के पास कि इतना फ्री में कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ करना पड़ेगा।
2: नहीं नहीं अभी अभी मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बोलना जरूरत नहीं पड़ती कुछ ऐसा।
0: हाय क्या बात है,
2: वो सैनिटाइजर यूज किया हुआ भाई कोरोना के टाइम में।
0: अच्छा
2: वो मिलता था।
0: ये अच्छा पूछता है,
2: फ्री का लेवल समझ लो हमारा कहां तक पहुंचा।
0: मैं समझ गया, एकदम क्लियर है उस्मान भाई, हाथ मिलाइए हमारे भी से वाले भाई। थोड़ा सा बेहतर होगा बस, पर थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई के आपने।
2: मुझे लगता है स्टोरी लेट हो रही है,
0: बस स्टोरी शुरू करो।
2: एक बात फंसी हुई है मेरी भाई,
0: बोलो
2: इस दिन आप नहीं, वो लंबी हो जाएगी,
0: बोलो
2: जिस दिन आप लेते टॉपिक होगा फिर करेंगे।
0: डन डन डन डन हो गया भाई,
2: ओके।
0: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और अब मैं लास्ट कॉल कर रहा हूँ, देन मुझे कहानी भी शुरू करनी है। आई डोंट वांट टू बी लेट, सो मैं अभी जो हूँ कॉल कर देता हूँ, ब्लॉक नहीं मतलब एक लास्ट कॉल ले रहे हैं हम, और उसके बाद हम

0: बढ़ जाएंगे सीधा कहानी की तरफ। अच्छा बाय द वे बताता हूँ कहानी कैसे सेल करूंगा, मैं अच्छे से बेचूंगा आज की कहानी। आई नो कि मुझे आज क्या क्या बताना है, बिकॉज अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, आप कैसे हैं बताइए? एकदम बढ़िया भाई, शानदार। क्या क्या क्या आपके पास नहीं क्लियर? क्या
1: मैं कह रहा हूँ, फ्रीबीज की याद दिला रहे हैं आप, तो मुझे जरा सा कुछ चीजें याद आने लग गई।
0: बताओ भाई क्या याद आया, भाई को क्या याद आया बता दो।
1: यार मेरा थोड़ा सा वक्त बचपन में भी कतर में गुजरा है, यहाँ पे तो फ्रीबीज का जो माशाल्लाह से अगर आप अवेयर हैं और आप यहाँ से मतलब आते हुए फ्लाइट में भी आप छोटे हैं, 200 क्या नाम है, कुछ ना कुछ 200 फ्लाइट में मिल जाया करते थे। फिर यहाँ एग्जीबिशन लगती हैं माशाल्लाह से, अभी भी है वैसे वो तो बाकी, लेकिन अब हम लोग मिस करते हैं यार, अब एग्जीबिशन में कोई कुछ देता नहीं है ज्यादा। पहले एग्जीबिशन से आप यहाँ जाइए तो आपको हर स्टोर में कुछ ना कुछ मिलेगा। हम लोग एक मतलब जाए तो सब एक छोटा बैग भर के लेके आते थे, कहीं से कोई कप मिल रहा है, कहीं कोई पाउच मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है।
0: तो अभी आपने ट्राई किया रिसेंटली, कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश करी कहीं पे? नहीं,
1: मैं रिसेंटली आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली मुझे कल ही माशाल्लाह से पूरा एक किट मिली है।
0: अच्छा ओके,
1: पूरी एक। और वो असल में मतलब मैं उसे बता रहे हैं, नाम तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन वैसे समझदार के लिए तो मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं कि यहाँ पे एक क्या बोलते हैं तालीमी इदारे में जिससे मैं मुंसलिक भी हूँ,
0: अच्छा
1: तो उसमें ओपन डे था कल।
0: ओके,
1: यानी मतलब सेमेस्टर बैक टू स्कूल शुरू हो रहे हैं ना सारी चीजें, छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो उसमें मुख्तलिफ स्टॉल वगैरह थे। तो कल उसमें खाने पीने के तो बहुत सारे आइटम वहाँ देंगे, चॉकलेट टॉफी है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉल्स पे वाटर बॉटल, ये कोई क्या नाम है वाउचर, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, ट्रैक्स, ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें मिल रही थी
0: भाई। हमें तो नहारी पे फ्री, नहारी पे फ्री की तरी नहीं मिल रही, आप इकट्ठे कर रहे हैं इधर से।
1: तो उस्मान भाई की बड़ी मजबूरी रही है, वरना वो यहाँ पे भी मिल जाती है वो तो।
0: यार
1: तो
0: आपको आप उस्मान भाई के दुख का दुख में इजाफा, दुख में इजाफा कर रहे हैं आप उनके, बेचारे वो ऐसी टेंशन में कह रहे हैं हमें कोई फ्री दे देना।
1: उनको हम दावत देंगे, हम लेके चलेंगे उनको जहाँ पे, उनको नहारी के बाद मिलेगी सब्जी के बाद।
0: हेलो,
1: तो ये ग्रीवी कल्चर यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त शानदार है।
0: अच्छा,
1: जब बचपन में यहाँ कतर का लोकल मैं बताऊँ तो उस वक्त कोका कोला के बहुत सारे वो चल रहे थे ना, उसमें ये था कि आप वो जो क्या बोलते हैं उसको सील तोड़े या कैन वाले कोका कोला निकाले तो अंदर कुछ बना होता था, तो एक स्कीम निकली थी कि उसमें जो बना होगा वो आपको मिलेगा।
0: हाँ,
1: तो अगर एक और कोका कोला की बोतल बनी है तो एक और कोका कोला मिल जाएगा।
0: तो आपको यार, आप तो मतलब आपको तो सभी मिल रहा है यार, मतलब जलाने के लिए फोन किया, फोन किया आपने सब कुछ तो मिल रहा था आपको।
1: नहीं तो मैं बता रहा हूँ यार,
0: क्या बात है,
1: बहुत है यहाँ पे पहुंचे आप जगह जगह
0: भाई, आपने खून बॉईल कर दिया भाई, सब तो आप ले गए, जब ही तो लोगों को मिलने नहीं फ्री में, सब कुछ तो फ्री में आप ले गए अहमद भाई। पर अहमद भाई अच्छी कहानी,
1: एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर में कई बार बहुत अच्छी चीजें मतलब एक तो फ्रीबीज की अपनी जगह, लेकिन एग्जीबिशन स्पेशली जो गवर्नमेंट के इदारों की होती हैं, जैसे एग्जांपल मैं एक ले लूं कि सिविल डिफेंस है, ये एक जनरल इदारा है, तो इससे रिलेटेड एग्जीबिशन होती हैं, ट्रैफिक के अवेयरनेस के लिए एग्जीबिशन होती हैं, इन सब में जाना चाहिए। इससे एक तो आपको अवेयरनेस बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और आपको ये सारी चीजें जो है ना छोटी छोटी वो गिफ्ट टोकन देते ही देते हैं।
0: तो चलिए आप ही को पकड़ के ले जाएंगे भाई, आप ही हमारा सहारा है।
1: बच्चों के लिए बहुत होती है, बड़ों के लिए कम होती है, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं, फैमिली वाले, आप जरूर जाएं, तो बच्चों के साथ आपको बच्चों के लिए
0: भाई, अभी बच्चे तो नहीं है, शेव करा के ले चलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
1: मसला नहीं, बाल आपने छोटे कराई लिए हैं, बस दाढ़ी हटा ली है। लेकिन क्या है लोग कबीर भाई, पुराने लोग को आप मिस करने लग गए, आप दोबारा से वो लंबे वाले, वैसे मैंने भी अभी जल्दी उमरा करके आया था तो मेरे भी बाल चले गए सारे
0: भाई, बस
1: मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ।
0: कुछ कदम उठाने पड़ते हैं भाई, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं,
1: कुछ एक कदम और, वो क्या बोलते हैं स्वच्छता की ओर या आगे तब्दीली की ओर,
0: एक कदम स्वच्छता की ओर, वाह वाह वाह, क्या कनेक्ट किया है अहमद भाई, आप कहानी सुनो भाई, रहने दो भाई। ठीक है भाई, मैं शुरू कर रहा हूँ फिर कहानी। ओके चलिए भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके सो फाइनली सारे मैसेजेस मैं नाम पढ़ देता हूँ, मैं क्योंकि सारे मैसेज पढ़ने होंगे। अजहर साहब लिखते हैं, सबसे बड़ा शौक लगा चाइनीज वाले ने फ्री में मंचूरियन नहीं दिया। अरे यार अलग ही दुख चल रहा है लोगों का भाई। खादिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद हमजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जिन्होंने मैसेजेस किए उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो सॉरी मैं सारे मैसेज नहीं पढ़ूंगा बिकॉज रश है। मंजूर साहब फ्रॉम लुसैल, ओके तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, दिस विल बी द मोस्ट मोस्ट शॉकिंग स्टोरी एवर. मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा शॉकिंग स्टोरी कोई भी मैंने आपको सुनाई होगी. शायद एक दो होंगी, बट इसे कॉम्पिटिशन में किसी और कहानी का होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो मैं आई एम जस्ट प्लेइंग अ वेरी वेरी स्मॉल ट्रैक. तब तक मैं भी कहानी निकाल लेता हूँ. खेड़ा गाना चलाऊ, मैं ये चलाता हूँ. बहुत छोटा सा ये ब्रेक है, 1:58 का, कुल मिला के 2 मिनट का. जो जो लाइव सुन रहे हैं आप मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी स्टोरी. क्रेजी स्टोरी. वीकेंड स्पेशल है, 2 मिनट के बाद मिल रहे हैं. मजा आ जाएंगे भाई. शिंदा कालो और एपी ढिल्लो.

गुड मॉर्निंग. हाँ जी, तो रेडी आप? ओके, तो अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ. सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग मुझे भी ऑन करनी पड़ेगी ना. ओके, सो एक डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं. कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा. लेकिन ये किस्सा इज अ वीकेंड स्पेशल और बहुत शौक लगने वाला है आपको, तो आराम से सुनिएगा. वॉल्यूम बढ़ा के मैं बढ़ा रहा हूँ. और ये म्यूजिक चेंज करने के लिए मुझे फौजी जी ने मैसेज किया. फौजी कह रही है कि आप चेंज कर दो, बता रही हूँ मैं, बहुत हो रहा है ये. ठीक है, मैं चेंज करूँगा, पर अभी फिलहाल आज के लिए. मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. और आज का जो किस्सा है ना, ये बहुत शौक देने वाला है आपको. और इसकी शुरुआत मैं करूंगा 1985 से. तो चलते हैं जरा 1985 में. ये जो साल है, ये आई डोंट नो, हमारी तरफ तो बहुत अलग सीन रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ बहुत अजीब अजीब चीजें हुई हैं. इत्तफाका नहीं कह लीजिए, ये कहानी भी उतनी ही अजीब है. सो 1985 में नॉर्थ कैरोलिना में एक लड़की का जन्म हुआ मार्च के महीने में. उसका नाम था एम्बर जूल शुपिंग. उसका जो नाम था शुरुआत में एम्बर था, लेकिन चेंज करके उसने जूल कर लिया. पूरा नाम जो है वो यूज भी नहीं करती, तो जूल नाम से हम उसे पूरी कहानी में उसका वही नाम लेंगे. अब जूल जब छोटी थी तो बाकी बच्चों की तरह ही थी. वही स्कूल, वही दोस्त, एक नॉर्मल चाइल्डहुड. घर वालों के पास ठीक ठाक पैसा था, मतलब आम आदमी के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा, कि लग्जरी भी इंजॉय कर सकते हैं और नॉर्मल जिंदगी तो है ही. मगर जूल थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि जब वो 3-4 साल की हुई तो उसकी मां ने जूल के अंदर एक अजीब सी चीज महसूस करी. वो बहुत ही वियर्ड चीज थी. जूल जो थी वो रात को उठती थी, हॉलवे में जाती थी, और हॉलवे तक जाने का रास्ता ऐसा था कि उसका ऊपर रूम था और वो रूम से सीढ़ी से उतर के नीचे आती थी, और हॉलवे में जाकर लाइट बंद करके, मतलब खोलती नहीं थी लाइट, और घूमती रहती थी फॉर सम रीजन. और एक दो बार हुआ, 3-4 बार हुआ. मां ने शुरुआत में तो पूछा जूल की कि बेटा क्या बात हो गई, मतलब कुछ खाने को चाहिए, पानी पीना है, कुछ दिक्कत है क्या? She said nothing, कुछ नहीं बोलती थी. और जब ये ज्यादा होने लगा और हर रात होने लगा, तो वो परेशान हुई कि मेरी बेटी ऐसा करती क्यों है, रात में उतरती है, देर रात, बीच रात में 1-2 बजे, और हॉलवे में घूम रही है बिना लाइट की, क्या चक्कर है ये? तो विजन जो था उसका नॉर्मल था, क्योंकि मां को शक था कहीं इसको कुछ आंखों में दिक्कत होती तो जरा ये भी चेक करा लेते हैं, पूछ लेते हैं. तो विजन उसका एकदम नॉर्मल था. पर जब वो 6 साल की हुई तो कुछ चीजें अजीब होती चली गई. वो कहने लगी मुझे दिख नहीं रहा है. और जब मां कहती बेटा आंखें तो खोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे देखने दो, दिखा नहीं रही है. और जब लाइट जलाती है वो घर की, तो वो कहती लाइट बंद कर दो. तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीज थी जो हो रही थी. जब वो 12-13 साल की हुई तो उसे लिटरली चश्मा भी चढ़ गया, बिकॉज शी वॉज लीगली ब्लाइंड. तो अब प्रॉब्लम हो गई, अब चश्मा लग चुका है, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते. तो माँ ने सोचा अच्छा ठीक है, जो बचपन में ये सब चीजें हो रही थी ये अजीब नहीं थी, इसको दिख नहीं रहा था बेचारी को. पर माँ को बहुत सारी चीजें पता नहीं थी जो पता लगने वाली थी. उसे चश्मा तो लग गया था, पर वो एक चीज कह रही थी, आप सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही वियर्ड चीज होने वाली है. वो ये कहती थी कि काश मैं बिना आंखों के पैदा होती तो ज्यादा बेहतर था. आई शुड हैव बीन बॉर्न ब्लाइंड, मुझे आंखें मिली ही क्यों. जब वो 14 साल की उम्र में आई तो वो और भी वियर्ड बातें करने लगी. नाउ बी रेडी फॉर दिस, बिकॉज दिस विल शॉक यू. वो कहने लगी कि उसे नफरत है कि वो सब कुछ देख सकती है. या सही सुना आपने, उसे नफरत है कि वो सब कुछ देख सकती है. और कहने लगी कि हर रोज मुझे ये याद आता है कि मैं देख सकती हूं, और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मुझे देखना क्यों पड़ रहा है. और वो बोलती थी ये मेरी रियलिटी नहीं है, मुझे देखना पसंद नहीं है. और कहने लगी कि मुझे घुटन होती है कि मुझे ये सब दिखता क्यों है.
ऐसा लगता है कि मैं अपनी दुनिया में कैद हूं जब मैं देख पाती हूं और अंधेरे में मुझे सुकून मिलता है। वो जानबूझकर अपना चश्मा ले जाना भूल जाती थी, कहती थी मैं तो भूल गई और चश्मा नहीं ले जाती थी क्योंकि उसे उसी में कंफर्टनेस मिलता था। ये रियलिटी थी उसकी कि उसे अंधेरे में रहना बहुत पसंद था। अब मां बाप क्या करें, इतनी कंफ्यूजिंग चीज है कि उनकी समझ के बिल्कुल परे होती चली जा रही थी। जैसे मां बाप क्या कहते हैं बच्चों को, कहते हैं ना कि बेटा सूरज की तरफ ज्यादा देर तक मत घूरो, आंखें खराब हो जाएंगी। हम सबने कभी ना कभी ये सुना होगा। तो ये बात जो है जूल के मां बाप ने उसको भी बोली थी कि बेटा सूरज की तरफ मत देखो लगातार, ऐसे दोपहर में आंखें खराब हो जाएंगी। पर ये तो मौका था उसके लिए। और वो पूरे दिन घंटों तक सूरज की तरफ देखती रहती थी, देखती ही रहती थी। टिपिकली बच्चे नहीं देखेंगे, सेकंड्स भर देखेंगे तकलीफ होगी हट जाएंगे, पर ये देखती रहती थी। और जूल को बड़ा दुख हुआ, वो कहने लगे कुछ तो हुआ नहीं, मैं इतनी देर से सूरज को घूर रही हूं, मेरी तो आंखें अभी भी सलामत है, ये क्या बात हुई, कुछ तो फायदा नहीं हुआ इसका। अब आप सोच रहे कितनी अजीब बात है, ये सुन के ही आपको अजीब सा लग रहा होगा। और कहती थी मां मैं तो अभी भी देख सकती हूं, आपने तो कहा था आंखें खराब हो जाएंगी। एंड अपने आप को सुकून देने के लिए वो कमरों में चली जाती थी अपने, और वहां जाके बत्ती बंद करके बैठी रहती थी। डार्कनेस में शी फेल्ट हैप्पी। उसे अपनी परछाई देखना पसंद नहीं थी, शी जस्ट हेटेड कि मैं अपनी परछाई भी देखूं या किसी किस्म का रिफ्लेक्शन देखूं। और उसे अकेलापन महसूस होने लगा था क्योंकि वो एक लौती थी जो ये सोचती थी, बिकॉज कौन सोचेगा ये। एंड उसने एक चीज लिखी थी, शी सेड एंड आई कोट, लोग अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेड रहते हैं और ब्लाइंडनेस को डिसेबिलिटी मानते हैं, पर मैं इसे एम्पावरमेंट समझती हूं जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता। दिस इज व्हाट शी रोट इन हर डायरी। जब वो 18 साल की हुई तो जूल, उसने एक लाठी खरीदी, एक सफेद रंग की केन खरीदी कि मैं जो हूं इसके सहारे चलूंगी। जब वो 20 साल की हो गई तो उसने ब्रेल लैंग्वेज, जो पीपल विद डिस

एबिलिटी उनको सिखाई जाती है ना, पीपल विद ब्लाइंडनेस, वो लैंग्वेज पूरी की पूरी सीख ली। शुरुआत में उसके माँ बाप को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि ये कैसी अर्ज है, और वो बोलते थे ये मेरी अर्ज है, मैं समझ नहीं पा रही हूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और मुझे देखना नहीं है। जस्ट इमेजिन के कोई ऐसा बोले तो क्या रिएक्शन देंगे आप, आई डोंट नो आपका क्या रिएक्शन होगा, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब वो 21 साल की हुई, शी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी अपनी इस अर्ज को लेकर। अपने 20s में उसने ब्लाइंड रहने की पूरी पूरी कोशिश करी। वो क्या करती थी, आंखें बंद करके चलना शुरू किया उसने। सबसे पहले तो माँ बाप ने सोचा कि शायद सुधर जाए, तो उन्होंने उसकी शादी करा दी एक ऐसे आदमी से जो मिलिट्री का था, कि लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, पर एक रुपए का फर्क नहीं पड़ा। उल्टा हुआ यह कि वो बंदा बिजी रहता था एंड दोनों की बातचीत होती नहीं थी और शादी नहीं चल पाई। उल्टा हुआ ये कि अब क्योंकि वो घर से बाहर जा चुकी है, तो उसे अपने जैसे लोग मिलने लगे इंटरनेट पे। अर्ली 2008 में जब वो 23 साल की थी, जूल को ऑनलाइन इत्तफाकन एक ग्रुप भी मिल गया अपने जैसे लोगों का। इसमें लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे और बताते थे कि ब्लाइंड कैसे रह सकते हैं। अब सोच रहे, जस्ट इमेजिन अ ग्रुप जहां पे एक नहीं दर्जनों लोग ये बात कर रहे हैं। तो उसे एक तरकीब मिली, वो जो सोने के लिए लोग आंखों में पट्टी लगाते ना, शेड पहनकर, तो स्लीप शेड उसने पहनने शुरू किए, उसके ऊपर उसने चश्मा लगा लिया और वो पहन के घूमने लगी, और सनग्लासेस इसलिए पहन रही थी क्योंकि उसका नाटक ना पकड़ा जाए, सिर्फ इसलिए, और ये पहन के वो घूमने लगी। शुरू में क्या हो रहा था कि आदत नहीं थी ना, तो टकराती थी इधर उधर, टकराती रहती थी, बट ओवर टाइम विद प्रैक्टिस एंड वो कदम गिन के चलना उसे समझ में आ गया, शी कुड डू इट। अब उसने अपने ट्रेवलिंग का डिस्टेंस भी बड़ा करना शुरू किया, ट्रेवल करना शुरू किया, आंखों पे वो स्लीप शेड लगा के, उस पर चश्मा चढ़ा के, और नॉर्थ कैरोलिना से वॉशिंगटन डीसी मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाती थी और डाउन टाउन मॉल में घूमती थी। पूरे रस्ते एकदम ब्लाइंड, और कहती थी मुझे बहुत फ्री लगता है, यही मेरी जिंदगी है। लगातार 2 हफ्ते उसने यही किया और आंखों को बंद रखा। अब एक पॉइंट इसकी जिंदगी में आ चुका था, क्योंकि अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका, या उसके हिसाब से कर रहा है। उसने इंटरेस्ट लिया कि इंटरनेट पर जाके जरा सर्च तो करूं, और उसकी सर्च ने उसे एक जगह दिखाई, एक आर्टिकल जिसे लिखने वाले उसके जैसे ही लोग थे। अच्छा, इस सिचुएशन का, इस कंडीशन का एक नाम भी है जो उसे उस आर्टिकल में मिला। इसे कहते थे बॉडी इंटेग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर, BIID। आज इस कंडीशन को कहते हैं बॉडी इंटेग्रिटी डिस्फोरिया, यानी कि BID। ये लोगों को सच में होता है, तो मतलब एक लौती नहीं थी वो, अब भी होता है। इसमें बहुत कुछ आ जाता है, कुछ लोग बिना दांत के रहना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि काश में हगला होता, कुछ लोग सोचते हैं काश में सुनी ना पाता। ये जो टर्म है BID, ये एक डॉक्टर सामने दी, डॉक्टर माइकल फर्स्ट। वो एक साइकेट्रिस्ट थे और प्रोफेसर थे ऑफ साइकेट्री एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो उन्हें ये टर्म मिला एक डॉक्यूमेंट्री देखकर ऐसे ही लोगों के बारे में 90s में। उन्हें पहले नहीं पता था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। उन्होंने 130 लोगों से बात करी दुनिया भर में और उन्हें ऐसे लोग मिले, तो ये क्राइटेरिया पैदा हुआ जिसे आज हम जानते हैं BID के नाम से। ये लोग बड़े स्ट्रांग फीलिंग वाले लोग होते हैं और इन्हें प्रिटेंड करने में मजा आता है कि ये किसी ना किसी हिस्से से माजूर है। आप सोच रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि पीपल वॉन्ट टू बी समथिंग विच इज वियर्ड, और इसका कोई डायग्नोस्टिक नहीं था, आज तक नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीजेस 2019 ने इस कंडीशन को अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया है कि इसको भी एक कंडीशन समझा जाए। ये बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा न्यू है, और ट्रीटमेंट के नाम पर इसमें दवाइयां और साइकोथेरेपी दी जाती है,
और अगर दोनों की दोनों चीजें काम ना आए तो वहां पॉसिबिलिटी है कि कंट्रोल किया जाए खुद या दोस्त और

घर वाले साथ दें। और इसमें घर वालों से ज्यादा दोस्तों का साथ देना ज्यादा जरूरी है, फॉर द फैक्ट कि ये चीजें लोग घर पे बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो आज का जमाना हो, पुराना जमाना हो या आने वाला जमाना हो। पहले तो ये पता करना भी मुश्किल था, आजकल आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे तो छोटी मोटी ये वाली कंडीशन लेकर अपने साथ चल रहे हैं। सो 2022 में एक स्टडी भी की गई थी, एक पूरी थीसिस लिखी गई बाय डॉक्टर मरिया एंड डॉक्टर एरिक कैस्टन। इन्होंने 80 सवालात एक कागज पर तैयार किए और 80 सवाल लेके इन्होंने एक सर्वे किया 213 लोगों पर, जो काफी था क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन है और ये सैंपल साइज काफी रहा। इसमें ये सामने आया, ये लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, महज 4 साल पहले, 50% लोग जो है ये सोचते हैं सेम कंडीशन, वो फिजिकली अप्लाई नहीं करते। 32% लोग ऐसे हैं जो दिन भर ये ट्राई करते रहते हैं कि अगर ऐसा होता यार तो, अगर मेरी एक आंख नहीं होती तो क्या होता भाई। और इनमें वो लोग भी आते हैं जो व्हील चेयर पे बैठने का शौक रखते हैं। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज एन एक्चुअल मेडिकल सर्वे, ये फैक्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर्स ने बाकायदा इंटरनेशनल पोर्टल्स में है ये मौजूद कि कुछ लोगों को शौक होता है कि दे वांट टू सिट इन अ व्हील चेयर। और बाकी के 18% ऐसे होते जो जानबूझकर पट्टी वट्टी बांध के घूम रहे हैं, है ना, थोड़े से सन की हो जाते हैं और वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन चीजों को। सो दुनिया में आज भी जो थेरेपिस्ट है जो इस चीज को इलाज करने के लिए मौजूद है, वो इस चीज को सीरियसली लेते भी नहीं है। और ऐसी जूल को एक शख्स मिला, क्योंकि उसका क्या सपना था भूलिएगा नहीं, जूल को चाहिए कि वो ना देख सके। 2008 में जूल को एक ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट मिला और शुरू में दोनों की बातचीत हुई एंड उसने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। और उसने बोला किस चीज के लिए, तो बोली कि मैं चाहती हूं कि मेरी आंखें जो है वो खराब हो जाए। तो जो साइकोलॉजिस्ट था उसने बोला ऐसा है, तुम मैंने रिसर्च करके आओ कि कैसे कर सकते हैं और फिर मुझे बताओ, मैं मदद करता हूं। जस्ट इमेजिन, यहां पे साइकोलॉजिस्ट कह रहा है तुम पता करो कि कैसे तुम ब्लाइंड हो सकती है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घंटों भर ऑनलाइन बैठकर रिसर्च करी उसने जूल ने कि कैसे जो है वो ब्लाइंड हो सकती है। एंड शी डिस्कवर्ड कि दो मेन चीजें हैं, एक तो लाई करके एक चीज है और दूसरी चीज है ड्रेन क्लीनर, ये इस्तेमाल कर लूंगी तो काम हो जाएगा और दर्द होगा। तो रिटेल शॉप गई, वहां से सबसे पहले उसने ड्राई क्लीनर खरीदा, उसके बाद आंखों को सुन करने के लिए उसने चीज कैनेडा से मंगाई क्योंकि वहां पे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। सो शी ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम कैनेडा। उसने खुद जाके एक आर्टिकल लिखा 2008 में जो वायरल भी हुआ। जून के 18 तारीख 2008 में शी रोट कि अगर किसी को ये चाहिए तो ये सर्जरीज में यूज होता है और सिर्फ कैनेडा से मिलता है, मंगा लो। ड्रेन क्लीनर के बारे में उसने लिखा कि मैं ये यूज करने जा रही हूं और बोल दूंगी एक्सीडेंट हो गया। ये आर्टिकल उसने उन लोगों के लिए लिखा जो उसकी तरह सोचते हैं। अब मुलाकात होनी थी साइकोलॉजिस्ट से, तो 23 साल की जूल टिकट विकेट बुक करके प्रॉपर शिकागो गई साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि देखो मैं जो हूँ आजकल यहीं पर रहता हूँ, मेरे घर में किराए पर तुम रह सकती हो और मेरी फीस भी दे देना। तो जूल जो थी, रादर देन स्टेइंग इन अ होटल या कहीं और, वो साइकोलॉजिस्ट के घर पे ही किराए पे रह रही थी। $15 पर आर फीस चार्ज कर रहा था वो, $15 पर आर। आई डोंट नो ज्यादा है कम है, पर ये फीस थी। और 2 हफ्ते तक वो वहीं रही। तीसरे हफ्ते में जाके साइकोलॉजिस्ट ने बोला ओके अब हम तैयार हैं, तुम तैयार हो? उसने बोला मैं एकदम तैयार हूं। तो जून 28, 2008 को प्रोसीजर हुआ। शीशे में अपने आप को देखा उसने, अपने आप को गुड बाय कह दिया और पहली मर्तबा साइकोलॉजिस्ट का चेहरा देखा। इमेजिन, जब वो आई थी तो उसने अपने आंखों पर सब कुछ बंद कर रखा था, ये पहली बार था जब इस प्रोसीजर के लिए उसने आंखों से पट्टी वट्टी हटाई और साइकोलॉजिस्ट को देखा। उसने आंखों को सुन करने वाली ड्रॉप्स गिराई और फिर सिरिंज में वो ड्रेन क्लीनर भरा, 2 बूंदें गिराई और फिर साइकोलॉजिस्ट ने कहा कितना भी दर्द हो 30 मिनट हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद हम हॉस्पिटल जाके ये झूठ कह सकेंगे कि गलती हो गई। तो रुके 30 मिनट, ये रुके और आंखें पूरी जल के

बैंड बज गई उनकी। अब उसके बाद ही हॉस्पिटल भागे क्योंकि ड्रामा करना भी तो जरूरी है ना। तो ड्रामा करने के लिए इमरजेंसी रूम में ये लोग गए। वहां पे इसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। हॉस्पिटल वाले बेचारे घंटों तक कोशिश करते रहे और कोशिश थोड़ी सी कामयाब हुई। कुछ देर बाद जब इसकी आंख खुली और इसे लगा था कि अब मैं नहीं देख पाऊंगी, अब मेरी रोशनी चली गई होगी, आंख खोली तो वो देख पा रही थी स्क्रीन और उसे गुस्सा आया कि यार ये भी काम नहीं कर पाया, मुझे तो अभी भी दिख रहा है। पर डिस्चार्ज करने से पहले एक हफ्ते हॉस्पिटल वालों ने रखा और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जूल की आंखें खराब होती चली गई और कुछ वक्त बाद उसे सिर्फ लाइट और कुछ कलर दिखने लगे। ऑनलाइन ग्रुप पे उसने जो लास्ट टाइम उसे दिखा था उसमें बहुत लंबा चौड़ा उसने पोस्ट किया क्योंकि उसे फिर उसके बाद कैटरैक्ट और ग्लोकोमा हो चुका था। देखो नॉर्मल प्रेशर जो आंख पे पड़ता है ना वो 10 टू 21 मिलीमीटर्स का होता है ग्लोकोमा वाले केसेस में, जो प्रेशर ऑफ मर्करी होता है। इसके इसका था 39 विच इज अ लॉट। धीरे धीरे जो उसकी लेफ्ट आंख थी उसका कॉर्निया खराब हो चुका था एंड ये सारे के सारे इश्यूज जो थे उसे चाहिए थे, ये मसले मसाले उसे चाहिए थे, मगर इसकी वजह से सर में भी दर्द होने लगा। उसने डॉक्टर से कहा कि यू नो व्हाट, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, क्या हम इसे हटा सकते हैं? डॉक्टर से लाइक अरे क्या कह रही है ये, पर उन्हें करना पड़ा बिकॉज इवेंचुअली उसके सर पे भी प्रेशर आ रहा था। वो इसके बाद रिहैब गई 2009 में और यहां पर जाके जस्ट इमेजिन कितनी वियर्ड स्टोरी है। जोल 2009 में व्हेन शी बिकेम ब्लाइंड, जो उसे चाहिए था वो एक रिहैब सेंटर में गई फॉर ब्लाइंड पीपल और वहां पे उसकी मुलाकात हुई माइकल कॉक्स नाम के एक शख्स से जिसे मैक्यूलर डीजेनरेशन नाम की बीमारी थी और वो 42 साल का था। इसमें क्या होता है, सेंट्रल विजन जो होता है वो खराब हो जाता है इस बीमारी में जो माइकल को थी। 3 साल वो रिहैब गई, 3 साल के बाद उसने माइकल से एंगेजमेंट कर ली और बहुत खुश थी। मगर जूल ने माइकल को अपना सच नहीं बताया कि उसकी आंखें एक्सीडेंट से नहीं खराब हुई हैं, उसने खुद ही खराब करी है। मगर ये बात ज्यादा छुप नहीं पाई क्योंकि आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन थे और साल 2012 में ये पता चल गया सच कि जूल ने जो किया वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। और इस वक्त तक जूल के घर वाले उसे डिसोन कर चुके थे, अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर बेदखल कर चुके थे। एंड माइकल वॉज इक्वली शॉक्ड, उसके पास बहुत सारे सवाल थे। और बीच में इसने जूल को बोला कि तुम अपनी आंखें ठीक कराना चाहती हो, तो उसने बोला अब तो हो नहीं सकता। दोनों का ब्रेकअप हो गया पर दोनों एक गुड टर्म पे रहे, एक दोस्त बन के रहे, इनफैक्ट रूममेट बन के रहे। अब मैं इसे हादसा कहूं कि क्या कहूं पता नहीं, पर 7 साल बाद अपनी आंखें जानबूझ के खराब करने के बाद वो हेडलाइंस पे फिर से आई क्योंकि एक मीडिया हाउस के साथ उसने वीडियो बनाया साल 2015 में। दिस वॉज सेप्टेम्बर 30th of September। उसने इंटरव्यू दिया लोकल न्यूज वालों को और बोली गलती से हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और 2015 में बोली कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूं और मैं फंड रेज करना चाहती हूं उस कम्युनिटी के लिए जिनके पास आंखें नहीं है। तो एक महान बनने का इंटरव्यू उसने दिया। इस चक्कर में वो एक सदस्य, एक मेंबर भी बनी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, यानी कि NFB इन शॉर्ट। और उसने ब्रेल लैंग्वेज में एक खत भी लिखा अपने खास दोस्त को जो कि देख नहीं सकते थे। उनका नाम था मोहम्मद अराफीन और ये इंडोनेशिया के थे, एक स्कूल चलाते थे। वहाँ पे बच्चों के पास चलने के लिए केन भी नहीं थी, वो जो लाठी पकड़ के चलते हैं। तो ये स्कूल था मकासर स्कूल। अब ये बड़ी उदास हुई, इसने बोला कि मैं जो हूँ क्राउड फंडिंग कराऊंगी। और फरवरी 2015 में ये शुरू हुआ, जून की 2016 तारीख तक $4,000 जमा किए गए। उसने कहा कि इंडोनेशिया जाने आने और $875 सब बच्चों के लिए केन खरीदने के लिए लगेंगे और लोगों ने पैसे दिए भी, डॉलर्स दिए भी। उसके बाद डॉक्टर फिल का एपिसोड, जो आप खुद भी इंटरनेट पर देख सकते हैं, डॉक्टर फिल एपिसोड नंबर 39, वहां पर भी वो पहुंची।

अब यहां से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि आज तक अभी 2016 तक एक बार भी उस साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं आया था जिसने मदद करी थी जूल को ब्लाइंड होने में, और सब पीछे पड़े थे। पर जानते क्या निकला, वो जो साइकोलॉजिस्ट इसको ऑनलाइन मिला था वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था, उसने खामखा अपने बायो में लिखा हुआ था कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट था ही नहीं, उसका तो लाइसेंस रिवोक हुए हुए जमाना हो चुका 1997 में, उसने तो मजे मजे में लिखा हुआ था। वो उसने कॉन्टेक्ट किया, उसे लगा $15 पर आर दे रही है, ठीक है और करना ही क्या है, आंखों में तो ड्रॉप ही तो डाल लिए, कर दूंगा। तो वो खुद ही फ्रॉडस्टर था, एंड जब ये सामने आया तो उसे दुख तो बहुत हुआ कि ये मैंने किससे कॉन्टेक्ट कर लिया लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। यकीन जानिए डॉक्टर्स ने अभी भी इतना कुछ जानने के बाद भी उसकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन नथिंग हेल्प्ड। और उसने बोला कि ये जो डिसऑर्डर है ये चॉइस नहीं है, मैंने भाई चॉइस नहीं किया, ये तो मुझे करना ही था, मैं कैसे करती, मैं क्या करती। और कमाल की बात ये थी कि जूल की जो मेंटल स्टेट थी वो अदरवाइज एकदम बढ़िया थी, खुश मिजाज थी, खाना पीना बढ़िया खा रही थी, बात बढ़िया तरीके से कर रही थी, मगर ये सिर्फ एक अजीब सी चीज थी उसके बारे में। ये केस बियॉन्ड क्रेजी है, बियॉन्ड क्रेजी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने फायदा उठाया और कुछ लोग कहते हैं कि फायदा उसका उठाया गया। एक डॉक्टर है डॉक्टर जेनिफर एंस्टन, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और बोली कि डिसऑर्डर है और मुझ पे मेरा खुद पे काबू नहीं था पर मैंने एक्शन भी ले लिया। ये दोनों बातें साथ में जाती हुई समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर को बहुत गुस्सा है उस पर आज भी। अभी भी शी इज फाइन, मतलब ऑब्वियसली उसने अपनी आंखें खराब कर ली हैं, बट शी इज डूइंग वेल राइट नाउ। अगर आप जानना चाहते हैं कि जूल अभी कैसा कर रही है, जूल इज फाइन, एकदम टॉप वर्किंग कंडीशन में है उसकी जिंदगी, एंड इट्स जस्ट क्रेजी टू नो के लोग ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जहां की इतनी बड़ी नेमत है हम सब के लिए, वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि ब्लाइंड होने में कितना मजा आएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या बोलूंगा। तो ये जो वियर्ड स्टोरी थी ये मैंने बचा के रखी थी वीकेंड के लिए स्पेशली। तो अब मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या रिएक्शन है, लाइक हाउ वियर्ड इट इज़ फॉर यू, कितनी वियर्ड थी कहानी ये आपके लिए, ये बहुत मैटर करता है भाई। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, एंड आई वुड सीरियसली वॉन्ट टू नो कि ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या है, मुझे प्लीज बताइएगा। आई एम सो सॉरी मेरी आवाज थोड़ी नेजल साउंड कर रही होगी क्योंकि वो मेरा साइनस ट्रिगर हो गया ये वियर्ड कहानी सुना के, मगर प्लीज बताइएगा जरूर। हाँ, 666-22-107, 666-22-107, स्टे ट्यून्ड।

0: सी भाई जब तो डिसऑर्डर है ये, अजीब और बहुत ही यूनिक कंडीशन है, अल्लाह बचाए इससे, आमीन। एब्सोल्युटली भाई, ये कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हाँ जी भाई, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम सुना हूँ स्टार्ट से, लेकिन अभी मैं अलखोर में जाके स्टॉप किया हूँ गाड़ी।
0: हाँ
1: हाँ, क्योंकि ऑन द वे में यू नो अबाउट दैट।
0: ओके, अब बताइए।
1: लॉन्ग डिस्टेंशन बिटवीन सनैया टू अलखोर।
0: क्या हो गया? सुबह सुबह अंग्रेजी ज्यादा चाय हो गई क्या?
1: बिल्कुल मुंह की बात छीन ली। ऐसे कैफेटेरिया पे रुका ना, ऐसे कैफेटेरिया पे रुका वो भाई ने तो, हाँ ये नाश्ता क्या, वो पता नहीं वो अजीब ही कर दिया सारा कुछ मामला एकदम से।
0: मांगो आज शहजादा सलीम ट्रैफिक एट, ये मांगो क्या हो गया भाई?
1: इतना हमारी अपना ऑर्डर नहीं ले रहा है सुन के बराबर से, और टाइम नहीं दे रहा है ग्राहक को, और बस ये वो बस ये।
0: चलो ये तो, ये तो आपका जाती मसला हो गया, कैफे का मसला। कहानी सुनिए आपने, ये बताओ शहजादा सलीम, नहीं सुनी होगी?
1: नहीं सुना।
0: तो पहले सुननी पड़ेगी भाई। और पहले सुनो,
1: एक डायलॉग वो तो बोल दो ना, अनारकली हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। आगे वाला फुल तो करो कंप्लीट।
0: सलीम वो क्या था डायलॉग? सलीम क्या?
1: सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा।
0: हाँ, और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा।
1: सुपर सुपर सुपर,
0: थैंक यू मेरा भाई। ओके, ख्याल रखो भाई। भाई इसके आप मैं चार्ज करना शुरू कर दूंगा, ₹5 पर मिमिक्री भाई, ऐसे नहीं चलेगा। कब तक फ्री में भाई ये काम करूंगा मैं? तो बस मैंने मैसेज किया, कबीर भाई वाज थिंकिंग इट्स अ हॉरर स्टोरी, आई मिस द लास्ट पार्ट, आई विल रिसर्च योर इंटरनेट। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत नेमत दी है, और ऐसे लोग भी है सुन के अजीब गुस्सा आ रहा है, बट ब्रिलियंट नरेशन, थैंक यू सो मच भाई। कहते भाई तुम्हारी कहानी सुनी, इसको कट करो भाई, इसे तुम्हारी कहानी नहीं सुनी मैंने। भाई कब का मैं शहजादा सलीम को मैं मुखालफा भिजवा दिया मैंने। बहुत जल्दी आ जाएगा बाकी गाने के बाद, बाकी सारी बातें होंगी। आज वीकेंड है, एंड इफ़ यू रियली लव द स्टोरी, बिकॉज ऐसी कहानियाँ निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक मैसेज भी आपका, इट रियली रियली मैटर्स, इट मेक्स अ डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच फिलहाल जिन्होंने मैसेजेस किए हैं, लगता है कि भाई मेहनत सफल हुई, तो टन्स एंड टन्स ऑफ लव। एक गाने के बाद हो रही है आपकी हमारी मुलाकात। ओके शेखू, गाना चला दिया जाए, ये है झलक दिखला जा, हिमेश की आवाज में अनारकली, मैसेज भेज दो। चाय भी नहीं पड़ेगी, गला छील दिया तुमने।

झलक दिखला दे रीलोडेड 8:12। गुड मॉर्निंग, झलक दिखला दी हमने भाई, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसी कहानी सुना दी भाई, आग ला दी। बाकी हमारा ये सुना आपने, इस पर मेहनत लगी है भाई, ऐसे कैसे नहीं सुना, मैं सुनाऊंगा ये लो।

0: wake up.
1: हाँ जी, तो कुछ मैसेज आए हैं. तब उसमें मैंने मैसेज किया, गाने में लिखती हैं ये कोई बीमारी थी या उसे सिर्फ एक लौती वन पीस थी. नहीं, वन पीस नहीं है दुनिया में, ये बहुत सारे लोगों के साथ है बहन, सैडली दैट इज सो ट्रू. एक मैसेज है, सभी को बताइए ताकि सभी को स्टोरी मिल सके. शायद आप सारे लिसनर मालूम नहीं है. यूसुफ भाई, कुछ वजह है जो मैंने नहीं बोला है, लेकिन मैं अलग से भेज दूंगा. पर थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न. एक कॉल आ रही, उठा लेते हैं जल्दी से. अस्सलाम वालेकुम. भाई मैं तो बढ़िया हूँ, आपकी आवाज ऐसी झरझराती हुई आ रही है, ऐसे नेटवर्क खराब हो जाता है कहाँ पर है? है? अच्छा, नहीं आवाज कट नहीं रही है, वो कैसे समझाऊं, दबी हुई आ रही है. अच्छा बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे. हाँ सब बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह.
2: कैसा लग रहा है, सुबह आना है आपको
1: भाई? ये तो ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया, जो भी अल्लाह की तरफ से है सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है भाई.
2: हाँ सुनने के लिए ना, आप कहते हैं मुझे तीन चार बार पांच बार अलार्म सुनना पड़ता है, हमें तो भाई एक ही बार हम उठ जाते हैं, ठीक है ना.
1: हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया भाई.
2: सकूल है दो, पहले एक साथ दूसरा भी शुरू हो गया.
1: नहीं भाई, आप आपके साथ है तो बहुत बढ़िया भाई.
2: आप भी, आपको कहा था कस्टमरों को स्पेशल, आप जाना रिक्वेस्ट करें भी बट में पैसे ना दिए करें सुबह सुबह.
1: मैं इस पे शो करूंगा भाई, इस पे पूरा शो करूंगा मैं संडे को. मैंने आपको बोला भी था ना, मैं संडे को इसी बारे में बात करूंगा, टेंशन मत लो आप.
2: जी जी,
1: ठीक है, बाकी मजे करो भाई. है
2: कहानी बहुत अच्छी लगी है. मैंने लास्ट में जो है ना दो कोई तीन मिनट सुनी है, मुझे एकदम ख्याल है, कुरान सुन रहा था मैं.
1: हाँ
2: ये मैंने कहा कभी का शो, इस मैंने कहानी सुनी थी.
1: मैं भेजूंगा भाई, अच्छे सुन लेना, डोंट वरी. मैं अब तक आगे कहानी पूरी सुन
2: रहा हूँ. वही बात, मेरी टीम पूरी को सलाम, जो भी लिमोजिन ड्राइवर सुन रहे हैं, मेरे रूम वाले भी हैं पांच सात, वो भी सुन रहे हैं. इम्तियाज भाई, ठीक है ना, नईम भाई, तबला भाई,
1: सबको प्यार भाई, सबको वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम अस्सलाम.
2: कमरों को जो है ना मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप.
1: रुको रुको, इस बारे में संडे को बात करूंगा मैं, आपने टॉपिक दे दिया है मुझे ऑलरेडी, डिसाइडेड, डोंट वरी.
2: ओके बेटा,
1: मैं संडे को बात करूंगा. ओके मेरा भाई, ख्याल रखिए अपना. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. और इनका एक मैसेज फवाद भाई ने हाथ भेजा है, हाई फाइव भाई. एक मैसेज है कबीर भाई, टाइमिंग चेंज हो गई क्या? रहमतुल्लाह भाई, बिल्कुल चेंज हो गई, अल्लाह की रहमत बरसी और अभी हम सुबह आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 6 बजे से. एक भाई लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, और सुपर एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और एक मैसेज है यूसुफ भाई का, क्या रीज़न है कबीर? मैं बताता हूँ आपको यूसुफ भाई, अलग से एक मैसेज है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. देन एक मैसेज है गुड मॉर्निंग कबीर भाई, क्या लिखा है? बॉयज स्टोरी सुनी एंड की रह गई. अच्छा कोई बात नहीं. और हमें नाजिया मैंने मैसेज क्या लिखती है, आई मिस द लास्ट पार्ट बट इट सीम्स वेयर्ड पीपल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. यस बहना. और एक मैसेज है सैयद अली हैदर साहब का, लिखते हैं भाईजान वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. भाई मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आता कि सारे अजीब व गरीब चीज़ें गोरे लोगों में ही क्यों होती है. नहीं भाई, होती हमारी तरफ भी हैं बट वो डिटेक्टेड नहीं है, आप समझ रहे हैं, होती है हमारी तरफ भी है, डिटेक्ट नहीं होती है. और लिखते हैं अल्लाह ने जिस्म में कुछ भी बगैर वजह के नहीं दिया. मेरे डैड डायबिटिक है 30 साल से, 3 साल पहले इन्फेक्शन की वजह से वी हैड टू रिमूव हिज लेफ्ट लेग फ्रॉम द नी डाउन. अल्लाह खैर करे मेरा भाई. आई कैन सी द स्ट्रगल एवरी डे. भाई इट हैपन्स देसी दुनिया में भी है बट हमारे यहाँ डिटेक्शन नहीं होता, हम उसको सेंसेशनलाइज कर नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही लगता है चीज़ है भी और बिजी भी है लगे हम, उधर थोड़ा खालीपन सा था भाई, अकेलापन भी है. सलमान भाई वालेकुम सलाम. शहजादा सलीम बहुत बहुत शुक्रिया. जमाल भाई अभी कॉल करता हूँ मैं. मालूम नहीं इनकम सोच रहा है कबीर भाई. अच्छा करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया.

0: एक मैसेज है, आज की स्टोरी वाइज साइको हॉरर थ्रिलर तीनों में से कुछ नहीं भाई, थ्रिलर थी है, थ्रिलर थी। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो। वालेकुम अस्सलाम
0: जी भाई, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है कबीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कहानी सुन के थोड़ा सा जो है ना, हाँ, टेंशन में आ गया। एक बात मेरे समझ में नहीं आती है,
0: हाँ, बता।
1: हाँ, कि ऐसे लोग होते कहाँ से आते हैं ऐसे लोग
0: भाई? ऐसे है भाई,
1: अजीब कहानी है यार। अच्छा, ऐसे लोगों को साइको भी नहीं मिलते हैं?
0: हाँ, नहीं मिलते भाई, वो अलग अलग अलग दुनिया है भाई।
1: अच्छे लोगों को मिल जाते हैं, उनके कभी आंख निकाल लेंगे तो कभी पैर काट देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी गला काट देंगे, ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिलते?
0: क्या
1: भाई, वो अपने आप को तकलीफ देना चाहती थी तो वैसे मिलना चाहिए उसको ना, लेकिन नहीं मिलते।
0: कमाल भाई को गुस्सा आ गया, ये इनको मिलना चाहिए, इनको क्यों नहीं पकड़ते इन लोग?
1: हाँ भाई, और अभी मैं बहन बता रही थी कि अपने इधर रहता तो उसके घर वाले उसकी आंख फोड़ देते जो हरकतों कर रही थी।
0: हाँ वही ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। वैसे हमारी तरफ ये डिटेक्ट होगा भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को लेके पहली बात तो कोई सीरियस होगा नहीं, और जिसके दिल में अगर होगा भी ना 1% भी, तो वो दबा लेगा इस बात को कि छोड़ो भाई, ये दिल में ही रहने दो। तो इसलिए कभी सामने नहीं आएगी बात ही। पर आपको कितनी शॉकिंग लगी, अगर मैं पूछूं ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी शॉकिंग थी आपके लिए?
1: बहुत ज्यादा भाई। और आजकल आप सुना भी ऐसी कहानी रहे हैं, कभी दिमाग से तो कभी हर चीज दिमाग से जुड़ी हुई है।
0: तो मैंने सोचा,
1: जब आपने शुरू में कहा तो मैं बोला यार कबीर भाई आज हॉरर कहानी सुनाना शुरू कर दिया, सुबह में तो कभी सुनाते नहीं है।
0: आधे लोग
1: पता चला कि हॉरर नहीं है भाई, ये साइको कहानी है।
0: बहुत लोगों से मुझे पता ये लगा था, कह रहे यही हॉरर कैसे शुरू हो गया यार, सुबह तो होती नहीं है तो ये कैसे हुआ? पर इसलिए मैंने इसकी शुरुआत ही ऐसे करी थी, बिकॉज मुझे पता था कि ये शॉकिंग स्टोरी रहेगी, वीकेंड स्पेशल भाई।
1: और भाई एक बात और बताइए, कि जो सुनता है उसको ये ऑफर नहीं है क्या कहानी भेजने का? दो दिन की कहानी नहीं आई है?
0: नहीं आई,
1: एक महीना मैंने नहीं सुना, आपने जो पूरी कहानी भेजा।
0: क्या बात कर रहा हूँ,
1: 3 दिन से सुन रहा हूँ कहानी, 2 दिन से नहीं आई है भाई।
0: अरे यार ऐसे कैसे कमाल भाई, अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको एक चीज भेज रहा हूँ कमाल भाई, उसको देखो आपको समझ में आ जाएगा सब, ठीक है भाई? और कहानी तो मिल जाएगी आपको, डन हो गया मेरे भाई।
1: ठीक है भेजिए, अभी उस दिन भी बोले थे भेजता हूँ, नहीं भेजे।
0: नहीं आपको देखो मैंने चीज भेजी, आप देखो अपना व्हाट्सएप देखो।
1: ठीक है
0: ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इनके बाद जो है एक और मैसेज है, उनको भी मैं ये भेज ही देता हूँ। इनके बाद मैसेज है जीशान साहब का, लिखते हैं, वैसे एक बात है, शादी के बाद इनके मिलिट्री वाले पति तो आंखें 100% खुल गई होंगी। कहते हैं काश बाजी को मोहब्बत हो जाती तो उनकी आंखें बंद आंखें खुल जाती है। और आगे लिखा है, लास्ट थिंग, मुझे लगता है कि इसने गोलमाल देखी होगी, लगता है बर्फ पड़ने वाली है, वाले सीन से इंस्पायर्ड हो गई। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या
2: कमाल भाई की बात बिल्कुल सही है, पहले भूल जाऊंगा कि ना स्टोरी आ रही है।
0: अच्छा
2: ठीक है, और दूसरा ये कि क्या नाइटमेयर और एलम स्ट्रीट देख रहे हैं क्या?
0: नहीं नहीं नहीं भाई, क्यों, क्या हो गया भाई?
2: है कोई बात है कि कल दिमाग उड़ा दिया, आज कुछ और काट दिया।
0: हाँ।
2: और उनकी बात सही थी, उनसे क्या मेरे से रब्ता करना था।
0: आपने सुनी कहानी, ये बताओ पहले तो।
2: मैं वही आखिरी पार्ट ही सुने।
0: पर ये शॉकिंग नहीं है, मतलब मैं तो भाई सुन के मैंने लगा यार ये जब सुनाऊंगा लोगों को तो मजा आ जाएगा भाई। तो आज तो लोग गिल गए भाई, मजा आ गया, लेकिन मजा आया।
2: कल मैं एक कोई ड्रामा देख रहा था, उसमें बंदा खुदकुशी कर रहा था, उसमें नीचे ना बड़ी अच्छी कैप्शन आ रही थी,
0: हाँ,
2: ऐसी चीजें ना करें, और अगर आपके दिमाग में ऐसे खदशात पैदा हो रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास रहें या नफ्सियाती मरीज डॉक्टर के पास जाएं।
0: ये फवाद भाई आप भी कम नहीं है, आपके भी पास ऐसा कंटेंट आता रहता है एल्गोरिथम, तो आपका भी मेरे जैसा भाई, ये तो मैं समझ गया हूँ। इतना तो क्लियर है भाई, आपका भी हमारे जैसा एल्गोरिथम चल रहा है भाई का। नहीं पर थैंक यू सो मच भाई कि आपने सुनी, मैं पूरी भेजाऊंगा आपको, मैंने एक चीज़ भेजी है व्हाट्सएप पे, देख लेना आप, एंड मुझे सुन के बताना जरूर भाई, ठीक है?
2: वैसे भी वीकेंड वाइब है सर,
0: बिल्कुल भाई, वीकेंड वाइब है, मौज करो भाई, संडे को सुन लेना, कोई टेंशन नहीं भाई, जब भी बीस बीस
2: काम नहीं करना ना, काम नहीं करेगा दिल कर रहा,
0: काम नहीं कर रहा, मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा आपका?
2: नहीं सर, आपको मन नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल से रास्ता जा रहा।
0: तो आपको मिलाऊं साइकोलॉजिस्ट से? है थेरेपी जी, थेरेपी जी, थेरेपी। अरे यार मैं तो
2: नौकरी छोड़ के घर जाओ।
0: ऑल द बेस्ट भाई आप, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो फ्लू फ्लू में बात कहीं कहीं ट्रैवल कर जाएगी भाई।

0: वो हल्का सा उसने इशारा दिया, उसने इशारे की जगह उसने रेस देके गाड़ी उसके साथ कर दी। तो यार कोई बात नहीं,
1: आपके लिए मैसेज आया फवाद भाई, ये कह रहे हैं आसिफ भाई कि फवाद भाई को पूछो ग्रेविटी कहाँ है।
0: ग्रेविटी?
1: हाँ ग्रेविटी
0: के पास।
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया।
0: दादी से पहले अम्मी के पास होती है, उसके बाद बेगम के पास चली जाती है।
1: डन हो गया फवाद भाई, थम्स अप, वन लाइक, थैंक यू फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया सर, एंजॉय करें,
1: एंजॉय करें मेरे भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और फवाद भाई के बाद एक मैसेज आया समर हैदर साहब का, उन्होंने बोला है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे, विश करते हैं हीबा, हीबा को बहुत सारा प्यार, समर भाई हीबा को मेरी तरफ से और पूरे 107 की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा प्यार, कितने साल की होंगे पता नहीं, पार्टी पूरी लेंगी वो। एंड एक और मैसेज आया है, एक सेकेंड देख लूँ मैं, क्या लेट हो गया, स्टोरी भेज देना, मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैसेज और है शहजादा सलीम का, तो मैंने ये जमाल शेख साहब की कॉल रहती है, हाँ एक सेकंड, जमाल शेख साहब कॉल की जाए, आओ अब हम सुनेंगे भर भर के उर्दू, आओ गाड़ी उर्दू सुनाऊँ तुम्हें, जमाल भाई की उर्दू। जमाल भाई को डालो भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: कैसे हैं जमाल भाई?
2: बस लोगों को हंसते हुए देखकर थोड़ी हंसी हमारी भी फूट रही है।
1: बहुत बढ़िया भाई, यही सुनना चाह रहा था बस, इसी के तो पैसे हैं भाई।
2: खुशियों में शामिल है हाल, मैं भी बस ये तो कार्रवाई से ही, लेकिन पीछे पीछे लगे हैं भाई, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
1: पर कहानी तो नहीं सुनी होगी आपने, तरह तो मैं शोर हूँ भाई।
2: नहीं तो मतलब कहानी इसी वजह से तो मैंने फौरन से आपसे इल्तिमास कर लिया कि सर जरा थोड़ा सा तकलीफ उठाए, आपने भेज दिया, इंशाल्लाह अभी उसे फुर्सत से सुनूंगा। और मैं जब सुनता हूँ तो जानते हैं आप
1: क्या,
2: बेहतर तो यह है कि मैं कई जगह उसको भेजता भी हूँ।
1: बहुत बढ़िया भाई, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ, मतलब जितना आगे तक पहुँचा सके पहुँचाइए, नॉट बिकॉज कि इससे कोई फेम मिलेगा, मगर लोगों तक पहुँचे भाई, बस ये है रीच के, मजा आना चाहिए पब्लिक को बस।
2: कहानी आपकी वो कैसे मिस कर सकता हूँ मैं
1: भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मुझे पता है कि हमारे भाई बड़ी मेहनत बड़ी जफाकशी के साथ हम लोगों के लिए ये सामाने खुशी हासिल करते हैं, तो अब उसको हम ही अगर मान लीजिए छोड़ दिया करेंगे तो फिर मजा नहीं है ना।
1: अरे भाई आपकी उर्दू सुनने के लिए भाई वेट करता हूँ मैं,
2: खास है।
1: अरे थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और क्या चल रहा है जमाल भाई, जमाल भाई क्या सीन है आज का वीकेंड? तो हमारा
2: वही रफ्तार, वो ये वीकेंड वाला लफ्ज है ना, मतलब छोड़ दीजिए औरों के लिए, मेरे लिए अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वही होगा कि ताहिर न छेड़ है दे गुज़िश्ता के तस्करे, रिसने लगेंगी जख्म हरी पट्टियां न खोल।
1: अरे मैं बताऊं, मैं अगर मैं चिट पे भी लिख के ले जाऊं ना ये शेर, मैं सही टाइम पे नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, जो आप बिना चिट पे लिख के पढ़ देते हैं, मैं सही बता रहा हूं, अलग ही टैलेंट है भाई माशाल्लाह। बहुत बढ़िया, ताले ताले जमाल भाई, अपने ये टैलेंट को मानना पड़ेगा।
2: कतर में छुट्टी के सिलसिले से या ये है कि कुछ वक्त मिल जाए तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक आरजू और तमन्ने की शक्ल में बिल्कुल दब के रह गई हैं।
1: दे, दे, दे, दे, अच्छा,
2: उन सब चीजों के इजहार का मौका न मिला है, मुझे लगता है इस सफर में न मिलेगा। खैर अल्लाह की ज़ात से मैं ना उम्मीद तो नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई वीकेंड कहता है ना तो वो एक ऐसा लगता है जैसे किसी ने जहर आलूद खंजर जिगर में, मतलब वो क्या कहते हैं, पेवस्ट कर दिया, वो मसला होता है
1: भाई। आपकी बात है क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर की तरह भाई, जब समझ में आती है तो बहुत मजा आता है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जमाल भाई, बट मैं वीकेंड मेरे लिए से जरूरी हो जाता है क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ना, कोई कहानी नहीं ढूंढनी पड़ती, तो इसलिए मेरे लिए बड़ी खास है भाई। कोई पढ़ाई नहीं होती भाई, ऐसा लगता है स्कूल की छुट्टी हो गई, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, तो ये
2: ये स्कूल वाला तसलसल जो है ना बहुत बढ़िया है। मैं तो सोच रहा था कि क्या कहते हैं, अरे यहाँ कतर में आने के बाद शायद वो दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के जरिए से वो खुला है माशाल्लाह, और इसकी इसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह से चालू रखे, बरकरार रहे आप लोगों के साथ ये साथ, और ये मदरसे का जो क्या कहते हैं वो खत्म हो गया था एक सिलसिला, वो बरकरार रहे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ उस सिलसिले की एक कड़ी मैं ही नहीं हूँ, आप लोग भी इंतजार करते हैं, आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल भाई, पढ़ाई से बच जाते तो इसलिए बस। और एक आपके लिए सवाल आया, गुलरेज भाई पूछ रहे हैं आशिक हैं क्या भाई, ये आपसे पूछ रहे हैं।
2: मैं आशिक हूँ?
1: हाँ।
2: वो किसी ने कहा था कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो, मुझे है मोहब्बत।
1: अरे भैया
2: लेकिन अपनी जुबान से बहुत तगड़ी है।
1: उफ उफ उफ भाई साहब आग आग लाए।

0: अरे भाई आप जो आराम करो जमाल साहब, मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूँ आपके। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं अगर चिट पे लिख के ले जाऊँ ना शेर, मैं सही टाइम पे नहीं निकाल पाऊंगा। और आपके अंदर ये टैलेंट है, ये हुनर है माशाल्लाह कि आप सही टाइम पे सही शेर बोल देते हैं। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है भाई।
1: So, एक मजा आया शायर का, ये शेर है कबीर भाई,
0: कौन सा?
1: उसने कहा था कि हालांकि उसने छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी बात उसने कही है।
0: क्या बात कही?
1: तो जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। यानी एक उर्दू जबान की फजीलत को बयान करने का जो अनोखा अंदाज निराला है ना उस बंदे का, है ना, हंसी की महफिल में भी उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी।
0: यार वो बात तो है, पर भाई जो भी शायर कुछ भी बोल ले भाई, जमाल भाई हमारे लिए तो आप ही शायर हैं भाई, साफ सीधी बात। और आपको बहुत प्यार जमाल भाई, और मैं भेजूंगा कहानी और आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार।
1: जी जी, जी जी जी मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ढेर ढेर सारा प्यार आपको भी,
0: आपको भी,
1: और दुआ की दरखास्त है
0: इंशाल्लाह भाई, जरूर आप भी दुआओं में याद रखिएगा भाई। थैंक यू सो मच।
1: जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। सारे भाइयों को, सारे भाइयों को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो भाई सुबह सुबह महफिल लूट लेते हैं भाई, पूरी की पूरी। मैं तो कतई इंप्रेस हूँ भाई, कतई इंप्रेस हूँ इनसे। 666-22-107 नंबर है। अगर आपने ये हमारे भाई की बिल्कुल गाड़ी उर्दू सुन ली हो, वो बगैर दूध की सेवई आती ना, उनका जो फील होता है बस वही भाई की उर्दू है। ए, ए, ए, ए, ए। इसी बात में भाई मूड सेट कर देते हैं। 8:28 के बाद कतर से जुड़ी हुई खबरें। सिस्से वाड़ी चुन्नी भाई साहब,
2: बिजली जी सा कड़क सी छोरी,
0: मेगा जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड।
2: तेरा दामन बामन कजियाड़ा,
0: और मैसेज कर दे करो भाई।
2: रोक दे दिल।

0: देखा आप जो अभी तक नहीं उठे वैसे छोटे होंगे, 8 बजे की शिफ्ट वाले लोग उठ जाते हैं, हम तो भाई सवेरे से उठे हुए हैं। अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ
1: आगा भाई सुबह उठा भाई 4:30 बजे,
0: ठीक है साइड हो जाओ भाई। अब जरा मैं कुछ खबरों की तरफ बढ़ूंगा बिकॉज देयर टन्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड और कतर से जुड़ी भी जो भी बातें। सो बेसिकली एक एपिसोड फिल्म किया गया एट द टर्मिनल थिएटर, ये टर्मिनल थिएटर है टोरंटो में। ये जो पूरा का पूरा एपिसोड था वाज इन पार्टनरशिप विद कतर कनाडा एंड मैक्सिको 2026 एयर ऑफ कल्चर, एक नेशन वाइड इनिशिएटिव। जैसे आप जानते हैं हर साल एक नेशन वाइड कल्चरल एयर होता है किसी न किसी कंट्री के साथ कतर का, विच इज़ ब्यूटिफुल। और इसमें एक पूरी जगह ही क्रिएट किया थी, यहाँ पे क्रिएटिव लोगों की जगह होती है जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं और अपनी कंट्री को दिखाते हैं। आप अगर कतर में तो आप देख रहे होंगे 2019 या 2018 में एयर ऑफ कल्चर इंडिया मैंने देखा, वो इतना खूबसूरती से दिखाया गया, टन्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। तो एक पूरी डिबेट रखी गई विच वॉज इन कोलेबोरेशन विद लॉट ऑफ पीपल और दिस ब्रॉड पर्पज टू लाइफ। और ये कॉन्वर्सेशन जो यंग लोगों के साथ हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी एंड इट वॉज फिल्म। ये इनफैक्ट इसका वीडियो भी आपको दिख जाएगा अगर आप देखेंगे तो, ये मेरे ख्याल में कतर फाउंडेशन की वेबसाइट आपको जरूर मिल जाएगा बिकॉज इसमें डिबेट्स वगैरह सब कुछ शामिल है। ओके दूसरी चीज, तो कतर में जो लोगों का आवन जावन रहा है, कितने लोग आए हैं उनका हिसाब किताब जानते क्या है आप? कतर ने 2.338 मिलियन विजिटर्स लैंड थ्रू लैंड एयर एंड सी पोर्ट्स देखे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ 2000, मतलब अभी तक अगस्त तक का डेटा लेते हैं, 8 महीनों के अंदर टोटल कतर में 2.338 मिलियन विजिटर्स आए हैं जमीन के रास्ते, आसमान के जरिए और समुद्र के रास्ते। कितनी बड़ी बात है ये, सोचा था कभी आपने? अगर जो पहले से रह रहे हैं वो जानते हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा भाई। एक पूरा डेटा जो रिलीज हुआ ये वेंसडे को रिलीज हुआ कल ही, और ये इट वाज रिलीज बाय कतर टूरिज्म जिन्होंने सारे के सारे नंबर्स दिखाए कि विजिटर्स कितने आए हैं, कितने बड़े हैं। एंड अगस्त में, अगस्त के महीने में स्पेशली, अब इतनी ठंड भी नहीं है भाई, मतलब इतनी क्या है भी नहीं, अगस्त के महीने में इट रोज एक्चुअली बड़ा हुआ 6.3%, यानी कि 3,03,000 के आसपास compared to 2,85,000, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। गर्मी में कौन आ रहा है भाई, भर भर के आ रहे हैं लोग माशाल्लाह। और ये डेटा ये भी रिवील करता है कि विजिटर सिर्फ एक जगह से नहीं आए हैं, क्या आप सोच रहे हो कि देसी कंट्री से लोग आ रहे होंगे घूमने, नहीं, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है इसमें थ्रू आउट द होल ईयर। अभी तक अगस्त तक का डेटा जो है, जनवरी से अगस्त तक का, विजिटर्स फ्रॉम द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज उन्होंने रैंक किया, सब बताया, 51% ऑफ द टोटैलिटी जो विजिटर्स यहाँ पे आए, इसमें एशिया है, ओशनिया है, यूरोप से लोग हैं, हर जगह से हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर कंट्री कतर फॉर एक्चुअली एलिवेटिंग द लेवल की टूरिज्म भी यहाँ पे इतना बढ़ चुका है। इसके अलावा नया साल अकेडमिक ईयर का क्योंकि शुरू हो चुका है तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और एक्सपर्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स को अर्ज करते हैं और पेरेंट्स को, टीचर्स को यही बता रहे हैं कि टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस ताकि डिहाइड्रेशन से बच्चे बचें और डायरेक्ट हीट से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं वो बच्चों को ना हो, चाहे वो घर पर हों चाहे स्कूल में हो। टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी हाई रहेगी अभी पूरे हफ्ते भर भी, तो उनका हाइड्रेटेड रहना बड़ा ज़रूरी है और डायरेक्ट सन एक्सपोजर डे टाइम में उनसे वो बच के रहें। इस मैसेज में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने स्ट्रेस्ड आउट किया है इस बारे में कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द हीट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया फैमिलीज को और बच्चों को टू स्टार्ट द डे वेल हाइड्रेटेड एंड टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट। ये तो आप पे भी लागू होता है, बच्चों पे तो लागू होता ही है, स्ट्रिक्टली लागू होता है उन पे, लेकिन हम पे भी होता है भाई। ज्यादा मजे लेने मत निकल जाना, बस ख्याल रखिए अपना एंड स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि गाड़ी में एसी में चलाते चलाते आपको अंदाजा नहीं होता है कि आपने पानी नहीं पिया बहुत टाइम से, ये है कतर की खासियत है, नहीं पता लगता। आज इसके बाद एक और खबर है, कतर इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कनरी एग्जीबिशन सहेल 2026 ये लॉन्च होगा विद अ 4 वर्स नबाती पोइट्री कॉम्पिटिशन के साथ, जो कि हिस्सा है 10th एडिशन का। एंड क्योंकि आज कितनी तारीख हो गया, आई थिंक दो तीन हो चुके हैं, तो ये 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच है, शुरुआत बहुत ही बढ़िया होने वाली है। एंड दिस इवेंट विल फीचर हेरिटेज, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो हाईलाइट करेंगी कतर के हंटिंग और फैल्कनरी ट्रेडिशन को। इफ़ यू आर न्यू टू कतर इसका ऐसा ज़रूर बनेगा, यू विल बी एब्सोल्युटली अमेज्ड। पहली मरतब मुझे याद है, अभी मेरे जहन में पहली मरतब जब मैंने ये फेस्टिवल ज्वाइन किया था भाई मैं बता नहीं सकता क्या एक्सपीरियंस था. मैं इतना शॉक था कि अरे बाप रे कितना ज्यादा हंटिंग ऑफ फैल्कनरी को यहाँ पे किस तरीके से किस तरजी पे लिया जाता है. एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट इट. सो बेस्ट फोर वर्सेस ऑफ फैल्कन्स कॉन्टेस्ट जो है ये इनवाइट करता है पोइट्री को. एंथुजियस्ट इसमें बहुत सारे अवेलेबल रहेंगे जो चार वर्स की पोएम लिखेंगे हंटिंग पर और फैल्कन्स पर और कतर के हेरिटेज पर. तो इसी से शुरुआत होगी और इससे खूबसूरत शुरुआत हो नहीं सकती. सो दिस इज द न्यूज That I hate, मैंने बोल दी. और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके. और एक और मैसेज मेरे पास आया है जुबैर बलूच साहब का, क्या करें. अस्सलाम वालेकुम कबीर मेरे भाई, क्या बात है मेरा कब्बू भाई का. भाई एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह. भाई आप कैसे हैं जुबैर भाई, शानदार चल रहा है, नहीं चल रहा साहब पार्टी एकदम मस्त. क्या आप गाना चला दूँ क्या है. रोज खिला आरिफ लोहार WhatsApp पे आपको बुलाने के लिए इससे बढ़िया गाना हो नहीं सकता.

0: हाँ भाई ऐसी बात हो ली, मैं कह रहा था सबसे पहले तो भाई साहब सबको हैप्पी वीकेंड, बढ़िया हाला ठीक है, म्यूजिक थोड़ी चलाते हम और बातचीत चालू करते हैं। फोन सेवन मैं दुआ वाला कभी रहा फोन सेवन पे, और एक मैसेज है भाई ऐसी सुरीली म्यूजिक से बुलाओगे तो मंजुलिका भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मंजुलिका आई नहीं भाई, आई ट्राइड रियली हार्ड, नोबडी केम मेरा भाई, नोबडी केम। दुर्गानंद साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू यू एज वेल। एक कॉल और आई उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज भाई हम थोड़ा लेट हो गए आपका कॉल, ये
0: भाई साहब रेडियो आज आप बॉलीवुड में जैसे पुलिस आती है ना आखिर में जब हीरो ने सब कर लिया होता है वैसे आए हैं भाई आप।
1: लास्ट में मारे मेहमान कलाकार है,
0: मेहमान कलाकार शाइड करेक्टर है भाई का आज।
1: कभी कभी सलमान खान अक्षय उसके उसमें अक्षय कुमार शाहरुख खान के मूवी में आते ना लास्ट में
0: कैमियो चल रहा है कैमियो।
1: बस वो असल में मैं आज थोड़ा मिस कर दिया, थोड़ा बिजी था काम में। अभी गाड़ी में जब अभी मैंने ऑन किया रेडियो तो मैं बोला हमारे भाई का तो आखिरी टाइम अभी चल रहा है, बस 10 मिनट।
0: नहीं भाई, भाई का कोई आखिरी टाइम नहीं है, अल्लाह ताला जिंदगी दे भाई, कैसी बात कर रहा
1: है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद जिंदगी लंबी उम्र दे।
0: मैं तो बता करता हूं आमीन।
1: लोग इतने सालों में सेहतमंद जिंदगी जो भी अल्लाह ताला सेहतमंद जिंदगी
0: बहुत प्यार
1: लंबी उम्र की जरूरत नहीं होती है, सेहतमंद जिंदगी की हर इंसान को जरूरत है, अल्लाह ताला जब तक रखे सेहतमंद जिंदगी।
0: आखिर में जरूर है लेकिन पंच मार दिया आपने भाई, बहुत बढ़िया भाई, तालियां भाई आपके लिए।
1: कोशिश करते हैं भाई, हम लोग तो हमेशा कॉल करने वाले बंदे हैं, बस लगे रहते हैं सुबह में, लेकिन आज थोड़ा खाली आपकी कहानी के ऊपर ही डिपेंड था, कुछ कुछ कुछ एक पॉइंट लेके आया करो, जो कॉल किया करे ना उसमें कुछ उसमें एक पॉइंट पूछा करो, कुछ मौजू थोड़ा बना के
0: मतलब
1: बात करने का थोड़ा सा
0: समझा नहीं
1: कोई भी पॉइंट, जैसे मतलब इसके बारे में आपका क्या राय है, एक एक पॉइंट लेके आया।
0: हाँ तो वही
1: मतलब
0: तो पूछा, अरे देखो सुनो ना वो स्कूल हो जाता है मेरे भाई, मेरे को स्कूल नहीं बनाना इसको, समझ रहे हो, वो लोग एक एक पॉइंट लेके आओ फिर हाथ खड़ा करो बात करें, वो अजीब लगता है समझ रहे हो आप, वो एकदम क्या होता है मैं बोलता ना कहानी सुनाने के बाद तो लोग बिल्कुल रियलिस्टिकली आते हैं, उनको मन होता है जो कहने का वो कहता है, बोलो एक एक पॉइंट लेके आओ चलो बच्चों लाइन में लग जाओ हाइट वाइज, वो अजीब हो जाता है,
1: कम्युनिकेशन का पॉइंट बढ़ जाता है, यू आर राइट।
0: हाँ तो जब आप किसी चीज को जब एक बॉक्स में महदूद कर देते हैं ना, तो आपने अगर किसी चीज को फॉर्मेटेड कर दिया ना तो फिर उस बात का मजा चला जाता है, समझ रहे हैं, वो चीज खत्म हो जाती है।
1: जी जी जी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक एक पॉइंट चाहिए। अब आप अपने अपने जो और हैं लोग उनके उसमें अपना एक मौजू होता है,
0: हाँ।
1: सारे उसमें एक मौजू अगर घुसेड़ेंगे तो भी मैं आपका उस थोड़ा सा जानना चाहता था आपका पॉइंट,
0: हाँ।
1: और मुझे यकीन था कि जो आप कह रहे हैं यही मेरे जहन में आ रहा था,
0: हाँ।
1: शायद इसलिए मेरे कबीर भाई ने मतलब अपना एक अलग रखा कि उसमें आधा घंटा तो चला जाता है आपका स्टोरी सुनाने में, फिर अगर और भी तो उसमें कंपटीशन में और
0: हाँ, अलग अलग वो पता क्या हो जाएगा फिर कुछ लोग क्या होता है मन होता है वो फिर वो डिबेट की तरह उसे ले लेंगे और फिर क्या होगा कि वो सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, समझ रहे हैं आप,
1: नहीं होता है।
0: और क्या होता है,
1: तीन घंटे के होते थे भाई, तीन घंटे के उसमें नहीं खत्म होते थे,
0: एग्जैक्टली
1: कोई कॉल, हाँ चार से दस लोग बहुत तो बहुत होते, चार से आठ लोग कॉल करके उसमें टाइम लंबा होता था तो उसमें करके, लेकिन फिर भी पॉइंट इधर का उधर कभी उधर कोई उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाते
0: यार। देखो मैं एक चीज जानता हूँ मेरा भाई, क्या होता है कुछ लोगों का मन होता है ऐसे बात करने, वो चाहते हैं उनकी आवाज भी रेडियो पर सुनाई दे, तो वो क्या होता है वो जज्बात में बह जाते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट 15 मिनट ऊपर हो जाता है तो वो बाकी जो सुनने वाला है ना उसके लिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि यार पता नहीं कब कटेगी कॉल, समझ रहे हैं आप, तो वो बहुत मैटर करता है। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपने पॉइंट रखा, मुझे ये अच्छी बात लगी भाई,
1: बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके उसको कामयाबी से और लोगों को सुनने का फायदा मतलब ये हो,
0: हाँ
1: और सबको, हाँ ओके सबको मेरे तरफ से सलाम,
0: वालेकुम सलाम मेरे भाई,
1: आज हैप्पी वीकेंड हमारे भाई को, ओके
0: सलाम। तो मैंने जो पॉइंट बोला मैं लिटरली मानता भी हूँ और मैं इस बात से मैं जो मैंने उनको बताया वही मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपने शो में क्या है, हम लोग अगर फॉर्मेटेड बात करेंगे तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा, इट हैज़ टू बी वेरी रॉ, मतलब एकदम रॉ आवाज़ होनी चाहिए, बातें वैसी होनी चाहिए और बड़ा अच्छा लगता है। आई नो कि आप लोग जो सुनने वाले उनको भी लगता होगा कि यार कोई अगर 10-15 मिनट बात कर रहा है फ़ोन पर इतनी लंबी काहे खींच रहा है यार, होता है ना, आती है आपको फीलिंग, आप कहते नहीं है। ये मुझे पता है। एक मैसेज है, भाई आपकी वॉइस मैसेज अपनी बेटी को सुनाया, एक अबीरा 12 साल की है और दूसरी मदीहा जो 9 साल की है, बोथ वर वेरी हैप्पी, लव यू मेरे भाई, अल्लाह खुश रखे। जजाकल्ला मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको और आपकी दोनों बेटियों को, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे और बहुत कामयाब रखे मेरे भाई। बहुत बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच। अब ज़रा बता दूँ कि आज के दिन कौन कौन से इंटरनेशनल दिन मार्क्ड किए गए हैं। आपको पता है आज स्काई स्क्रेपर डे है, सो वी हैव अ स्काई स्क्रेपर, तो आज स्काई स्क्रेपर डे भी है आज। इसी के साथ जो है क्रे फिश पार्टी भी है भाई, ये पूरा वीक है जो 13 सितंबर तक है। भाई मच्छों की जानकारी मेरी थोड़ी सिल्लू है, दिल्ली में क्योंकि समुद्र है नहीं तो मेरे को कुछ नहीं पता मच्छी के बारे में, क्रे फिश क्या होती है मेरे को हिंदी में नहीं पता। मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे आके बोमबिल वोमबिल सीखा है, उससे ऊपर मेरी नॉलेज नहीं है, बट इतना बता कि हाँ क्रे फिश कुछ तो होती है। बाकी आज आज के कितनी तारीख हो रही है, मैं तारीख को लेके कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ आज 3 है ना, ठीक है। कल वैसे फ्राइडे, तो कल लेजी मॉम्स डे है, कल न्यूज़पेपर कैरियर डे है, ब्रिंग योर मैनर्स टू वर्क। पर हम कितनी बड़ी आयरनी है, कल है दिन ब्रिंग योर मैनर्स टू वर्क, तहजीब को काम भी लेके आए। कल तो काम ही नहीं है तो तहजीब को कहाँ लेके जाऊँ मैं तो ये कल आने वाला दिन है। और आज है, ये क्या है, वेल्श रेयर बिट डे, ये होता है भाई। इसमें लिखा है मेड विद चीज एंड एल सॉस, ये कुछ ज़्यादा फैंसी हो गया हमारे लिए भाई, ये समझ को नहीं आवा भाई। और आज बोलिंग लीग डे है, और इसी के साथ साथ लेगेसी वीक है, एंड और क्या, आज आज कुछ नहीं भाई, इतने ही दिन है। आज बहुत छोटू सा दिन है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। एक मैसेज है, 2 दिन कबीर भाई के मज़े और अभी तैयारी होगी भागने की मोहसिन भाई आप मेरा जो राज खोल देते हैं, अच्छी बात नहीं है। और एक मुझे नॉलेज दी है भाई ने, कह रहे हैं क्रेफिश मीठे पानी का झींगा है। ओ अच्छा, थैंक यू सो मच भाई, इससे बेहतर तरीके से तो मुझे कोई नहीं समझा सकता था भाई, थैंक यू सो मच। भाई ने बहुत आसान शब्द में बताया क्रेफिश क्या है, क्रेफिश है बच्चों मीठे पानी का झींगा। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। आई ये क्या होता है भाई, स्काई स्क्रेपर डे, स्काई स्क्रेपर डे मैं कैसे बताऊँ इस सेकेंड। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, कॉलेज पे आके खड़े होकर देखता हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग माशाल्लाह। अरे जिसका आपने ये अपने व्हाट्सएप पे ये कवर पिक लगा रखी है, आप ही के व्हाट्सएप पर है ये जो कवर है, यही स्काई स्क्रीपर है ना भाई मतलब बगल में बच्चा पूरे समाज में ढिंड हो रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। और एक मैसेज है अरबाज भाई का, अरबाज भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अटेंडेंस लगा दीजिए कारी मुराना कबीर सर तारी मैसेज है सर मुझे भी एक मछली, मैं भी एक मछली पहचानता हूँ पाकिस्तान में मिलती है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पहचान पाता हूँ, अलावा मुझे मैं भी नहीं। अरबाज भाई मेरी भी नॉलेज इसमें भाई बिल्कुल 0/0 है, तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं, बट इट्स ओके, हाई फाइव मेरा भाई, हाई फाइव। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मेरे भाई, आप इतना लेट आए कि मैं बता नहीं सकता। और एक मैसेज है, आप प्यार प्यारे हैं बहुत, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, प्लश कर गया टमाटर की तरह। बाकी अभी आपसे ज़्यादा लेने का वक्त आ गया, 9 आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह संडे को। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, मेरा पहला वीकेंड है सुबह के शो के साथ, तो अपने आप में बहुत अलग है मेरे लिए, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं जा रहा हूँ, मैं छुट्टी में कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, कोई कहानी नहीं ढूंढनी है मुझे, आ जाना है, रियली रियली हैप्पी। तो मिलते हैं सीधा संडे को, और मैंने आप लोगों को जिनको भी कहानी चाहिए थी मैंने आपको एक चैनल शेयर कर दिया, उस पर आप जा सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी FM 107 Qatar इस नाम से सोशल मीडिया पर हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस, ज़रूर ज़रूर फॉलो करें, मुझे भी ढूंढ सकते हैं वहाँ पर। बट फॉर नाउ मैं चाय का थर्मस लेके भाग रहा हूँ, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, और इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। Masrama.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दुआ कतर में सुबह के 9 बजे हैं। समाजी फुरकान शाहिद से ताज़ा तरीन खबरें इब्तदा में पेश खिदमत हैं। अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने लुबनान के वज़ीर आज़म और मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर अलग अलग रबते किए। कतर ने आबनाए हुरमुज़ में सऊदी अरब के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाने और मुतअद्दिद बरादर ममालिक के ख़िलाफ़ ताज़ा ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कतर ने मनामा में मुनाक़िदा GCC के रुकन ममालिक के वज़राए नौजवान और खेल इजलास में शिरकत की। और कुवैत की मुसल्लह अफवाज ने बताया है कि उसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब से किए गए मिज़ाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। ये थी अब तक के अहम खबरों की सुर्खियाँ। समाज कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया।

0: 8-9% इजाफे के साथ 91.02 डॉलर पर बैरल पर ट्रेड करते रहे। और कदर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 101.52 पॉइंट्स या 1.03% के साथ 9,751.31 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 15,960 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 5 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 44 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 5 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स हेडलाइंस में कतर 8 से 12 सितंबर तक 10th फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस 5 दिन के मुकाबले में 21 ममालिक के 116 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। US ओपन टेनिस में दानिल मेडवेडेव बुध के रोज तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं और अमेरिकन खिलाड़ी जेसिका पिगुला और बेन शेल्टन ने भी अगले राउंड में जगह बना ली। कतर ओलंपिक कमेटी ने अपनी सालाना तकरीब में 102 मुलाजिमीन को एहतराम और इनामात से नवाजा। जैक ग्रिलिश ने मैनचेस्टर सिटी से एक सीजन के लिए लोन पर एवर्टन में वापसी कर ली है। दोनों प्रीमियर लीग क्लब्स ने मंगल के रोज इसकी तस्दीक की। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तीसरा टेस्ट 9 सितंबर से शुरू होगा। इंग्लैंड पहले ही सीरीज 2-0 से जीत चुका है। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज़ हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज़ हेडलाइंस विद फरकान शाहिद।
3: वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने लुबनान के वज़ीर आज़म और मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर अलग अलग राब्ते किए। رابطے کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں امن استحکام کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। विदारत दाखला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। एनबीए की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो नंबर्स नहीं होते। ये रिकॉर्ड्स किसी प्लेयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, कंसिस्टेंसी और लॉन्गेविटी की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड बास्केटबॉल लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार के नाम रहा। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर

करने का रिकॉर्ड। 5 अप्रैल 1984 ये तारीख एनबीए की स्कोरिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन करीम अब्दुल जब्बार ने एनबीए में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनका करियर टोटल था 38,387 पॉइंट्स, एक ऐसा नंबर जो उस वक्त बास्केटबॉल की दुनिया में एक नया बेंचमार्क बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ स्कोरिंग एबिलिटी नहीं थी, इसके पीछे थी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर। थोड़ा पीछे चलते हैं और मालूम करते हैं कि करीम अब्दुल जब्बार ने अपना सफर कब शुरू किया था। करीम अब्दुल जब्बार का एनबीए करियर 1969 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने मिल्वॉकी बक्स के साथ प्रोफेशनल बास्केटबॉल में कदम रखा। अपने पहले सीजन में करीम अब्दुल ने सबको बता दिया कि वो आम प्लेयर नहीं हैं, यानी देयर वाज समथिंग इन हिम, द स्पार्क वाज देयर इन हिम। उनकी हाइट, एथलेटिक एबिलिटी, बास्केटबॉल इंटेलिजेंस और स्कोरिंग स्किल ने उन्हें एनबीए के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। और फिर उनका सिग्नेचर मूव, जी हाँ, स्काई हुक। स्काई हुक करीम अब्दुल जब्बार की पहचान बन गया। ये शॉट देखने में सिंपल लगता था, लेकिन डिफेंडर्स के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल था। करीम अपनी हाइट और रीच का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बास्केट के करीब से एक हाई आर्किंग हुक शॉट लगाते थे। साल गुजरते गए, लेकिन करीम की स्कोरिंग कंसिस्टेंसी कम नहीं हुई। वो हर सीजन अपनी टीम के लिए रिलायबल स्कोरिंग ऑप्शन रहे, और यही उनके रिकॉर्ड की सबसे खास बात थी। 38,387 पॉइंट्स एक या दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन्स का नतीजा नहीं थे। दोस्तों, ये पॉइंट्स एक लंबी और कंसिस्टेंसी ब्रिलियंट करियर का नतीजा था। करीम ने मिल्वॉकी बक्स के साथ भी सक्सेस हासिल की और बाद में लॉस एंजेलिस लेकर्स का हिस्सा बने। लेकर्स के साथ उनका करियर और भी लेजेंडरी बन गया। मैजिक जॉनसन के साथ उनकी पार्टनरशिप एनबीए हिस्ट्री की सबसे मशहूर जोड़ी में शुमार होती है। करीम ने अपने करियर में 6 एनबीए चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 6 एनबीए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड्स भी हासिल किए, जो एनबीए हिस्ट्री में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इसके अलावा वो 19 मरतबा एनबीए ऑल स्टार सेलेक्ट हुए। ये नंबर्स बताते हैं कि करियर फेक ग्रेट स्कोरर नहीं थे, वो अपने दौर के सबसे कंप्लीट और डोमिनेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक थे। दोस्तों, यहाँ पे बताना जरूरी होता है कि उनका ये स्कोरिंग रिकॉर्ड तकरीबन 29 साल तक कायम रहा, यानी 39 years। इस दौरान एनबीए में कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोरर्स आए, लेकिन करीम अब्दुल जब्बार के रिकॉर्ड तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था। फिर 2023 में एक और बास्केटबॉल लेजेंड ने करीम अब्दुल जब्बार का ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेब्रॉन जेम्स। मॉडर्न बास्केटबॉल में अगर कोई स्टार खिलाड़ी है तो लेब्रॉन जेम्स के बारे में लोग एग्जांपल देते हैं। तो लेब्रॉन जेम्स ने करीम अब्दुल जब्बार के 38,387 करियर पॉइंट्स के रिकॉर्ड को क्रॉस कर, 3 साल पहले की बात है ये। लेकिन रिकॉर्ड टूटने का मतलब ये नहीं कि करीम के अचीवमेंट की अहमियत कम हो गई, बल्कि इससे ये और साबित हुआ कि करीम का रिकॉर्ड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था दैट इट्स टू 39 years, तकरीबन 4 decades तक एनबीए का स्कोरिंग बेंचमार्क रहना अपने आप में एक फेनोमिनल अचीवमेंट है। सो फाइनली करीम अब्दुल जब्बार एक लेजेंडरी स्कोरर, एक 6-time एनबीए चैंपियन, 6-time एमवीपी और एक आइकॉनिक स्काई हुक आर्टिस्ट, और एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने एनबीए की तारीख में 38,387 पॉइंट्स के साथ अपनी पहचान हमेशा के लिए अमर कर दी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर F107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, काफी कुछ है जो आज की दुनिया में चल रहा है। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी भी हो रही है और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो AI से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत भारी रकम अदा कर रही है अगर वो AI का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जो लोग अभी 2026 में इस साल से शुरू करना चाहते हैं अपना कंटेंट जनरेशन, ऑनलाइन जाके कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूं आपको जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। यू वांट टू ट्रीट देम एज योर एप्स या फिर वेबसाइट, विच एवर वे यू वांट टू, पर ये बहुत मेन रहने वाली। तो शुरू करते हैं बहुत ही मेजर अपडेट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट है आपके लिए वो वेबसाइट जो आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स देगी। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं, क्योंकि वो मैच करने के लिए, एल्गोरिथम में बिठाने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। और कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स, कुछ BGM ऐसे होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर, जो आप कहीं भी सुनते हैं और आपको लगता है यार ये मैं कैसे निकालूं, फिर आप अगड़म चिगड़म इधर उधर जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, चाहे वो इंट्रो साउंड हो, चाहे वो बीच में आपको ट्रांजिशन देना हो, या फिर ये तो नॉर्मल बताया मैंने, कैसा भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए हो आपके कंटेंट जनरेशन के लिए वो या आपको मिलेगा। अब वेबसाइट का नाम बता देता हूं, तो myinstance.com myinstance.com myinstance, तो उस पे जाइएगा। एंड दूसरी एक और वेबसाइट है इससे जुड़ी हुई जिसका नाम है soundbible.com soundbible.com soundbible.com और myinstance.com। अब यहां जो है हमने साउंड को मैनेज कर लिया, साउंड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो लोग अक्सर वीडियोस में देखते हैं और काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि यार ये कैसे किया होगा, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। वो आपने देखा है जो लाइक और फॉलो के बटन्स आते हैं बड़े क्रिएटिवली सामने आते हैं किसी वीडियो में, और आप देखते हैं भाई ये बड़ा क्रिएटिव था। तो लाइक और फॉलो वाले जो बटन्स हैं अगर आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट इन एनिमेशंस के साथ, तो उसके लिए भी दो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन इज जिटर, JITTER, जिटर वीडियो, यहां पे भी आप जा सकते हैं। और दूसरी है videoeffects.com। अब यहां पे जाइए, सुकून से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां से। और तीसरी बात, अगर आपको स्टॉक इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस जिन पे कोई कॉपीराइट ना लगाए, कोई आपको टोके टाके नहीं, और आपके कंटेंट जनरेशन में मदद मिले, तो इसके लिए भी दो वेबसाइट है। पहली है pixels.com pixels.com और दूसरी है pixabay.com pixabay.com pixabay.com। तो कॉपीराइट फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर वेबसाइट जो मैंने आज आपको बताई है। तो कंटेंट जनरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड ये सब आप यूज करेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द न्यूज दिस वीक। देखिए, पूरे हफ्ते आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कोई गैजेट खरीदने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर सामने से, तो आपने देखा है जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, स्पेशली वो हार्डवेयर जो AI के साथ साथ चल रहा होता है। रिपोर्टेडली अभी बताया गया है, NVIDIA की अगर बात करूं तो उन्होंने भी देखा कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है, और उन्होंने भी बढ़ा दी है, 15% प्राइस इंक्रीज देखा गया है। जो AI सर्वर्स हैं, लार्जली उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो है मेमोरी कॉस्ट। मेमोरी जो कॉस्ट जा है, बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी प्रेशर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल क्यों ना हो। एंड ये इंक्रीजिंगली नीड, जो इंक्रीज नीड है, बढ़ती हुई जरूरत है जो मेमोरी की है, मेमोरी की, इसकी वजह से प्रोडक्ट्स की शिपिंग में भी फर्क पड़ रहा है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग और प्राइस रेंज आप देख के सोच रहे हैं यार थोड़ा रुक जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है, वो प्राइस और बढ़ जाएगा। इफ़ यू हैव सीन अभी रिसेंटली प्लेस्टेशन भी थोड़े से महंगे हुए हैं, सो ये आप बस हम उस एरा में जी रहे हैं, मान के रखिए, जहाँ पर आपको हार्डवेयर जो कि AI से जुड़ा हुआ है वो महंगा पड़ने वाला है। सो अभी मौका है भाई, ये गोल्ड वाला सिस्टम हो रहा है, अभी ले लो। हाँ ठीक है, एक और खबर आपको बता देता हूं, वो है एप्पल से जुड़ी हुई। तो एप्पल एज अ कंपनी, उन्होंने काफी इनोवेशन तो नहीं किए रिसेंटली, बस थोड़ा डिजाइन इस बार बदला, विच इज गुड।

0: अभी वो M6 जनरेशन के ऊपर काम करें जिसकी वजह से हेडलाइन में बार बार आ रहे हैं। रिपोर्ट से कहती है कि एप्पल ने जो है अनवील कर दिया है अपना M6 2mm चिप और साथ में M5 अल्ट्रा भी, पर M5 अल्ट्रा जो है वो एम्फेसाइज करता है AI परफॉर्मेंस पर। सो व्हाटएवर एप्पल इज डूइंग, I can only wish all the best. बाकी Apple के जब फोन्स पूरी तरह से सामने आ जाएंगे for the review तो आपको उसका review भी मिल ही जाएगा। मगर आपके पास कोई अपडेट है सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar हमें भी जरूर बताएगा। This is Kabir signing off from Tech Update, दिल से देसी। Tech Update. Tech Update.
1: That's astonishing. फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
2: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107 Dil Se Desi.
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: Dil Se Desi.
5: Scam alert.
6: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका इस फ्रॉड अवेयरनेस के नए एपिसोड में। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में, नए स्कैम के बारे में हर रोज हम बात करते हैं और आज भी एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे साथ हो जाता है। हमारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है लेकिन ये स्कैमर्स नए तरीके ढूंढते हैं और इस नए जमाने में उनसे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में जो एक्चुअली में हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारे साथ ये फ्रॉड हो ही जाता है, लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है। ये है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, एक ऐसी चालाकी है जहां स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एड्स के जरिए बड़े आम से भोले भाले बायर्स को फंसाते हैं। आजकल लोग इंटरनेट पर शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं, खास तौर पे घर की फीमेल्स, और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके निकालते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए इसके तरीके और इसके बड़े सॉल्यूशन को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले लेकिन हमको समझना होगा कि ये फ्रॉड काम कैसे करता है। दोस्तों स्कैमर्स अक्सर बिल्कुल असली दिखने वाली नकली शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं। ये साइट्स फेमस ब्रांड्स के होते हैं, कॉपी होते हैं ताकि आपको शक ना हो। इम्पॉसिबल लो प्राइसेस इन वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट देखी थी और ये वेबसाइट वो थी जो हमारे घरों पे खाना डिलीवर करती है और ये वेबसाइट इतनी ज्यादा असली लग रही थी कि लोग अगर इस पर क्लिक करें तो समझ में साफ आता था कि ये बिल्कुल असली है। आप उसमें ऑर्डर डिटेल डालते हैं, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होता है, फिर आप पेमेंट अपनी डालते हैं, सारी डिटेल डालते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा हो जाता है और आपके घर खाना नहीं पहुंचता है। फिर आप सोचते हैं कि ये खाना मेरे घर पहुंचा क्यों नहीं, जरा कॉल करें। और जब कॉल पर जाते हैं उस वेबसाइट की डिटेल्स जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में कोई फोन नंबर, कोई हेल्पलाइन इस वेबसाइट में तो है ही नहीं, तो आप कॉल किसको करेंगे। तब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो नए जमाने के नए जो स्कैमर्स हैं, नए जो थीव्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको पता भी ना चले। ये वेबसाइट्स जो फेक होती हैं इनको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी हो तो पकड़ना आसान भी होता है। और इसी तरह के सॉल्यूशंस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्रॉड होते कैसे हैं। इम्पॉसिबल दिखने वाले कम या कहें लो प्राइसेस में गुड्स का अवेलेबल होना, ये लोग पॉपुलर आइटम्स पर इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं जो सच होना नामुमकिन होता है। उसके अलावा सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अट्रैक्टिव एड्स दिखाना, उसके अलावा फेक वेबसाइट पर ऐसे डिटेल्स डालना कि आपको लगे कि ये सच है, उसके अलावा फिर होता है ट्रैप। जब आप ऐसी जगह से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये स्कैमर्स आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं भेजते आपको, या फिर आपको एक बेहद सस्ता नकली प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं। इसके साथ ही वो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी चुरा लेते हैं ताकि बाद में आपके अकाउंट से पैसे निकाल सके। लेकिन इससे बचे कैसे? इनके 5 तरीके हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के, आसान। सबसे पहले पैडलॉक आइकन को चेक करें। हमेशा वेबसाइट के URL यानी कि एड्रेस बार में चेक करें कि वहां एक पैडलॉक यानी कि ताला का जो आइकन होता है ना, वो छोटे से लॉक का जो आइकन होता है, वो अवेलेबल है या नहीं है। इसका मतलब होता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। अगर ताला लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है। उसके अलावा HTTPS, ये शुरू होना जरूरी है। उसके अलावा वेबसाइट का URL, इसको भी जरूर चेक करें। फिर रिसर्च अनफेमिलियर स्टोर्स फर्स्ट। अगर किसी बिल्कुल नए या अनजान ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले उस बारे में थोड़ा रिसर्च करें। सोशल मीडिया पर रिसर्च करें, सर्च इंजन पर रिव्यूज पढ़ें। अगर बाकी लोगों ने उस साइट को फ्रॉड बताया तो वहां से दूर रहें। टू गुड टू बी ट्रू डील्स, ये सबसे आसान तरीका किसी भी तरह के स्कैम से बचने का। अगर कोई नया या अनवेरिफाइड स्टोर किसी 50,000 के फोन को सिर्फ 5,000 में दे रहा है तो लालच में बिल्कुल ना आए। ऐसे बड़े और अजीब डिस्काउंट हमेशा एक फ्रॉड ट्रैप होते हैं। उसके अलावा COD, नए या कम भरोसेमंद स्टोर्स पर कभी भी एडवांस ऑनलाइन पेमेंट ना करें। हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। उसके अलावा एक और तरीका है बचने का, वो है अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा हुआ तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं, ताकि आगे होने वाले स्कैम से भी आप बच सकें। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जो बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड पर। उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा और आपके साथ इस तरह का स्कैम कभी नहीं होगा। सुनते रहे FM 107। मुलाकात होगी नए एपिसोड में जल्द ही। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
5: हेलो,
7: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
5: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद RJ सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
8: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
5: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर मेजर लाइफ गोल्स। देखिए, हर इंसान के कुछ बड़े गोल्स होते हैं, अपना घर, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, बिजनेस स्टार्ट करना, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ विशेष नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है गोल डिफाइन करना। 5 साल में हाउस डाउन पेमेंट्स, या फिर 10 साल में बच्चे की यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 20 साल में रिटायरमेंट फंड। जब गोल क्लियर होते हैं तो प्लानिंग इजी हो जाती है। मिसाल के तौर पे फातिमा का गोल है 5 साल में 100,000 कतरी रियाल सेव करने का। अब 100,000 कतरी रियाल अगर आप 60 मंथ से डिवाइड करें तो मंथली लगभग, मेरी मैथ्स तो पुअर है, बट ऑन एन एवरेज मैं कह सकती हूँ 1667 सेव होंगे। अब टारगेट इस बंदी के पास क्लियर है। दूसरा स्टेप इन्फ्लेमेशन को समझने में मदद देता है। आज जो चीज 100 कतरी रियाल की है, हो सकता है 10 साल बाद 200 कतरी रियाल की या 150 कतरी रियाल की हो। इसीलिए फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करना बड़ा जरूरी है। एजुकेशन प्लानिंग की एग्जांपल्स भी आपको देके मैं समझाना चाहूंगी कि दोस्तों, आज जो यूनिवर्सिटी की फीस 50,000 कतरी रियाल है, हो सकता है 10 साल बाद 75,000 कतरी रियाल हो या उससे ज्यादा। अगर पेरेंट्स पहले से प्लानिंग करते हैं तो बजट या बर्डन, बजट आपका बिगड़ता नहीं और बर्डन आपका कम हो जाता है। वहीं पर रिटायरमेंट प्लानिंग भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। हम अक्सर यूथ में ये बात देखते हैं कि वो इस बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन रिटायरमेंट ये तो आना ही है, और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर सैलरी अगर ना हो तो बड़ा मसला हो जाता है। अगर 30 साल की एज से हर मंथ 500 कतरी रियाल इन्वेस्ट किए जाएं तो रिटायरमेंट तक सब्सटेंशियल फंड बन

परचेज के लिए भी प्लानिंग काफी मददगार साबित होती है। अचानक लोन चाहे डाउन पेमेंट्स या फंड बनाए जा सकते हैं। अब डाउन पेमेंट टारगेट्स भी आपको तय करने हैं, जैसे 200,000 का ट्रिया और सेविंग पीरियड्स आपका रखा आपने 8 ईयर्स का। इस तरह से मंथली सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 2,100 होगी। गोल मैनेजेबल लगने लगा ना। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। आपको पता होता है कि फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है और आप उस तैयारी को समझ भी रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। मैं तो बस एक ही चीज कहूंगी कि याद रखिए, आपके जो गोल्स हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। उन्हें आप लिख लें, टाइमलाइन सेट कर लें, मंथली अमाउंट कैलकुलेट कर लें और प्रोग्रेस मॉनिटर करें। हर 6 महीने में रिव्यू करें। प्लानिंग ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक सबसे आसान प्रैक्टिकल रोड मैप है। बस इसकी शुरुआत आपको आज से करनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन की और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू साथियों इस वक्त एफएम 107 की घड़ी में बज रहे हैं रुको 5 सेकंड रुको फिर बताती हूं अच्छा ठीक है अब जो है ना एफएम 107 की घड़ी में हो गए 10:02 और माविश और सफा आपके साथ जुड़ चुकी हैं
3: अस्सलाम वालेकुम
2: शो का नाम है
3: यू मैटर्स और हमारा ये ख्याल है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे हमेशा की तरह बिल्कुल खुशबाश और सब कुछ एकदम से फर्स्ट क्लास होगा आप सब लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी हैप्पी हैप्पी वीकेंड
2: हैप्पी वाला वीकेंड भाई जिसकी नींदें मेरी तरह पूरी नहीं हुई है ना और जिसको ये पता ही नहीं चला कि ट्यूसडे कहां गया मुझे तो अभी भी ख्याल आ रहा है वो ट्यूसडे कहां गया जिसको मैं वेडनेसडे समझ कर बैठी हुई थी
3: हाय बस ये जो है ना अजीब ही मामला हुआ
2: और मजाक के अलावा आज मैं बताऊं आज वीकेंड है मुझे ऐसा लग रहा है संडे कुछ मिजानिया दुरुस्त नहीं है मेरा
3: मिजानिया तो आपका कभी भी दुरुस्त नहीं था इसको मिजानिया ना बोले आप इसको बोलें कि आपकी जो वायरिंग है ना ब्रेन की
2: वो डबल उलझ गई है
3: हाँ
2: देखो भाई चलो देखो
3: मतलब वो होती रहती है जलती बुझती रहती है तो अभी वो कुछ इस तरह का ही मरहला चल रहा है
2: मावेश देखें मेरी क्लास लेने से बेहतर ये कि

0: इज्तमाई दुआ करें, देखिए जितने भी लिसनर है ना वो इज्तमाई दुआ करें मेरे लिए।
1: यार अब दुआओं से कुछ नहीं होगा,
0: दुआओं से मामला मत आगे निकल चुका
1: है, इलाज हो चुका है ये मर्ज, अब नहीं होने वाला।
0: भाई देखो मुझे अभी भी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखो भाई एक काम करो, जल्दी से हमें मैसेजेस भेजो, हमें कॉल करो और मेरे लिए इज्तमाई दुआएं करो। मैसेज के लिए नंबर है 666-22107 और
1: कॉल के लिए नंबर है 443-44-377।
0: और भाई ये देखें हमारे जो शो है ना इसके बारे में आपको बता चलें कि हमारा और आपका साथ रहता है एक घंटे तक। तो इस एक घंटे के अंदर आपने ढेर सारी हमने आपके साथ बातें करनी होती हैं और आज हम बात कर रहे हैं पता है किस चीज़ की। ये चीज़ मेरी फेवरेट है।
1: अच्छा,
0: हेल्दी बाउंड्रीज, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई किया है और फिर मैंने उन्हें आग बगोला होते हुए देखा है। बचपन से हमें, क्योंकि जो हम 90s वाले बच्चे हैं ना उनका कुछ क्राइटेरिया अलग रहा है, उनको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना नहीं सिखाया गया। तो फिर होता है कि जिंदगी की जब चपेड़ें पड़ती हैं ना, वो जो हम कहते हैं ना वो धूप के अंदर खड़े होकर जब क्या वो लू पड़ती है ना, तो इंसान अच्छा खासा सीख जाता है फिर अपने आप को बचाना। तो आपकी उम्र कितनी भी हो एक वक्त ऐसा आता है फिर जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप बर्नआउट पे चले जाते हो, आप बिल्कुल खत्म मोड पर होते हो ना, तो फिर आप कहते हो अब मैं अपनी बाउंड्रीज
1: बनाना पड़ेगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाता है। तो आप लोगों ने हमें यही बताना है कि क्या आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं वो मेंटेन कर पाते हैं, क्या आप बनाते हैं और क्या आपका सिलसिला है। तो चलें हम देखते हैं, पहले कॉलर आ गए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, कहाँ थे आप? जी जी जी जी, क्या क्या क्या,
1: आवाज बहुत ही कहीं दूर से आ रही है।
2: और ठीक नहीं आ
1: रही? हाँ, अभी थोड़ी सी बेहतर है। बोले बोले। हेलो,
0: हेलो जी, आई एम अंडर द वाटर।
1: कॉल ही कट गई।
0: हेलो जी, कॉल कट गई हमारी। अच्छा भाई कोई बात नहीं, अभी वापस से कॉल कर लेंगे। अच्छा मैं क्या कह रही थी, हेल्दी बाउंड्रीज के बारे में बात कर रही थी। और हेल्दी बाउंड्रीज का ये चक्कर है मावेश कि मुझे इस जनरेशन की ना चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। दे आर वेरी प्रिसाइज अबाउट इट। और आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अच्छा कुछ लोग जो थोड़े से पुरानी जनरेशन वाले ना वो उनको कहते हैं कि ये बच्चे ज्यादा बदतमीज हो गए। देखो वो बदतमीजी, हाँ उनका बात करने का लहजा थोड़ा सा वो हम कहते हैं ना ड्राई हो जाता है, लेकिन हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सटल लहजा चाहिए। आप अगर हंसते हंसते किसी को कोई बात बोल दो ना तो लोगों को समझ में नहीं आएगा,
1: कोई भी सीरियस नहीं लेगा।
0: तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि कोई बच्चा ये कहता है कि भाई मुझे ना, अब हमारे जमाने में बच्चे छोटे छोटे थे, इधर से गाल खींचा, इधर से उसके बाल खींचे, इधर से उसका हाथ खींचा, लोगों को आदत होती है। आजकल के बच्चे थे छोटे छोटे, वो आंखें दिखा कहते थे मेरे चबी चीख नहीं खींचना। तो ये एक किस्म की हेल्दी बाउंड्री होती है। और इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों कहना होता है कि ये तो इतने छोटे से हैं क्या बाउंड्रीज होंगी उनकी, क्या ही कोई फीलिंग्स होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हेल्दी बाउंड्रीज के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप शुरू से अपने बच्चे को फीड इन करते हो, इंसान को फीड इन करते हो कि भाई ये आपकी मर्जी है, तो आप ऑलरेडी फेंसिंग कर दो अपनी। फिर किसी को बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे। हमें
1: अच्छा, ये भी एक सवाल है ना कि ये जो जनरेशन है जो अभी मतलब समझो कि बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं ये सारे, तो इनकी ये बाउंड्री सेट का कॉन्सेप्ट किसी ने क्रिएट भी तो किया होगा।
0: हाँ,
1: ना,
0: और मुझे ऐसा लगता है वो मिलेनियल्स ने किया। हम वो वाली कॉम है जिसने हर एरा जी लिया है।
1: हाँ, exactly, और हमने चीज दी के मतलब एक ना एक कहना चाहिए पर्सनल स्पेस वो प्रोवाइड की है।
0: अच्छा एक और चीज हेल्दी बाउंड्री में ना एक और चीज होती है, आप करो दूसरों के लिए। अब जैसे बड़ों के बारे में बात करो, चलो बच्चों का तो छोड़ो, बड़ों के बारे में बात कर लो, तो हेल्दी बाउंड्री क्या चीज होती है? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन मेरी भी ना एक कैपेसिटी है लोगों को ये समझाना कि मेरी कजन से कल हमारी बात नहीं हो रही थी, भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने कभी ना नहीं किया और वो उनकी नजरिए में होगी अच्छी बात, लेकिन ये चीज ना मोस्टली लोगों को कंज्यूम कर जाती है, बर्नआउट मोड पे डाल देती है, एंक्शियस मोड पे डाल देती है।
1: ऐसा होता है कि वो बंदा ना करना भी चाह रहा होता है लेकिन नहीं कर पा रहा होता
0: और सामने वाले समझते भी नहीं है क्योंकि
1: एक चीज। अच्छा उसमें मेरा जहां तक ख्याल है एक जो उर्दू में कहते हैं मुरव्वत, मुरव्वत का जो लोग ज्यादा शिकार होते हैं ना तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है नो कहना किसी भी बात पे।
0: अच्छा ये एक और इसके अंदर ना एक बहुत गहरा टॉपिक आता है, मैं बात छेड़ूंगी तो बहुत ज्यादा
1: आगे निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर है वो कहीं आगे ना निकल जाए तो इसलिए हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम मोहम्मद ईसा है।
1: मोहम्मद ईसा, क्या हाल है मोहम्मद ईसा?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब। मैं तो सोच रहा था मेरा कॉल भूल गए
1: आप। अरे कैसे नहीं, नहीं। भूल जाएंगे आपको, कैसे भूल जाएंगे।
2: और क्या हाल है? ठीक
0: है, बिल्कुल ठीक ठाक,
1: बिल्कुल ठीक ठाक।
2: अच्छा वो मैं पूछ रहा था कि वो जो महावीर सिस्टर की एक एपिसोड आती है वो किस टाइम आती है? मैं कितना बार मुझसे स्किप हो गया।
1: कौन सी वाली?
2: जिसमें वो एडवाइस आती है ना, पहले तो 10 बजे होती थी।
1: अच्छा अभी तो ना शोज नए हो गए हैं, तो अभी इस वक्त जो है वो मेरा है स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स और दूसरा है फ्यूचर करियर। तो एक आज मंडे को और शाम को 7 बजे, और एक जो है वो वेंसडे को है स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट, वो है कुछ सुबह 10 बजे के वक्त। नहीं 10 बजे तो हम शो करते हैं, 11 बजे होगा। ऐसे कुछ है।
2: 11 बजे कौन से वाले दिन पे होते हैं
1: ये? बुध वाले दिन।
2: बुध वाले दिन। अच्छा अच्छा, वो मैं कितना बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही।
1: नहीं नहीं, वो आप बुध वाले दिन, मैं टाइम एक दफा फिर कंफर्म कर लेती हूँ, तो आप बुध वाले दिन सुनिएगा।
2: ओके इंशाल्लाह।
0: सही। और भाई आपका आज के हमारे मुद्दे पे क्या कहना है? आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान को अपनी जो है ना वो बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, लिमिट्स क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को ना बोलना आना चाहिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईसा, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। राइट, तो भाई ये तो अभी तैयार नहीं थे हेल्दी बाउंड्री बनाने के लिए।
0: अच्छा हेल्दी बाउंड्री में ना अगर बात करें तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है। हेल्दी बाउंड्री में हमें से और ज्यादा नैरो कर लेते हैं। नैरो करके अगर हम बात करें ना, हेल्दी बाउंड्रीज ये वाली रखना कि वेयर डज माय रिस्पांसिबिलिटी एंड। अक्सर औकात ना इस टॉपिक में अगर हम बात करें ना, तो फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मुद्दा आता है, सबसे हॉट टॉपिक आता है जब हमारे वालिदैन जो है ना, एक बात कही जाती है कि वालिदैन 6 बच्चों को मिलकर संभाल सकते हैं लेकिन 6 औलादें मिलकर वालिदैन दो बाप को नहीं संभाल पाते। ये और ये एक हकीकत चीज है, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं, रिस्पांसिबिलिटीज आ
1: जाती हैं, और फिर अल्लाह ताला ने मामलात भी अलग तरीके से रखे हैं। मतलब एक दिल में मोहब्बत, अभी मैं सुन रही थी पिछले दिनों कहीं किसी का कि अल्लाह ताला ने कहा ये जो दिलों में मोहब्बत है ना, ये मेरी उंगलियों के दरमियान है, तो अल्लाह ही क्रिएट करता है मोहब्बत। तो वो जो औलाद के लिए है ना, जैसे जब औलाद नहीं होती, जब शादी नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता था कि माँ बाप से ज्यादा तो कोई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मतलब जैसे अगर औलाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो मैं कहती थी चलो अगर किसी का अदनाउजबिला, मतलब किसी का अगर बच्चा जो है उसको उसके साथ कुछ हो गया ना, तो इट्स ओके, लेकिन किसी के माँ बाप के साथ ना हो कुछ, क्योंकि फिर बच्चे कैसे रहेंगे। लेकिन आपको फिर बाद में समझ में आता है कि जो बच्चे का जो मामला है ना, वो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो मोहब्बत है उसका पैमाना ही कुछ अलग है, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब जो तुम बात करना चाह रही,
0: हाँ मैं जो बात करना चाह रही थी ना, वो होता है कि एक रिस्पांसिबिलिटी की एक लिमिट होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि माशाल्लाह जब माँ बाप एक एज तक पहुंच जाते हैं, और आजकल के टाइम का ना कुछ ऐसा हुआ हुआ है कि माँ बाप जो है ना, फिर वो बजाय इसके कि अम्मा अब्बा को सारे बच्चे मिलकर संभालें, किसी एक की रिस्पांसिबिलिटी बन जाते हैं।
1: हाँ ऐसे ही।
0: और उसके अंदर फिर ना कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कहीं और से आ रहा होता है, ना इमोशनल कंट्रीब्यूशन कहीं और से आ रहा होता है। ये दो चीज़ें मेन होती हैं इंसान की जिंदगी में देखा जाए तो अब बात ये होती है कि कुछ कुछ वालदैन ऐसे होते हैं जो एक ही बच्चे के घर में रहते हैं मुसलसल, वही वाली बात की ना, इमोशनल सपोर्ट कहीं से ना।
1: क्या होता है कि सब लोग ना उन्हीं के घर पे मिलने आते हैं।
0: अच्छा मिलने आ जाओ आप, लेकिन फिर रिलेशनशिप में भी उनसे हो रहे होते हैं,
1: उनसे ही हो रहे होते हैं। राइट,
0: तो मेरा मानना ये है कि बेशक अम्मा अब्बा अपनी पसंद से अपनी कंफर्ट जोन में किसी एक बच्चे के पास रह जाए, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द अगर आप देखो ना स्टोरी, तो मामला ये बन रहा होता है कि उस बंदे के अपने भी बच्चे होते हैं, उस बंदे की अपनी भी बेगम होती है, फिर क्लैश वहां से शुरू होता है।
1: हाँ, exactly.
0: क्लैश ये शुरू होता है कि वो बंदा अपनी लिमिट को स्ट्रेच करते हुए हर चीज को, बल्कि यूं खत्म करते हुए अपनी जिंदगी को, पर्सनल लाइफ को खत्म करते हुए, फिर वो क्या करता है कि वो सिर्फ अम्मा अब्बा के लिए करना शुरू करता है, और फिर वहां पे क्लैश आता है बीवी का और बच्चों का, कि वो कहते हैं ना हमें टाइम प्रॉपरली दे पाता है, ना हमें फाइनेंशियली ये अकोमोडेट कर पाता है, क्योंकि इसके ऊपर डबल ट्रिपल रिस्पांसिबिलिटी है, और बाकी बहन भाई हाथ उठा के बैठे होते हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि बस ये जो ना बस ये कर रहे हैं। और वहां पर सही वाली बात आती है कि जब हम कहते हैं ना आपको अपने फेंसेस गाड़ने पड़ते,

0: हैं, आपको सबको बिठाना पड़ता है. कुछ लोगों के अंदर, मोस्टली हमारे कल्चर के अंदर ये है ही नहीं, नहीं है, पता है उसको बुरा मानते हैं. अपने फेंसेस लगाने को सेल्फिशनेस कहते हैं, अपने फेंसेस लगाने को कहते हैं कि माँ बाप की इज्जत नहीं करता.
1: और अगर नहीं लगाते ना तो आपकी ना, मतलब आपका तो शायद कुछ नहीं बिगड़ता.
0: नहीं, बर्नआउट मोड पे होते हो आप.
1: वो शायद होता हो ना होता हो, मतलब मैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मैंने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है. तो उसमें जो नुकसान होता है ना वो औलाद का होता है. मैं जो आज तक मैं आज तक जो ये बात कह रही होती हूँ, मैंने बहुत बचपन से ये बात सीख ली थी कि मैंने अपनी जब लाइफ शुरू करनी है ना तो वो वाली नहीं चीजें करनी जो मेरे अम्मा बाबा ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, कुछ नहीं किया. तो ये मुझे वहां से समझ में आया था क्योंकि हमें ना वो जो हमारा जो टाइम होता था ना वो हमें नहीं मिलता था. हम बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमें, मतलब जो ना एक तरह से माँ बाप देखें. या चलो मुझे तो फिर भी काफी टाइम मिला है क्योंकि मैं बड़ी थी और मैं काफी टाइम पे, मतलब 5-5.5 साल रही हूँ अकेली, फिर मुझे वैल्यू भी बहुत ज्यादा दी जाती थी. लेकिन जो छोटे वाले भाई बहन है ना, उन्होंने बेचारों ने भुगता है. वो तो ऐसा लगता है तो सगी औलाद ही नहीं, सुतेली कोई
0: नहीं. ये एक बात है.
1: अच्छा, मेरा भाई बुखार में पड़ा हुआ है और खातिरदारियां हो रही है आने वालों की, मेहमानों की.
0: आपको फर्क पता जाए ना, वेयर डज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड.
1: मतलब आपकी औलाद जो है ना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, आप नहीं देखोगे तो कौन दिखेगा.
0: हाँ, ये बात है. और फिर उसी की वजह से जो ना वो घरों के, हम कहते हैं ना वो जो फैमिली सिस्टम होता है उसमें क्लैश आता है. उसी की वजह से फिर जेलसी बढ़ती है, उसी की वजह से फिर तू मैं बढ़ती है. ये हमारे दीन में भी बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है. कोई थिन लाइन नहीं है, बहुत अच्छी खासी मोटी वायरिंग हुई हुई है कि ये माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये औलाद भी आपकी जिम्मेदारी है.
1: एग्जैक्टली,
0: ये बीवी भी आपकी जिम्मेदारी है. आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले कौन आना चाहिए. और फिर बहन भाइयों का भी ये होता है कि आप चीजें बांट सकते हो ना. आप ये बांट सकते हो कि अच्छा ये वाला काम अम्मा अब्बा का तुम्हारे हिस्से, ये वाला काम तुम्हारे हिस्से. लोग बोलते भी शर्माते हैं.
1: अगर आपने नहीं भी बांटनी है तो कम से कम इतना तो करें ना कि आप बर्डन ना बने जाके. हाँ, ये जरूरी है. चलिए, कॉल आ गई हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, रेडियो प्लीज ऑफ कर दीजिएगा.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: कैसे हैं बहन? ठीक ठाक खैरियत से?
0: बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सफा कैसे? ठीक हूँ
0: मैं, ठीक हूँ. मुदस्सर भाई,
1: मुदस्सर भाई,
0: मुदस्सर भाई,
1: मुदस्सर भाई.
2: सफा का नाम तो नहीं लेगा फिर और नाराज हो जाती हूँ.
0: मुदस्सर भाई,
1: और आज तो बन नहीं सकती नाराजगी भाई, वीकेंड है.
0: फिर दो दिन जो है ना मैं ये बोलते हुए गुजारूंगी, मुदस्सर भाई ने
1: सलाम
2: नहीं
1: किया. क्यों
0: है ना मुदस्सर भाई, हो रहा है ना ऐसा, वीकेंड है लेकिन वीकेंड जैसा नहीं लग रहा मुझे. मेरे अपने साथ यही हुआ है.
1: ये हुआ क्या है भाई, क्या
0: पता नहीं कुछ स्किप हो गया है.
1: अच्छा,
0: कुछ तो हुआ है मुदस्सर.
2: मैं जब मोबाइल देखा मैं सोच रहा था कि आज बुध है.
1: अच्छा, मतलब एनर्जी ज्यादा है सब लोगों में. सब
0: बुध के दिन एनर्जी इनक्लाइंड हो जाती है, खत्म हो जाती है बुध के दिन एनर्जी. मैं बोल रही ना, आज ऐसा लग रहा है संडे है आज.
1: जी भाई, सिर्फ भाई आप बताएं, बाउंड्री वगैरह बनाते हैं.
2: दूसरा बात ये है कि यहाँ पे मेरे ये सत्तर और मामू है ना, वो लोग सब जाते हैं. तो सिस्टर का फोन अक्सर मुझे 9 बजे आती है कि घर आना है तो फिर ये सामान साथ लेके आओ.
1: अच्छा,
2: हर वीकेंड वो बोलती है ना, ये इधर से गोश्त लेके आओ, ये चिकन लेके आओ, ये लेके आओ.
1: सही.
2: और उसका फोन भी नहीं आता. मैंने कहा तो लाजम बोल दे, जब मोबाइल देखा तो उसको फोन दिया, वो बोलते आपको फोन नहीं लग रहा है.
1: सही सही, ठीक है.
0: अच्छा भाई, मुदस्सर भाई, आज जो है ना हम बात कर रहे हैं बाउंड्रीज रखने की, और बाउंड्रीज भी वो वाली कि जिसके अंदर आप दूसरों को ये बता सकें कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ तक थी, उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं. तो आप इस बात को मानते हैं, कैसा होना चाहिए?
2: ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने किसी को ऐसा नहीं बोला है. लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत जरूरी है. क्योंकि ये बात हम इतना अपनी फैमिली के लिए इतना काम करते हैं ना, वहां पर अपना बाउंड्री भूल जाता है, बस अपने भाई.
0: हाँ, रोबोट बन जाते हैं.
2: रोबोट बन जाता है, ये भी एक अच्छी बात नहीं है.
1: बिल्कुल.
2: यहाँ पे मेरा, मैं तुमको एक बात बोलूँ, यहाँ पे मेरा एक मामू रहता है.
1: अच्छा.
2: वो जब कतर में आया था उसका 15-16 ईयर था. अभी वो 55-60 हो गया.
0: माशाल्लाह.
2: बच्चे सब कुछ अभी इधर है.

0: मेरा खानदान ही इतना बड़ा था मैम, सॉरी ननिहाल, मेरा ननिहाल इतना बड़ा था कि मतलब हम लोग
1: आराम से
0: हम कजन थे,
2: अच्छा भाई शुएब भाई, आज हम लोग बात कर रहे हैं हेल्दी बाउंड्रीज की, एंड टू नैरो इट डाउन, हेल्दी बाउंड्रीज वो वाली जिसके अंदर आप ये बात दो टोक कर दें कि भाई वेयर डज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, ये बात आपको भी अपने माइंड में पता हो और आपने सामने वालों को भी क्लैरिफाई की भी हो. रूल होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है हमारा लाइफ का.
0: हाँ ठीक है, मैं समझ गया. ऑफिस काम की हर चीज की दोस्तों के लिए एक बाउंड्रीज होती है, लेकिन अगर आप बात करें तो फैमिली की, तो मैम मेरे हिसाब से फैमिली के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए.
1: अच्छा, उसमें भी कहते हैं कि वो मी टाइम होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब ये जो चीज है ना, थोड़ा सा आपको ज़हनी सुकून मिले.
2: अब अगर आप ये आप मुझे याद पड़ता है, एक दफा आपने मुझे बताया था कि आप ना अपने दोस्तों के साथ जो एक हफ्ते में एक दिन गुजारते हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज, फिशिंग के ऊपर आपने बताया था, राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, आपने क्या कहा था, आपने कहा था बेशक मुझे अपनी बेगम से इतना प्यार है कि मैं उसके लिए कुकिंग तक करता हूँ, लेकिन फिशिंग के टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता.
1: हाँ, तो ये था कि आपकी बाउंड्री,
2: ये भी एक आपकी फैमिली की बाउंड्री है, ये भी एक फैमिली की बाउंड्री है.
0: ये एक फैमिली की बाउंड्रीज है. अभी लास्ट वीक उन्होंने मुझे बोला कि हम लोगों को कहीं बाहर जाना है, तो आपको नहीं जाना है फिशिंग के लिए. मैं बोला ठीक है ना, इस वीकेंड आपको साथ गुजारना. मैं बोला ठीक है, उन्होंने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया, तो मैंने अपना वो प्लान स्किप कर दिया.
2: हाँ,
0: तो कहाँ चली गई बाउंड्री?
2: अच्छा हाँ, वो तो आपका मूड था तभी आपने कर दी ना, लेकिन अगर उनको पता होता, मतलब कोई ऐसी बात होगी जब उनका दिल कर रहा होगा, उन्होंने बोल दिया.
0: आपसे बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी ये पता है, हाल ही में 3-4 महीने पहले एक एहसास हुआ, और तगड़ा एहसास हुआ. आप यकीन मानो कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है, वो मुझे पता 3-4 महीने पहले. एक मतलब अगर मैं बताने बैठूं कि वो क्या क्यों हुआ वो एहसास, तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबी स्टोरी है.
2: वो तो इमोशनल,
0: मतलब एक चीज मैंने देखी है, फैमिलीज के लिए बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए.
2: अच्छा, आपके लिहाज से नहीं होनी चाहिए. सही, ठीक है, ओके, आपके लिहाज से नहीं होनी चाहिए.
0: मतलब एक चीज होती है.
1: अच्छा, फैमिली में कौन कौन आ जाता है ये बताएं.
0: सॉरी,
1: फैमिली में कौन कौन, आप किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं इस फैमिली में?
0: मेरी फैमिली जैसे कि मॉम डैड,
2: ठीक है,
0: मेरे दो यंगर भाई हैं, एक बहन है, उनके बहन के बच्चे हैं, और मेरा ननिहाल जो है वो बहुत बड़ा है माशाल्लाह. हाँ, और मेरा, हाँ, मेरे खानदान जो है वो बहुत अलग अलग है सब. मतलब ऐसा है सीन कि कोई अलग सिटी में है, कोई सिटी में, मतलब सब लोग मोस्टली सब बाहर ही है, उनसे बहुत कम मिलना जुलना होता है.
1: सही हो गया. चलें, तो फिर आपका ये मानना है कि ये सब जो लोग हैं आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, इनके लिए आप कोई बाउंड्री नहीं बनाना चाहते.
0: सब लोगों को नहीं कर सकता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अपनी मेन फैमिली.
1: मैं यही तो पूछ रही थी कि वो मेन फैमिली में आप किस किस को इंक्लूड करते हैं. इमीडिएट फैमिली जो है, वाइफ हस्बैंड और बच्चे, ये वाला सीन है, या फिर मतलब पूरे खानदान की बात करें? ये जो
0: नहीं, पूरे खानदान की बात देखो अगर जो करी जाए तो कहीं ना कहीं बाउंड्री बन जाती है. वो मेरी तरफ से ना, मैंने दूसरे की तरफ से बन जाती है.
1: सही, ठीक हो गया.
0: लेकिन फैमिली बहुत मैटर करती है, बस मैं
2: ये तो है, फैमिली मैटर करती है. वो तो हमारे रूट्स में भाई, वो हमारे कल्चर में, वो हमारे ट्रेडिशन में, उसके बगैर हमारी आइडेंटिटी नहीं है ना.
0: जी,
2: ये तो एक, ये बिल्कुल पॉइंटलेस बात होगी. अगर कोई कहे कि नहीं, फैमिली नहीं मैटर करती,
1: फैमिली को भी समझना चाहिए कि आपकी जो एक इमीडिएट फैमिली है, फिर उसके बाद फिर वो एक्सटेंड होती रहती है, तो उसके भी कुछ
2: प्रायोरिटी
1: लेवल्स होते हैं, तो वो आपको समझना चाहिए, फिर सही है, फिर मसला नहीं. वो तो सबकी वाइफ ने बोला कि आप फिशिंग पे नहीं जाएंगे.
2: अगर वाइफ ने बोला है तो अगर उसको
1: बनता है
2: घर में रहना है तो ना तो कर नहीं सकते ना शोएब भाई, समझा करो ना.
0: हाँ बिल्कुल, देखो कभी कभी समझना पड़ता है, अभी ये सुनना है
2: तो सर्वाइवल सीरीज हो जाती, नहीं तो नहीं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही होती कि क्या हुआ उस आदमी का जिसने फिशिंग के लिए मना किया था कि मैं जाऊंगा बेगम को, वो भी
1: सही हो
2: आपके नाम पे.
1: अच्छा, अरबाज खान का मैसेज आया आपके लिए शोएब भाई, खास तौर पे कहते हैं, एक तो हमारी खैर खैरियत पूछने बाद कहते हैं भैया मेरे ख्याल से डरता है भाभी से.
2: डरता नहीं है. अच्छा शोएब भाई, ये जो लोग कहते हैं ना डरता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है मोहब्बत क्या चीज होती है. मोहब्बत जो है ना, वो इंसान को घुटनों के बल ले आती है.

0: चाहिए?
1: इन्हें मोहब्बत के बारे में पता होता तो ये भाई साहब बोलते हैं,
0: क्योंकि वो सिंगल है ना, वो कह रहे हैं वो सिंगल है, सिंगल लाइफ मतलब क्या बोला, जिंदाबाद। शोएब भाई मैंने बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी, एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी एक पाकिस्तानी ड्रामे में सुनी थी, अब मुझे याद है ना वो मावेश वो ड्रामा नहीं था भोलू वाला, कौन सा था,
2: भोला भोला, हाँ।
0: भोला हाँ। तो उसके अंदर मैंने एक बात सुनी थी जो मेरे दिल में अड़ गई थी मोहब्बत के बारे में, उसने कहा था कि मोहब्बत के लिए ना आपको खाक होना पड़ता है, खाक वो खाक जो लोगों के पैरों में आ जाती
2: है,
1: ये खोना पड़ता है ना, बिल्कुल आपकी जो है ना बात एकदम 100% सत्य है।
0: और मोहब्बत एक ऐसी,
1: बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कि जो है सिंगल लाइफ जो होती है आज के मतलब अभी जैसे सिंगल्स हैं वो नहीं समझेंगे इस बात को, वो सोचते हैं कि यार ये डर गया बीवी से,
0: या अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद
2: सही हो गया शोएब भाई, चले नहीं गुड, जबरदस्त, तो आप सही चल रहे हैं बिल्कुल, और थैंक यू सो मच, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं इसी बात पे, ठीक है,
1: थैंक यू
2: जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ रे जी। तो हम सॉन्ग प्ले करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: और भाई क्या ही बात हो कि इंसान अपने आप को भी इस तरह से ढूंढे और अपने आप को जो है वो इसी तरह से मिल भी जाए क्योंकि वो अपने आप को दिमागी मेंटली तौर पर ना सेट रखता हो यानी कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रखता हो
3: बिल्कुल जी। अच्छा हम जल्दी से ना कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं क्योंकि वो फिर रह जाते हैं, फटाफट में पढ़ देती हूँ। गुड मॉर्निंग कहा है किसी ने, ये है अली और इसके साथ ही। अच्छा ये वाले फ़ोन में ना एक मसला ये हो गया कि जल्दी जल्दी नहीं खुलते मैसेज। महावश इन सफ़ा अस्सलाम वालेकुम, तौफीक कहते हैं, शहजाद सलीम कहते हैं हम हैं आपके साथ, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूसुफ खान ने हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग का एक गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बोलती जाएं साथ साथ
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह
3: कहते हैं हैप्पी वीकेंड गुड मॉर्निंग। और इसके साथ ही इसके साथ ही नास का मैसेज है इस टॉपिक पे, वाइफ के लिए हस्बैंड एंड इन लॉज वाली बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करनी चाहिए, एक्सप्लेन प्लीज।
2: अच्छा एक्सप्लेन ये बहुत अब मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगी ना तो इसके ऊपर मेरी बड़ी अच्छी खासी डिबेट होती है, बहुत सारे लोग बदजन हो जाते हैं इस बात से कि दो टोक ये बता दिया गया, दीनी एतबार से भी दो टोक ये बता दिया गया है कि आपकी, अच्छा पहले जमाने में ना क्या होता था मावेश, देखिए पर्सनल नहीं होना, पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, पर्सनल नहीं होना किसी से भी, ठीक है। पहले जमाने में भी होता था कि लोगों की जब शादियां हुआ करती थी ना तो मैंने ये बकायदा किससे सुने, हदीस के मुताबिक प्रॉपर, कि उनके खैमे अलग कर दिए जाते थे।
3: हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही,
2: और वो पता है क्यों था, वो एक बहुत, ये शायद आदमियों को, ये हमारे घर में ही बड़ी इस बात के ऊपर डिबेट होती है, आदमी शायद इस बात को समझेंगे ही नहीं कि एक औरत जो है जब अपना घर, उसको अरबिक में कहा जाता है क्वीन, उसका जो ट्रांसलेशन होता है ना हाउस वाइफ को कहा जाता है क्वीन ऑफ द होम, देयर इज अ रीजन, अ क्वीन कैन नॉट बी शेयर्ड एंड शी शुड नॉट बी शेयर्ड।
3: अच्छा मैंने इसकी पूरी एक पूरी हिस्ट्री पढ़ी है लेकिन वो मैं बता नहीं सकते ना
2: वो चीज,
3: मतलब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे बना है, क्या हुआ है, इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने भी पिछले दिनों पढ़ी थी, उसका रीजन क्या था, ये कहाँ से चीज आई है, उसकी भी कुछ रीजन थी कि वहाँ उस माशरे में ये चीज क्यों आई थी जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो होता ये है कि ना बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि उधर बाउंड्री बहुत जरूरी है मेंटेन करना।
2: मावेश एक और बात जो मैंने पढ़ी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे इस बात ऊपर के, अब वही वाली बात है कि आई एम नॉट टारगेटिंग एनी जेंडर, लेकिन आदमियों से जहां उनके माँ बाप का हिसाब होगा ना उससे कहीं ज्यादा पहले उनकी बेगम और बच्चों का हिसाब होगा,
3: बिल्कुल सही है,
2: पहले। तो भाई देखते हैं कि हमारे साथ कॉल पे कौन है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, कैसे
2: जी?
4: ठीक हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेरे भाई, कौन बात कर रहा है हमारे साथ, कौन जुड़ गया है?
4: मैं अबूबकर बात कर रहा
2: हूँ। अबूबकर भाई
3: कैसे?
4: अल्लाह का शुक्र आप कैसे हो, दोनों ठीक हो?
2: बिल्कुल ठीक ठाक। अबू बकर भाई ये नाम जो है ना मैंने काफी अरसे बाद सुना है, मैंने बहुत बहुत कम लोगों का मैंने अबू बकर नाम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम है, इसकी जो हिस्ट्री है ना इस नाम की वो बहुत दिल पे लगती है, मैं हजरत अबू बकर याद आते हैं तो बड़ा बड़ा खूबसूरत नाम है। कहाँ गए हैं कि चले, कहते हैं बोलकर गए, एक मिनट रुक जाओ,
3: ये रुक रुक के सोच सोच के बोल रहे हैं,
2: हमने इनको रुकवाया था ना तो बदला ले रहे हैं
3: जी। अबू बकर
2: अभी भी रुके हुए ही हैं भाई, कोई डोमे

0: डोमेस्टिक ट्रेन हो क्या जो रुक कर फिर वापस चलने की कोशिश बोल लो तो हाँ जी अब जी जी आ
1: होल्ड पे कर दिया था
0: मैंने कहा
2: अबू दोस्त आया था उसमें मैंने
0: दोस्तों को तो म्यूट पे ही रखना चाहिए भाई
2: नहीं
0: दोस्तों को म्यूट पे ही करना चाहिए
2: ये हमारे पटाने में से क्या अगर आपकी आवाज सुनते बोलते हां लड़की से बात कर रहे हो
0: अल्लाह माफी मैंने मैंने मैंने तभी कहा था बड़े एहतराम से कि दोस्तों से बात करते हो तो लाजमी म्यूट पे होना चाहिए क्योंकि ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि फिर वो ऑन नहीं आ सकती ना
1: जी तो अबू बकर ये बताएं भाई बाउंड्री का क्या है सीन
2: अंजी का ये कि पहले बात यह है कि हमारे पठानों में आप लोगों को भी पता होगा कि पठानों में 40 घर वाले होते हैं और एक ही बंदा उसको संभालता है
0: ना संभालना एक अलग बात है मेरे भाई संभालना तो है बात है
2: संभालना वो आपकी बात ठीक है लेकिन इंसान जैसे एक भाई आया था पता नहीं नाम तो भूल गया मुदस्सिर भाई था क्या नाम था उसका
1: मुदस्सिर भाई
2: उसने भी ये बात की है कि इंसान इतना कमा लेते है कि अपने आप को भूल जाता है अपनी फैमिली के लिए अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहिए लेकिन एक लिमिट रखना चाहिए अगर मैं अगर देखा जाऊँ मेरे अबू ने यहाँ पे कतर में 50 साल गुजारे बूढ़े हो गए यहाँ पर अच्छा आया था यहाँ तकरीबन 14-15 साल का था मुझे बोल रहा था क्या आया था उस टाइम जहाज वहाज का सिस्टम नहीं था
0: सही
2: तो पूरा जिंदगी उसने यहाँ पे गुजारे फिर बड़े भाई को भेज दिया 30 साल उसका हो गया फिर उससे छोटा आया फिर तकरीबन 10-15 साल उसके अभी मुझे भेजा है लेकिन मुझे अंदाजा लग रहा है जितना मुश्किल उन लोगों ने गुजारी है अगर ये मुझे भी अपना अलग अपने बीवी बच्चों का मुझे दे दिया उसको दे दी दूसरी भाई को तीसरी भाई को घर अलग एक होना चाहिए लेकिन हर किसी का अलग अलग
1: होना चाहिए बिल्कुल
2: जी फिर ठीक होता है पर अगर एक होता है कि मैं एक साल से कर रहा हूँ ना मुझे पता चल रहा है घर बड़ा होता है 3-4 लाख भी अगर मैं महीने का भेजूं तो वो महीने पूरे नहीं कर देता तो इंसान पर बहुत बोझ बनता है इधर आप कुछ भी ना करो लेकिन घर वाले के लिए आप कर जितने भी आप मुश्किलें करें तो मैं कहता हूँ कि एक लिमिट होना चाहिए
0: बिल्कुल सही है वो लिमिट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं अबू बकर भाई वो लिमिट अपने लिए भी बड़ी जरूरी होती है
1: जरूरी बात
2: जरूरी बिल्कुल अपने लिए जरूरी
0: है भाई इंसान ऐसा हो जाता है जैसे चक्की में आटा पिसता है ना अगर इंसान लिमिट नहीं रखता ना तो वो चक्की में आटा हो जाता है और यकीन जाने फिर वो दूसरों का ही काम आता है वो अपने किसी काम नहीं कर रहता
2: ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही जितने भी खासतौर पर कतर में अगर देखा जाए ना ये इंसान को देखा बिल्कुल जवानी में इंसान का अपना जोश जज्बा होता है वो मर चुका है एक जवानी में लोगों के
0: अब सिर्फ एक चीज रह गई ना अब नहीं सिर्फ कतर का नहीं है मेरे भाई ये दुनिया के हर कोने का होता है
1: इतने लोगों की जिम्मेदारी उठाओगे ना तो फिर तो ऐसा
0: कंधे जो कुछ देखे एक सीधी सी बात है जब इंसान लिमिट नहीं रखता ना अपनी कोई वो समझता है कि भाई एक बात नोट करने वाली है मशीन की भी एक अपनी लिमिट होती है मशीन भी ओवर हीट हो जाती है तो कुछ सफर ऐसे होते हैं क्योंकि हम तो इमोशनल बीइंग है ना तो कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसान मेंटली भी और दिल से भी थक जाता है तभी हम सब वही हो गए वो रोबोट हो गए हम सब किसी को किसी का ख्याल नहीं वो कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा लिमिटेशन ना रखो और बहुत ज्यादा करो तो फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है बेहस हो जाते हो आपको तो खली मुझे कौन सी किसी से वफा मिली है
1: और बाहर वाले को तो इस तरह से समझा जाता है ना कि मतलब जैसे अगर बहनें शादीशुदा भी हैं उनके बच्चों का भी कोई मामला चल रहा है तो मामू ही करेंगे ना मामू देखो बाहर है मतलब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारे
2: साथ दो बांजे लेके आया उसके लिए लाइसेंस गाड़ी लिमोजिन सब कुछ मैंने किया अभी तक अभी वो सेट हो गए इनके आराम से कमाऊं जब हो गए कर दे देना
1: ये है चलिए वो वहां तक तो ठीक है कि आप उनको पैरों पे खड़ा कर रहे हैं भाई लेकिन एक होता है कि लाकर भी खुद ही रख रहे होते हैं मतलब उनका खर्चा भी खुद ही उठा रहे होते हैं ये है तो ये जो मामला है ना इसको सुधारना चाहिए और डेफिनेटली हमसे ज्यादा बेहतर तौर पर आप समझ सकते हैं इस बात को
2: बस आप अगर समझाओगे तो ये सब समझ आएंगे नहीं तो ये सब भूल चुके हैं
0: अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझने के कायल होते हैं जो डिस्कशन इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि समझना है
2: मैं सिस्टर बता दूं कि हमारे पठानों में खास तौर पर पठानों की फैमिली वो बोल नहीं सकते शर्म आती है उनको
0: ये गलत बात है ना कोई देखिए मेरे वालिद साहब कहते हैं बेटा कोई एक होता है जो कड़ी तोड़ता है और वो कड़ी तोड़ने के लिए जितनी मेहनत चाहिए होती है ना वो सदियों की मेहनत होती है
1: सही बात
2: वो ठीक है लेकिन समझाना अगर आप मैं अपनी बात करूं मुझे कोई ये नहीं है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह चीज बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन अगर बात किया जाए तो फैमिली तो वैसी बोलेगी पूरा खानदान ही आपको पता नहीं क्या क्या बोलेगा कि इसने कैसे बात की
1: ये बात
2: तो हमारी कबायली पठानों में ये बात है बाकी थोड़ा सिस्टम ठीक है पर लेकिन कबायल पठानों में ये
0: चले हम किसी को टारगेट नहीं करते हम ये कहेंगे कि ये चीज अगर मैं एक हकीकत बताऊँ ना तो मेरे भाई अबू बकर भाई ये चीज हमारे कल्चर में मैं ये नहीं कहूंगी कि पठानों में ना ये हमारे सारे के सारे सारा हमारा कल्चर के अंदर है ये और कल्चर में जब आप दीन को कल्चर के साथ मिक्स करते हो ना तो सिर्फ खिचड़ी बनती है
1: ऐसे ही
2: है
1: ऐसे ही बिल्कुल चलें जी अबू बकर लेकिन आप माशाल्लाह से समझदार हैं काफी तो ये जरूर कि आप करें अपनी फैमिली के लिए लेकिन करें जैसे अभी आप भांजों को बताया ना तो उनको अपने पैरों पे खड़ा करें और जो उधर रह रहे हैं उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करें अपनी लायबिलिटी ना रखें क्योंकि वो नहीं रख सकते आप
0: ये नहीं कह सकते कि पूरी जिंदगी का मेरे ऊपर है
1: बहुत शुक्रिया भाई सारा ख्याल बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है इंशाल्लाह अच्छा जी तो इसके साथ ही बैक टू बैक एक और कॉलर हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा वालेकुम सलाम बोलूं क्या बोलूं अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह
0: जी कौन है हमारे साथ
3: मेरा नाम मोहम्मद
0: इमरान ओह बहुत भारी भरकम नाम है आपका खैर आगे बढ़ते हैं नाम से
1: कैसे हैं भाई
0: कैसे हैं इमरान भाई
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया एवरी टाइम आप लोग का मैं सुनता हूं लेकिन आज पहली बार मैंने कॉल किया
1: अच्छा
0: आज मुद्दा ऐसा हो गया है
3: जी
0: आज मुद्दा ऐसा हो गया है
3: हाँ मैंने आपके कुछ बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया इसके लिए मुझे थोड़ा बात करने का थोड़ा
0: बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी अपनी राय शेयर करें यहाँ पे हम सब अपने ओपिनियन ही देने के लिए बैठे हैं आप बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में
3: मेरा ख्याल ये है कि लास्ट टाइम जो है मैंने अपने भांजे को एक ईएमआई पे गाड़ी लिया जैसा कि आपने बताया बॉन्ड लाइन के बारे में
0: सही
3: और मैंने अपने भांजे को जो है गाड़ी लेकर दिया था और ईएमआई डॉक्यूमेंट्स मेरा है ईएमआई उनको पे करना था
0: सही
3: तो उन्होंने एक ईएमआई में थोड़ा सा
0: डंडी मार दी
3: कर दिया था
0: सही
3: तो मैंने बोला नो
0: गुड गुड
3: तो ये मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा लेकिन थोड़ा सा उनको प्रेशर भी दिया मैंने लेकिन फिर उन्होंने मैनेज करके जो है
0: देखिए मैनेज हुआ ना प्रेशर से अगर आप थोड़ा सा मीठे होकर और आप ऐसी सरसरी सा बोल देते जैसे हमारे अम्मा अब्बा किया करते थे तो वो दूसरी ईएमआई के साथ भी यही होता जो पहली के साथ हुआ था
3: तो मैंने सही किया या गलत किया मुझे थोड़ा डाउट
0: था नहीं बिल्कुल सही है भाई आपका हक बनता है देखें
3: 1 वीक तक मैंने जो है थोड़ा सा अपने ऊपर ले लिया हेडेक ले लिया था फिर मुझे थोड़ा सा एनालाइज हुआ तो फिर मैं सोचा या मैं गलत किया फिर मैंने बड़े सिस्टर से बताया कि ऐसा किया कि क्या करूं मैं पे कर दूं उन्होंने मुझे 31st का टाइम दिया था 31st के दिन हाथ दे दिया
0: सही
3: फिर मैंने बोला नो टुडे तुमने दिया बोल रहा था जवान दिया था मुझे आज पे करना है ईएमआई का बैंक का सिस्टम ऐसा है मैम
0: हाँ जी मुझे अंदाजा है भाई और ये एक हकीकत बात है देखिए मामला पता है क्या होता है ये एक बहुत लंबी कड़ी है देखिए आप आज थोड़ा सा नीचे आ जाते अच्छा ये भी होता है हमारे अंदर का गिल्ट भी होता है ना एक कि हाय मैं बहन के बच्चों से भाई के बच्चों से कैसे बात करूं क्योंकि हमारे दिल में हम इमोशनल बींग है ना तो हमारे दिल में रह रहे के वसवसे आ रहे होते हैं कि नहीं हमें कहीं किसी की आह ना लग जाए नहीं मैंने एक सख्त लहजे से बच्चों से बात कर ली 10,000 चीजें होती है लेकिन अगर आप इस कड़ी को लंबा करके देखें ना बिगर पिक्चर देखें पता है क्या होगा आज आपने छोड़ दिया कल वही चीज रिपीटेडली कहीं और से भी आएगी इनसे भी आएगी और फिर आगे जाकर वो आपके बच्चों के ऊपर भी आएगी क्योंकि बाप ने किया तो इसके बच्चों को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए वो हम कहते हैं ना कि अपने माँ बाप को आप अच्छे तरीके से ट्रीट करो ताकि आपकी बीवी बच्चे ये देखें कि आप उनको कैसे ट्रीट करते हो और फिर वो भी उन्हें वैसे ही ट्रीट करें तो दुनिया ऐसे ही चलती है
3: एक्चुअली में क्या है बचपन से मैंने बहुत हेल्प किया लेकिन बोलना नहीं चाहिए बच्चा वो मेरे हाथ में ही बड़ा हुआ
0: इमोशनल है ना
3: उसको भी मैं रेडी होना बोल के शोरूम का गाड़ी मैंने उसको दिलाया शोरूम पे ले गया के मैंने पूरा उसको बताया तो वहाँ पे जो शोरूम है मेरा वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ गाड़ी का
0: सही हाँ
3: तो
0: ये
3: वो लोग ने बताया कि मामा की आप वैल्यू रखो एक भी ईएमआई एक्सक्यूज मत करो पूरा उसको क्लियर बताया था उनका मदर को उनका
0: जाहिर बात है आप एज अ गारंटियर गए थे आपका अपना एक रसूख था ये आपकी लिमिट जो है ना वो ये थी कि नहीं भाई ईएमआई मिस नहीं करना आपने सब कुछ करके दे दिया
3: अच्छा,
0: अपने पास
3: से एक बात है मेरे से आपसे मैं आइडिया लेना चाह रहा हूँ जैसे कि डिस्कस हो गया
0: जी
3: और सफा मैडम जो भी नाम माशाल्लाह
0: जी
3: मैं अपने बहनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं अपनी बड़ी बहन को अपनी सेकंड मदर मानता हूँ तो मैं आप लोग से आइडिया लेना चाह रहा हूँ जैसा कि उनका ईएमआई जैसा कि 20,000 समथिंग है. तो एक्चुअली मैं कुछ पे नहीं कर रहे होंगे, तो मैं तो सोचा हूँ कि एक 1% मैं पे करूँ क्या,
1: अगर आप कर सकते हैं इजीली तो कर तो आप सकते हैं, ठीक है आप कर देंगे, आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं ना,
0: ये बात
1: तो आप ना करें, बेहतर ये होगा कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेने दें,
0: एज पर जाकर, एज पर जाकर जब आपको पता हो ना कि अब कोई रास्ता नहीं है.
3: बच्चा ने जो है थोड़ा सा वो बिजनेस भी कर रहा है और प्लस कॉलेज भी पढ़ रहा है, फिर सिस्टर को भी जो है वो गाड़ी दे रहा है कि सिस्टर भी कॉलेज पढ़े, एमबीबीएस की तैयारी कर रही है उसकी सिस्टर, इनके लिए भी वो लोग बहुत जो है स्ट्रगल कर रहे हैं.
1: तो अच्छा एक बात, मतलब सॉरी मैं आपसे पूछ रही हूँ,
3: टाइम तो मैंने किया है.
1: हाँ हाँ नहीं नहीं, एक बात मैं पूछ रही हूँ,
3: 1% करूंगा तो बेहतर रहेगा.
1: नहीं
3: क्योंकि मेरी सिस्टर तो मेरे से बहुत एंग्री है, बहुत गुस्से में.
1: अच्छा नहीं, एक बात मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए उनकी पढ़ाई हो उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर पढ़ाई भी चल रही है, उसके एक्सपेंसेस हैं, दूसरे और दीगर एक्सपेंसेस हैं, तो गाड़ी एक लग्जरी में आ जाती है, ऐसा नहीं लगता आपको?
0: और भी नई गाड़ी
3: ऑलराउंडर वो लोग कुछ भी मिला के कर लेंगे आई थिंक, जैसा कि घर के अखराज हो गए या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर कोई और चीज हो गया, उसमें अराउंड मिला के वो लोग एडजस्ट कर लेंगे आई थिंक.
0: अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक एक बहुत सिंपल कर देती हूँ आपकी बात को. आपके अपने बच्चे होते ठीक है, यूँ सोचें वो आपकी बहन का बेटा नहीं, वो आपका अपना अपनी औलाद है. और आपको ये पता है कि अगर अभी मैं आपको बिल्कुल वही वाली बात बता रही हूँ जैसे मेरे अब्बा ने मुझे रेज किया है. आपको ये पता है कि आज मैंने इसको अगर सहूलत दे दी तो कल को दुनिया जो है ना इसे सही वाले सबक सिखाएगी. तो आपने उसे लक्कड़जम पत्थरजम बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, या आपने उसे मम्मी डैडी बच्चा बनाना है कि अच्छा उसको पता हो कि मेरा कोई और भर दे, आपने उसे क्या बनाना है?
3: लेकिन दिल नहीं मान रहा है ना
0: उसको, दिल हमारा इमोशनल है,
1: रख लें दिल पे पत्थर. देखिए बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे सफा ने वाकई बिल्कुल सही बात की, जैसे आपकी अपनी औलाद होती तो आप चाहते हैं ना अपने पैरों पे जल्द जल्द खड़ी हो जाए माँ बाप के लिए सबसे.
3: हाँ मैडम मैंने भी अपना सेल्फ लाइफ गुजारा है, सेल्फ अपना हर वो चीज इस्तेमाल किया है, हालांकि मेरे पास भी बहुत कुछ था. जैसे मैं किंगडम से आता हूँ हैदराबाद यू नो निजाम स्टेट, तो वहाँ पर भी काफी सारे हम लोग का था, लेकिन मेरे फादर का इतना स्ट्रिक्टली रूल था तो सब कुछ था, फिर भी मैंने जो है अपने लाइफ में बस में ट्रैवल किया था वो टाइम पे.
0: ये बात मैं आपको करने वाली थी अभी.
1: Exactly.
0: मैं आपको बता दूं,
1: और चाहे उसकी वजह से मोहम्मद इमरान आज आप यहाँ पर हैं जहाँ हैं.
0: Exactly.
1: और आप अपने भांजे से मोहब्बत करते हैं, आप यकीनन चाहते होंगे कि वो भी आपके मकाम तक पहुंचे बल्कि आपसे भी आगे निकले, तो उसे वो करने दें, सफर करने दें थोड़ा सा.
0: भाई यहाँ पर भी कतर में रहकर भी और पाकिस्तान में रहकर भी मुझे पता है इतनी अफोर्डेबिलिटी थी कि हम भी आराम से अम्मा अब्बा की कमाई पे गाड़ी निकलवा सकते थे, बाइकें निकलवा सकते, सब कुछ कर सकते थे.
3: और एक बात है क्या, बड़े सिस्टर के लड़के को मैंने जो है इतना हेल्प किया, खैर अल्लाह जानता है, उसको यहाँ पर बुला के यहाँ से अमेरिका भेजा मैंने. तो वो लोग ये सोचते होंगे कि दूसरे सिस्टर के लड़के को हेल्प किया, मुझे नहीं.
0: नहीं नहीं नहीं मेरे भाई देखें अब हमारे पास टाइम भी कम है ना, सिर्फ क्रिस्प शॉर्ट बात करेंगे और वो ये है कि बड़ी बहन के मामले में शायद उस वक्त आपकी सितात इतनी हो, आपकी एनर्जी इतनी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ना.
1: दूसरी चीज ये कि एक अगर हो गया एक जगह पे तो किसी की किस्मत भी होती है, तो वो बात ये तो नहीं आ जाएगी ना कि आप जिंदगी भर उसके नीचे दबे रहेंगे कि मैंने ये किया तो मुझे सबके साथ करना है. तो इसलिए आप आराम से रहें, बिल्कुल कोई गिल्ट ना पालें, उस बच्चे के लिए आपकी नीयत अच्छी है, दुआ कीजिए, उसको थोड़ा सा पुश कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन पैसों के मामले में कोशिश करें कि वो इंडिपेंडेंट.
0: ये याद रखें कि माविश ने वर्ड बोला है सपोर्ट का, माविश ने ये नहीं कहा कि पूरा पूरा दरख्त उसको उगा कर देना है आपने.
1: बिल्कुल ठीक है,
0: और सपोर्ट तब
1: आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
3: मैं आपसे एक और एक बार लास्ट बात करके जितने भी जो कॉलर आपसे बात करे वो लोग ने बताया कि बाउंड्री जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है लेकिन थोड़ा बहुत हम करना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करते हैं. बाकी सब ये जो एआई का टाइम है ये तो पूरा टिकटॉक, ये जो इंस्टाग्राम का जो ये चल रहा है पीरियड, ये पूरा सेल्फ डिजर्व करता है. तो मैं इस बारे में कहूंगा कि हमारे अपने लोगों को जो है जहाँ तक हो सके हम अपने अंदर देखें जो है जितना हमसे हो सका थोड़ा बहुत
1: सपोर्ट जरूर करना चाहिए. बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल टाइम नहीं बचा. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी इस मैं फॉरन से ना कुछ मैसेजेस पढ़ दूं क्योंकि वो बेचारे कॉल भी कर रहे होंगे, उनकी कॉल नहीं मिली. अच्छा जी भाई

0: जागो सब लूट लेंगे वरना ये सैयद भाई बोलते हैं इनको इसके साथ ही मोहब्बत तो हमने बहुत की है अभी हमारी उम्र उम्र तो बाकी है हम 20 साल की उम्र है भाई हमारी तो ये कह रहे हैं ये भाई कौन 15
1: साल बड़े
0: अरवाज खान अरवाज खान हो गए
1: अरवाज खान उनसे 15 साल बड़े
0: और लतीफ भाई का भी मैसेज है ये भी जो है आपका अच्छा भाई कॉल का नंबर बता दो एक दफा लेकिन आज नहीं कॉल कीजिएगा
1: 4443 नंबर है 4443
0: इस नंबर पे कॉल किया करें व्हाट्सएप पे कॉल ना करें गुड मॉर्निंग मोहातिर का मैसेज मतर कदीम से गुड मॉर्निंग आपको भी इसके साथ ही महावश मैम सफा जी मुबीन बुखारी ये बहुत सारे मैसेजेस तो इसके साथ इस मैटर में मैं आपको कुछ डिटेल समझा सकता हूँ और ये कह रहे हैं मिस्टर जैदी चलें मिस्टर जैदी हम आपसे जरूर समझेंगे आप हमें
1: मैं जाते आते ना दो तीन टिप शेयर करती जाऊँ
0: जल्दी कर दो
1: तो भाई दो तीन टिप ये हैं देखिए पहली बात तो ये हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए ना आपको थोड़ी बहुत टिप फॉलो करना पड़ेंगी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ भाई खुदा को मानो पहले खुद से पूछें कि क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो भाई अभी हमारे बात करके गए थे तो अपने आप से पूछें क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना मैं कर सकता था उतना मैं कर रहा हूँ और उसके बाद क्या है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है दूसरी बात ये कि नो कहना प्रैक्टिस करें हर रिक्वेस्ट का जवाब यस देना जरूरी नहीं होता पहले सोचें फिर जवाब दें और हाँ एक और चीज जो बेसिक है गिल्ट को बाउंड्री तोड़ने की वजह ना बनाएं किसी को डिसअपॉइंटमेंट हो किसी ने ये कह दिया घर वाले क्या बोलेंगे वो क्या सोचेगा ये आपका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मामला ये होता है कि आप बर्नआउट पर आ जाते हो फिर
0: सही हो गया जी तो इंशाल्लाह ताला हैप्पी वीकेंड आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नहीं इंशाल्लाह मुलाकात होगी संडे को हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू हमारी तरफ से
1: अल्लाह हाफिज और याद रखें कि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा
0: अल्लाह हाफिज़

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। ये हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने किराम, एक मरतबा फिर ये सआदत नसीब हो रही है मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को कि मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ जो हमारे दिलों को कुरान करीम के करीब लाने, उसके मानी में गौर करने और उसके अंदर छुपे हुए हिकमत मोतियों को तलाश करने की एक अदना सी कोशिश है। प्रोग्राम का नाम आपने सुना है पर्ल्स ऑफ द कुरान, कुरान के मोती। इससे पहले भी एक तवील अरसे तक तफहीमुल कुरान के सिलसिले में हम आपके साथ कुरान मजीद के फहम तदब्बुर का सफर करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान कुरान को मुख्तलिफ जावियों से समझने, उसके पैगाम को अपनी जिंदगी से जोड़ने और उसकी आयात में पोशीदा हिदायत को

महसूस करने की कोशिश जारी रखी। और अब एक बार फिर हम इसी कुरानी समंदर में उतरने जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये कोशिश होगी कि हर नशिस्त में किसी आयत, किसी एक कुरानी मंजर, किसी एक माना या किसी एक सूरत को मुंतखब किया जाए और फिर उसके अंदर मौजूद उन मोतियों को तलाश किए जाएं जो हमारी सोच, हमारे दिल और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को रोशन कर सके। तो सितंबर से दिसंबर तक इंशाअल्लाह इस नए शेड्यूल के दौरान कुरान की मोती का ये सिलसिला बाकायदगी के साथ जारी रहेगा और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो इस मामूली कोशिश को शरफ़ कबूल अता फरमाए, उसे हमारे लिए इल्म नाफे, अमल साले और क़ुर्ब इलाही का ज़रिया बनाए और कुरान को वाकई हमारे दिलों की बहार और हमारी ज़िंदगी की रोशनी बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामने किराम, जब इंसान कुरान करीम में तख्लीक से मुतालिक आयात पढ़ता है और फिर एक लम्हे के लिए अरबों के पूरे अदबी व सकाफती वर्से को सामने रखता है, शायरी, खिताबत, रसूम, रिवायात, तहजीब, तो एक अजीब फर्क सामने आता है। ये सिर्फ जबान के हुसन, उसलूब या फसाहत का मसला नहीं, ये फर्क दरअसल मंबा का है। एक तरफ इंसान है अपने तजुर्बे, अपने माहौल और अपनी महदूद नजर के साथ, और दूसरी तरफ वो कलाम है जिसमें खालिक खुद अपनी तखलीक, अपनी कुदरत और अपनी रुबूबियत का तारुफ करा रहा है। इसीलिए अगर अरबी अदब और तहजीब के पूरे वर्से को एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ सिर्फ कुरान करीम की एक सूरा, सूरह फातिर जैसी एक सूरत खोल दी जाए तो महसूस होता है कि यहाँ गुफ्तगू की सतह ही कुछ और है। वहां बशर है और यहाँ रब्बुल बशर है। तो हमारे आज की इस तमहीद से, इस इब्तिदा से आप समझ गए होंगे कि आज हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी सूरह फातिर को लेकर। सूरह फातिर में छुपे वो कुरानी मोती हम तलाश करेंगे आज, जो हमारी पूरी जिंदगी के लिए मिशाल राह बन सकते हैं। सूरह फातिर का आगाज ही देखिए, इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في

उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहां फेरे जा रहे हो। यहां तौहीद की दलील बड़ी सीधी है, जो खालिक एक है, रिज़्क देने वाला एक है, मालिक एक है, तो इबादत का मुस्तहिक भी वही एक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती है, वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुन मिन क़ब्लिक वइलल्लाहि तुर्जउल उमूर, अगर ये आपको झुटलाते हैं तो आप से पहले भी रसूल झुटलाए गए और तमाम मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। फिर इंसान को दुनिया के धोखे से खबरदार किया जाता है, या अय्युह الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور, कि अल्लाह का वादा बरहक है, लिहाजा दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में न रखे। फिर शैतान के बारे में साफ ऐलान आता है, ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, वो तुम्हारा दुश्मन है बस उसे दुश्मन ही समझो। यानी सूरह फातिर का आगाज मुसलसल इंसान की तवज्जो एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ ले जाता है, खालिक कौन है, रहमत किसके हाथ में है, रिज़्क कौन देता है, इख्तियार किसका है, वापसी किसकी तरफ है, धोखा किसकी तरफ से आता है और फिर दुश्मन कौन है। इसी तरह फिर सूरत हमें एक और अजीम मंजर दिखाती है, वल्लाहु अल्लज़ी अरसला अर-रियाह फतुसीरु सहाबा فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. अल्लाह हवाएं भेजता है, फिर वो हवाएं बादल उठाती हैं, फिर हम उन बादलों को मुर्दा जमीन की तरफ ले जाते हैं और उसी पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। फिर एक मुख्तसर जुमला, كذلك النشور, उसी तरह दोबारा उठाया जाना होगा। कितने वाज़े दलील है, तुम हर साल मुर्दा जमीन को जिंदा होते देखते हो, खुश्क मिट्टी जिसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं, बारिश आती है और वही जमीन सब्ज हो जाती है। तो जो रब जमीन को मौत के बाद जिंदगी दे सकते, इंसान को मौत के बाद क्यों नहीं उठा सकता। सूरह फातिर इंसान से कहती है, क़यामत के लिए कोई ऐसी मिसाल मत मांगो जो तुमने कभी देखी ही ना हो, अपने सामने जमीन को देख लो। फिर इज्जत का मसला आता है, मन कान युरीदु अल-इज्जत फलिल्लाहिल-इज्जत जमीअ, जो इज्जत चाहता है वो जान ले कि तमाम इज्जत अल्लाह ही के पास है। कितनी अहम बात है कि इंसान अक्सर इज्जत लोगों से मांगता है, ताकतवरों से मांगता है, नाम और शोहरत से मांगता है, किसी समाजी मकाम से मांगता है। कुरान कहता है कि इज्जत का असल खजाना अल्लाह के पास है। फिर फरमाया, इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिब والعمل الصالح يرفعه, पाकीज़ा कलाम उसी की तरफ बुलंद होता है और सालह अमल उसे ऊपर उठाता है। फिर वो लोग जो बुराई के मंसूबे बनाते हैं उनके लिए अजाब और उनकी तदबीर एक के बर्बाद होने का जिक्र आता है। उसके बाद तखलीक का दायरा मजीद करीब आ जाता है। पहले सवाल आम था, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, अब खिताब खुद इंसान की तखलीक पर आ जाता है, والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا, अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हें जोड़ों में बनाया। फिर फरमाया, وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي, कोई मादा ना हमल उठाती है और ना बच्चा जनती है मगर अल्लाह के इल्म के साथ है। जरा इस माने की वसत को महसूस कीजिए, सिर्फ एक औरत की बात नहीं या एक जानवर की बात नहीं हो रही, जमीन पर जितनी मादाएं हैं, जिस मखलूक में भी हमल है, विलादत है, सब अल्लाह के इल्म में है। फिर फरमाया, युअम्मरु मिन मुअम्मर वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फी किताब इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, किसी की उम्र बढ़ती है या कम होती है, सभी किताब में दर्ज है, ये अल्लाह के लिए आसान है। तो यहाँ रुबूबियत का तसव्वुर सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने कायनात को पैदा कर दिया और छोड़ दिया, बात ऐसी नहीं, वो पैदा करने वाला भी है, जानने वाला भी, निजाम चलाने वाला भी, जिंदगी के हर मरहले का इहाता रखने वाला भी। और फिर सवाल ये पैदा होता है, एक आकिल इंसान इसे सुनने के बाद एक लकड़ी या पत्थर के बुत के सामने कैसे झुक सकता है। यहाँ असल मसला दलील की कमी नहीं था, मसला कुछ और था, मौरूसी सकाफत की ताकत, समाजी हैबत और बड़े लोगों की बनाई हुई तस्वीर।

0: शराकत है। एक बार फिर वही बुनियादी सवाल, क्या पैदा किया? अगर कुछ पैदा नहीं किया, अगर इख्तियार नहीं, अगर मुल्क नहीं, तो इबादत का हक कहां से आ गया है? फिर आखिरी हकीकत, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا। आसमानों और जमीन की कोई चीज अल्लाह को आजिज नहीं कर सकती, और इस सब के बावजूद अल्लाह फौरी गिरफ्त नहीं करता। وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى। अगर अल्लाह लोगों को उनके आमाल पर फौरन पकड़ लेता तो जमीन पर कोई जानदार बाकी न रहता, मगर वो उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत देता है। समीर कराम, सूरह फातिर का पूरा नक्शा हमारे सामने आ गया है। तखलीक से तौहीद, तौहीद से इबादत, इबादत से जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से आखिरत, और आखिरत से जजा व सजा, और फिर दोबारा कायनात की निशानियों की तरफ वापसी। और इसी पूरे सियाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्तिदाई अहले ईमान के लिए अज़ीम तसल्ली पोशीदा थी कि ज़मीन के हालात मुश्किल हो सकते हैं, मुखालिफीन ज़्यादा हो सकते हैं, वसाइल कम हो सकते हैं, मगर हकीकत फिर भी यही है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। और शायद सबसे कीमती मोती ये है कि ईमान इंसान को सिर्फ ये नहीं बताता कि अल्लाह मौजूद है, ईमान उसे ये यकीन भी देता है कि जिस अल्लाह पर वो ईमान लाया है, असल मुल्क, असल कुव्वत, असल इल्म और असल फैसला सब उसी के हाथ में है। तो सामने कलाम सूरह फातिर के आखिरी हिस्सों में एक ऐसी शान कलाम सामने आती है जिसे सुनकर इंसान महसूस करता है कि ये गुफ्तगु किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये उस रब का कलाम है जो मखलूक को पैदा करने वाला भी है, उनके जाहिर और बातिन को जानने वाला भी, उनके मुस्तकबिल से वाकिफ भी, और आखिरत के अंजाम का मालिक भी। यहाँ कुरान इंसान को एक बुनियादी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है कि आखिरत महज एक मजहबी तसव्वुर नहीं, बल्कि एक यकीनी मुस्तकबिल है। जन्नत हकीकत है, जहन्नम हकीकत, हिसाब हकीकत है, और इंसान एक ऐसे सफर पर है जिसका आखिरी पड़ाव इन्हीं में से किसी एक अनजान तक पहुँचना है। اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره। सामने कराम, प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के दे दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
6: चले तो कट ही जाएगा सफर।
5: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
7: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ,
8: दोहा वाले कबीर के साथ।
9: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ। एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक एवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। आज सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर।

0: से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए, जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फौरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। बच्चा खाना नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, इसे जो फिश की महक नहीं अच्छी लगती, इसे मीट से चिढ़ है, ऐसी बातें हर दूसरे घर में सुनाई देती हैं। बड़े तो खाना खाते हैं मगर सब्जी पराए नाम। और इसी तरह से दूसरी तमाम चीज़ें जिनमें कि बहुत ही ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रा हम इग्नोर कर देते हैं। मगर हमें अपना जो तर्ज फिक्र है या जो सेहत का ख्याल रखना है उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो देना है, क्योंकि बच्चे फिर पेरेंट्स को ही रोल मॉडल बना रहे होते हैं। बच्चे के खाने ना खाने या बेतरतीबी से खुराक का इस्तेमाल करने की वजह भी वालिदैन ही होते हैं। अब ये कि आप ये कह रहे होंगे कि वालिदैन ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को ज़्यादा मैनेज करना है। अब ये कि वजन और कद का हिसाब जरूर रखें, हमेशा ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं जिसकी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
1: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से दो नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है. इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों. ये इकदामात कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं.
2: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक

0: कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है।
1: बस मेरे लिए
0: तो कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक,

0: FM 107, दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, काफी कुछ है जो आज की दुनिया में चल रहा है। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी भी हो रही है और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो एआई से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत भारी रकम अदा करनी पड़ी है अगर वो एआई का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग अभी 2026 में इस साल से शुरू करना चाहते हैं अपना कंटेंट जनरेशन, ऑनलाइन जाके कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूं आपको जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। यू वांट टू ट्रीट देम एज योर एप्स या फिर वेबसाइट, विच एवर वे यू वांट टू, पर ये बहुत मेन रहने वाली। तो शुरू करते हैं बहुत ही मेजर मेजर अपडेट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट है आपके लिए वो वेबसाइट जो आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स देगी। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं कि वो मैच करने के लिए, एल्गोरिथम में बिठाने के लिए, ये सब कुछ चाहिए होता है। और कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स, कुछ BGM ऐसे होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर, जो आप कहीं भी सुनते हैं और आपको लगता है यार ये मैं कैसे डालूं, फिर आप अगड़म चगड़म इधर उधर जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, चाहे वो इंट्रो साउंड हो, चाहे वो बीच में आपको ट्रांजिशन देना हो, या फिर ये तो नॉर्मल बताया मैंने, कैसा भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए हो आपके कंटेंट जनरेशन के लिए, वो या आपको मिलेगा। अब वेबसाइट का नाम बता देता हूं, तो myis.com myinstance myinstance, तो उस पर जाइएगा। एंड दूसरी एक और वेबसाइट है इससे जुड़ी हुई जिसका नाम है soundbible.com soundbible.com soundbible.com और myinstance.com। अब यहां जो है हमने साउंड को मैनेज कर लिया, साउंड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो लोग अक्सर वीडियोस में देखते हैं और काफी ज्यादा क्यूरियस है कि यार ये कैसे किया होगा, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। वो आपने देखा है जो लाइक और फॉलो के बटन्स आते हैं बड़े क्रिएटिवली सामने आते हैं किसी वीडियो में, आप देखते हैं भाई ये बड़ा क्रिएटिव था। तो लाइक और फॉलो वाले जो बटन्स हैं अगर आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट एनिमेशंस के साथ, तो उसके लिए भी दो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन इज Jitter, JITTER, Jitter Video, यहां पे भी आप जा सकते हैं। और दूसरी है videoeffects.com। अब यहां पे जाइए, सुकून से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां से। और तीसरी बात, अगर आपको स्टॉक इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस जिन पे कोई कॉपीराइट ना लगाए, कोई आपको टोके टाके नहीं और आपकी कंटेंट जनरेशन में मदद मिले, तो इसके लिए भी दो वेबसाइट है। पहली है pixels.com pixels.com और दूसरी है pixabay.com pixabay.com pixabay.com। तो कॉपीराइट फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर मेजर वेबसाइट जो मैंने आज आपको बताई है। तो कंटेंट जनरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड ये सब आप यूज करेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द न्यूज दिस वीक। देखिए, पूरे हफ्ते आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कोई गैजेट खरीदने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन यहाँ पे सामने से, तो आपने देखा है जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, स्पेशली वो हार्डवेयर जो एआई के साथ साथ चल रहा होता है। रिपोर्टेडली अभी बताया गया है, एनवीडिया की अगर बात करूं तो उन्होंने भी देखा कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है और उन्होंने भी बढ़ा दी है, 15% प्राइस इंक्रीज देखा गया है। जो एआई सर्वर्स हैं लार्जली उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो है मेमोरी कॉस्ट।

मेमोरी जो कॉस्ट जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी प्रेशर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल क्यों ना हो. एंड ये इंक्रीजिंगली नीड, जो इंक्रीज नीड है, बढ़ती हुई जरूरत है जो मेमोरी की है, मेमोरी की, इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स की शिपिंग में भी फर्क पड़ रहा है. तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग और प्राइस रेंज आप देख के सोच रहे हैं यार थोड़ा रुक जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है, वो प्राइस और बढ़ जाएगा. इफ यू हैव सीन रिसेंटली प्ले स्टेशन भी थोड़े से महंगे हुए हैं. सो ये आप बस हम उस एरा में जिन्हें मान के रखिए जहां पर आपको हार्डवेयर जो कि एआई से जुड़ा हुआ है वो महंगा पड़ने वाला है. सो अभी मौका है भाई, ये गोल्ड वाला सिस्टम हो रहा है, अभी ले लो. हाँ ठीक है. एक और खबर आपको बता देता हूँ, वो है एप्पल से जुड़ी हुई. तो एप्पल एज अ कंपनी, उन्होंने काफी इनोवेशन तो नहीं किए रिसेंटली, बस थोड़ा डिजाइन इस बार बदला, विच इज गुड. अभी वो M6 जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हेडलाइन में बार बार आ रहे हैं. रिपोर्ट से कहती है कि एप्पल ने जो है अनवील कर दिया है अपना M6 2mm चिप और साथ में M5 अल्ट्रा भी. पर M5 अल्ट्रा जो है वो एम्फेसाइज करता है AI परफॉर्मेंस पर. सो व्हाटएवर एप्पल इज डूइंग, आई ओनली विश ऑल द बेस्ट. बाकी एप्पल के जब फोन्स पूरी तरह से सामने आ जाएंगे फॉर द रिव्यू तो आपको उसका रिव्यू भी मिल ही जाएगा. मगर आपके पास कोई अपडेट है, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, हमें भी जरूर बताएगा. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक अपडेट, दिल से देसी. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने

0: 8888 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: Emphasis 7 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका इस फ्रॉड अवेयरनेस के नए एपिसोड में। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में, नए स्कैम के बारे में हर रोज हम बात करते हैं और आज भी एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे साथ हो जाता है। हमारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है लेकिन ये स्कैमर्स नए तरीके ढूंढते हैं और इस नए जमाने में उनसे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में जो एक्चुअली में हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारे साथ ये फ्रॉड हो ही जाता है, लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है। ये है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। एक ऐसी चालाकी है जहां स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एड्स के जरिए बड़े आम से भोले भाले बायर्स को फंसाते हैं। आजकल लोग इंटरनेट पर शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं, खास तौर पे घर की फीमेल्स, और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके निकालते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए इसके तरीके और इसके बड़े सॉल्यूशन को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले लेकिन हमको समझना होगा कि ये फ्रॉड काम कैसे करता है। दोस्तों स्कैमर्स अक्सर बिल्कुल असली दिखने वाले नकली शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं। ये साइट्स फेमस ब्रांड्स के होते हैं, कॉपी होते हैं ताकि आपको शक ना हो। इम्पॉसिबल लो प्राइसेस इन वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट देखी थी और ये वेबसाइट वो थी जो हमारे घरों पे खाना डिलीवर करती है, और ये वेबसाइट इतनी ज्यादा असली लग रही थी कि लोग अगर इस पर क्लिक करें तो समझ में साफ आता था कि ये बिल्कुल असली है। आप उसमें ऑर्डर डिटेल डालते हैं, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होता है, फिर आप पेमेंट अपनी डालते हैं, सारी डिटेल डालते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद घंटा, दो घंटा, तीन घंटा हो जाता है और आपके घर खाना नहीं पहुंचता है। फिर आप सोचते हैं कि ये खाना मेरे घर पहुंचा क्यों नहीं, जरा कॉल करें। और जब कॉल पर जाते हैं, उस वेबसाइट की डिटेल्स जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में कोई फोन नंबर, कोई हेल्पलाइन इस वेबसाइट में तो है ही नहीं, तो आप कॉल किसको करेंगे। तब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो नए जमाने के नए जो स्कैमर्स हैं, नए जो थीव्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको पता भी ना चले। ये वेबसाइट्स जो फेक होती हैं इनको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी हो तो इनको पकड़ना आसान भी होता है। और इसी तरह के सॉल्यूशंस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्रॉड होते कैसे हैं। इम्पॉसिबल दिखने वाले कम या कहें लो प्राइसेस में गुड्स का अवेलेबल होना, ये लोग पॉपुलर आइटम्स पर इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं जो सच होना नामुमकिन होता है। उसके अलावा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अट्रैक्ट एड्स दिखाना, उसके अलावा फेक वेबसाइट पर ऐसे डिटेल्स डालना कि आपको लगे कि ये सच है, उसके अलावा फिर होता है ट्रैप। जब आप ऐसी जगह से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये स्कैमर्स आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं भेजते आपको, या फिर आपको एक बेहद सस्ता नकली प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं। इसके साथ ही वो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी चुरा लेते हैं ताकि बाद में आपके अकाउंट से पैसे निकाल सके। लेकिन इससे बचे कैसे? इनके 5 तरीके हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के, आसान। सबसे पहले पैडलॉक आइकॉन को चेक करें। हमेशा वेबसाइट के URL यानी कि एड्रेस बार में चेक करें कि वहां एक यानी कि ताला का जो आइकन होता है ना, वो छोटे से लॉक का जो आइकन होता है, वो अवेलेबल है या नहीं है। इसका मतलब होता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। अगर ताला लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है। उसके अलावा HTTPS, ये शुरू होना जरूरी है। उसके अलावा वेबसाइट का URL, इसको भी जरूर चेक करें। फिर रिसर्च अनफेमिलियर स्टोर्स फर्स्ट। अगर आप किसी बिल्कुल नए या अनजान ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, सोशल मीडिया पर रिसर्च करें, सर्च इंजन पर रिव्यूज पढ़ें, और बाकी लोगों ने उस साइट को फ्रॉड बताया तो वहां से दूर रहें। टू गुड टू बी ट्रू डील्स, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का। अगर कोई नया या अनवेरिफाइड स्टोर किसी 50,000 के फोन को सिर्फ 5,000 में दे रहा है तो लालच में बिल्कुल ना आए। ऐसे बड़े और अजीब डिस्काउंट हमेशा एक फ्रॉड ट्रैप होते हैं। उसके अलावा COD, नए या कम भरोसेमंद स्टोर्स पर कभी भी एडवांस ऑनलाइन पेमेंट ना करें। हमेशा

0: कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। उसके अलावा एक और तरीका है बचने का, वो है अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा हुआ तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं, ताकि आगे होने वाले स्कैम से भी आप बच सकें। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जो बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड पर। उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा और आपके साथ इस तरह का स्कैम कभी नहीं होगा। सुनते रहे FM 107। मुलाकात होगी नए एपिसोड में जल्द ही। दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। एनबीए की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये रिकॉर्ड्स किसी प्लेयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, कंसिस्टेंसी और लॉन्गेविटी की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड बास्केटबॉल लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार के नाम रहा। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड। 5 अप्रैल 1984 ये तारीख NBA की स्कोरिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन करीम अब्दुल जब्बार ने NBA में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनका करियर टोटल था 38,387 पॉइंट्स, एक ऐसा नंबर जो उस वक्त बास्केटबॉल की दुनिया में एक नया बेंचमार्क बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ स्कोरिंग एबिलिटी नहीं थी, इसके पीछे थी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर। थोड़ा पीछे चलते हैं और मालूम करते हैं कि करीम अब्दुल जब्बार ने अपना सफर कब शुरू किया था। करीम अब्दुल जब्बार का NBA करियर 1969 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने मिलवाकी बक्स के साथ प्रोफेशनल बास्केटबॉल में कदम रखा। अपने पहले सीजन में करीम अब्दुल जब्बार ने सबको बता दिया कि वो आम प्लेयर नहीं हैं, यानी देयर वाज समथिंग इन हिम, द स्पार्क वाज देयर इन हिम। उनकी हाइट, एथलेटिक एबिलिटी, बास्केटबॉल इंटेलिजेंस और स्कोरिंग स्किल ने उन्हें NBA के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। और फिर उनका सिग्नेचर मूव, जी हाँ, स्काई हुक। स्काई हुक करीम अब्दुल जब्बार की पहचान बन गया। ये शॉट देखने में सिंपल लगता था, लेकिन डिफेंडर्स के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल था। करीम अपनी हाइट और रीच का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बास्केट के करीब से एक हाई आर्किंग हुक शॉट लगाते थे। साल गुजरते गए, लेकिन करीम की स्कोरिंग कंसिस्टेंसी कम नहीं हुई। वो हर सीजन अपनी टीम के लिए रिलायबल स्कोरिंग ऑप्शन रहे, और यही उनके रिकॉर्ड की सबसे खास बात थी। 38,387 पॉइंट्स एक या दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन्स का नतीजा नहीं थे दोस्तों, ये पॉइंट्स एक लंबी और कंसिस्टेंसी ब्रिलियंट करियर का नतीजा थे। करीम ने मिलवॉकी बक्स के साथ भी सक्सेस हासिल की और बाद में लॉस एंजलिस लेकर्स का हिस्सा बने। लेकर्स के साथ उनका करियर और भी लेजेंडरी बन गया। मैजिक जॉनसन के साथ उनकी पार्टनरशिप NBA हिस्ट्री की सबसे मशहूर जोड़ी में शुमार होती है। करीम ने अपने करियर में 6 NBA चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 6 NBA मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड्स भी हासिल किए, जो NBA हिस्ट्री में एक क्रूशियल अचीवमेंट है। इसके अलावा वो 19 मरतबा NBA ऑल स्टार सेलेक्ट हुए। ये नंबर्स बताते हैं कि करीम सिर्फ एक ग्रेट स्कोरर नहीं थे, वो अपने दौर के सबसे कंप्लीट और डोमिनेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक थे। दोस्तों यहां पे बताना जरूरी होता है कि उनका ये स्कोरिंग रिकॉर्ड तकरीबन 29

साल तक कायम रहा यानी 39 years. इस दौरान NBA में कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोरर्स आए लेकिन करीम अब्दुल जब्बार के रिकॉर्ड तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था फिर 2023 में एक और बास्केटबॉल लेजेंड ने करीम अब्दुल जब्बार का ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ दिया लेब्रॉन जेम्स मॉडर्न बास्केटबॉल में अगर कोई स्टार खिलाड़ी है तो लेब्रॉन जेम्स के बारे में लोग एग्जांपल देते हैं तो लेब्रॉन जेम्स ने करीम अब्दुल जब्बार के 38,387 करियर पॉइंट्स के रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिया तीन साल पहले की बात है ये लेकिन रिकॉर्ड टूटने का मतलब ये नहीं कि करीम की अचीवमेंट की अहमियत कम हो गई बल्कि इससे ये और साबित हुआ कि करीम का रिकॉर्ड इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था दैट इट स्टूड फॉर 39 ईयर्स तकरीबन चार डेकेड्स तक NBA का स्कोरिंग बेंचमार्क रहना अपने आप में एक फेनोमिनल अचीवमेंट है सो फाइनली करीम अब्दुल जब्बार एक लेजेंडरी स्कोर एक सिक्स टाइम NBA चैंपियन सिक्स टाइम MVP और एक आइकॉनिक स्काई हुक आर्टिस्ट और एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने NBA की तारीख में 38,387 पॉइंट्स के साथ अपनी पहचान हमेशा के लिए अमर कर दी उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 अतर. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरासत।

यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर तर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में मजलिस को बहुत अहम मकाम हासिल है। मजलिस सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती, बल्कि मुलाकात, गुफ्तगु, माशरे और अपनाइयत का एक खूबसूरत जरिया होती है। ये वो जगह है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खैरियत पूछते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। पुराने वक्त में मजलिस घर का ऐसा हिस्सा होता था जहां मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था। आज भी कई घरों में मजलिस के लिए खास जगह होती है। इसका अंदाज जदीद हो सकता है, लेकिन इसकी असल रूप वही है, मेहमान को इज्जत देना और लोगों को करीब लाना। मजलिस में दाखिल होते वक्त सलाम करना और वहां मौजूद लोगों से अदब के साथ मिलना रिवायती रवैया है। पहले बुजुर्ग को सलाम किया जाता है, फिर दूसरे अफराद से मुलाकात होती है। बैठने के लिए जगह पेश की जाती है और मेहमान की राहत का ख्याल रखा जाता है। मजलिस की सबसे खूबसूरत बात गुफ्तगू का सलीका है। यहाँ लोग एक दूसरे की बात तवज्जो से सुनते हैं। अल्फाज का लहजा, मोहब्बत और अल्फाज मोहतरम होते हैं। हर मुलाकात में जरूरी नहीं कि कोई रस्मी बात हो, कभी रोजमर्रा के हालात, मौसम, खानदानी खबरें या खुशगवार यादें भी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाती हैं। कतरी मजलिस में सुनने की आदत को भी बहुत अहमियत दी जाती है। जब एक शख्स दूसरे की बात तवज्जो से सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी राय और तजुर्बा कीमती है। ये रवैया खास तौर पर लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल बनता है। बुजुर्ग मजलिस का एक अहम हिस्सा होते हैं। वो अपने तजुर्बे, यादें और रिवायतें, कहानियां नई नस्ल तक पहुंचाते हैं। उनकी बात से बच्चों को अपने माशरे, शहर और विरसे के बारे में सीखने का मौका मिलता है। इस तरह मजलिस सिर्फ खूबसूरत मुलाकात की जगह नहीं रहती, बल्कि तालीम और तरबियत का जरिया भी बन जाती है। कहवा और खजूर का जिक्र मजलिस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मेहमान को कहवा पेश करना मेजबान की खुलूस भरी पेशकश होती है। छोटे प्याले को अदब और मोहब्बत के साथ दिया जाता है। मेहमान की पसंद और राहत का ख्याल रखना भी अच्छे मेजबान की अलामत है। मजलिस का ताल्लुक सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, तरी समाजी जिंदगी में लोग मुख्तलिफ जगहों पर भी जमा होते हैं, जहां मोहतरम गुफ्तगु और मिल बैठने का राज नजर आता है। अहम ये होता है कि लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और रابطے को मजबूत करें। जदीद जिंदगी में लोग मसरूफ जरूर हो गए हैं, मगर इंसानी मुलाकात की अहमियत कम नहीं हुई। फोन और पैगामात रابطہ रखने में मदद देते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर बात करने का सुकून अपनी जगह रखता है। मजलिस इसी इंसानी रابطے की याद दिलाता है। मजलिस में बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो देखते हैं कि मेहमान कैसे आते हैं, किस तरह सलाम किया जाता है और बड़े लोगों से किस अदब के साथ बात की जाती है। मशक्कत, सब्र, नरमी और इज्जत जैसे अखलाकी उसूल अक्सर जबानी तालीम के बजाय अमल से ज्यादा अच्छी तरह समझ आते हैं। मजलिस की सजावट में भी सकाफती नजर आ सकता है। फर्श, बैठक, खूबसूरत नक्शोनिगार और साफ सुथरा इंतजाम मेहमान के लिए सुकून का माहौल पैदा करता है। साथ ही सजावट का असल मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि आराम और मुनासबत भी होता है। मजलिस हमें एक अहम बात सिखाती है, बेहतर गुफ्तगू के लिए दिल में इज्जत और अल्फाज में नरमी होनी चाहिए। किसी की बात को बगैर वजह काटने के बजाय उसे पूरा सुनना, इख्तलाफ की सूरत में एहतराम का लहजा रखना और मुस्कुराहट के साथ पेश आना अच्छी सोहबती आदतों में शामिल है। कतर की मजलिस एक ऐसी रिवायत है जो माजी को हाल से और बुजुर्गों को नई नस्ल से जोड़ती है। इसमें कहवे की खुशबू, अच्छे अल्फाज की मिठास और मुलाकात की गर्माहट शामिल होती है। तो आज के कल्चर मूवमेंट में हमें यह सीखने को मिला कि मजलिस की खूबसूरती उसके फर्श या कमरे में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो वहाँ मोहब्बत, अदब और अपनाइयत के साथ बैठे होते हैं। जैसे एक जगह

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल से देसी देसी लोग आप कैसे हैं, और आप सभी को इस्तकबाल है इस शो में, इट्स अ गोल्ड शो लाइव शो, और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। पेश करूँगा कुछ स्पोर्ट्स के टिटबिट्स, यानी स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ अपडेट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या ओलंपिक गेम्स, जो भी कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, सब कुछ मिलेगा यहाँ आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है इट्स अ गोल, एंड हर खेल का हर पहलू सिर्फ आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल पूछता हूं और पूछूंगा, लाजमी है इस प्रोग्राम में, इवन इन स्पोर्ट्स राउंड अप में भी मैं ये एक सवाल जरूर एक छोड़ता हूं, सो दैट आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज्ड होते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। FM 107 आप लोग ऑन कर लेते हैं एंड आप लोग स्पोर्ट्स के बारे में बातें करते हैं, एंड स्पोर्ट्स के सवाल जो है उसके बारे में आप लोग जितने भी जवाब देते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल क्वेश्चन सुनिए कि आज का क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन ऑफ द डे इज 2027 यानी 2027 का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट किस मुल्क में होगा, आपको बताना है 666-22-107 पर। ये सवाल सुन लीजिए ठीक से जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है FM 107 रेडियो, और आप लोग सुन रहे हैं इट्स अ गोल शो, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और सवाल ये है 2027 यानी अगले साल का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट किस मुल्क में होने जा रहा है, आपको ये आना है, और सिर्फ बताना नहीं है, कंट्री का नाम बताइएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ आप लोग नाम नहीं लिख रहे हैं, अरे नाम लिखिए, बी यू नो फील गुड अबाउट मेंशनिंग योर नेम, दैट्स द वे, कि कहते हैं ना व्हाट्स इन अ नेम एंड दैट्स इन अ नेम, दैट्स इन अ नेम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अपना नाम जो है फख्र के साथ लिखिए कि मैं फलाना फलाना फलाना, और ये है जवाब 2027 का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट किस मुल्क में होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पोर्ट्स हाईलाइट ऑफ द वीक, और स्पोर्ट्स हाईलाइट में क्या क्या है मैं आप शेयर करता हूँ। 8 से 12 सितंबर तक 10th FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, और ये कतर में होने जा रहा है, और इस 5 दिन के मुकाबले में 21 ममालिक से 116 एथलीट्स हिस्सा लेंगे, एंड दैट्स हाउ कतर शोज टू द वर्ल्ड दैट यू नो इट्स अ स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन, इज अ स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स। टेनिस पे चलते हैं, यूएस ओपन जारी है, एंड ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन, और इसमें डैनियल मेडवेडेव बुध के रोज तीसरे राउंड में जगह बना लिए हैं, एंड दैट्स एन अमेरिकन प्लेयर्स। वहीं अगर देखा जाए दूसरे अगर प्लेयरों की बात करूं तो अमेरिकन प्लेयर्स स्पेशली जेसिका पेगुला जो वुमेन सिंगल्स में कम्पीट करती हैं, वो और उनके जो साथी खिलाड़ी बेन शेल्टन, उन्होंने भी अगले राउंड में जगह बना ली। अंडर 17 वर्ल्ड कप के बारे में मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, अंडर 17 वर्ल्ड कप एक तरह से कह लीजिए कि मैं प्रोमोट कर रहा हूँ, और प्रोमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कतर इज होस्टिंग दिस टूर्नामेंट, एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप जैसे पिछले साल पहली मरतबा 2025 का जो वर्ल्ड कप था वो कतर में हुआ था, एंड कतर मुसलसल 5 एडिशंस को होस्ट करेगा, एंड दैट इज समथिंग वेरी यूनिक इन द फर्स्ट टाइम इन द फीफा कैलेंडर और फीफा हिस्ट्री में अंडर 17 वर्ल्ड कप ऐसे एक ही मुल्क में 5 मरतबा कभी भी नहीं हुआ। सो दिस इज द सेकंड टाइम कतर इज गोइंग टू होस्ट, और ये 2026 का एडिशन है, और इसका मैच शेड्यूल जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, यानी अनाउंस कर दिया गया है, और ये टूर्नामेंट कब हो रहा है आप लोग ये तारीख जो है वो नोट कर लीजिए अपने नोट पैड पे, 19th November, और 13 दिसंबर तक ये जारी रहेगा इंशाल्लाह, और दोहा में ये सारे मैचेस खेले जाएंगे।

स्पेशली द स्पार अकेडमी के ग्राउंड जो है, छोटे छोटे ग्राउंड्स जो है एंड जो बॉलर्स के लिए वो बेहतरीन एक अवल से कि एक अपना टैलेंट को, टैलेंट का जो मुजाहरा है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑन शो. ये कोई बंद स्टेडियम में नहीं है, ओपन ग्राउंड पर है, ओपन स्काई है और बड़ा ही अच्छा लगेगा. मौसम सही हो जाएगा, आप लोग भी जा सकते हैं. बताना चलूं, स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि 48 कौमी टीमें हिस्सा लेंगी एंड इट्स अ मेजर टूर्नामेंट. 48 कौमी टीमें, नेशनल टीम्स ऑफ द वर्ल्ड विल पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद कतर टीम, दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट. और 22 नवंबर को ग्रुप ए में मेजबान कतर का पहला मैच होगा मिस्र के अगेंस्ट में, और कतर वर्सेस इजिप्ट का मैच से ही ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. अब बात करता हूँ गल्फ फुटबॉल, अरब गल्फ फुटबॉल, और अरब गल्फ फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि गल्फ कप का जो चैंपियंस लीग है, अब ये चैंपियंस लीग जो है, पहले हम लोग सुनते थे यूएफए चैंपियंस लीग, एएफसी चैंपियंस लीग, अब जो है रीजनल चैंपियंस लीग भी हम लोग सुन रहे हैं अभी. अब अरब फेडरेशन जो है, अरब गल्फ कप फेडरेशन जो है, उन्होंने डिसाइड किया है कि नाउ वी हैव अ अरब गल्फ कप चैंपियंस लीग. और 2026-2027 के इस की जो ये जो ओपनिंग सेरेमनी नहीं बल्कि जो ड्रॉ है वो 9 सितंबर को होने जा रहा है, और टूर्नामेंट जो है 13 अक्टूबर से 30 अप्रैल 2027 यानी अगले साल तक स्केड्यूल है. तो दोस्तों ये तो थे सारे न्यूज़ फ्रॉम द अपडेट्स और हाइलाइट्स कह लीजिए फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और स्पेशली कतर स्पोर्ट्स के बारे में मैं जो भी शेयर किया. आप लोग इसको थोड़ा सा स्केड्यूल कैलेंडर बना लीजिए क्योंकि अगले वक्त जैसा होने जा रहा है कि इट विल बी अ पैक स्केड्यूल इंशाल्लाह इन कतर स्पोर्ट्स. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फार्मूला 1 है नवंबर में, वो भी इम्पॉर्टेंट है. मोटो जीपी भी है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जिनको रेस पसंद है, जिनको गाड़ी दौड़ाना मतलब नो हाई स्पीड हाई ऑक्टेन एनर्जी जिनको पसंद है, उनके लिए फार्मूला 1 भी एंड मोटो जीपी भी इज़ ऑन द वे. सो बी प्रिपेयर्ड एंड वी यू नो सेलिब्रेट दिस मोमेंट बिकॉज मौसम विल गेट बेटर. मायूस मत होइए, अभी गर्मी है बिकॉज ठीक है ये मौसम है, लोग बहुत मायूस हो जाते हैं यार कितनी गर्मी. कल मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा था एंड आई फाउंड कि थोड़ा सा चेंज मुझे फील हुआ है जो है, बिकॉज मौसम में वो जो बात थी अब अगस्त वाली नहीं रही है. हाँ अभी भी शदीद है, इंटेंसिटी इज देयर बट इंटेंसिटी हैज गॉन डाउन एंड आप लोगों ने फील किया होगा ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा कम हो गया है. नाउ अब डोंट कंप्लेन करीब क्योंकि द बेस्ट जो मौसम है जो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और वहां पर स्पोर्ट्स को भी आप लोग एंजॉय करेंगे. सो लेते हैं यहां पे एक छोटा सा ब्रेक और सवाल को एक दफा रिपीट कर देता हूं आप लोग जिन्होंने भी अभी रेडियो ऑन कर लिया है. मैं आपका मोहम्मद अमीन, ये इट्स अ गोल प्रोग्राम है. सवाल मेरा था 2027 का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट किस मुल्क में होने जा रहा है, हु इज गोइंग टू होस्ट द 2027 का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट्स. आपको अपना नाम के साथ, बाकायदा आपके नाम के साथ इस कंट्री का नाम बताइए एंड भेजिए 6221 पर. मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीर ओनली ऑन F107 दिल से देसी।
1: जी दोबारा इस्तकबाल है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आप लोगों ने शायद अनशायद FM 107 ऑन किया होगा एंड मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे हैं एंड मैसेजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोग जुड़ना चाहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं। द लिसनर्स ऑफ FM 107 सैल्यूट यू ऑल यू गाइस बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी एंड फॉर आप लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए। एंड आज का जो सवाल था वो T20 के हवाले से था। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट किस मुल्क में होने जा रहा है 2027 यानी नेक्स्ट ईयर। हु इज गोइंग टू होस्ट T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट, आपको ये बताना है ऑन आवर 6622 जो व्हाट्सएप नंबर है 6622107 पर एंड जुड़ जाइए एंड शेयर योर इनपुट्स एज वेल। कुछ बताइए, कुछ लिखिए, मैं पढ़ के सुना दूंगा एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। अच्छा, मूविंग ऑन टू द अदर स्पोर्ट्स और क्रिकेट से पहले मैं एक फुटबॉल के हवाले से एक न्यूज जो है वो शेयर कर लेता हूँ। कतर का फुटबॉल का दो सेमीफाइनल्स हुए हैं अभी पिछले 2-3 दिन पहले, उसके बारे में बता दूं कि असद क्लब ने अल गराफा को 1-1 में 2 गोल से शिकस्त दिया और फाइनल में जगह बनाई और उन्हीं के साथ और रयान क्लब ने भी हाथ मिलाकर फाइनल तक पहुंच गए हैं। रयान क्लब ने शमाल को टाई ब्रेकर में, क्या धमाकेदार मैच था ये, 3-3 दोनों टीमों ने रेगुलेशन टाइम पर 3-3 गोल्स कर बराबर रही है मैच, लेकिन टाई ब्रेकर में फाइनल जीत जो है वो रयान क्लब को मिल गया है। रयान क्लब इज मूविंग ऑन टू द फाइनल वेयर दे विल फेस अल सद क्लब। लेकिन ये फाइनल जो है दोस्तों, मौसम, जैसे मैंने मौसम के बारे में जिक्र किया, मौसम बढ़िया, मौसम खूबसूरत मौसम, और उस मौसम में ही होने जा रहा है 11 दिसंबर। मार्क दिस ऑन योर कैलेंडर, 11 दिसंबर द कतर कप फाइनल। एंड कतर कप फाइनल जो है इट्स वन ऑफ द इवेंट्स है फुटबॉल के, इस लोकल फुटबॉल में जैसे कतर स्टार्स लीग जा रहा है वैसे ही कतर कप जो है जस्ट 4 टीमों के दरमियान खेली जाती है एंड इट्स अ गुड टूर्नामेंट, वेरी क्विक एंड जल्दी खत्म हो जाता है। तो अब ये बता दूं कि QSL में क्या होने जा रहा है और QSL के आज मैचेस हैं, काफीज हैं, और उसमें अल अहली वर्सेस कतर स्पोर्ट क्लब का है 5:00 PM, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज अल अरबी 7:15 PM यानी 7:15 PM, और कल भी मैचेज होंगे जिसमें शमाल और शाहनिया आमने सामने होंगे और लुसेल न्यू क्लब द QSL उनका सामना है अल वखरा से, और हफ्ते के रोज यानी सैटरडे को अर्रयान का सामना अद्दुहेल से होगा। असद विल कम ऑन अगेंस्ट अल गराफा, ये एक हाइलाइटेड मैच है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं अल सद स्टेडियम, ये जासिम बिन हमाद स्टेडियम, मेरे हिसाब से सबसे कन्वीनियंट स्टेडियम, अगर फुटबॉल स्टेडियम अगर कोई है तो अल सद स्टेडियम है, बिकॉज इट्स सो कन्वीनियंट, पार्क करें और पहुंच जाए, ज्यादा वॉक करने की जरूरत नहीं है ये। और अल सद स्टेडियम इज अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, ब्यूटीफुल जासिम बिन हमाद स्टेडियम इनका नाम है और असद क्लब का ये होम ग्राउंड। अल सद क्लब विल टेक ऑन अल गराफा 7:15 PM। अच्छा, ये हम अपने फुटबॉल के बारे में बता दिया आपको, और अब चलते हैं कि एक यूरोपीय फुटबॉल को लेकर एक बात है वो मैं बता दूं। मैनचेस्टर सिटी से जैक ग्रिलिश ने 1 सीजन के लिए लोन पर एवर्टन में वापसी कर ली है और दोनों प्रीमियर लीग क्लब्स ने इसी न्यूज को तस्दीक किया कि हाँ ही हैज जॉइंड एवर्टन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। अब टेनिस के बारे में बात कर लूं, डिफाई चैंपियन इन US Open स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने कॉम्पिटिटिव टेनिस में वापसी करते हुए सीधे सेट्स में जीत हासिल की, और वहीं वुमेन्स वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका ने भी अपने 3rd लगातार टाइटल के लिए कैंपेन का शानदार आगाज किया। और मैं सबालेंका को देखने के बाद आपको लगता है कि कैन आई प्ले विद पावर

पावरफुल टेनिस प्लेयर, बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही पावरफुल है। अल्काराज और अरीना सबालेंका का अगर आप तस्वीर देख लें, फोटो लगा के देख लें, तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। शी इज़ वेरी पावरफुल। उनके जो बैक हैंड शॉट्स हैं, जो फोर हैंड शॉट्स हैं, कमाल का स्पीड एंड रोकना बड़ा ही नामुमकिन वाली बात हो जाती है। एनीवे, अब चलते हैं जो मैच, क्रिकेट मैच जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का थर्ड क्रिकेट टेस्ट मैच जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम में काफी कुछ खलबली मची हुई है, 7 खिलाड़ियों को वापस बुला लिया गया है एंड जो उनके कोच थे उनको भी थोड़ा कह दिया कि भाई आप रहने दीजिए। अब सरफराज अहमद, पाकिस्तान का फॉर्मर विकेट कीपर कैप्टन, उनको कह दिया गया भाई यू डोंट हैव टू टेक बॉदर योर एंड अब की जगह पे हम नए कोच को भेज रहे हैं एंड माइक हेसी जो है उनको भेजा गया है फॉर दिस जस्ट एक टेस्ट मैच के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड। और इस सीरीज जो है, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जो है, इंग्लैंड ऑलरेडी दे हैव वन 8, आई मीन उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया है 2-0 से, दे हैव ऑलरेडी वन। अब थर्ड टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तीसरा टेस्ट जो है 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस मैच में इंग्लैंड टीम ने काफी कुछ चेंजेस लाए हैं और 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इसमें देखना यह है कि क्या पाकिस्तान वापसी कर सकता है नहीं। एंड पाकिस्तान की टीम में टैलेंट तो बहुत है बट वही जो है ना, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात है, वो सही जगह पे बैठ नहीं पा रहा होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाकिस्तान हैज ऑलरेडी इस सीरीज को हार, अब पाकिस्तान की टीम हार चुकी है एंड पाकिस्तान के लिए एक वापसी है, एक उम्मीद है कि हो सकता है कि इस सीरीज में थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाएं एंड ऑल की पाकिस्तान के अंदर में टैलेंट तो कमी नहीं है लेकिन वही बात है जैसे मैंने कहा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात है, वहाँ पे इस बात की कमी है। बैटिंग कॉलेप्सेज है, बहुत सारे सवालात हैं कि इस तरह की बैटिंग लेकर कैसे आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में और इंग्लैंड के ग्राउंड पर जहाँ पे बॉल जो है सीम करती है एंड सीम करने का भी होता है कि यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वेदर और उसमें स्विंग और सीम मैंने आपको समझ ही नहीं आएगा कि हाउ द बॉल टर्न और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को खेलना, स्पेशली जॉश टंग जैसे उनको खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड देखते हैं कि क्या होता है आने वाले टाइम में इन पाकिस्तान और इंग्लैंड की इस मैच में हमारी नज़र रहेगी एंड वी विल आई होप आई मीन टू ऑल द बोथ द टीम्स बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टेस्ट मैच दैट स्टार्टिंग ऑन 9 सितंबर। नाउ मूविंग ऑन, हमारा आज का सवाल था, अब आज के सवाल पे आते हैं, क्रिकेट सही था एंड क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट किस मुल्क में होने जा रहा है। दोस्तों आप लोगों ने काफी कुछ आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं और मैं थोड़ा देख लूं कि आप लोगों ने सही दिया है नहीं। कुछ लोगों ने दिया है, किन्होंने लिखा है, एक ने लिखा है इंडिया, नो इंडिया तो नहीं बट इंडिया इज नॉट होस्टिंग दिस टूर्नामेंट और ये गलत जवाब है एंड ये है रिपोन साहब, आई थिंक आप बांग्लादेश से हैं रिपोन साहब, तो ये गलत जवाब है और ये जो है इसमें ये आपको बता दूं कि 227 का जो ODI मैच है, सॉरी T20 नहीं बताया था मैंने, ODI टूर्नामेंट है आप कीजिएगा, ये साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया में अक्टूबर से 21 नवंबर तक होने जा रहा है एंड ये तीनों डिफरेंट कंट्रीज पहली मरतबा, और ये अफ्रीकी कंट्रीज हैं और ये पहली मरतबा ये हो रहा है, आफ्टर 23 ईयर्स, लगभग 2003 के बाद साउथ अफ्रीका में जब ये टूर्नामेंट हुआ था उसके बाद 23 साल के बाद अफ्रीका में यू नो ODI वर्ल्ड कप इज बैक और इस मरतबा जिम्बाब्वे भी यू नो दे विल होस्ट को होस्ट और नामीबिया भी को होस्ट इस टूर्नामेंट को करेगा 4 अक्टूबर और 21 नवंबर के दरमियान है और इसमें हु इज गोइंग टू विन द ODI वर्ल्ड कप ये हमें तो पता नहीं है, वी हैव टू वेट फॉर इट एंड देखते हैं किन किन साहब ने जवाब दिया। अफरीदी साहब, आपने बहुत पहले ही अपने लिख दिया था कि हाँ ये तीनों ममालिक हैं और उसके साथ साथ हैं आसिफ अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब का। उसके साथ है नाम आप लोगों ने एक ने हाँ मुदासिर बंगश जी, आपने भी सही जवाब दिया, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया, फर्स्ट टाइम नामीबिया विद बी देयर एज अ को होस्ट। और एक और साहब ने दिया है जवाब, नाम आप लोग नाम लिख लिया कीजिए, थोड़ा सा होता कि हमें फिर वो व्हाट्सअप मैसेजेस में ऊपर नीचे करना पड़ता है एंड रिपोन साहब कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं एंड या नो इट्स ओके, आप रिपोन साहब ने सही बोला, सही कहा, ये भी जवाब सही है और ODI टूर्नामेंट जो है वो आपका जवाब भी सही है।

Thank you for all your replies and thanks for joining this program. It's a gold show, जो कि हर जुमेरात और मंगल को मैं पेश करता हूँ FM 107 की जानिब, और उम्मीद है कि आप लोग अगली मरतबा दोबारा आप लोग जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में, और आप लोगों के ओपिनियन बड़ा मैटर करता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बताना है स्पोर्ट्स को देखकर आप लोग, मतलब नेक्स्ट बार मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछताछ करूंगा या आप लोगों से राय लूंगा कि व्हाट यू थिंक स्पोर्ट्स कल्चर इन कतर, हो सकता है कि इस बारे में एक बातचीत हो जाए इसी प्रोग्राम के दौरान. तो फॉर द टाइम बीइंग आई विल साइन अप फ्रॉम हियर एंड इट्स अ गोल्ड शो. आप याद रखिएगा गोल्ड शो, इट्स अ गोल्ड शो जो है ये जुमेरात को है और इतवार को है, और मंगल को जो है स्पोर्ट्स राउंड अप है, और अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं नए जज्बे और अपडेट्स के साथ सिर्फ FM 107. फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्पोर्ट्स आप लोग सुनते और देखते रहिए डेली स्पोर्ट्स न्यूज ओनली ऑन FM 107 के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं ऑन द लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स विद मोहम्मद अमीन. और यहीं पर लेते हैं इजाजत आप लोगों से, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें और

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 488-8806 पर या ईमेल करें mark@2mc.qa।
2: स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
4: एनर्जी आर
3: आरजे नाजिया और आरजे सर्व के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
4: देसी।
5: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं तो एनर्जी आर सर्वर नाजिया, हम दोनों आपके साथ है 1:31 ऑन द क्लॉक, पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं। बहुत सारी बातें आज भी करेंगे, आज की एकदम वाइब एकदम अलग है जस्ट बिकॉज आज वीकेंड है, तो वीकेंड की भी बात होगी, कुछ और हल्के फुल्के टॉपिक जो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं जस्ट टू एक्सप्लोर आपकी क्या सोच है और किस तरह से हम जो है अपनी लाइफ को मजीद और बेहतर बना सकते हैं। तो आज भी हमारे पास टॉपिक है, उस पर बात होगी, आपसे बात होगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स है हमारे 666-22-107, यहाँ पर हम आपके मैसेजेस ले रहे हैं, जो सेंड कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इरादा बना लिया है या कर लिया है कि चलो जी बात करनी है मुझे सर्वर भाई से, तो फिर नंबर है 443-443-77।
2: भाई तो करनी ही करनी है, क्यों नहीं करनी है बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
5: फोन का मुखड़ा इधर घुमा दो,
2: फोन का मुखड़ा अभी घुमा देता हूँ। पहले कोई हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है आते के साथ ही, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पहले उनको कनेक्ट कर देंगे।
5: हेलो,
6: वालेकुम
5: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ, आपका नाम?
6: अच्छा नहीं बोलूंगा
5: है? अरे ना
6: बोलूंगा,
5: मैं नहीं बोलूंगा, ये क्या सर्वर भाई से नाराज?
2: मैं ना बोलूंगी, आप भी कह दिए साथ में। भाई क्यों नहीं बोलूंगा, जब आए हैं और कॉल करी है कुछ तो बोलना ही पड़ेगा।
5: नहीं बोलना चाहते,
6: सुना है इसका, इसका का शौक नहीं है तुम्हें, सुना है?
2: वाह नादिया, आपके लिए चेयर गाय देगी, सुना है?
6: शौक नहीं है,
2: वाह
6: तुम बर्बाद कमाल का करते हो।
2: आए हाए हाए,
5: अरे तो नूर भाई हो गए।
2: आए हाए हाए,
6: सुना था मोहब्बत मिलती है मोहब्बत के बदले,
2: वाह
6: सुना था मोहब्बत मिलती है मोहब्बत के बदले, बारी भारी आई तो रवाज ही बदल गया।
2: हाय हाय हाय हाय हाय, किस कदर बदले हैं, क्या हुआ?
6: वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
5: अरे नसीम जी, नफीस नसीम जी है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे कैसे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी,
6: अल्हम्दुलिल्लाह।
5: चलिए कुछ तो बोले। मुझे याद रहता था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक लाइन आप हमेशा ही लिख के भेजते थे और आपसे मॉर्निंग में तो मेरी कभी भी बात नहीं हो पाई, लेकिन ग्लैड कि आप फाइनली आफ्टरनून्स में आप हमारे साथ वापस से जुड़ रहे हैं।
6: मॉर्निंग की बारी आई तो मेरी ड्यूटी 12 बजे सो गए।
5: ये तो बहुत जरूरी,
2: दोपहर से शुरू हो गई आपकी ड्यूटी, क्या बात है। अभी कहाँ पे है नसीम भाई?
6: अभी बोला तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास।
2: नहीं जगह बताइए,
6: अहमद हॉस्पिटल है,
2: अलसद में है मतलब आप। क्या हाल चाल है, ट्रैफिक वगैरह सब क्या कैसा चल रहा है? ऑल गुड, ऑल ओके इंशाल्लाह। नॉर्मल है, नॉर्मल है, चलिए यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
6: और कुछ नहीं, वो कल वाला था जो मैंने आपको कल फोन पे कहा था, याद है आपको?
5: कल एक शेर की बात हुई थी।
2: अच्छा।
5: कि आज नहीं कल सुनाऊंगा, कल बोले थे कि आज सुनाऊंगा।
2: अच्छा, वो आज आते आते चीता हो गया वो, अब कुछ बदल गया, ये हो गया असल में।
5: मैंने आपने अपना वादा रखा, ये बड़ी बात है।
2: वाह क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त बहुत है। कुछ कह रहे हैं,
6: एक घंटा में कुछ नहीं हो रहा,
2: वाकई नहीं हो रहा और हो भी नहीं पा रहा,
5: कुछ भी नहीं।
2: अल्लाह ताला खैर करने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नसीम भाई, इंशाल्लाह ताला बात करते हैं जरूर।
6: भाई
2: जी
6: जल्दी में बर्तन धोना है।
2: हाँ हाँ बहुत, अरे

0: बहुत पड़े हुए हैं यार, बहुत काम है, काफी काम करना है और काफी चीजें हैं निपटाने के लिए। जुमेरात आ गई ना यार,
1: ये पूरा ये जुमेरात जुमेरात पूरा फ्रिज खाली कर लेते हैं।
2: चार आदमी का खाना भी खाना एक साथ
0: है। बहुत खाना है।
2: लास्ट में एक और है।
0: हाँ अच्छा, अच्छा। छोड़ दिए जल्दी से। हाँ
2: वो कल वाला था जब आप कल फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं लिखा था
0: हाँ।
2: हम भी फोन लगाए बैठे तो उठा लेते तो क्या होता।
0: हम ही
1: फोन लगाए बैठे थे।
2: हम भी फोन लगाए बैठे थे
0: अच्छा
2: उठा लेते तो क्या होता।
0: दिल लगाते लगाते फोन लगाए बैठे। हाँ आगे।
2: अरे बात ही तो करनी थी, पैसा थोड़ी मांगा था।
1: ये वही याद कर रहे हैं कि बात ही तो करनी।
0: बहुत महंगा शेर है,
1: तकाजा ही करने वाला था, उधार थोड़ी मांगा था।
0: बहुत महंगा शेर है, बहुत ही जबरदस्त, क्या कहने भाई, बहुत ही प्यारा शेर और बड़े बड़े प्यारे शेर और बड़े ही अच्छे अंदाज में पढ़े आपने। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।
0: वही थे नसीम भाई जिनके साथ शुरुआत हुई और यहाँ पर मिस भी आ रहे हैं दूसरे कॉलर हमारे साथ। कॉलर्स को बिल्कुल मायूस नहीं किया जाएगा।
1: जब मैं इधर करती हूं और मैं जब कह रही होती हूँ कि कॉल्स आ रही हैं तो आप
0: यकीन बहुत बड़ी चीज है नसीम जी। यकीन जिंदगी में बहुत चीज है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: बहुत सी चीजें जो दिखती नहीं उस पर भी हमारा यकीन है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। कौन है हमारे साथ
2: जी? मुझे सब शोएब से, शोएब के नाम से बुलाते हैं।
0: शोएब
1: शौक।
0: अच्छा शौक।
2: शौक। शौक।
0: शौक। अच्छा शौक। अच्छा शौक। शौक। अच्छा हम शॉप पे शौक जिसको जो याद आ रहा है जिसको जो काम है वो निकल आए एकदम से। शोएब भाई हमारे साथ, क्या बात है यार शोएब भाई। हेलो सेलन, कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
2: बहुत ज्यादा स्मूथ है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है।
0: कहाँ भी
2: फिलहाल सर मैं पल कतर में हूँ।
0: वाह खूबसूरत जगह। क्या हो रहा है पल कतर में, कैसे हैं इस वक्त ट्रैफिक के हाल अहवाल और गर्मी क्या कह रही है?
2: अब दिल्ली वालों के लिए क्या ट्रैफिक सर, बहुत स्मूथ है।
0: वाह
1: सही कहा होते हैं, ये तो बात सच गई।
0: चलिए साहब जबरदस्त। तो क्या है खासम खास, कुछ शेर वगैरह आप भी लाएं क्या हमारे लिए?
2: नहीं नहीं भाई साहब ये शौक नहीं है मुझे। हाँ एक जब स्कूल टाइम में जिस बस में मैं जाता था स्कूल तो उसमें एक शेर लिखा हुआ था, वो आज भी मेरे जहन में है, लेकिन चलो मैं नहीं बोलूंगा।
0: अच्छा चलिए तो फिर हम दूसरी बात पूछ लेते हैं। आज का मौजूद हाँ, भी उसी हवाले से लेके आए हम। नाजिया क्या कहती हैं?
1: अच्छा
0: शुरुआत
1: तो
0: कर ही दिया जाए तो बेहतर है।
1: हाँ जी बिल्कुल। आज हम पूछ ये रहे हैं कि आपके ख्याल में लाइफ में ज्यादा जरूरी क्या है? आपको लगता है टैलेंट या फिर लाइफ स्किल और क्यों? दोनों में से मतलब आपको क्या लगता है क्या ज्यादा जरूरी है, टैलेंट हो या फिर लाइफ स्किल्स हो? जैसे लाइफ स्किल यानी कुकिंग, मतलब और बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको क्या लगता है कि ये जरूरी है और अगर है तो क्यों है, या टैलेंट ही?
2: मेरे हिसाब से तो ये सब टैलेंट आ जाता है ना।
0: चलिए खुलासतन अगर हम बात करें जैसे मर्द हजरात को
1: टैलेंट तो देखिए ये हुआ कि मैं कमाल की शेफ हूँ, स्किल ये है मुझे खाना बनाना आता है।
2: अगर मैं शेफ हूँ तभी तो मुझे खाना बनाना आता है?
1: ना ना ना ना ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जो खाना बनाए वो शेफ ही हो।
2: फिर आप
1: खाना तो अपने सर्वाइवल के लिए बना लेती हूँ, मगर मैं टैलेंटेड नहीं हूँ बहुत अच्छा खाना बनाऊँ। I'm not talented that much, but हाँ मैं अपने survival के लिए basic जो खाना बनाना है जो
0: भाई चलिए ladies में तो ये चीज कहना चाहिए naturally होती है।
1: ये तो मैंने example दिया
0: naturally होती है, मगर अगर मर्द हजरात की बात करें तो क्या उनको शुरू से इस चीज की आदत डालनी चाहिए, let's say school हाँ time से या फिर आगे?
2: शर्मा साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, sorry मैं काट रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए खान ढाबा सबसे बेस्ट ये भी होता है।
1: हाँ ये भी है। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये स्किल ऑलरेडी
0: बहुत अच्छे शेफ हैं एक्चुअली।
1: अच्छा खुद भी
0: हैं? अरे भाई ये बहुत अच्छे
1: तो
0: शेफ
1: हैं
0: और असल में अब वो जो इनकी कला थी वो मजबूरी में बदल गई क्योंकि घर पे खाना यही बनाते हैं खाली।
1: अच्छा
0: तो
2: आपने पूरे दुहाने ये फैला दिया बंदा। आज एक बंदा मेरी सफा मैम से बात हो रही थी दोपहर, एक बंदा जब उनसे बात हो रही तो एक बंदा मैसेज कर रहा है कि भाई ये बंदा अपनी बीवी से बहुत डरता है।
0: अर्जी हाँ
1: तो भाई तो अच्छी बात है, डरता नहीं इज्जत करता है ये कह रहे थे बस।
2: नहीं वो तो सबको पता है लेकिन अब किसी का नहीं बोल सकता ना कि माइंड में क्या है क्या नहीं है। अब देखो सब फ्री है, हर किसी को फ्रीडम चाहिए तो नहीं बोल सकता ना किसी को।
1: देखिए किसी ने बड़ी अच्छी बात की मुझे

0: नहीं आ रही है कि जो दूसरे सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे, तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे, मतलब वो काम उनका उन्हीं को करने दीजिए. आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको क्या सोचना है.
1: तो होना चाहिए, शुरू से सिखाना चाहिए. क्या कहते हैं आप, क्या कहता है वोट आपका, बचपन से ही इस चीज की आदत ढलनी चाहिए.
0: चलिए स्टूडेंट्स कर देते हैं.
2: मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपने पापा के साथ बाहर जा रहा था, पापा एक कॉन्ट्रैक्टर थे, तो हम अच्छा। जब मेरी छुट्टियां होती थी वो मुझे साथ लेके जाते थे, कि मतलब वो मुझे सिखाते थे सारी चीजें कि कैसे क्या है क्या नहीं है. तो जो ये सब चीज उन्होंने मुझे सिखाई शुरू से, बचपन से.
1: वाह
0: नाइस, ये तो बहुत ही. और वो चीजें आपके काम आ रही है ना.
2: हाँ बिल्कुल सर, देखो बचपन कोई भी चीज ऐसा, कोई भी टैलेंट ऐसा, मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो काम ना आता हो. बस हाँ एक चीज को छोड़कर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, वो आज तक मेरी समझ में नहीं आया.
0: ये ट्रिगमेंट ये बात कर रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्री थी कि क्या जी सर्वमिता से बाल खुजा रहे हैं. ये क्लास में ही नहीं बैठे, आज तक बैठे ही नहीं, ये तो बाहर बैठते मोस्ट ऑफ द टाइम. ये तो ईंट रोड़ा मिलके क्या बना, ये सब इनसे पूछे बता देंगे धड़ाधड़, क्योंकि बाहर से
1: बहुत बस अपने कभी गुरूर ही नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए साहब शोएब भाई की अच्छी बात रही
0: और आपका
1: बचपन से ही और शुरुआत से ही इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बताना चाहिए. भाई हैप्पी वीकेंड शोएब भाई, और कुछ खासम खास बनी रहा होगा वैसे आज अगर बात करी जाए जुमेरात की.
2: नहीं हमारा वीकेंड दोनों हस्बैंड वाइफ का संडे को होता है, और हम लोग वीकेंड मोस्टली या तो फिश होती है या फिर
1: टाइम टाइम फिश होती है. अगर कुछ नहीं हुई तो फिर टाइम टाइम फिश हो जाती.
2: वीकेंड पर मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ, तो फिशिंग फिश आ गई तो ठीक है, तो वो अपना मुंबई स्टाइल में मेरी मैडम करी वरी करा के और फ्राई करके वो फिश तैयार करती है. अदरवाइज मैं चिकन ला के दे देता हूँ. मोस्टली चिकन बिरयानी बननी ही बननी है.
1: वाह, या तो वो फिश तैयार होती है या चिकन तैयार ही होती है. हाँ. दोनों में खूबसूरत कौन लगता है तैयार होने के बाद, लिपस्टिक पाउडर वगैरह लगा के?
0: फिश
1: ओके चलिए.
0: फिशिंग पसंद है.
1: बहुत ही बढ़िया यार.
2: चलिए
1: ओके सर, थैंक यू सो मच.
0: हैप्पी वीकेंड,
1: हैप्पी वीकेंड शोएब भाई, थैंक यू सो मच. ऑलराइट देन, बढ़ते हैं आगे आज के पहले गाने की जानिब.
0: आपने जैसे कहा मुझे लगा जैसे ठेले वाले बाहर बोल
1: एंजॉय कीजिए, ये
0: बढ़ जाइए कहने के साथ बढ़ जाइए.
1: आदी साधु एंड निकिता गांधी एक दूसरे का साथ निभाने जैसे हम आपका साथ निभाने, और ये साथ रहने वाला है 2:30 तक यानी 2:30 तक. तो भाई आज आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये जो कुकिंग की स्पेशली स्किल है ये मर्द हजरात बच्चों को क्रू से सीखनी चाहिए या नहीं. आप अपने
0: और थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं, क्या स्कूल्स में भी कुकिंग जैसी लाइफ स्किल सिखानी चाहिए.

0: क्या बात है भाई, हमारे सारे लिसनर्स की वाकई क्या ही बात है। हैप्पी वीकेंड कतर।
1: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
2: एनर्जी आर
1: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, देसी।
3: वेदहाल 107 देनाल।
4: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी मॉर्निंग, सर्वर नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आज मौसम कैसे रहने वाला है? ज़्यादातर सनी रहेगा, गर्म रहेगा। और अगर करंट टेम्परेचर की बात की जाए तो है 40 डिग्री सेल्सियस, बट यू आर गोना फील लाइक 45 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो इट्स 36%, जो कि थोड़ी सी बेहतर है। वहीं यूवी इंडेक्स इज 8, विच इज़ अगेन वेरी हाई। अगर आप धूप में निकल रहे हैं स्पेशली पीक आवर्स में, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना वाटर टेक, अपना जो हाइड्रेशन उसका प्रॉपर ख्याल रखिएगा। वहीं पर विजिबिलिटी लगभग 10 किलोमीटर है, इसलिए ड्राइविंग कंडीशंस ठीक ठाक हैं। और अगर एयर क्वालिटी की मैं बात करूं, इट्स क्वाइट मॉडरेट। तो बस इस तरह से आज का जो सनसेट है वो भी आपको बता देते हैं, 551 के करीब होगा। तो मैक्सिमम इज 41 और मिनिमम रहेगा 31, और इवनिंग्स में काफी बेहतर होता हुआ मौसम। तो ये था मौसम का हाल।
0: भाई क्या मौसम का हाल आपने बताया नाजिया, मौसम को आपने स्वा कर दिया बताते बताते। और उम्मीद करते हैं कि इनका मौसम भी अच्छा रहे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए।
4: राइट,
0: हाल हाला
5: के हाल साला भाई, सारे दोनों के
4: वेरी गुड आफ्टरनून बाबा जी, कैसे हैं
5: भाई? जिस हिसाब से नाजिया जी सर्वर भाई ने गाना चलाया ना, क्या बात है,
0: क्या बात है।
5: और उसके बाद आपने मौसम की रिपोर्ट दी।
4: हाँ जी, वाह जी वाह, सच। अरे ये अभी बात हुई कि जब हम लोग, मैं और महविश सर्वर से ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे ऑफिस में पूछ रहे थे, ये क्या बात की आपने, ये क्या बात है, बस वहीं से इनके दिमाग में चला के गाना चलाऊंगा, क्या बात है जाके, मतलब ये बात बिगाड़ी थी इन्होंने जो यहाँ पर गाने के थ्रू संभाली गई है।
0: बहुत खराब शेर था नाजिया।
5: भाई क्या यही बात है?
4: नहीं ये सच नहीं बोल,
0: मैंने बताया ना बहुत खराब शेर पढ़ा नाजिया ने, मजा नहीं आया बिल्कुल।
4: नहीं सच सुन के आपको कभी भी मजा नहीं आया सर भाई।
0: कैसे हैं गाबा भाई, और कैसी चल रही है वीकेंड की आफ्टरनून?
5: आफ्टरनून तो भाई जान अभी काम पे ही है।
0: अच्छा अभी काम पे, शाम को करेंगे यार, हम भी काम पे, हम भूल भी जाते हैं कि हम भी काम पे।
4: आप कभी कभी करते हैं तो रोज करते हैं।
0: अच्छा ऐसा हो रहा है क्या गाबा भाई, क्या कहते हैं कुकिंग जैसी स्किल जो है वो
4: स्कूल्स में
0: बचपने से ही हमारे अंदर डालनी चाहिए या नहीं?
5: सर्वर भाई मैं तो इस चीज से एग्री करूंगा, कि बच्चे को ये स्किल स्कूल में हो या घर में हो बिल्कुल सिखानी ही चाहिए। उसका रीजन पता क्या है सर्वर भाई
0: जी?
5: पहला रीजन तो ये है, अभी आपके कभी पेरेंट्स बीमार हो जाएं या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा सरवाइव कर सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा।
0: और ये बचपन की बात है, और फिर जब वही लड़का जो है बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, और फिर उसका नसीब जो है वो बदल जाता है, मेरा मतलब ये है कि और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसकी शादी वादी हो जाती है, और फिर जब बेगम की तबीयत अगर खराब होती है तो फिर वो जब भी काम अंजाम दे सकता है, खाना पका सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही
4: खाने के लिए
0: कह नहीं पा रहे
5: जी, मैं बेगम बात पे तो लास्ट में आता हूँ।
0: अच्छा बीच में
5: दूसरी चीज ये सर्वर भाई, दूसरी चीज ये है, देखिए आजकल जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है बंदे को। कभी कभी बंदा पता क्या है, खाने पीने का पूरा फैमिली पे ही डिपेंडेंट होता है, तो वो पानी भी नहीं उठाता किचन से।
4: हाँ,
5: तो परमात्मा ना करे कभी, ऐसी सिचुएशन बंदे की लाइफ में बन जाए, तो अगर आपके पास स्किल होगी तो मैडम प्रॉब्लम नहीं होगी उस टाइम में,
4: एटलीस्ट आप कुछ बेसिक चीजें बना के सर्वाइव कर सकते
0: हैं। स्किल हो ना हो नाजिया वगैरह जरूर रखा करें अपने पास, आप वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है
4: भाई, वो आप खाते हैं, मैं तो खाती भी नहीं।
0: और गाबा भाई आगे आप पहुंचने वाले थे
5: फिर। एक बात तो है, ये जो किलों की बात की ना आपने, ये सर्वर भाई ने, सहारनपुर से बहुत बढ़िया किले मिलती हैं।
0: वाह ये आदमी यार हर जगह माशाल्लाह यूपी की, हाँ सहारनपुर की लकड़ियां भी बहुत मशहूर हैं जी। हाँ। बिल्कुल, और वहाँ का जो काम है कारपेंटरी का एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा मशहूर है,
4: वुड कार्विंग

0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: जी। और सरवर भाई आपके वहाँ की भी एक बात मशहूर है अलीगढ़ की।
0: अच्छा,
2: अरे बस ही नहीं लगाते हैं
1: सही बात है, तालों के हवाले से ही बात करने लगा था मैं भाई, दुनिया का कोई भी जिंदा हो, ताला हो, उसकी चाबी अलीगढ़ में।
0: अलीगढ़ वाले खून भी अच्छा चूसते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा मतलब ये मच्छरों के लिए भी मशहूर है। और आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, कलाकार मेरे साथ बैठे हुए इन सारी चीजों में बहुत नाम आगे
1: है। तो सरवर भाई मैं वैम्पायर वालों को रिकमेंड करता हूं, सीरीज है वो अलीगढ़ में ही शूट हो।
0: भाई वाह क्या बात है भाई की। और गाबा भाई
2: मेन लीड रोल में सरवर मिर्जा, आप सूट भी करेंगे, अच्छा खासा खाए पिए हैं
0: आपने, मुझे इस लायक समझाना
2: नहीं, ये रोल के लिए तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड।
1: जी नाजिया जी, इस बात से मेरे को एक बात और याद आ गई।
2: जी जी,
1: एक दिन ना सरवर भाई के और सफा के शो में गाना चल रहा था, मेरा ही जलवा सलमान भाई का।
2: अच्छा,
1: तो मैं ना, आप यकीन मानिए, सच में सरवर सलमान भाई की जगह पे सरवर भाई को इमेजिन कर रहा था, जो उन्होंने स्टेप किए हैं।
0: मेरा भाई कैसा, गांव में पैसा ही पैसा भाई, गांव भाई ओके बेहतरीन, इससे आगे कुछ ना कोई कहेगा ना सुनेगा। हैप्पी वीकेंड गांव भाई, हैप्पी वीकेंड, बात पूरी हुई, टॉपिक अंजाम पे पहुंचा, गांव भाई ने मुझे मिला दिया सलमान खान से, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। चलिए साहब, गाबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आपने
0: वक्त निकाला और अच्छी अच्छी बातें करी, एज ऑलवेज अपना ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड।
1: पता क्या है सरवर भाई, जी जी जी, बात और भी लंबी हो जाती है मगर वो टाइम ही नहीं है,
0: बस इसीलिए हम भी तो जल्दी जल्दी इजाजत लेते हैं।
1: आप लोगों की भी मजबूरी है, हम भी नहीं कुछ कह सकते, सही है ना।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी अपने पास बहुत टाइम है, जैसा हम और आप रहेंगे दोपहर में तो बातचीत चलती रहेंगी और बात होती रहेगी। हैप्पी वीकेंड भाई,
2: हैप्पी वीकेंड।
0: तो भाई यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उसके बाद कॉल जाने पड़ेंगे। तारिक जमील साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, देखिए। अच्छी बात कुछ मौलाना मुझे बताना चाहते होंगे, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं। सरवर एंड नादिया, अस्सलाम वालेकुम,
2: तौफीकल वाकरा से,
0: पर्ची लगा के चले जाते हैं दरवाजे पे, अस्सलाम वालेकुम तौफीक अल वाकरा से, पढ़ लेना जब टाइम मिले। अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ
2: शहजादा जी,
0: एफएम 107।
2: क्या बात है,
0: आ गया सरवर वाई,
2: सरवर वाई
0: रिपोन हमारे साथ, रिपोन मेरा भाई कैसा। ओके भाई, ये अच्छा ये मैं पढ़ नहीं सकता, तारीफ करी उस्मान भाई ने अभी अभी काफी लोगों की। अहमद हियर, ट्रैफिक एट सबाल अहमद कॉरिडोर ड्यूरिंग स्कूल पिकअप आवर्स, हाँ वो तो रहता ही है यार।
2: हाँ तो प्लीज जो लोग वहाँ से आ रहे हैं थोड़ा सा ख्याल रखें, और शायद अल्टरनेटिव रूट्स का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। अगर इस तरह की कोई और भी अपडेट है ट्रैफिक के हवाले से तो प्लीज जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: असरार भाई थे हमारे साथ जिन्होंने ये अच्छा काम अंजाम दिया, यूसुफ भाई जुड़ गए, अस्सलाम वालेकुम तआला व बरकातहू, गुड आफ्टरनून नाज़रीन, और सरवर भाई कैसे हैं आप दोनों, होप वेल, वेलकम टू एनर्जी आवर, दिस इज देसी यूसुफ। Happy Thursday afternoon, happy weekend भी कहते हैं नाजिया।
2: Thank you so much and happy weekend आपको भी।
0: रियाज भाई हैं, रियाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया जी, क्या हाल है।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या बात है क्या बात है। मुझे लगता है जिंदगी में स्किल होना चाहिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप अपनी स्किल को टैलेंट में बदल दिया और दुनिया में नाम कमा लिया, जैसे खाना बनाने वालों को मैंने बड़ा शेफ बनते देखा है, और ऐसे भी लोग हैं जो यार अंग्रेजी है ऐसे भी लोग हैं, मैं गलत पढ़ दूं मजाक उड़ जाएगा, तीसरी लाइन नीचे से, या मैं गलत पढ़ रहा हूँ,
2: ऐसे भी लोग हैं जो,
0: अच्छा मैं ही गलत नहीं था, तो कुछ लिखना चाह रहे हैं जो इस, क्या लिखा था,
2: स्किलफुल,
0: स्किलफुल कहना चाहते होंगे,
2: आई थिंक
0: स्किलफुल कर दिया है, नहीं तो अब जब वो स्किलफुल लिखेंगे तो ये आपने भी तो नहीं पढ़ा, कम ऑन,
2: तो अकल तो
0: उन्होंने उन्होंने करेक्शन कर दिया है, और जिनके पास होता है लेकिन वो उसका कुछ अच्छा मतलब स्किल का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते।
2: सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है ड्रॉबैक, कि हमें अपनी स्किल्स का आइडिया ही नहीं होता, हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स है हम कभी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो मेरा हमेशा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर देर तक बात करूं, जहां मैं बताऊं कि अपनी स्किल्स आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा। समटाइम्स हमारी जो स्किल नहीं है एंड वी लैंडेड अप डूइंग समथिंग नॉट सो कूल जो हमें करना चाहिए, तो ये भी एक चीज है कि हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे जुड़ गए, हेलो गुड आफ्टरनून।

0: نون.
1: Good afternoon. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.
1: Kaise hain mere bhai? Theek
0: tha. Alhamdulillah. Hum log khairiyat se. Aap kaise hain aur aapka naam?
1: Alhamdulillah. Kidhar hai wo Sarwar bhai? Kidhar hai wo?
0: Idhar chupa hua hai. Idhar chupa hua hai. Niklo bhai, niklo. Chup gaya.
1: Theek to hai na? Theek to hai na?
0: Lagta to hai.
2: मेरा माइक खोलेंगी तो मैं बात करूंगा, मेरा माइक ही बंद कर दिया इन्होंने नादिया यार, क्या बात है
0: भाई। कसम खाई है इस बात।
2: हमारे साथ मुदस्सर भाई हैं जो इस वक्त हवाई जहाज पे सवार हैं और सीधे हाथ वाला जो हवाई जहाज उस पे बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप हवाई जहाज के अंदर आ जाएंगे तो आवाज क्लियर आएगी मुदस्सर भाई।
1: नहीं,
2: क्लियर तो आ रही है, हवा ज्यादा क्लियर आ रही है, इतनी हवा चल भी नहीं रही बाहर।
1: आपके
0: आपके साथ हवाएं ज्यादा हैं।
2: कहाँ पे हैं आप अभी?
1: अभी मैं वक्रा के करीब हूँ।
2: कहाँ पे हूँ?
0: वक्रा के करीब हूँ।
1: वक्रा के करीब रोड पर खड़ा हूँ।
2: अच्छा, इंतजार कर रहे हैं क्या इनका कि ये वहाँ से गुजरेंगी और आप
0: पैसे मांगे?
1: कॉल का इंतजार कर रहा था ना, आप लोग कहने के भी मुश्किल है ना, कॉल नहीं।
2: अच्छा, अहलन वसहलन, अहलन वसहलन मुदस्सर भाई, तो क्या कहते हैं आज के मौजू के हवाले से?
1: बिल्कुल, मौजू तो मेरे सर, मेरे ख्याल में स्किल बेस्ट है, टैलेंट जो बन रहा है, टैलेंट भी जरूरी है, टैलेंट ज्यादा मेरे ख्याल में स्किल वाला जो बन रहा है ना वो बहुत काम का आता है। मेरे ख्याल में बेस्ट प्रॉपर, और सामने जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे रूम में एक बंदा आया था तकरीबन 2 साल पहले, उसके पास स्किल था, जो उसके पास स्किल था वो जिस दिन वो आया था कतर में, आज तक वो काम कर रहे हैं मुश्किल की वजह से, वो एक दिन गिरफ्तार नहीं बैठा। हमारे पास स्किल नहीं था, हम लोग जब कतर में आए हमारे पास स्किल नहीं था, सिर्फ दो तीन अल्फाज हम लोगों ने पढ़ी थी, बाकी हमारे पास नहीं था, तालीम थोड़ा बहुत था लेकिन स्किल नहीं था, लेकिन उस बंदे के पास स्किल था। जो वो बंदा जिस टाइम कतर में आया तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, बिलीव मी उस दिन से आज तक वो काम पर है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है मुश्किल की वजह से। मैं तकरीबन 1-2 साल बेरोजगार बैठा था, आज मैं काम कर रहा हूँ बीए लाइसेंस की वजह से, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया उसके बाद मुझे काम मिला, मेरे पास स्किल नहीं था। तो मेरे ख्याल में स्किल बहुत जरूरी है तालीम के साथ साथ।
0: सही सही, आपने तो खैर ये बहुत अच्छी जनरल बात की कि स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है और हमें टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को पॉलिश भी करना चाहिए। यहाँ पर हमने एक और एलिमेंट ऐड किया था कुकिंग का, कि आपको ये लगता है कि स्कूल्स में भी, स्कूल लेवल पर भी कुकिंग जैसी लाइफ स्किल बच्चों को सिखानी चाहिए?
1: एग्जैक्टली, वो तो लाजमी बात है, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वक्त साथ साथ हम लोग घर वालों से अपने मुल्क से दूर पड़ते जाते हैं, क्योंकि आज मैं कतर का आया हूँ, पहले मुझे टी बनाना खा वगैरह बनाना नहीं आता था, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बनाता हूँ, चाय भी बनाता हूँ, लेकिन कतर की वजह से, परदेश की वजह से, अगर मुझे पहले से आता होता तो स्कूल में या घर में मुझे ये चीजें पकाना आती थी तो मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ मुझे ये मैंने सीख लिया, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना बना रहा हूँ, अच्छा बना सकता हूँ, चाहे बना दो। जी सर भाई,
2: आज क्या बनाया?
1: जी सर, जी सर, आप बताए, हुक्म करें, आपके लिए कुछ भी बना सकता हूँ।
2: अच्छा अच्छा, नहीं खाने की बात हो रहा है, कुछ भी कैसे बना, आप कुछ भी बनाएंगे मैं बन जाऊंगा, खाना बनाइए, खाने की बात कर रहे हैं
1: भाई, आप कुकिंग की बात कर रहे हैं, मैं कुकिंग की बात कर रहा हूँ, आपका जो सोच है वो मैं उससे बता
2: अच्छा,
1: नहीं
2: हूँ। अच्छा, अच्छा,
0: मैं आपकी सोच के हिसाब से नहीं
1: हूँ भाई, वो एक जुमला है ना, वो कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ, जो आप सोच रहे हैं उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।
2: वाह वाह, बनाया भाई, आज का वाटर कूलर आपका हुआ, पड़ोस में ही है तो आराम भी
0: नहीं चाहिए आजकल वाटर कूलर।
1: जी, मेरी बात है, पानी सर भाई आपका,
2: पानी वगैरह वाकई पीते रहिए, आप इस वक्त बाहर हैं और सभी हाँ। लोगों से गुजारे, अपने आपको हाइड्रेटेड रखिए भाई, गर्मी गई नहीं है, अभी चली रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपका वीकेंड भी अच्छा गुजारे और खुश रहिए, दुआओं में रखिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पर थे मुदस्सर भाई और कितनी शांति हुई देखिए हवा बंद होते ही। तो कहते हैं मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, मोहब्बत वो है जो खामोशी में भी महसूस हो जाए, आपकी याद दिल से कभी दूर नहीं होती, आप सामने ना हो फिर भी दिल के करीब होती हैं। वाह वाह वाह वाह, नादिया के लिए शायद ये शेर कहा गया है, मेरे लिए नहीं, होती लग गया क्योंकि आखिर में अरबाज साहब हैं यहाँ पर। ओके, बढ़ते हैं आगे। हाय सर एंड मैडम, गुड आफ्टरनून, आई जस्ट

0: So want to know, please, where is RJ Wade nowadays? Could you please share with me? I'm waiting for your response. So Wade bhai left for good, actually. And we wish him all the best. और आप भी इंशाल्लाह ताला उनके लिए दुआ करिए, और साथ ही साथ हमसे भी और हमारी भी खैरियत मालूम कर लिया करें जब टाइम मिल जाए। छोटी मोटी कोई ऐसी बात थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, नादिया बाजी कैसे हैं आप? सब खैरियत हैं?
1: वालेकुम अस्सलाम भाई,
0: नादिया बाजी खैरियत हैं?
1: जी जी भाई, हम खैरियत से, आप बताइए।
0: जैज हैं हमारे साथ, जैज क्या बात है, बड़ी शराब बात करी। सलाम जद्दा
1: सी,
0: क्या है जरा पढ़िएगा।
1: रमादा भैया,
0: शुरू में क्या लिखा है?
1: जहदा ब्रिज भाई, आप भी कोई तक नहीं कर पाते।
0: जहदा ब्रिज कहना चाह रहे होंगे
1: आप? नहीं, कोई
0: तो रमादा सिग्नल, बहुत ट्रैफिक है। Oh my God.
1: अच्छा,
0: ओह मोहम्मद इस्लाम, थैंक यू सो मच भाई।
1: Thank you,
0: तो आप लोग ख्याल करें भाई इस बात का, अगर हाँ जा रहे हैं उस तरफ से निकल रहे हैं तो बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, खूब सारी कॉल्स तो हम रिसीव कर लेते हैं। उसके
1: yes.
0: बाद हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, शॉर्ट कॉल। हेलो सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
2: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? मेरे ख्याल में जैद ही जुड़ गए हमारे साथ, अभी अभी मैसेज भी पढ़ा था इनका।
1: अच्छा, क्या
2: जी
0: कैसे हैं जैद, खैरियत?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, बड़ी खुशी हो रही है आप दोनों को फिर से
0: सदस्य। मुझसे पूछिए देखिए नादिया, मैं हंस रहा हूँ, खुशी खुशी में हंस रहा हूँ। नादिया ऐसे देखती हैं कि भस्म कर देंगी सामने वाले को। मगर जस भाई कहाँ है? जस भाई अभी
2: स्कूल लैंड हुआ है।
0: स्कूल लैंड हो गए आप?
2: जी हाँ।
0: अच्छा, बच्चों को लेने गए हुए हैं?
2: जी
0: हाँ। ओ तो अभी आए नहीं गाड़ी में, लग रहा है वरना आवाज आ रही होती माशाल्लाह। बच्चों को इस तरीके की कारकर्दगी जो है सिखानी चाहिए, ये स्किल्स सिखानी चाहिए कि बचपन से ही वो खाना वगैरह बनाना सीखें।
2: ये तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर सिखाया जाए तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना।
0: आप क्या बना लेते हैं
2: भाई? मैं तो जो है ना
0: खाने में
2: कौरमा भी बना लेता हूँ, दाल भी बना लेता हूँ, बिरयानी भी बना लेता हूँ।
0: वाह, खाता है कोई उसको? मतलब सबके लिए बनाते हैं या अकेले ही?
2: ना ना, सबके लिए यार, अब तो
0: नहीं, ये पूछना जरूरी होता है भाई। अब जैसे नादिया भी माशाल्लाह खाना बनाती हैं, मगर ये है कि वो सिर्फ बिल्ली को डाला जाता है ताकि ये खाने और जो आसपास जो बिल्लियां हैं उनकी भी ख्याल करा जाए।
1: नहीं सर मिर्जा, मैं डॉग्स को
2: खाने के लिए जाते हैं उधर।
1: अरे ये बिल्लियों के साथ भी बैठ के
0: क्या करें, अब वही जगह मिलती है तो वही बैठ जाते हो भाई। गरीब आदमी है, अपना उठाया जहाँ पहुंचे पहुंच गए, जहाँ बैठे बैठ गए। तो भाई जैस भाई का भी ये कहना है कि अच्छी स्किल्स हैं और सिखानी ही चाहिए, और खुद भी माशाल्लाह ही सीखे हैं। बचपने में सबसे पहली चीज क्या बनाई थी जैस भाई? खाने में
2: बड़े होकर बनाना शुरू करा।
1: अच्छा, बचपन में
0: तो सबसे पहली डिश या आइटम क्या था?
1: ब्रेड से
2: की दाल
0: बनाई, सीधे
2: दाल बनाई।
0: यार बहुत कर रहे हैं यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: आपने तो सिर्फ नींबू पानी बनाया था पहली बार,
0: मेरे ख्याल
1: तो
0: में
1: दाल बनाई
0: यार, मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा,
1: नहीं नहीं आपने बताया था नींबू पानी।
0: सबसे पहले क्या बनाया था?
1: पहले तो बातें बनाई,
0: मतलब
1: फिर
0: खाने में, खाने में, खाने
1: फिर नींबू पानी।
0: चलिए भाई जैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फोन नाउ, एक छोटा सा ब्रेक, यूं गए और यूं वापस आए।

0: हमारे यहाँ पे ना
1: सर्वर मिर्जा आपके लिए है, ये आपके लिए।
0: हम लोगों में सबसे ज्यादा कमी जो है कॉन्फिडेंस की है। हम लोग ये सोचते हैं अगर मैंने ये कर लिया अगला बंदा क्या,
1: वही ना। बहुत ही अच्छी बात याद आई आपके,
0: दिखने चाहिए बहुत अच्छी होती है। मैं खुद बकायदा खुद हर चीज में आगे बढ़ जाता हूँ, चाहे वो खराब हो चाहे सही हो। फर्स्ट टाइम खराब होगी, सेकंड टाइम होगी, थर्ड टाइम तो कम से कम काम आएगी ना।
1: ये बात चाहे आए ना आए ट्राई करना चाहिए लाइफ में, ये बहुत अच्छी बात आपके लिए। कोशिश करते रहो सर, मतलब कोशिश कीजिए।
2: कोशिश कर करके आपने पूरा राशन घर का खराब कर दिया, एक महीने का वो नुकसान उठाया जा रहा है घर पे। नहीं, मैं नदिया की बात कर रहा था जी।
0: मैंने बीफ में ना तीन बार मार खाई है, बीफ बनाने में ना।
2: अच्छा,
0: बीफ पकाने में मैंने तीन बार मार खाई है। फर्स्ट टाइम
2: तो आप देखे ये तो चूल्हे में बनेगा, मुझे मार के क्या होगा, ये मुझे मारने से थोड़ी बनेगा, ये तो चूल्हे में बनेगा।
0: नहीं नहीं, मार खाना वो नहीं कि मैंने हाथों से मार खाई है।
2: अच्छा,
0: मीन के मार खाना वो कि
2: चोट हो गई, चोट हो गई, हमारे कहते हैं चोट हो गई।
0: हाँ बिल्कुल ही रेशा रेशा हो गया।
2: अरे
1: उसे भी कोई हलवा कह देते, हड्डी का
2: जैसे अपने हैदराबाद में होता है अचार का गोश्त होता है। ओए ओए ओए, क्या याद आ गया, अब नहीं हो पाएगा भाई, बंद करो चटर डालो, दुकान बंद, जा रहे हैं भाई खाने के लिए। चलिए भाई अब बहुत ही अच्छी बातें, बड़ी प्यारी प्यारी बातें और भी करते, बट क्योंकि और भी लोग हैं, सबको वक्त देना है और टाइम जरा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया यहाँ पर दो मैसेजेस और उसके बाद नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ जाते हैं। ये जरा सा आप ले लीजिए, पकड़िए, मतलब पढ़ दीजिए नाजिया।
1: अच्छा नहीं पढ़ेंगे,
2: मतलब यार हाथ हो गई यार, कवाल हो गया। कहती है नहीं बच्चों को, नहीं कहते हैं, कहती नहीं, आई एम सॉरी माई बैड यूसुफ भाई हैं, कहते हैं कि बच्चों को पहले ही स्कूल कोर्स सिलेबस के बुक्स पढ़ के थक जाते हैं। अच्छा बच्चे थक जाते हैं तो कुकिंग स्कूल में वुड से नो, ये स्किल घर पे भी, घर में भी पेरेंट्स आराम से सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। नाजिया जी या अल्लाह सरवर भाई पहले बताएं बनाना सीखे, टू फनी। अच्छा कुछ सुन के हमारी बात, हम तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। नाजिया बैठी होती है वैसी समझ में नहीं आता मुझे, कहते नाजिया बहन इस बंदे को कुछ समझाओ, जब भी मैं कॉल करता हूँ ये भाई साहब या तो सॉन्ग चला देते हैं या मैसेज पढ़ने लगते हैं।
1: इनकी खासियत है।
2: और नीचे आपका और उनका स्पीकर एक आया है यहाँ पर, देखिए दोनों आप कोशिश करते हुए कॉल उठा देगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
2: वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
1: वबरकातुहु। कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ।
2: हुसैन है हमारे साथ,
1: हुसैन हमारे साथ, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। अच्छा हुसैन जी आज हम पूछ ही रहे हैं कि क्या स्कूल्स में कुकिंग जैसी लाइफ स्किल सिखानी चाहिए कि नहीं?
2: मदरसे में,
1: मदरसे में,
3: मदरसे में मेरे ख्याल से मदरसे में भी सिखानी चाहिए, लेकिन ये तो शौक है, घर पे खुद सीख लेते हैं अगर मम्मी पापा की हेल्प किया जाए तो। जैसे हम लोग भी ये सीखे हैं।
2: आप अच्छा, सीखे,
1: आप सीखे हुए हैं
2: मम्मी पापा से? सीखे हैं
1: पापा को भी?
3: मैं मम्मी से सीखा हूँ। अच्छा। मुझे मतलब हम तीन भाई हैं, बहन नहीं है, तो मुझे शौक है हेल्प करने का, तो मैं खाना बनाने में हेल्प करता था।
2: वाह
1: वेरी गुड।
2: कौन सी उम्र से?
3: जी?
2: कौन सी उम्र से?
3: मैक्सिमम में 6.5-7 साल से मुझे आदत थी।
1: क्या बात है, आप बहुत छोटे थे लेकिन इतने रिस्पॉन्सिबल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। देखो इतनी छोटी उम्र से आपको एहसास कि मैं अपनी माँ की हेल्प करूं।
3: और अभी मैं तो अच्छे अच्छे डिशेस बना लेता
1: हूँ। ओह क्या बात है, कौन कौन सी डिशेस आप बना लेते बताइए।
3: मैं वैसे तो एक बताऊंगा तो लगेगा कि रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है। मैं कॉन्टिनेंटल में, चाइनीज में, उसके बाद इंडियन, ये तीनों में मैं अच्छे खासे डिश बना लेता हूँ।
1: वाह सरवर मिर्जा को कोसो मील दूर छोड़ता हुआ कोई आदमी।
2: वाह वाह,
1: कोई
2: तो आया,
1: कोई बंदा निकल के आया जिसको इतनी सारी डिशेस बनाने आती
2: है। बहुत बढ़िया
1: सरवर भाई, मैंने ये चुल्लू भर रख रखा है।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
3: चुल्लू भर पानी में नहीं डूब सकते,
2: चींटे तो आ सकती है हमारे, वो पता वही कर लेंगी, मानेंगे थोड़ी।
1: नहीं मैंने
2: तो आज आज वीकेंड पे क्या बनाया है, नया कुछ नया
3: बना रहा हूँ आज बनने जा रही है जाफरानी बिरयानी।
1: वाह
3: आप लोग को मैं इनवाइट करता हूँ, आ जाए। और
2: क्या जफर भाई आ रहे हैं उसको बनाने के लिए? जफर भाई आ रहे हैं उसको बनाने के लिए?
3: नहीं जफर

0: नहीं आ रहे हैं,
1: उसे भाई
0: बनाएंगे अपने
1: हाथों से। अच्छा अच्छा, जाफरान डाला जाएगा उसमें। ओ क्या कहने,
2: बहुत ही सुन के बहुत टेम्पटिंग लग रही है।
1: वाह वाह वाह, बढ़िया। देखिए नादिया तैयार है, मैं क्या कहने, आप लोकेशन शेयर कर दें।
2: बिरयानी से कुछ चेंज हुआ ना, जाफरानी आई, चिकन मटन, चिकन मटन बीफ चल रहा
1: था। जाफरान डलता ही डलता है नादिया, हमारे हैदराबाद की बिरयानी में जाफरान डलता ही डलता है।
2: जाफरानी बिरयानी की,
1: ये खाली जाफरानी बना रहे हैं तो चावल की जगह सिर्फ जाफरान होंगे और गोश्त होगा।
2: जी नो,
1: बहुत महंगी बिरयानी होगी भाई, गोल्ड सोने से महंगी।
0: तरुण भाई सिर्फ जाफरान और गोश्त होगा, वो मैं पहले आप ही को खिलाऊंगा।
1: मैं तो बेच दूंगा, मैं तो बेच दूंगा, खाऊंगा ही नहीं भाई, सोने से महंगी चीज हो जाएगी। All right, भाई
2: लालच कम हो गया ना, हमने
1: बहुत ही बढ़िया। हुसैन भाई खुश रहिए और इसी तरीके से खा पकाइए, अच्छा बनाते रहिए खाना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड,
2: हैप्पी वीकेंड जी, अल्लाह
1: हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सरवर भाई आप बनाने में हैं क्या, तारीफ कर लूं जरा,
2: बातें बातें बनाने में।
1: अच्छा ये तो इनको वॉइस रिकॉर्डिंग जाने लगी। सरवर भाई आप बनाने पर नहीं खाने पर ध्यान दो बस, कहते हैं वाह, मैंने मतलब की बात कह दी। मोहम्मद मुशीर आलम साहब हमारे साथ हैं, ये अभी तक हुसैन भाई ने कॉल क्यों नहीं काटी, कुछ लेके जाना यहाँ से, और इसके अलावा बिरयानी तो आप बनाने वाले थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम,
2: रायता तो ले सकते हैं वो यहाँ से।
1: हाय सलाम वालेकुम,
2: हेलो
1: जी,
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
2: मतलब पूछ कोई मुझसे रहा, आप अपना बीच में अपनी नो साइड में रख सकते हैं आप।
3: नहीं नाजिया, वैसे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये कॉल जो है वो बिलखसूस जो है वो सरवर भाई के लिए है।
1: आए, आए, आए, नाजिया अब आप चली जाइए यार, खत्म करिए, वीकेंड मेरा वीकेंड बन गया है। अच्छा मैं तो समझा इतना रुक गया कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैंने कहा पुलिस वगैरह से कॉल आ गई आज, कि भाई क्या चल रहा। अच्छा है कौन हमारे साथ ये तो बताइए
3: जी। सर भाई मैं शमून बोल रहा हूँ।
1: शमून?
2: ओह
3: जी सर भाई,
1: ओके शमून भाई, शिमोन, शिमोन और शमून फ्रॉम बांग्लादेश?
2: नो फ्रॉम इंडिया।
1: फ्रॉम इंडिया, ओके। एंड जी कह रहे
3: जी सर भाई, और ये कॉल जो है वो मैंने बिलखसूस आपको ये बात बताने के लिए करी है, आपको एक्चुअली मुबारकबाद देने के लिए करी है।
2: अरे मत दीजिए इन्हें।
3: अरे नहीं नहीं भाई देने दीजिए, आज आज इनका दिन है, आज इसको इनको बना देते हैं।
2: प्लीज अगर तारीफ हो तो जाने दीजिए,
1: अता कीजिए, अता कीजिए शिमोन भाई, अता कीजिए।
3: जी असल में सरवर भाई जो हूँ वो आपकी खुश नसीबी के ऊपर आपको मुबारकबाद देना चाह रहा था कि आपको जो है वो नाजिया जैसा खैर खा रहा।
1: अच्छा भाई सोहन भाई अल्लाह हाफिज, अब हैप्पी वीकेंड, क्या बात कही आपने,
2: वाह क्या बात है,
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने।
3: नहीं सरवर भाई
1: मैं एतराफ करता हूँ इस बात का और मैं इस बात को मानता भी हूँ।
3: इन्होंने जो 2-3 महीने अभी पिछले दिनों वो करा है मॉर्निंग शो,
1: अच्छा
3: उसमें आपकी जो दरिया दीदी, आपकी जो मेहमान नवाजी है, उसके ऐसे कसीदे पड़े हैं जबरदस्त, मतलब
2: मैं ऐसी
3: अमेजिंग,
2: हमारे बड़ी तारीफ
1: नादिया, ये हो रहा है मुझे सारा समझ नहीं पड़ी इस बारे में,
2: आप पूछिए
1: क्या
3: तारीफों के जो तारीफों के भैया आपके।
1: मैं समझ गया, मैं दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं जो मेरी इतनी ज्यादा कर सके, मैं इस बात को पूरी तरीके से समझता
2: हूं। पहले आप खुद हैं दूसरे नंबर पे, मैं हूं, दो ही लोग करते हैं तारीफ, अगर आप कुछ भी पॉजिटिव बोले नेगेटिव ढूंढ लेता है उसमें, ये इनकी खासियत है भाई।
3: आप क्यों सैड है भाई, मतलब इतनी तारीफ करी, ऐसे तारीफों के पुल बांधे हैं उसमें उन्होंने, नाच जाने सुबह में
1: किसी ने बता दिया इस बारे में।
3: अरे अरे सर भाई उसमें जो है लोग अगर कभी कभी इनके कॉलर जो है वो ये कह दें कि भाई मैडम कोई डर वगैरह तो हम लगा दें तो मना कर दे, नहीं साहब ये जो
1: चलिए नहीं आपने ये एहसान है, ये शुमन साहब मेरे ऊपर एहसान है, ये जो बात आज आपने मुझ तक पहुंचाई है अल्लाह का शुक्र है कि मुझ तक पहुंची है, और अब इसका मैं हिसाब लूंगा इंशाल्लाह ताला,
2: हिसाब पूरा करूंगा, मेरा उधार वापस आ जाते
1: हैं क्योंकि वक्त कम है, वरना तो मैं काफी बात करता शुमन भाई से इस बारे में क्या है क्या नहीं।
2: शुमन जो है वाकई इनको मैंने नाम आना वेरी सीरियस नोट मिस्टर इंटेलेक्चुअल का दिया,
1: नाम

0: आपका बड़ा जबरदस्त है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यूजुअली बंगाल में हमारे रिपोन, शिमोन ऐसे नाम होते हैं, बट कहाँ से ताल्लुक है आपका, इंडिया किधर?
1: मेरा बरेली और बदायूं।
0: अच्छा, दो जगह से है। ओके, बरेली और बदायूं से
2: ताल्लुक,
0: समझ गया मैं।
2: मिर्जा बेग समझ,
0: मगर सच्चा आदमी भाई, सच्चा बदायूं से आया, सच्चा आदमी। मन्नत में एक ही बदायूं वाले से मिला था अभी तक, जो बिल्कुल सच्ची नहीं थी। मिली मैंने लगाया
2: उसको।
0: शिमोन भाई क्या कहते हैं, शिमोन भाई बचपने से ही ये जो कुकिंग वगैरह की स्किल है ये बच्चों में डालनी चाहिए और उनको इससे रूबरू कराना चाहिए खाने पीने से?
1: मुझे खैर ऑनेस्टली मतलब सरोवर भाई, मैं तो आज के सवाल पे मेरा कोई मैंने सुना भी नहीं था। इनफैक्ट मेरा तो मकसद ये था आज की कॉल का, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो
0: आपने बेहतरीन लगा दी है, यकीन जानिए इसको मैं बुझ नहीं दूंगा। जो आई थी आग ही धर्मेंद्र की थी, किसकी थी, उससे ज्यादा हिट कराऊंगा मैं इस वाली आग को। आप बेफिक्र रहिए, आज जुमेरात भी आपने बिल्कुल सही दिन बता दिया है, दो दिन है मेरे पास,
2: और मेरे पास भी एक मूवी फूल बने अंगारे, फूलों।
0: चलिए साहब, तो फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। शिमोन भाई बड़ी अच्छी बात
2: है,
0: आगे बात होती रहेगी आपसे। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। नाजिया चलिए यार, ये तो पोल खुल गई, अच्छा हुआ। और मुझे बिल्कुल अंदाजा है इस बात का कि नूर और सारा को भी आपने बताया होगा कि ये सर्वर तक नहीं पहुंचाना, और उस वक्त वो होती नहीं, उस वक्त सारा तो दोपहर में होती, नूर होती
2: नहीं, इतने लोग फारिग नहीं है कि ये पहुंचाओ वो पहुंचाओ, ये आप ही पहुंचाइए।
0: हेलो, सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
0: ये वीकेंड में इतनी हल्की वाइब्स क्यों आ रही है लोगों की?
2: घर जा रहे हैं
0: जी। कौन है हमारे साथ,
2: काम वाम करके
3: पहचाने जरा, कौन है
2: पहचानिए? ये तो कभी नहीं पहचानेंगे, मेरे हाथ से 5-6
0: प्रोग्राम में इसी में निकल जाएगा। मैं माजरा चाहता हूँ सर, पहचान नहीं पाया।
3: मैं अभी समझ में आया कि मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई जा
2: रही। जैस है?
0: नहीं, जैस का अभी हो
3: गया। मैं मैसेज दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, कॉल इस नंबर से कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो है कौन ये तो बता दीजिए भाई।
3: काशिफ हूँ भाई।
0: काशिफ फ्रॉम कश्मीर?
3: हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया था।
0: अच्छा, मैं पहुंचा नहीं अभी तक मैसेज पे, आई एम सॉरी।
2: अरे आप अगर गेस्ट के ऊपर छोड़ेंगे ना?
0: नहीं नहीं, गेस्ट करने पे छोड़ेंगे, बड़ा मसला हो जाएगा। आप गेस्ट मत करवाइए मुझसे,
2: पूरे एक वीक तक ये गेस्ट ही करते रहेंगे।
0: लड़ा करे, मैं गेस्ट करता रहूं और मैं सही सही बात करूं, क्यों नहीं कर सकता मैं। तो काशिफ भाई क्या कहते हैं कुकिंग के हवाले से, वक्त कम है, माजर चाहते हैं जल्दी से आपकी जो राय है वो हम लेना चाहेंगे।
3: कुकिंग के वैसे यही राय है भाई, कुकिंग मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कुकिंग के हवाले से। जब मैं इधर कतर में आया ना, तो हम लोग कोविड के टाइम में आया था मैं 2021 में।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो उस टाइम पे जब हम इधर पहुंचे, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, सब कुछ, उसके बाद वो खत्म हो गया, वो लोगों को सब बंद हो गया
2: जी।
3: तो हम लोग रूम में बैठे हुए, रूम में बैठ के एक है बंदा जिसको पकाना आता है कुछ भी, बाकी तीन प्याज काटने के लिए बोल, दोनों ऐसे प्याज काटे जैसे वो मुंह से काटा हो, पता नहीं कसम से वो दो तीन महीने पता चले काटा है वो, कुछ नहीं है।
0: इसमें तो देखिए काफी लोग काम कर सकते हैं, रूम के जो हमारे चूहे वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, अगर वो ऐसी प्याज काट रहे तो।
3: ओ, उनकी कटिंग देख के ना लगता था ये चूहे से भी बदतर हो गई। ऐसे याद है ना,
0: मतलब इसका मतलब ये है कि उनको कुकिंग नहीं आती है एक्चुअली। हाँ, और ये परेशानी
2: ये,
0: हाँ, ये तो यार मसला,
2: और कोविड में तो मसला वाकई था ये, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तब तो बनाना ही बनाना था।
0: सही सही सही,
3: बनाना ही बनाना, बाहर जा नहीं रहा कुछ, बाहर जा नहीं सकते हम लोग ज्यादा, और रूम में पक रहा, और रूम में एक ही बंदा बना रहा है, तीन बंदे साथ में खाने वाले
0: अकेले। अल्लाह ताला भाई सभी को तौफीक दे, और अल्लाह ताला ऐसा हमदर्द और हम पार्टनर कहना चाहिए सबको,
2: सब
0: जिसने ख्याल रखा।
3: मैं एक चीज है उन लोगों
0: की, दावे से कह सकता हूँ आप मैरिड हैं माशाल्लाह?
3: नहीं भाई अभी तो।
0: अच्छा, फिर आगे के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक।
3: पूछूं मैं आपसे
0: जी?
3: नहीं, एक बात पूछूं मैं आपसे?
0: दो पूछिए।
3: मेरा वॉइस सुन के आपको क्या लगता है कितना एज होगा मेरा?
0: वॉइस सुन के
2: 27।
3: सरवर भाई
2: आप भी बता दीजिए। सरवर भाई कह रहे 31।
0: सही वक्त पे। अच्छा, 24 साल के हैं माशाल्लाह से। चलिए यार, आपको सेहत से जिंदगी दे, और आगे की भी जिंदगी आपकी खूबसूरत हो, और आपको बहुत

0: तो ये कंक्लूड किया जाए, और वो ये कि नाजिया को अगर खाना बनाना वक्त पे आता तो आज काफी लोग उससे फैजियाब हो रहे होते और घर वाले भी
1: आपको बनाना आया, कितने लोगों को फायदा मिला,
0: वक्त पूरा हो गया,
1: लिस्ट पूरी कर ले,
0: वक्त पूरा हो गया, तो हमें लगता है हमने कंक्लूड कर ही दिया है ऑलरेडी, बस बचा तो कुछ है नहीं,
1: मेरे ख्याल से कुछ बता नहीं, बस आपकी लिस्ट है,
0: बस अभी हम बचे हैं, तो भाई इजाजत ले लेते हैं आपसे आज के लिए,
1: और इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी 1:30 को डॉट ऑन सन, इसी शो में जिसका नाम है एनर्जी आर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुनते रहिएगा, खाते पीते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, और सरवर मिर्जा को याद मत कीजिएगा।
0: अभी आपसे हिसाब लेना है जो मुझे पता चली है खबर, बहरहाल अपना ख्याल रखिए, हमारी तरफ से दुआएं, और दुआओं में हमें भी याद रखिए, सुनते और देखते रहिए FM 107
1: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है।

होती है। इंसान को जब कोई मकाम मिलता है, इज्जत मिलती है, इल्म दौलत या इख्तियार मिलता है, तो उसके साथ एक इम्तिहान भी शुरू हो जाता है कि क्या यह मकाम उसे लोगों से करीब करेगा या वो अपने आप को लोगों से बुलंद समझने लगेगा। अब्दुल्लाह इब्ने बुसर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा प्याला था जिसे अलगर्रा कहा जाता था और उसे चार आदमी उठाया करते थे। चाश्त का वक्त हुआ, लोगों ने चाश्त की नमाज पढ़ी, फिर वो बड़ा बर्तन लाया गया जिसमें सरीर तैयार किया गया था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। जब लोगों की तादाद ज्यादा हो गई और जगह तंग पड़ने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठ गए। एक आराबी ने हैरत से पूछा, ये कैसा बैठना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जअलनी अब्दन करीमन वलम यजअलनी जब्बारन अनीदा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू मिन हवालीहा वदउ ज़रवतहा युबारक फीहा, यानी उसके किनारों से खाओ और दरमियान के ऊपरी हिस्से

0: सभी निकलाम जरा मंजर को महसूस कीजिए, लोग एक ही बर्तन के गिर बैठे हुए हैं, तादाद बढ़ रही है, जगह कम पड़ रही है, और उस मजलिस में सबसे ज्यादा मर्तबे वाला शख्स कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप ये नहीं फरमाते मेरे लिए जगह बनाओ, मेरे लिए अलग नशिस्त रखो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बैठने का अंदाज बदल लेते हैं ताकि दूसरों के लिए जगह बन जाए। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर कीजिए, आपने कहा अब्दन करीमा, अल्लाह ने मुझे एक बाइज्जत बंदा बनाया है, वलम यजअलनी जब्बारन अनीदा, मुझे जब्बार और सरकश नहीं बनाया। तो ये बहुत खूबसूरत तवाजुन है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान तवाजु के नाम पर अपने इज्जत नफ्स ख़त्म कर दे। आप बावकार भी हो सकते हैं और बेक वक्त मुतवाजे भी, आप बड़े मनसब पर भी फायज हो सकते हैं और नरम मिजाज के हामिल भी, आप आलिम उस्ताद अफसर सरबराह या किसी इदारे के जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मकाम आपके और दूसरे इंसानों के दरमियान दीवार बन जाए। आज के दौर में अक्सर इंसान जब तरक्की करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल बढ़ने लगता है, फिर बाज़ औक़ात प्रोटोकॉल के साथ फासला भी बढ़ जाता है। जो कल सब के साथ बैठता था आज अलग बैठता है, जो कल खुद काम कर लेता था आज छोटी से छोटी चीज़ के लिए दूसरे को आवाज़ देता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो पूरी इंसानियत में सबसे बुलंद था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान ऐसे बैठते हैं कि एक आम अराबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतकल्लुफी के साथ सवाल कर सकता है ये कैसा बैठना है। तो सामने किराम, यही क़ियादत का नबवी अंदाज है कि मकाम बुलंद हो मगर इंसान लोगों से दूर ना हो। सामने किराम, रूह परवर सुन्नत के हवाले से आज की जिस हदीस का हमने जिक्र किया है, इसका बहुत बड़ा एक अमली पहलू ये है कि अपने लिए जगह लेने के बजाय दूसरों के लिए जगह बनाइए। किसी मजलिस में हैं और कोई नया शख्स आ गया, जरा सिमट जाएं, कोई बुजुर्ग आ गए उनके लिए सहूलत पैदा करें, दस्तरखान पर लोग ज्यादा हैं अपनी सहूलत थोड़ी कम कर लें। मैं कितना कंफर्टेबल हूँ इसके बजाय कभी ये भी देखिए कि मेरे साथ बैठा इंसान कितना कंफर्टेबल है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर खाने का एक अदब भी सिखाया, कुलू मिन हवालैहा, किनारों से खाओ, फिर फरमाया दरमियान के बुलंद हिस्से को छोड़ दो ताकि खाने में बरकत हो। सामिनिकराम, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज का खुलासा यही है कि दीनी मामलात में अपनी राय से पहले कुरान और सुन्नत की रहनुमाई तलाश करें, जिस मसले का इल्म ना हो अहले इल्म से पूछें, दलील सामने आ जाए तो अपनी राय छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस न करें, इख्तिलाफ को आना और दुश्मनी का मसला न बनाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के जरिए साबित करें।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। एनबीए की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये रिकॉर्ड्स किसी प्लेयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, कंसिस्टेंसी और लॉन्गेविटी की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड बास्केटबॉल लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार के नाम रहा। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड। 5 अप्रैल 1984 ये तारीख NBA की स्कोरिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन करीम अब्दुल जब्बार ने NBA में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनका करियर टोटल था 38,387 पॉइंट्स, एक ऐसा नंबर जो उस वक्त बास्केटबॉल की दुनिया में एक नया बेंचमार्क बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ स्कोरिंग एबिलिटी

चल रहा है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी भी हो रही है और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो एआई से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत भारी रकम अदा करनी पड़ रही है अगर वो एआई का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग अभी 2026 में इस साल से शुरू करना चाहते हैं अपना कंटेंट जनरेशन, ऑनलाइन जाके कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। देखिए मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूं आपको जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। यू वांट टू ट्रीट देम एज योर एप्स या फिर वेबसाइट, विच एवर वे यू वांट टू, पर ये बहुत मेन रहने वाली। तो शुरू करते हैं बहुत ही मेजर मेजर अपडेट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट है आपके लिए वो वेबसाइट जो आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स देगी। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं, क्योंकि वो मैच करने के लिए, एल्गोरिथम में बिठाने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। और कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स, कुछ BGM ऐसे होते हैं बैकग्राउंड स्कोर जो आप कहीं भी सुनते हैं और आपको लगता है यार ये मैं कैसे निकालूं, फिर आप अगड़म चिगड़म इधर उधर जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, चाहे वो इंट्रो साउंड हो, चाहे वो बीच में आपको ट्रांजिशन देना हो, या फिर ये तो नॉर्मल बताया मैंने, कैसे भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए हो आपके कंटेंट जनरेशन के लिए वो या आपको मिलेगा। अब वेबसाइट का नाम बता देता हूं, तो myinstance.com myinstance.com myinstance, तो उस पर जाइएगा। एंड दूसरी एक और वेबसाइट है इससे जुड़ी हुई जिसका नाम है soundbible.com soundbible.com soundbible.com और myinstance.com। अब यहां जो है हमने साउंड को मैनेज कर लिया, साउंड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो लोग अक्सर वीडियोस में देखते हैं और काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि यार ये कैसे किया होगा, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। वो आपने देखा है जो लाइक और फॉलो के बटन्स आते हैं बड़े क्रिएटिवली सामने आते हैं किसी वीडियो में, आप देखते हैं भाई ये बड़ा क्रिएटिव था। तो लाइक और फॉलो वाले जो बटन्स हैं अगर आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट एनिमेशंस के साथ, तो उसके लिए भी दो वेबसाइट में आपको बता रहा हूं। नंबर वन इज Jitter, JITTER, Jitter Video, यहां पे भी आप जा सकते हैं। और दूसरी है VideoEffects.com, VideoEffects.com। अब यहां पे जाइए, सुकून से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां से। और तीसरी बात, अगर आपको स्टॉक इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस जिन पे कोई कॉपीराइट ना लगाए, कोई आपको टोके टाके नहीं और आपके कंटेंट जनरेशन मदद मिले, तो इसके लिए भी दो वेबसाइट है। पहली है pixels.com pixels.com और दूसरी है pixabay.com pixabay.com pixabay.com। तो कॉपीराइट फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर मेजर वेबसाइट जो मैंने आज आपको बताई है। तो कंटेंट जनरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड ये सब आप यूज करेंगे तो और भी आपको आसानी लगेगी। नाउ कमिंग टू द न्यूज दिस वीक। देखिए पूरे हफ्ते आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कोई गैजेट खरीदने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर सामने से, तो आपने देखा है जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, स्पेशली वो हार्डवेयर जो एआई के साथ साथ चल रहा होता है। रिपोर्टेडली अभी बताया गया है, एनवीडिया की अगर बात करूं तो उन्होंने भी देखा कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है और उन्होंने भी बढ़ा दी है, 50% प्राइस इंक्रीज देखा गया है। जो एआई सर्वर्स हैं लार्जली उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो है मेमोरी कॉस्ट। मेमोरी जो कॉस्ट जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी प्रेशर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी ना हो, चाहे वो एप्पल क्यों ना हो। एंड ये इंक्रीजिंगली नीड, जो इंक्रीज नीड है, बढ़ती हुई जरूरत है जो मेमोरी की है, मेमोरी की, इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स की शिपिंग में भी फर्क पड़ रहा है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग और प्राइस रेंज आप देख के सोच रहे हैं यार थोड़ा रुक जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है, वो प्राइस और बढ़ जाएगा। इफ़ यू हैव सीन अभी रिसेंटली प्लेस्टेशंस भी थोड़े से महंगे हुए हैं, सो ये आप बस हम उस एरा में जी रहे हैं, मान के रखिए, जहाँ पर आपको हार्डवेयर जो कि एआई से जुड़ा है वो महंगा पड़ने वाला है। सो अभी मौका है भाई, ये गोल्ड वाला सिस्टम होना है अब लो। हाँ ठीक है, एक और खबर आपको बता देता हूँ, वो है एप्पल से जुड़ी हुई। तो एप्पल एज अ कंपनी, उन्होंने काफी इनोवेशन तो नहीं किए रिसेंटली, बस थोड़ा डिजाइन इस बार बदला, विच इज गुड। अभी वो M6 जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हेडलाइन में बार बार आ रहे हैं। रिपोर्ट से कहती है कि एप्पल ने जो है अनवील कर दिया है अपना M6 2mm चिप और साथ में M5 अल्ट्रा भी, पर M5 अल्ट्रा जो है वो एम्फेसाइज करता है AI परफॉर्मेंस पर। सो व्हाटएवर एप्पल इज डूइंग,

0: आई आई कैन ओनली विश ऑल द बेस्ट. बाकी एप्पल के जो फोन्स पूरी तरह से सामने आ जाएंगे फॉर द रिव्यू, तो आपको उसका रिव्यू भी मिल ही जाएगा. मगर आपके पास कोई अपडेट है सोशल हैंडल FM107 कतर, हमें भी जरूर बताएगा. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक अपडेट. दिल से देसी टेक अपडेट. टेक अपडेट.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी
3: स्कैम अलर्ट.
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका इस फ्रॉड अवेयरनेस के नए एपिसोड में. दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में, नए स्कैम के बारे में हर रोज हम बात करते हैं, और आज भी एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे साथ हो जाता है. हमारी होशियारी धरी की धर जाती है, लेकिन ये स्कैमर्स नए तरीके ढूंढते हैं, और इस नए जमाने में उनसे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है. और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में जो एक्चुअली में हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारे साथ ये फ्रॉड हो ही जाता है, लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है. ये है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड. एक ऐसी चालाकी है जहां स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एड्स के जरिए बड़े आम से भोले भाले बायर्स को फंसाते हैं. आजकल लोग इंटरनेट पर शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं, खास तौर पे घर की फीमेल्स, और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके निकालते हैं. इस फ्रॉड से बचने के लिए इसके तरीके और इसके बड़े सॉल्यूशन को समझना बेहद जरूरी है. सबसे पहले लेकिन हमको समझना होगा कि ये फ्रॉड काम कैसे करता है. दोस्तों स्कैमर्स अक्सर बिल्कुल असली दिखने वाली नकली शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं. ये साइट्स फेमस ब्रांड्स के होते हैं, कॉपी होते हैं ताकि आपको शक ना हो. इम्पॉसिबल लो प्राइसेस इन वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं. मुझे याद है एक बार मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट देखी थी, और ये वेबसाइट वो थी जो हमारे घरों पे खाना डिलीवर करती है, और ये वेबसाइट इतनी ज्यादा असली लग रही थी के लोग अगर इस पर क्लिक करें तो समझ में सारा था कि ये बिल्कुल असली है. आप उसमें ऑर्डर डिटेल डालते हैं, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होता है, फिर पेमेंट अपनी डालते हैं, सारी डिटेल डालते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा हो जाता है और आपके घर खाना नहीं पाए. फिर आप सोचते हैं कि ये खाना मेरे घर पहुंचा क्यों नहीं, जरा कॉल करें. और जब कॉल पर जाते हैं उस वेबसाइट की डिटेल्स जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि असल में कोई फोन नंबर, कोई हेल्पलाइन इस वेबसाइट में तो है ही नहीं, तो आप कॉल किसको करेंगे. तब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है. तो नए जमाने के नए जो स्कैमर्स हैं, नए जो थीव्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको पता भी ना चले. ये वेबसाइट्स जो फेक होती हैं इनको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी हो तो इनको पकड़ना आसान भी होता है. और इसी तरह के सॉल्यूशंस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्रॉड होते कैसे हैं. इम्पॉसिबल दिखने वाले कम या कहें लो प्राइसेस में गुड्स का अवेलेबल होना, ये लोग पॉपुलर आइटम्स इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं जो सच होना नामुमकिन होता है. उसके अलावा सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अट्रैक्टिव एड्स दिखाना, उसके अलावा फेक वेबसाइट पर ऐसे डिटेल्स डालना कि आपको लगे कि ये सच है, उसके अलावा फिर होता है ट्रैप. जब आप ऐसी जगह से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये स्कैमर्स आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं भेजते आपको, या फिर आपको एक बेहद सस्ता नकली प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं. इसके साथ ही वो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी चुरा लेते हैं ताकि बाद में आपके अकाउंट से पैसे निकाल सके. लेकिन इससे बचे कैसे, इनके 5 तरीके हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के आसान. सबसे पहले पैडलॉक आइकॉन को चेक करें. हमेशा वेबसाइट के URL यानी कि एड्रेस बार में चेक करें कि वहां एक पैडलॉक यानी कि ताला का जो आइकन होता है ना, वो छोटे से लॉक का जो आइकन होता है, वो अवेलेबल है या नहीं है. इसका मतलब होता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है. अगर ताला लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है. उसके अलावा HTTPS ये शुरू होना जरूरी है. इसके अलावा वेबसाइट का URL इसको भी जरूर चेक करें. फिर रिसर्च अनफेमिलियर स्टोर्स फर्स्ट. अगर आप किसी बिल्कुल नए या अनजान ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, सोशल मीडिया पर रिसर्च करें, सर्च इंजन पर रिव्यूज पढ़ें. अगर बाकी लोगों ने उस साइट को फ्रॉड बताया तो वहां से दूर रहें. 2

0: टू बी ट्रू डील्स। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का। अगर कोई नया या अनवेरिफाइड स्टोर किसी 50,000 के फोन को सिर्फ 5,000 में दे रहा है तो लालच में बिल्कुल ना आए। ऐसे बड़े और अजीब डिस्काउंट हमेशा एक फ्रॉड ट्रैप होते हैं। अलावा सीओडी, नए या कम भरोसेमंद स्टोर्स पर कभी भी एडवांस ऑनलाइन पेमेंट ना करें, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। उसके अलावा एक और तरीका है बचने का, वो है अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा हुआ तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं ताकि आगे होने वाले स्कैम से भी आप बच सकें। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जो बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड पर। उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा और आप किस तरह का स्कैम कभी नहीं होगा। सुनते रहे FM 107, मुलाकात होगी नए एपिसोड में जल्द ही। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्मार्ट मनी।
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर मेजर लाइफ गोल्स। देखिए हर इंसान के कुछ बड़े गोल्स होते हैं, अपना घर, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, बिजनेस स्टार्ट करना, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ विशेष नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है गोल डिफाइन करना। 5 साल में हाउस डाउन पेमेंट्स या फिर 10 साल में बच्चे की यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 20 साल में रिटायरमेंट फंड। जब गोल क्लियर होते हैं तो प्लानिंग इजी हो जाती है। मिसाल के तौर पे फातिमा का गोल है 5 साल में 100,000 कतरी रियाल सेव करने का। अब 100,000 कतरी रियाल अगर आप 60 मंथ से डिवाइड करें तो मंथली लगभग, मेरी मैथ्स तो पुअर है बट ऑन एन एवरेज मैं कह सकती हूँ 1667 सेव होंगे। अब टारगेट इस बंदी के पास क्लियर है। दूसरा स्टेप इन्फ्लेमेशन को समझने में मत देता है। आज जो चीज 100 कतरी रियाल की है हो सकता है 10 साल बाद 200 कतरी रियाल की या 150 कतरी रियाल की हो। इसीलिए फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करना बड़ा जरूरी है। एजुकेशन प्लान की एग्जांपल्स भी आपको देके मैं समझाना चाहूंगी कि दोस्तों आज जो यूनिवर्सिटी की फीस 50,000 कतरी रियाल है हो सकता है 10 साल बाद 75,000 कतरी रियाल हो या उससे ज्यादा। अगर पहले से प्लानिंग करते हैं तो बजट या बर्डन, बजट आपका बिगड़ता नहीं और बर्डन आपका कम हो जाता है। वहीं पर रिटायरमेंट प्लानिंग भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। हम अक्सर यूथ में ये बात देखते हैं कि वो इस बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन रिटायरमेंट ये तो आना ही है और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर सैलरी अगर ना हो तो बड़ा मसला हो जाता है। अगर 20 साल की एज से हर मंथ 500 कतरी रियाल इन्वेस्ट किए जाएं तो रिटायरमेंट तक सब्सटेंशियल फंड बन सकता है। वहीं हाउस परचेज के लिए भी प्लानिंग काफी मददगार साबित होती है। अचानक लोन लेने के बजाय डाउन पेमेंट्स या फंड बनाए जा सकते हैं। अब डाउन पेमेंट टारगेट्स भी आपको तय करने हैं, जैसे 200,000 कतरी रियाल और सेविंग पीरियड्स आपका रखा आपने 8 इयर्स का। इस तरह से मंथली सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 2,2100 होगी। गोल मैनेजेबल लगने लगा ना। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। आपको पता होता है कि फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है और आप उस तैयारी को समझ भी रहे हैं और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। मैं तो बस एक ही चीज कहूंगी कि याद रखिए आपके जो गोल्स हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए, उन्हें आप लिख लें, टाइमलाइन सेट कर लें, मंथली अमाउंट कैलकुलेट कर लें और प्रोग्रेस मॉनिटर करें, हर 6 महीने में रिव्यू करें। प्लानिंग ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक सबसे आसान और प्रैक्टिकल रोड मैप है। बस इसकी शुरुआत आपको आज से करनी है। चलिए दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों की इजाजत दीजिए, देखते

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीढ़ी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: आपको अपना स्टैंड रखना है. शुरू करते हैं.
1: My name is Abdul Afan and I strongly believe that students should be allowed to do part-time jobs because education is not only about books, it's also about preparing for real life. Working part-time jobs, students learn the value of money instead of depending on their parents. They earn and manage their own expenses. Part-time jobs practical teaches us like practical skills like teamwork, communication and problem solving that no classroom can fill the teachers.
2: Correct. Okay, तो ये उन्हें बड़े मुख्तसर से लफ्ज में अपनी बात कह दी. इब्राहिम, अब आपके पास एक मिनट है. एक मिनट के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे अगेंस्ट में?
3: I believe that students have already a lot on their plate. They do not need more problems. For example, the student could get abused at the workplace. Minimum wage might not even be met. The student could face difficult challenges by routine schedule. The mental health of a child could be destroyed by this.
2: तो दोस्तों, ये दोनों ने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे. अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो छोटे सवाल आते हैं ना इन सब के बीच, तब ये दोनों क्या कहते हैं. ये तो प्रिपेयर वाला जवाब था जो आप दोनों ने पहले से प्रिपेयर किया था. बड़े छोटे छोटे सवाल आएंगे, ठीक है, और एक अम्ब्रेला के तले आएंगे. लेट्स सी के आप किस तरीके से इन सवालों के जवाब देंगे. तो सबसे पहला जो सवाल है मैं अफान से करना चाहता हूँ. अफान, क्योंकि आपने कहा है कि आप साथ में रहेंगे, तो एक जनरल एंगल अगर हम देखना चाहें तो क्या ये काम करते हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा बनते हैं या वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्टडीज से?
1: वो रिस्पॉन्सिबल भी है. जो पार्ट जॉब है वो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है. बेसिकली वो बैलेंस लाइक वर्क एंड स्टडी को लाइक बैलेंस करके डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है. एंड वो तो बेनिफिट करेगा ही ना एकेडमिक सक्सेस में.
2: ओके, मैं इब्राहिम आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है जब आप काम करने लगते हैं कहीं पर?
3: ऑफ कोर्स होती है कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप थोड़ा पार्ट टाइम जॉब को सीरियसली लेना शुरू करते हैं और आपके एकेडमिक्स को भूल जाते हैं. इसलिए क्योंकि आपके बॉस फॉर एग्जाम्पल कुछ नया काम लगा दिए जो आपको सीखना है, या न तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ज्यादा मेहनत करिए, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है. इसलिए इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग पार्ट टाइम जॉब वी शुड कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट इट.
2: पहले काम पर फोकस करने से पहले आपको पढ़ाई का
3: पढ़ाई सबसे पहले.
2: ओके, तो दोनों के अपने रीजन है. अच्छा, हम आगे बढ़े उससे हम एक दूसरे के बारे में भी थोड़ा जानते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक तो डिस्क्लोज कर दिया कि आज का क्या. अफान, आप हैं कतर से, कतर में ही पढ़ रहे हैं अभी?
1: जी.
2: कहाँ से हैं वैसे अपने मुल्क?
1: हैदराबाद से, इंडिया.
2: हैदराबाद से आप दोनों? आप भी हैदराबाद से? ओके, कूल. तो हैदराबाद में सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है बिरयानी के अलावा?
1: बिरयानी फैमिली है मेरी वहाँ पे, वही पसंद वहाँ के. अब क्या ही पता, इंडिया है, सब चीज तो पसंद आएगी.
2: पसंद है. इब्राहिम, आपको क्या पसंद है इंडिया का?
3: I like that I can drive my bike there.
2: Okay. So, अच्छा, अभी यहाँ तो लाइसेंस नहीं होना?
3: नहीं, यहाँ पर अलाउड ही नहीं है.
2: वहाँ पर भी नहीं है. ओके, सो आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज पूछना चाहूंगा. कतर में और इंडिया में दोनों में एक अच्छाई है ना, और हर मुल्क की अपनी एक अच्छाई होती है. इब्राहिम और अफान, दोनों से आपसे पूछना चाहूंगा कि सिमिलैरिटी जो है कैसे एक्सचेंज करनी चाहिए दोनों मुल्कों. एक जो अच्छाई है वो इंडिया को हैदराबाद को अपनानी चाहिए, और एक अच्छाई जो दोहा को अपनानी चाहिए हैदराबाद से. जैसे क्या?
1: क्लीननेस इंडिया में होना चाहिए ज्यादा.
2: ओके,
1: और ग्रीनरी कतर में.
3: इंडिया का फूड अच्छा है तो कतर में और अच्छा फूड चाहिए. और घर का जो
2: इब्राहिम की इस लाइन में डीप फ्राई मिसिंग है.
3: इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप चाहिए. टोटली
2: ये बहुत आगे की सोच रखी है. देखिए, जो मैनेजमेंट सुन रही है, मैं तो कहता हूँ मुद्दा ये पहुंचाना है कि फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में भी होना चाहिए. वेल, आगे हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इन सवालों पर मजीद हम फोकस करेंगे कि क्या बच्चों को, स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए या पहले एकेडमिक्स अपनी पूरी करनी चाहिए. FM 107 पे ये सवाल हम जारी रखेंगे. थोड़ा सा ब्रेक, दिल से दही सी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: तो दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद अपन वापस आ गए FM 107 और आज का जो सवाल चल रहा है डिबेटेबल शो में वो बड़ा ही खास है। ये इसलिए भी खास है कि आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि यार पढ़ाई करते करते कुछ पैसे अगर जेब में आ जाते तो कितना अच्छा होता। और यही सवाल है कि क्या पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स को करना चाहिए या नहीं। वेल, हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, अफ़ान और इब्राहिम। अफ़ान ने इस बात का पार्ट लिया है, इस बात पे खड़े हैं कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है, इससे आपकी काबिलियत बढ़ती है। सिर्फ किताब से आगे निकलते हुए आप काम करते हैं, आप किताबों के अलावा कुछ जानते समझते हैं दुनिया के बारे में, काम के बारे में। वहीं इब्राहिम का कहना है कि पहले एकेडमिक पूरी करना लाजमी है, आपको श्योरिटी नहीं है इस बात की कि पूरा पैसा मिले यानी कि स्टाइपेंड या सैलरी मिले, आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप जो है

0: है जो काम कर रहे हैं उसके बाद आपकी पढ़ाई इस लेवल पे इफेक्ट नहीं होगी जिस लेवल पे आके फिर बड़ी परेशानी होती है। मिसाल के तौर पे 5 साल बाद 3-4 साल बाद बड़ी परेशानी होती है। तो दोनों ने अपने गला साफ कर लिया है और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सवाल तो यही रहने वाला, इसी के आसपास के और सवाल हैं। एक फाइनेंशियल एंगल भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। Should students be allowed to work to support their own expenses instead of depending on parents? है ना, एक ये बड़ा अहम सवाल होता है। कई पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप कमाना शुरू करो, और कई मुल्क में ऐसा होता भी है कि एक उम्र के बाद कहा जाता है कि बेटा कमाना शुरू करो। तो अफन इस पर आपका क्या कहना है कि पेरेंट्स की जो इनकम है उस पर डिपेंड होना सही है या फिर?
1: कोई हद तक सही है लेकिन अब हर टाइम थोड़ी कर सकते हैं। अब ये न्यू जनरेशन में तो बस अब क्या ही करें। अब लाइक मेनी स्टूडेंट्स कम फ्रॉम लाइक फैमिलीज हु कैन नॉट इवन अफोर्ड ऑल एक्सपेंसिव अ पार्ट टाइम जॉब हेल्प्स दे पे फॉर बुक्स ट्यूशन एंड पर्सनल नीड्स सो इट कुड हेल्प मोर गुड फॉर द फैमिलीज।
0: आप क्या कहना चाहेंगे फैमिली के मुद्दे पे?
2: I believe that everyone in the family has a role, including the father, mother, and the children. Hmm. The father's role is to provide for the family. Mother's role is to take care of the family. Hmm. And the children's role is to bring a smile to their parents' face with the marks that they will be losing if they work part-time.
0: भाई ये तो लिमिटेड जवाब दे दिया और इनने कितनी जल्दी खत्म कर दिया बात को कि मतलब देखिए माँ का काम ये है, पापा का काम ये है, बच्चे का काम ये है। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल एंगल के बारे में हमने पूछा है तो आप बस ये चाहते हैं कि डिपेंड रहना चाहिए बच्चों को?
2: डिपेंड हद तक रहना चाहिए, मतलब 18 years तक। 18 years के बाद अगर आपकी एजुकेशन फुली कंप्लीट हो गई तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब काम करोगे तो आप हर जिंदगी में वहीं फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल टी बॉय के लिए आप वहीं 30 years तक फंस जाओगे। अगर आप स्ट्रगल कर लिए थोड़े ईयर्स तो आप अच्छी से अच्छी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। अच्छे से अच्छी बिजनेस खोल सकते हैं। हाँ। खुद की इनके बाद मतलब the possibilities are endless after studies, that's why.
0: ओके, तो एक तरह से इब्राहिम का कहने का मतलब है कि बर्डन आपका काम ही आप पर बर्डन बन जाता है। और अच्छा मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यंग एज में स्टूडेंट रहते हुए अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करता है तो ये अगर पैसे आने लगते हैं क्योंकि लोगों के पास, तो ये एक स्ट्रेंथ है अगर अर्ली एज कोई स्टूडेंट काम करके पैसे कमा रहा है या सैलरी पा रहा है या स्टाइपेंड पा रहा है, या फिर ये एक बर्डन है?
1: पार्ट टाइम जॉब्स करने से स्टूडेंट के हाथ में जब पैसे आएंगे तो लोग वैल्यू पैसे का समझ सकेंगे। अब इंस्टेड ऑफ लाइक डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स, जब लोग के पास पैसे हैं दे कैन अर्न एंड दे कैन मैनेज देयर ओन एक्सपेंसेस, अपने खुद के पैसे कमाएंगे तो लाइक अपने लाइक वैल्यू समझ में आएगा लोगों को। अब पैसे उड़ाने से तो कुछ होएगा नहीं।
0: अच्छा, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अफन, अगर आप इमेजिन करिए कि आपकी 3,000-5,000 रियाल की सैलरी हो गई। हाँ। तो सबसे पहले अफन क्या करेगा?
1: पहले तो मैं गेम पीसी।
0: ओ भाई साहब,
1: गेमिंग पीसी। यस, पूरा गेमिंग पीसी।
0: हाँ।
1: हल्लो करके मैं रूम पूरा गेमिंग बना दूंगा जिसमें PS5 वो सब होए।
0: और पापा से जरूरत नहीं पड़ेगी, पापा के ऊपर मैं बर्डन नहीं बनूंगा।
1: एग्जैक्टली,
0: यस।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल।
0: ओके, अभी पीछे से आग लगाता हुआ ये इब्राहिम की आवाज ही। उसके अलावा पहली चीज होगी, दो चीज और बताइए। तीन चीज अगर करेंगे सैलरी आने के बाद तो
1: सैलरी आने के बाद से मैं सोलो ट्रिप्स करूंगा।
0: ओ, कहाँ?
1: स्विट्जरलैंड और शिमला, बर्फ जगह ऐसा कहीं जाना है या पे ठंडी जगह कहीं?
0: ठंडी जगह पे।
1: और
0: उसके अलावा
1: और नए नए कपड़े खरीदूंगा, शूजेस, आई लव शूजेस, तो बस नए नए शूज।
0: अफान के अम्मी अबू सुन रहे हैं तो प्लीज लड़के को कपड़े दिलाइए भाई।
3: नहीं कपड़े, ये क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं।
1: मतलब फैशन।
0: अच्छा,
1: नॉट राइट,
0: फैशन वाले कपड़े, मतलब वो शेडेड जीन्स,
1: बैगी जीन्स एंड स्टफ।
0: बैगी जीन्स? आप बैगी जीन्स क्यों नहीं दिला रहे भाई? फादर ये देखिए गलत बात है, अगला आदमी देखिए कमाने की सोच रहा है। ओके इब्राहिम, आप पैसे कमाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट एज में, अगर हालांकि आप अगेंस्ट हैं लेकिन फिर भी?
2: अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा तो I would definitely start a streaming channel for on YouTube.
0: Electricity bill.
1: Electricity, exactly.
3: I'll give. कि अब जब कमाने लगा हूं तो दे ही सकता।
0: ओके, सो हमारा नेक्स्ट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के बोलना है आप दोनों को। आपको क्या लगता है कि पैसे कमाने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट होंगे या फिर उनका एजुकेशन पे फोकस कम होएगा? आपका क्या कहना है अफान?
1: पैसे कमाने से मैं पहले भी बोला था कि लोगों को पैसे का वैल्यू समझ में आएगा एंड

0: उन लोग का लाइक क्या बोलते हैं मैच्योर होंगे इनफ लाइक मैच्योर कॉन्फिडेंट आएगा लाइक जब भी आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आप लाइक कस्टमर से मिलोगे अपने लाइक क्लाइंट से मिलोगे तो लोग से लाइक बात करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड लाइक वही मैच्योर होंगे वो बस वही है.
1: ओके और आप क्या कहना चाहेंगे क्या फोकस पढ़ाई से कम हो जाता है?
2: Definitely.
1: कैसे
2: कैसे बोले तो अब ये इमेजिन करो रोज बच्चा एक इमेजिनरी बच्चा बनाएंगे उनका नाम है अबू वो बच्चा रोज 5:50 पे उठ रहा है नमाज वही पढ़ लेके स्कूल को जा रहा है वापस 1:30 पे आ रहा है आके वो
1: पार्ट
2: टाइम जॉब कर रहा है 4 घंटे बोल देंगे फिर आके मम्मी से थोड़ी डांट खाएगा फिर खाना खा के सो जाएगा फिर उठ के डिनर खा के सो जाएगा उसको पढ़ने का टाइम कहाँ है और उस पर वो स्ट्रेस हो जाता है माइंड एक रूटीन में जाके इट्स माइंड
1: फ्रीज हो जाता है
2: हाँ मेल्ट डाउन हो जाए हर दिन सेम होएगा और जब छुट्टी स्कूल में छुट्टियां होंगे

साथ देना चाहेंगे कि नहीं, अगर वो पार्ट टाइम यानी कि स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो वो फोकस लूज कर देंगे, उनकी पढ़ाई में परेशानियां जो है वो आएंगे। आप किसका साथ देना चाहते हैं ये हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662210 पे बता सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके मैसेज का। इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापिस आएंगे, मजीद एंगल्स पे हम बात करेंगे FM 107 पे। दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: तो दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल, जहां दो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कटघरे में, एक का नाम है अफान और एक है इब्राहिम। सवाल कर लिया गया है और जज आप हैं। आप सलाह कीजिए कि किसके साथ आपको रहना है। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, बच्चे देख लेंगे कि वो जीत रहे हैं या फिर दूसरा हमारा दोस्त या हमारा यार वो जीत रहा है। दोनों अलग अलग स्कूल से हैं, दोनों एक दूसरे अगेंस्ट हैं और विनर कौन है ये आप डिसाइड करेंगे। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दोनों से कतर के बारे में पूछना चाहता हूं। अफान, कतर की सबसे बेस्ट बात आपको क्या लगती है?
3: यहाँ का व्यू
2: किस जगह?
3: कॉर्निश। जब जाओगे आप तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, एंड लाइक कॉर्निश का व्यू जो रहेगा वो बस बेस्ट रहा। लाइक यू नो रात का टाइम तो लाइट्स एंड स्टफ, और क्या शिप्स रहेंगे वहाँ पे, बोटिंग कर सकते, बोटिंग के मतलब शिप में बैठ सकते हैं आप। वो सब व्यूज मोस्ट प्रोबेबली।
2: ओके, आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है खतर का?
3: सिक्योरिटी।
2: और
3: यू फील सिक्योर इन खतर, और लीडरशिप, लीडरशिप इज वेरी फर्म।
2: अगर खतर में तीन जगह घूमने की बतानी हो जो हमारे खतर में नए लोग आए हैं, तो कौन सी तीन जगह आप बताएंगे कि इस जगह जरूर जाएं?
3: तवार मॉल, मॉल ऑफ खतर ऑफ कोर्स, एस्पायर पार्क।
2: चलो अच्छा हुआ तीसरा मॉल नहीं कहा भाई ने, वरना सिर्फ मॉल घूमते हैं क्या आप?
3: मजा आती है,
2: मजा आती है। ओके, तो सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों। आज का जो सवाल था वो ये था कि क्या स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम वर्क जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल, इसके काफी एंगल है, करियर का, स्किल का एंगल है, सोशल और पर्सनल एंगल है, फाइनेंशियल एंगल पे हमने बात कर ली है, जनरली जो एंगल होते हैं उस पर हमने बात कर ली है। अभी हम जरा और इसके अंदर जाके सवालों को कूरते हैं और इन स्टूडेंट से मेन सवाल पर जवाब लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अफान, डज पार्ट टाइम वर्क प्रिपेयर स्टूडेंट्स बेटर फॉर द जॉब मार्केट देन जस्ट एकेडमिक्स? एकेडमिक्स के अलावा क्या बच्चों को पार्ट टाइम जॉब मार्केट के लिए तैयार करता है?
3: हाँ, वो करता है, क्योंकि लाइक बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग का लाइक अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। अगर नए नए लोग से अगर मिलेंगे वो तो नए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, एंड वो फ्यूचर में भी उन लोग का हेल्प करेगा। सपोज अब कोई अब अच्छा अब आपसे मिला हूँ मैं, हाँ। रेडियो में आप काम कर, जब मेरा कुछ फ्यूचर में रेडियो से लिखला तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा।
2: आई वाह,
3: ऐसा कुछ।
2: आप क्या कहना चाहेंगे, एकेडमिक्स को असर पड़ता है?
3: ऑफ कोर्स असर पड़ता है, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो वो स्लोली स्लोली अपना मेन टाइम हो जाएगा। स्कूल को लेस एंड लेस टाइम दोगे आप और उस पे ही अटक जाओगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू विल बी देयर, मतलब आप हल नहीं सकोगे वहाँ से, और ऐसी टफ स्पॉट में आ जाओगे क्योंकि आप फाइनेंशियली भी डिसेबल्ड है और ऐसे ऐसे पोर सेलिब्रिटीज है जो they started, they were poor but they slowly became richer. Why? Because they stuck to what they love, they stuck to their thing, they didn't work part time. If they worked part time then they would be stuck there. For example, let's say Aisho Speed studied till he was 14, he finished school, he finished high school. High school ke baad he did what he loved. He took his father's support and he made a fan base of 100 million followers.
2: Correct.
3: And yeah, now he's very successful. As if agar wo time paise hona, jab agar unhon part time job t boy bante the, aaj tak bhi unhon t boy ban ke rehte the, 10 million people would not know him.
2: Okay, to ye dono ke thought bada hi strong aa rahe hain. Baki masla ye hai ki aap kiske saath hain, aapka thought kya hai is par aap

हमें बता सकते हैं, नंबर है 666-221-07। और अगला जो सवाल है, और ये सवाल है बड़ा ही खास, करियर और स्किल के एंगल से देखा जाए तो ये जरूरी सवाल है, जहां पर मुझे लगता है आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्या स्टूडेंट्स का वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर थ्योरी बेस्ड एजुकेशन ज्यादा वैल्यूएबल।

0: बट फिर भी जैसे कि पार्ट टाइम जॉब वो हमें प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक टीम वर्क हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, वो सब तो है यार, बस वही है.
1: ओके इब्राहिम,
2: I believe that theory-based education is more important than work experience. Like I said, अगर आप टी बॉय है तो टी बॉय ही रहेंगे, आप बढ़ सकेंगे नहीं because of your boss. Your boss may trap you in a very tight situation where you cannot come out of that work. You will be stuck in a loop, loop of every day until you get old man. Then you have to retire. तो मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी बेस्ड स्टडीज इज मोर इम्पोर्टेंट. यू कैन अप्लाई फॉर एनी जॉब. लेट्स से आई हैव अ नॉट येट इंशाल्लाह आई हैव अ इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ मास्टर्स और समथिंग. आई कैन अप्लाई इन एनी जॉब, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग और एनीथिंग लाइक दैट. Based on this study that I have told you, I feel like studies is more important and more valuable than work experience. Because sure, it's annoying that you don't have work experience, but it's also good that you have theory-based studies because that's more powerful than work experience. It can do more for you. Like a degree is equal to 10 years of work experience. Just by that. Now think about that, because if you have a degree, you can apply for a job, any high paying job. I can become a doctor, which gives me what, 600,000 a month, something like that. I can apply for basically whatever I want. A pilot degree, what, T-boy can come up to pilot status? No, it can't.
1: उर्दू रेडियो भी है भाई पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, और भी कई जगह इंटर्नशिप होती है, लेकिन इब्राहिम सिर्फ टी जॉब के लिए रुका हुआ है, वहीं पर फंसे हुए. और भी बहुत सी जगह हैं जहां आप काम करके काफी कुछ सीख सकते हैं. पार्ट टाइम जॉब अगर आप मिसाल के तौर पे आप उर्दू में रेडियो में हैं, जर्नलिज्म में हैं, इंटर्नशिप यहां कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं. उसके अलावा आप किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को होता है, लेकिन ये टी बॉय पे ऐसा पार्ट तोहमत लगा दिया मेरा भाई. ओके, तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे कुछ देर में, जब हम मजीद आखिरी सवालों की तरफ चलेंगे और फिर हम देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है इस खास ख्याल में, इस खास थॉट पे कि क्या स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए या नहीं. एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हाँ जी, अभी भी इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे। और हैदराबाद के दो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं अपने अपनी बातों को लेकर। आज का जो सवाल है आज के शो में, जिसका नाम है द डिबेटेबल शो, उसमें मैंने ये सवाल पूछा है कि भाई क्या स्टूडेंट्स वर्क करें या पार्ट टाइम जॉब करें तो वो बेहतर है, या फिर उनकी पढ़ाई काम करने की वजह से नुकसान में आती है, है ना। इन दोनों में से यानी कि इब्राहिम ने और अफ़ान ने जबरदस्त पॉइंट उठाए। मैं किसी के साथ अभी तक हो नहीं पाया हूं, लेकिन पॉइंट्स दोनों के बड़े ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं, आखिरी कुछ सवाल है, आखिरी दो तीन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। सोशल और पर्सनल एंगल हर सवाल का वो भी होता है, उसे भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आज का जो सवाल है आखिरी का तीन, अफ़ान आपसे किया जा रहा है, वो है कि क्या पार्ट टाइम काम या कहें कि पार्ट टाइम जॉब हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, या फिर क्या लगता है कि स्ट्रेस और बर्नआउट भी होता है।
3: स्ट्रेस और बर्नआउट कब होता है? जब आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हो। सीरियस नहीं, बस थोड़े बहुत पैसे जितने आप बुक्स एंड ट्यूशन के पैसे दे सको उतना तो बस करना ही पड़ेगा। और वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बस थोड़े अब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली फिट है, बट थोड़े बहुत जो स्टूडेंट्स है जिसके फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा एक्सपेंसेस, उन लोग को तो करना पड़ेगा। एंड अब सोशल एंड कॉन्फिडेंस तो बिल्ड तो करता है, क्योंकि ये टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये छोटी है, ये क्लासरूम तो नहीं सिखा सकती। ये हमें लाइक नॉर्मल बाहर की वर्ल्ड में निकलना पड़ेगा, तो इसलिए वही सिखा सकती है हमें। कांडो
2: वैसे इस टॉपिक के साथ हैं अफ़ान, लेकिन अफ़ान मैं एक ड्रॉबैक आपसे पूछना चाहूंगा पार्ट टाइम जॉब का, क्या कर रहा, क्या कहेंगे?
3: ड्रॉबैक
2: क्या बुरा है? एक एक एक चीज, एक ऐसा नुकसान जो पार्ट टाइम जॉब करने से होगा स्टूडेंट्स।
3: बुरा तो नहीं होगा क्योंकि कुछ है अपने, मतलब कर रहे क्यों, क्योंकि अपने को कुछ फाइनेंशियली अनफिट है इसलिए कर रहे हो गए।
2: हाँ,
3: थोड़ी लाइक
2: फिर भी एक पॉइंट फिर भी यार थोड़ा सा सोचा ही नहीं
3: नहीं पता।
2: ओके चले, लेकिन इब्राहिम मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या लगता है, ये बर्नआउट है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है काम करने से?
4: बहुत बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम्स आ गए सामने और काम करना है और आपके बॉस ने बोल दिया नो लीव बोल दिया तो तुम तो गए हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्ट टाइम जॉब को अपन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट कर देंगे।
2: अच्छा, लेकिन चल ठीक है, आपके पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन इब्राहिम एक चीज जो बेस्ट है, क्योंकि अफ़ान तो जवाब नहीं दे पाए कि अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो एक क्या ड्रॉबैक है, आप क्या कहेंगे कि अच्छा क्या है अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो, क्या आपने भी तैयार नहीं किया?
4: अच्छा बोले तो प्रोज एंड कॉन्स है, पर ज्यादा कॉन्स है। प्रो से ज्यादा प्रो क्या है बोले तो खाली पैसे है जेब में,
2: और
4: वो एक प्रो है,
2: बट एक लर्निंग भी तो है।
3: अच्छा ठीक है, लर्न भी आप नहीं कर रहे बोरे, लेकिन जब फाइनेंशियली अनफिट लोग को क्या करना पड़ेगा, लोग
4: गेटिंग

0: minimum wage, not even minimum wage. Sometimes children work for free, and they have more control over their workplace because they're adults. Adults can control children in a manipulative way.
1: Affan, आपको बोलना पड़ेगा इस मुद्दे पे.
0: Can I ask you one question? Has your mother ever looked at your dad in the eyes and said, "Stop playing the game"? And did you ever listen to that?
2: Yes.
0: Exactly. Yeah, exactly.
2: That's my mother.
0: Yeah, any other adult, they look dead in the eye and they're buff and they look at you and they go, close it. What you gonna do?
1: No, it's a little personal, friends. Okay, ये दोनों एक दूसरे से खेल रहे हैं. ये दोनों एक आपस के दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं. जिगरी, आप ये ना सोच लेगा कि ये दोनों सही लड़ रहे हैं. ओके, आगे बढ़ते हुए सवाल पर आते, ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्या मैं सांस की तरह दो लोगों को लड़ा रहा हूँ?
0: यस.
1: नहीं भाई, मैं तो बस सवाल पूछ रहा था. दोनों आपस की बात कर रहे थे. हम अगले सवाल की तरफ.
0: अफान, वी टीम अप.
1: मैं तो बस सवाल कर रहे हैं. आगे का ये सवाल बड़ा ही खास और ये लाइफ को लेकर है, बैलेंस को लेकर है काम को. डज बैलेंसिंग वर्क और स्टडी इंप्रूव डिसिप्लिन और इज इट टू मच प्रेशर एट अ यंग एज? क्या आपको लगता है कि बैलेंस काम या स्टडी जो है आपके डिसिप्लिन को इंप्रूव करता है, या ये बहुत ज्यादा प्रेशर है यंग एज में? अफान,
2: डिसिप्लिन को इम्प्रूव भी करता है और हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाता है.
1: कैसे?
2: क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम लोग करते हैं. स्टडीज को भी हैंडल करना है, थोड़ा लाइक टाइम स्टडी करना है, उसके थोड़े टाइम अपने को लाइक उसके पार्ट टाइम जॉब के ऊपर जॉब के ऊपर वो फोकस करना है. एंड वो लाइक वो है ऑर्गेनाइज करें हम लोग दोनों को भी, और वो डिसिप्लिन भी है. काइंड ऑफ.
1: ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. आपको क्या कहना है इस पे?
0: मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल भी डिसिप्लिन ही सिखाती है. अगर कुछ भी गलत करे तो सस्पेंशन इंक्लूडिंग सस्पेंशन कैन लीड टू योर डैड्स बेल्ट. वेरी पेनफुल बाय द वे. और अगर ये एक्सपीरियंस ब्रदर यू आल्सो suspension can to you know, if you get 3 times suspension, you get 1 expulsion. And if you get expelled, that is pretty good character development, if you ask me. And I feel like a child already has everything that he needs to develop in his life. For example, like if the father says, you know what, you're helping me with this today. You're helping me with hanging this painting. The child learns how to, you know, hammer the nail in without getting paid. You know what he gets? He gets a roof. He gets a house to live in. He gets food. He gets love by his parents. He gets a family. He gets a loving family. There is nothing more important than a loving family.
2: What about the students who don't have families proper? Like suppose, look, bas father nahi hai. Toh wo log kya karenge?
0: वो लोग काम कर सकते.
2: अफान
1: ने फंसा लिया भाई. अफान ने फंसा ली.
0: सबर. वो लोग काम करे तो वो अनाथ क्या बोलते हैं उसको, ऑर्फेनेज क्यों बनाया ये लोग ने? ऑर्फेनेज क्या है?
1: ये थोड़ा भारी हो रहा है.
0: ऑर्फेनेज क्या है? Exactly. Yeah, tell me. That's exactly why orphanage.
2: बच्चे particular that बच्चा के orphanage में रखे हैं. Look, mother like sister.
0: Every country in the world has an orphanage, my boy.
2: Yeah, ठीक है. तो parents मतलब एक mother है वहाँ पे, ठीक है, और एक उस उनके like बहन है, भाई की बहन है, और एक mother. तो वो लोग बस बाहर बैठ के like suffer करेंगे और वो orphanage में जाके मजे करेगा.
1: Okay.
0: Adopting. वो लोग तो okay. वो parents तो grownups है. Grownups की बात नहीं चल रही. यहाँ बच्चों की बात चल रही है भाई.
1: काउंटर हो रहा है एक दूसरे की तरफ. मुझे पानी डालना होगा. नहीं, पानी रो. ये बहुत तेजी से जल रहा है ये आग. लेकिन दोनों ने ऐसे पॉइंट उठाए जिसे काउंटर आप नहीं कर सकते. अगर आप अगेंस्ट हैं या फॉर हैं, तो दोनों ने ये पॉइंट जो उठाए हैं आज के सवाल पे कि क्या पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए या नहीं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग है. वेल, अब ये शो अपने अख्तितम को आ गया है. दोनों के पास अब 30-30 सेकंड होने वाला है. एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलना, ठीक है? 30 सेकंड अफान बोलेंगे, 30 सेकंड इब्राहिम बोलेंगे, और फिर आपका वक्त खत्म होगा. इस पॉइंट को लेकर आपको बोलना है, आज के सवाल को लेकर बोलना है कि क्या स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए या नहीं. नहीं करनी चाहिए इब्राहिम, क्यों नहीं करनी चाहिए? 30 सेकंड है आपके पास, समराइज करिए. अब
0: बर्नआउट की वजह से स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है, और मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. क्योंकि व्हेन द स्टूडेंट ग्रो

0: up, he will not only be at the same position that he is now, he will also have a depression probably. He won't be able to find a stable career, no family, nothing, because the parents are, the parents have to help the child somehow.
1: Second, ab aapke paas hai fun?
2: By working part-time jobs, students learn the value of money. And matlab paise ka like samjhenge hai paise kaisa hai. Bas har time parents ko par depend nahi rahenge. They learn, they earn, aur log look like apne own paiso ka manage karna sikhenge. Aur like ab suppose ab koi part-time job kar raha hai, look like bahar jaake kisi se milenge to contact badhenge. Un log like bolte na clients apna confidence badhayenge, apna like mature enough hoenge by talking to others, apna like bahar ki duniya samjhenge. Aur like part time job practical skills bhi sikhate hain, jaise ki teamwork ho gaya, communication ho gaya, problem solving ho gaya, aur bahut sare points hai. Apne se ek main point hai time management. Wo kya bolte hain, balance karta hai like work aur study ko, like kaisa manage karna hai wo like apne ko like organize karna sikhata hai. Aur like discipline, like you know, organize karke to aap log discipline mein bhi rahenge. Aur wo to discipline jo rahega wo academic सक्सेस भी देगा कभी कभार. आप ऑर्गेनाइज अच्छा करोगे, सपोज आपका कल मैथ्स का एग्जाम है और सोशल साइंस का, तो आप मैनेज करेंगे उसको, ऑर्गेनाइज करेंगे. चार घंटे में मैथ्स का पढ़ूंगा, चार घंटे में सोशल साइंस का एग्जाम का पढ़ूंगा, तो वो ऑर्गेनाइज भी हुआ और उससे आप डिसिप्लिन लाइक बोलते हैं ना, बस वो सब है.
1: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का. इब्राहिम और अफान हमारे साथ थे, दोनों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है. और जहां पर अफान का ये कहना है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आपको बैलेंस करना आ जाता है अपनी लाइफ को, मार्केट को समझ रहे होते हैं जब आप काम करते हैं बाहर जाके, और साथ ही साथ आपके पास कुछ यू नो सैलरी आ रही होती है जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपके कनेक्शन बनते हैं. वहीं इब्राहिम का कहना है कि जब आप इस तरह के काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं जब आप, तो नुकसान ये है उसका कि आपका पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा होता है, आप ओवरवर्क कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन में आपकी कहीं ना कहीं परेशानी आती है क्योंकि आप लगातार काम में ही फोकस्ड रहते हैं. फिर उसके बाद आपको सुबह उठना है, शाम को जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, आपके पास ओवर और वर्कलोड हो जाता है. ओवर वर्कलोड आपको टेंशन और डिप्रेशन और स्ट्रेस दे सकता है. एट द सेम टाइम आप पर रूल किया जा सकता है, आपके बॉस आपको वेज कम देंगे, क्या कहते हैं जो स्टाइपेंड होता है कभी कभी, जो सैलरी होती है वो कम मिलेगा, और ये सब आपके लिए एक बर्नआउट ही होगा. तो ऐसे में आप किस पर भरोसा करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आप किसके साथ हैं, अफ़ान के साथ या इब्राहिम के साथ, ये आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे. फिलहाल मुझे यानी कि फजील, इब्राहिम और अफ़ान को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी खास शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल शो, और एक नए सवाल के साथ. सुनते रहे FM 107, दिल से इसी.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 Qatar. दिल से देसी.
4: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा.
5: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talk. Generation Talk with RJ Kabir and RJ Safa every Tuesday at 3 p.m. At 3 p.m. Only on FM 107. Dil Se Desi. Dil Se Desi. Naya Zamana aur Unplugged Gaane. Dil khol ke hongi aapke khat ki baatein. Choti si kahani ho ya tarakki ke qisse. Ye show Fazil ke saath aapke hisse.
6: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम है आप सभी का। मरहबा मरहबा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर हाजिर हो चुकी हूँ। भाई ये देखो, आपका अपना म्यूजिकल शो है जहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बजती है और पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा FM 107 सिर्फ कतर में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी सुन सकते हैं, है कि नहीं। जनाब आज क्या करना है, आज कौन सी थीम हम रखने वाले। देखो वीकेंड जब होता है ना तब एकदम हम सैड नहीं हो सकते, न जाने क्यों, एक कुछ बात है वीकेंड में कि चाहे कुछ जाए हार्ड नहीं हो सकते, हम ज़्यादा थके नहीं हो सकते, हम ऐसी बोरिंग बातें नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट होनी चाहिए, कुछ स्पार्क होना चाहिए। तो आज हम वो गाने प्ले करेंगे जो आपके हर सैड मूड को पार्टी में बदलते हैं। तो यस, आई एम वेरी सर्टेन हर किसी का एक अपना वाला गाना होता है, उसके पीछे की कोई कहानी होती है, एंड वो गाना ना जब भी आप सैड होते हैं तो आपको लगता है भाई इसको सुनो जल्दी से एनर्जी आएगी, या अगर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, यू मेक श्योर कि आप वो गाना सुने, क्योंकि तभी यू फील इट कि हाँ भाई एनर्जी आ चुकी है, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है, अब हम हर चीज़ अच्छे से कर पाएंगे। सो यस, द रिक्वेस्ट शो में आज की थीम है पार्टी सॉन्ग्स जो आपके सैड मूड को पार्टीज में बदल देते हैं। सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, अपनी एक स्टोरी के साथ अपना फेवरेट गाना यहाँ सुन सकते हैं द रिक्वेस्ट शो पे, या चाहे तो अपना फेवरेट गाना किसी खास को भी डेडिकेट कर सकते हैं, और हाँ क्यों कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, मतलब बताओ, कम ऑन, दिस शो इज फॉर यू द रिक्वेस्ट शो। एंड हाँ, अगर फोन मिला के भी बताना है कि देखो अमिता ये वाला गाना प्ले करना है, देन यू कैन कॉल 443-443-77 पर। और गानों के साथ साथ हमारे शो के आखिर में क्विज टाइम भी होगा जहां पर आपका फिल्मी नॉलेज चेक होगा। भाई शो का आगाज तो करना पड़ेगा धमाकेदार गाने के साथ, और अरिजीत सिंह की आवाज एकदम फर्स्ट क्लास गाना है भाई, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Yes, now welcome. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता, द रिक्वेस्ट शो, आपका पर्सनल म्यूजिकल शो जो आप सुन रहे हैं, इसमें आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हाँ जनाब, तो कैसा लग रहा है आपको अभी जस्ट शुरुआती दौर में ये जो गाना मैंने आपको सुनाया फर्स्ट क्लास, आई एम वेरी सर्टेन कि हर किसी की एनर्जी थोड़ी बूस्ट हो गई होगी। तो आज का थीम बड़ा सिंपल है, वो गाना आपको सुनना है, वो गाना आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो पारी सॉन्ग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपकी एनर्जीज को बिल्कुल बढ़ा देता है। अगर आप उदास होते हैं तो आपको कहता नहीं देखो उदास होना इट्स वेरी बोरिंग यार, कम ऑन, आपको एनर्जाइज होना है, हर चीज़ में आपको अच्छा होना है, वो पंपिंग सॉन्ग आपका कौन सा है, ठीक है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 666-22-107 पर मैसेज कीजिए अपने डेडिकेशन या किसी खास को डेडिकेट करना है, देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। एंड हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो कह रहे हैं कि अमिता हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ गाने बड़े सैड से हो रहे हैं, बोल रहे हैं ये गाना सुन के हमको अच्छा लगता है। देखो आज वीकेंड है, आज मैं कोई सैड गाना नहीं प्ले करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, तो थिंक अबाउट योर प्लेलिस्ट और वो गाने रिक्वेस्ट कीजिए जिसे सुनकर आपका दिल खुश होता है। वेल अभी सबसे पहली रिक्वेस्ट है हुसैन की, जो कि सुनना चाहते हैं सुल्तान फिल्म का ये वाला गाना। ओहो, ये म्यूजिक सुनकर समझ में आ जाता है कौन सा गाना है, बेबी को बेस पसंद है। आ हा हा हा, बहुत बढ़िया, ये फोक स्टाइल में जो गाया है ना, अल्टीमेट है भाई। वेल सुल्तान फिल्म की एक बात है कि ये फिल्म हमारे सलमान खान के करियर की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे सेकंड इनिंग्स होती हैं, इस फिल्म ने उनकी लाइफ की स्किन इनिंग कर दी थी। उसके बाद दिलबर अली ने रिक्वेस्ट की है गाना दिलबर दिलबर, क्या बात है, अपने नाम से राइम करके ये गाना मतलब सुनना चाहते हैं, क्या मतलब बात क्या है। वेल ओरिजिनली ये फिल्म सिर्फ तुम का गाना था जिसको रिक्रिएट किया गया सत्यमेव जयते फिल्म के लिए, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाओ, इन्जॉय करो। और आप जो सुन रहे हो और सोच रहे हो कि मेरी प्लेलिस्ट का वो हिट गाना कौन सा है, सिर्फ सोचो मत, लिख कर भेज दो 666-22-107 पर अपने सॉन्ग डेडिकेशंस, और हम यहाँ पर प्ले करेंगे ना। तो स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app. See now.
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी।

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप. ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप.
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
3: यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. हाँ तो रेडी हो, फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हो? देख लिया कि मतलब कौन सा गाना है जिसको सुनकर आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है. वैसे तो मैं प्रेफर करूंगी कि देखो आज वीकेंड है तो कुछ धूम धड़ाका हो जाए हमारे शो पर, मतलब ऐसे ढिंचक ढिंचक वाले गाने होने चाहिए ताकि आपकी ड्राइविंग में भी आपको बड़ा मजा आए, ठीक है. लेकिन इट्स नॉट अ रूल, ओके. अगर कोई गाना है जो स्लो टेम्पो का है या मिड टेम्पो का है और आपको लग रहा है कि भाई ये गाने भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब इन्हें सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ, जो कहते हैं ना हैप्पी सॉन्ग्स, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो. और हाँ, किसी खास को डेडिकेट करना है तो बता दो अपनी वन लाइन स्टोरी में. हाँ, सो 666-22-107 इज आर नंबर. इसके जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं. तो अभी हमें रिक्वेस्ट आई है, भाई इंजीनियर साहब है मोहम्मद फैजान, और कह रहे हैं कि ये गाना सुना दो ना अमिता. क्या बात है, फुकरे फिल्म का गाना.
4: देखो मेरे दिल की
3: कमाल की फिल्म है, मतलब एक तो दोस्तों की दोस्ती यारी कमाल की फिल्म है, और पेट दुखने लगता है हंसते हंसते. सो डेफिनेटली फैजान जी, ये गाना आपकी राहों में आएगा कुछ ही देर में. और उसके बाद एक गाना ऐसा है जिसकी हमें तीन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, दैट इज आफ्ताब, अहरम, साजिद. और वो गाना है एक बहुत ही दिल को छूने वाला सॉन्ग. व्हाट्स द सॉन्ग? इन दिनों दिल मेरा, सोहम चक्रवर्ती की आवाज में. और

लगता ना इस गाने को जब सुनो ना तो कितनी सारी यादें एक साथ आ जाती है कि नहीं। बट यस, ये दोनों ही गाने मैं प्ले करूंगी और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप इसे इंजॉय करें, इश्क द फनियर एंड इन दिनों। और आप जो अभी तक सोच रहे हैं कि कौन सा गाना हम सुने, जल्दी जल्दी सोचो और बता दो, क्योंकि सिर्फ एक घंटे का शो होता है, 5 बजे के पहले मुझे अलविदा कहना होगा, ठीक है। सो 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने सॉन्ग डेडिकेशंस जल्दी से भेज दो। और अभी बने रहो FM 107 पर, दिल से दे

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: Yes, जनाब, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और द रिक्वेस्ट शो पर आपकी रिक्वेस्ट के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और क्या कमाल कमाल के गाने हो, मतलब गानों की रिक्वेस्ट आई हुई है। अभी अली ने मुझे रिक्वेस्ट की है, कहा कि अमिता ये गाना जल्दी से प्ले कर दो, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इसे कब प्ले करो और कब मैं इंजॉय करूँ। आ हा हा, सो बड़ा ही खूबसूरत गाना है, शिल्पा राव, कैरोलिसा मोंटियारो और विशाल डारलानी की आवाज़ में। हाँ, बेशरम रंग आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, एंड शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण का एज अ कपल बहुत खूबसूरत लगा है। बट ये गाना जितना स्मूथ दिखता है उतना आसान नहीं था, कि क्योंकि जब इसकी शूटिंग हो रही थी तब तेज़ तूफान था, बट वीडियो में कैसा लग रहा है ना, सब कुछ स्मूथ। या यही होता है आर्टिस्ट की मेहनत। और उसके बाद सचिन ओमर अफजल, वेल इन्होंने मुझे मैसेज किया मेरे सोशल मीडिया पे अभी और कहा कि अमिता देखो हम लोग सारे फ्रेंड्स हैं एंड वी वांट टू लिसन टू दिस सॉन्ग। एंड ओमर का कहना है कि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो हमारी फैमिली के हर शख्स को पसंद है। अच्छा, क्या बात है, मेरे महबूब इज द सॉन्ग, शिल्पा राव एंड सचेत टंडन की आवाज़ में। देखो जनाब, आई नो कि आप कहीं भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं FM 107 के, या फिर आरजे अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, बट 666-22-107, 666-22-107 इज़ आर नंबर। अगर आप इस पर मैसेज करेंगे ना, तो अभी के अभी आप

आपके पसंद के गाने प्ले हो जाएंगे. सो डू टेक्स्ट अस नाउ. और अभी शुरुआत कर देते हैं आपकी पर्सनल प्लेलिस्ट की. तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर सुनते हुए द रिक्वेस्ट शो अपनी एफ और अमिता के साथ. स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जरा वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो कैसा लग रहा है आपको ये हिटेड गाने, अपने ही पसंद के गाने यहाँ फुल वॉल्यूम पर सुनकर कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ, वीकेंड का मूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि नहीं? वेल चलिए अब अगली रिक्वेस्ट की तरफ फटाफट चलते हैं। वैसे हमारे कुछ लिसनर्स कह रहे हैं आपका फेवरेट गाना वीकेंड वाला कौन सा है। ओके, तो वो मैं बताती हूँ, हम यहाँ पर क्विज टाइम खेलेंगे ना, तो जिस गाने के लिए मैं सवाल पूछूंगी वीकेंड में वही गाना अभी मेरे जहन में चल रहा है। ओके, तो वो आएगा कुछ ही देर में, बट अभी रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे साथ है रमेश और कहते हैं कि अमिता एक खूबसूरत सा गाना प्ले कीजिए, क्योंकि मैं ये गाना अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहता हूँ और 3 साल से मैं कतर में हूँ, अभी घर नहीं जा पाया हूँ। आई रियली रियली मिस हर। ओ माय डियर, क्या कह दिया आपने रमेश जी, ऐसी बात, आपकी रिक्वेस्ट हम कैसे मना कर सकते हैं। सो डेफिनेटली स्टेविन बेंड की आवाज़ में बेहद खूबसूरत गाना है जो थोड़ी देर में आप सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा प्यार, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक। आई एम श्योर कि आपकी बेटी को भी बड़ा अच्छा लगेगा। वेल, इसके बाद एक बड़ा धमाकेदार गाना आने वाला है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई है एक बहुत ही धमाकेदार हमारी लिसनर की, और इनका नाम है गायत्री। कहती है कि अमिता आई सो लव शाहिद कपूर, और ये वाला गाना आप बजा दो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर खूबसूरत लड़की जब उसकी शादी के बारे में बात होती है तो वो अपने प्रिंस चार्मिंग के बारे में सोचती है, एंड ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। प्लस क्योंकि मैं खुद भी ये गाना सुनकर इमेजिन करती थी कि भाई मेरा जीवन साथी कैसा होगा। तो हमारी शादी में इस द गाना फ्रॉम द मूवी विवाह, ये भी कुछ ही देर में आएगा, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ। फिलहाल स्टेविन बेंड इज हियर, सो एंजॉय दिस सूदिंग ट्रैक। हाँ, और 666-22-107 भाई ये नंबर याद रखो, इसके जरिए अपनी पसंदीदा गानों की रिक्वेस्ट कर सकते हो। और इन दोनों ब्यूटीफुल डेडिकेशन के बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्विज टाइम, तो कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: क्या बात है, मतलब ये गाना सुनकर तो लिटरली ऐसा लगा कि जैसे हमारे पड़ोस में शादी हो रही है और स्पीकर्स पर ये गाना जोर से बज रहा है और हम भी शादी में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि नहीं? वाह क्या बात है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, तो भाई मजा आ गया आज की वीकेंड की प्लेलिस्ट सुनकर, तो मेरा दिल एकदम खुश खुश हो रहा है, बाग बाग हो रहा है। तो बहुत शानदार चॉइसेस है जनाब आप सभी की, जो आप हमें लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्विज टाइम हो चुका है।
1: क्विज टाइम,
0: तो इसमें क्या होगा, एक गाना है बीच से मैं प्ले करूंगी और ये वही गाना है जो वीकेंड में ना मेरे जहन में चल रहा है, ठीक है? तो एक बार जरा सुनो और बताओ कि ये गाना कौन सा है, मतलब पहचानना है आपको ये गाना कौन सा है। हाँ, दिल देना दिल लेना, मतलब उसके बाद आता क्या है, कौन सा गाना है ये? हाँ, तो सोचिए 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ ही गाना बताइए, क्योंकि ये हमारे शो का आखिरी गाना होगा जो कि मैं आपके नाम करने वाली हूँ। लेकिन अभी के लिए मोहम्मद की रिक्वेस्ट आई है और वो कह रहे हैं कि अमिता ये गाना प्लीज प्ले कर दो, दिस इज माय और मेरी वाइफ हम दोनों का फेवरेट सॉन्ग है। क्या बात है, केके की आवाज में है जरा सी दिल में दे जगह तू, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जन्नत फिल्म का। सो आपकी राहों में आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड, और आप अपने जवाब मुझसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर। तो जिन्हें भी जन्नत फिल्म पसंद है और केके की आवाज पसंद है, ये गाना तो भाई तेज स्पीकर्स पे सुनने वाला है, तो फुल वॉल्यूम कर लो और एंजॉय करो। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: वाकई में भले ही सुर में निकले ना निकले, लेकिन हम भी वो वो वो करके जोरों से इस गाने को गाते हैं कि नहीं। के की मेलोडियस आवाज एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, मतलब इस गाने को सुनकर बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से
0: और हमारे शो का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है। तो क्या हाल चाल है, मजे आए कि नहीं आज के हमारे शो के ये कमाल की प्लेलिस्ट सुनकर। वैसे क्विज टाइम पर मैंने एक गाना बीच से आपको सुनाया और कहा कि गाना पहचानो कौन सा है। हाँ, कौन सा गाना है? सौदा खरा खरा, एग्जैक्टली। और हमारे काफी सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सही गेस कर लिया है, तो क्या बात है। आइए जरा देखें इनके नाम क्या क्या हैं जिन्होंने सही गेस किया है और ये प्रूव कर दिया कि भाई इनका फिल्मी नॉलेज बड़ा कमाल का है। सो मोहम्मद ने हमें सही जवाब दिया, हिशाम है, आसिफ ने हमें सही जवाब दिया है, इनका नाम है हुसैन। हुसैन कह रहे भाई गुड न्यूज़ फिल्म का गाना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये है एहसान अली, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। नूर मोहम्मद ने भी हमें सही जवाब दिया है। गुड जॉब गाइस, जोरदार तालियां तो बनती है आपके लिए। हाय हाय, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। वेल, सौदा खरा खरा ये बड़ा शानदार सा गाना है, एंड यू कहें 90s का इंडी पॉप सॉन्ग था। सुखबीर ने इसे लिखा भी था, कंपोज भी किया और परफॉर्म भी बड़ा कमाल का किया था, है कि नहीं। और इनके एल्बम का नाम था हाई एनर्जी और इसे फिर रिक्रिएट किया गया 2019 में फिल्म गुड न्यूज़ के जरिए। और इसमें दिलजीत दोसांझ, ध्वनि भानुशाली की भी कमाल की आवाज़ है एंड सुखबीर के भी वोकल्स हैं, तो इनफैक्ट आप इस गाने के वीडियो में उन्हें देख भी सकते हैं। तो चलिए अब वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, ये गाना हम आपके लिए प्ले करते हैं और हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही गेस किया और जिन्हें ये एकदम कहते हैं ना अपबीट पंजाबी ट्रैक पसंद है। और हाँ, पर हाँ क्या हमारे लिसनर्स कह रहे हैं अमिता हमारा वाला गाना, देखो आई नो कि सारे गाने एक साथ प्ले करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट सीरियसली ये शो आपका है और हर दिन यू नो संडे से लेकर थर्सडे तक मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ शाम 4 से 5। तो रहिए मेरे साथ 666 double

1207 is our number, 666-22107. इसमें हर दिन अपने पसंद के गानों की रिक्वेस्ट कीजिए, स्पेशल थीम में पार्टिसिपेट कीजिए एंड सारे गाने आपके नाम ही होंगे. ओके, और अभी क्या करना है भाई, रेडी हो जाओ, वीकेंड आ चुका है एंजॉय करने के लिए. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 के, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और अब मुझे दे दो इजाजत, जाते जाते ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. वॉल्यूम बढ़ा लो, वॉल्यूम, एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए।

0: जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ भैया आज तो टाइम सबसे बढ़िया चल रहा है। हाँ वीकेंड है मेरा भाई यार, वीकेंड में नहीं चलेगा यार अच्छा टाइम तो कब चलेगा। फिलहाल 6:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और ये शो अनप्लग्ड इवनिंग
3: आप सुन रहे हैं। अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: थर्सडे के दिन अगला आदमी चेहरा देखे तो कहे अम्मा भैया क्या हो गया यार तुमको, यार बहुत गर्मी में काम कर रहे हो, अब उनको कौन बताए ला ला ला बाबू ये नाक और ये गाल जो लाल है ये वीकेंड की खुशी है बाबू। है नहीं है बताओ लोग क्या पता भाई, खिल कर हंस रहे हैं, दूसरी कार वाला भी देख रहा है अरे खुश बड़ा ये आदमी, चार दिन बड़ा परेशान रहता है लेकिन आज के दिन एक अलग चेहरे पे खुशी एक तेज एक लालिमा रहती है। लोगों को लगता है अरे भैया ये भी मेकअप करना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का मेकअप है यार ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। हमें हम मर्दों को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वीकेंड की जरूरत पड़ती है और हे भारी भारी लाइन है। क्या हाल चाल दोस्तों, इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है अनप्लग्ड इवनिंग और उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा। वेल थर्सडे का क्या प्लान है, कहाँ की तरफ किधर रुख कर रहे हैं, कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हैं या फिर बीच की प्लानिंग है या कुछ खास कोई काम करने का शौक है ऐसा कि अरे नहीं भैया अपने को क्या है, वही अपना भैया कपड़े धुलना बर्तन धुलना घर साफ करना चादरें बदलना तकिए का गिलाफ बदलना अपना फजील भाई यही काम है और कुछ तो नहीं है, फ्राइडे को तो बस यही है। वैसे अगर आप ये वाले हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा और आपका बिल्कुल मिलता जुलता है बाबू, हमारी जिंदगी में कुछ खास है नहीं। तो क्या है कि हर शख्स की जिंदगी में यही है ना कि एक वीकेंड तो सिर्फ इसी काम में निकल जाता, बाकी दूसरा वाला एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा सोच रखा थर्सडे को एंजॉय करेंगे, जब ज्यादा सोचो ना कि यार थर्सडे को ये वाले वीकेंड को ना ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे तभी सबसे ज्यादा खराब जा रिया होता भाई। पता नहीं ये ऊपर वाला डिसाइड करता कि अरे ये खुश ज्यादा लग रहा है इसको आंसू देता हूं, रुको जरा अभी रुको जरा सबर करूँ। यही चलता है। फिलहाल 6:04 और सवाल पे हल्के हाथ से आ जाते हैं अनप्लग्ड इवनिंग ये शो। और सवाल जो है आज मैंने थोड़ा हल्का रखा क्योंकि थर्सडे का दिन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेंटी भी हो सकता है कुछ लोगों के, अगर हम थॉट से सोचें कुछ लोगों के बुद्धि में घुसे तो उनको ऐसा बड़ा परेशानी वाले लग जाता है ये सवाल। तो आज का सवाल मैं सोच रहा हूँ अभी कर लूँ कि गाने के बाद, एक गाने के बाद एक थोड़ा माहौल जो है वो बच जाए, है ना, गाना प्ले हो जाए। और ये गाना थोड़ा यार हल्लू हल्लू वाला है, मैं थोड़ा तेज गाना चाह रही हूँ।

मैं रहूं ना रहूं अरमान का तो गाना नहीं प्ले करूंगा, रुक जाओ यार। अनप्लग्ड एक गाना जो है तगड़ा वाला, अगर मुझे मिल जाए तो वो गाना प्ले करूंगा। और तुम सांसों में हिमेश का गाना यार, देखो कितना भी ज्यादा यू नो स्लो हो गाना उनका, बट हिमेश बाबू की नाक ने जो कमाल किया है वो लाजवाब है। हिमेश और तुलसी कुमार की आवाज में, मतलब ये गदर सॉन्ग है भाई। तुम सांसों में मिल भी गया यार एकदम ही लाइन पे, मजा आएगा। सुनो FM 107 पे, फिर सवाल पे आते हैं।

है मैं शिरोशमिया की आवाज में, तुलसी कुमार का साथ तुम सांसों में। दीवाना कर गए, ये गाना सुना आपने 6:11 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और हम भी उनके दीवाने हो जाते हैं जो असल में हमारी जिंदगी में कुछ करके जाते हैं हमारे लिए, है ना। ऐसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं लेकिन दीवाने तो हम हो ही जाते हैं यार। और वैसे भी हमारा दिल तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा कर दो यार हमारे लिए, हम तो तुम्हारे यार मुरीद बन जाएंगे। नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का, और आज के सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। और आज का सवाल ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट भी है। आज का सवाल ये कि क्या होता है कि कई बार आपको अपने गिरबान में, आपके अंदर आपको झांकने का मौका मिलता है। आपको ये मौका आज मैं दे रहा हूँ, और साथ ही ये मौका उनके लिए भी है जो असल में कुछ नहीं करते। तो सवाल क्या है, जब सुनेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सवाल ये है कि आपका कभी ना कभी तो हार्ड टाइम रहा होगा, आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम्स रहे होंगे, है ना। कभी चाहे घर की बात को लेकर, चाहे पेरेंट्स की बात को लेकर, चाहे वो आपके अपने किसी काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, स्टोर को लेकर, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन किसी ने आपकी मदद की होगी, किसी ने हाथ बढ़ाया होगा, है ना। तो एक ऐसा वक्त जब आपका बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था, परेशानी से भरा हुआ था, लेकिन किसी ने हाथ बढ़ाया और हाथ थामा कि मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो, तो आप उसे कैसे पे बैक करते हैं। आज जब आप मुकम्मल हो गए हैं, आज जब आप कमाई से लेकर आप बेहतर इंसान बन गए हैं, बेहतर शख्स बन गए हैं, आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आ गया है, तो अब आप कैसे पे बैक करते हैं। या क्या आप उनके साथ अभी भी दोस्ती रखते हैं, या फिर उन्होंने एहसान जताया तो आपने ठा छुड़ा लिया उनसे, है ना। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए कुछ करते हैं और फिर एहसान जता देते हैं। तो ऐसा है कि भैया आप ये दाएं मुड़ जाइएगा आप, है ना, हमारी ज़िंदगी से आगे से जाके दाएं मुड़ जाइएगा, नज़र मत आना। तो आप ऐसे वाले हैं या आप पे बैक करते कि नहीं यार, उसने मेरी मदद करी थी, अब वो जैसा भी हो शख्स, अब वो एटीट्यूड में है, ईगो दिखा रहा है ना, उसने मदद करी तो अब उसको इस बात का घमंड है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, अब उसको अगर जरूरत होगी तो मैं खड़ा रहूंगा। तो आपको बताना है क्या आप पे बैक करते हैं अगर कोई शख्स, किसी ने एक जमाने में आपकी हेल्प करी हो, तो आप क्या आज हेल्प करते हैं या नहीं, वो बताना है। नंबर है 666-22-107, 666-22-107। वैसे हर शख्स का मिजाज जो है वो अलग होता है, आपका मिजाज क्या है आप बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है जैसे मेरे साथ ये होता है कि भाई एहसान कर दिया तो क्या, तो एटीट्यूड दिखाओगे, अकड़ में रहोगे, तो फिर तो मेरी जुत्ती भी तुम्हारे घर की तरफ नहीं बढ़ेगी, मतलब हल्लू हल्लू हल्लू हल्लू पैर रखता हूँ मैं। तो ये मेरे साथ

है कि भाई कितना भी आपने मदद करी हो, लेकिन अगर आपने उसमें अकड़ दिखा दी तो फिर मैं पे बैक नहीं कर पाऊंगा, फिर हमारी और आपकी दूरी हो जाएगी। क्योंकि क्या है, दो रिश्तों में इज्जत भी तभी बनती है ना जब दोनों तरफ से हो, एहसास हो। लेकिन आपका क्या मानना है ये बताइए। 666-22107 बाकी मैसेज बढ़ते हैं। खादिम भाई का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग मेरा भाई, हैप्पी वीकेंड आपको भी, हैप्पी वीकेंड। यूसुफ भाई का मैसेज, हैप्पी थर्सडे इवनिंग एंड हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड भाई। फिर ये मैसेज तो भाई कॉल मत करिए, कॉल एक भाई ने दाग दी है। कॉल के लिए नंबर दूसरा है 4434377। बाकी आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि भजील भाई कर लो, हमारे पास पैसे बहुत हैं, मतलब मेरे अपने जेब में नहीं कंपनी की जेब में, तो कंपनी की जेब वाला खर्च करते हैं ना, तो काहे के लिए आप कॉल कर रहे हैं मेरे को बताओ कि कॉल करो तो मैं इधर से कॉल कर लूंगा। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का सॉन्ग प्ले कर दो भाई, ये आपको 4 बजे ही मिल पाएगा, इसलिए माजरत मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपने गाना सुना सुना कर दीवाना कर दिया। जुल्फिकार साहब बहरीन से सुनते हैं लेकिन लाइनें पूरी कतर वाली मार रहे हैं देखो मैं 4 बजे कहता था ना कि हमें जो सुनने वाले लोग हैं वो एक मुल्क के नहीं हो, 11 मुल्क के, मैंने 11 मुल्क गिनाए भी थे और सबूत के साथ जुल्फिकार बहरीन से आए भी हैं, UAE, उदी, बहरीन साहब, कतर है तो अपना यार रौला तो है FM 107 का, जो बात है भाई अपनी फ्रिक्वेंसी दूर दूर पहुंचती है। बस जुल्फिकार कुछ देर में ये ना कहते नहीं नहीं भाई मैं बहरीन से कतर आया हूँ हौले हौले। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, वालेकुम अस्सलाम, नाम है इनका शाहजेब, तो शाहजेब हमारे ऑफिस में एक शहबाज है, शाहजेब शहबाज, अरे वाह यार शहबाज, जा और बा का हिसाब है ना, बस उसी आखिरी के 3 लफ्ज को उल्टा कर दो वही हो जाता है। बाकी सलाम है और उन्होंने लिखा है कि भाई मैं भी आपकी तरह हूं, अकड़ नहीं झेलता हूं, मैं अकड़ बकड़ पड़ने लग गया था, अकड़ नहीं झेलता हूं। ये तो है यार, लोगों में भी एक एटीट्यूड होता है कि भाई अपनी जगह है बात, लेकिन एटीट्यूड तो नहीं झेल पाएंगे। उसके अलावा एक और ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नाम क्या लिखा है आपने, सादिक ने लिखा है कि भाई मैं पैसे से और मेहनत से तो नहीं लेकिन पैसे से मदद करता हूँ। ओ अच्छा, ये अब्बा भी हमारे कहते हैं कि भैया देखो सबकी अपनी सितात होती है, वो अपने खानदान में होता है ना कि अरे देखो उसने हाथ पैर से किया, मैं तो पैसे से कर सकता हूँ, मैं हाथ पैर से थोड़ी कर सकता हूँ, ये मेरे अब्बा लाइन मारते थे। मैं क्या बात है भाई, तो ये भी है, मतलब सादिक भाई भी अब्बा ही की तरह है, अब्बा और सादिक मिलते जुलते, अब्बा का नाम सादिक नहीं लेकिन ओके एक और ये मैसेज है किस भाई का, मजरुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, और एक कंट्री का नाम ले लो, इजिप्ट, मेरे दोस्त सुनते हैं वहां से। अरे तब तो 12 मुल्कों की जनता हो जाएगी ना फिर सुनने वाली, ये तो बताया नहीं तुमने यार, इजिप्ट पहुंच रहा है या फिर ये उर्दू रेडियो .qa वाला हिसाब है, फ्रीक्वेंसी पहुंच रही कि नहीं ये मेरे को पता नहीं। फिर एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं भी उसकी वैसी ही मदद करता हूं जैसा वो डिमांड करता है, लेकिन एक मेरा दोस्त था, ऑटो करेक्ट हो गया, जिसने मेरी उम्र पंद्रह में मदद करी थी, इतना याद है, अभी कितनी उम्र है भाई, और आज तक मुझे याद है, क्या मदद करी थी ये भी बता दो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने मुझसे ऐसी मदद ली है मैं वो यहाँ पर बता नहीं सकता भाई मतलब होता है ना कि जैसे ऐसे लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता कि मैं फंस जाऊँ यही उल्टा अपनी जबान इलीगल नहीं, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब ऐसी मदद जो यहाँ पर बोलूँगा तो परेशानी हो जाएगी, नहीं है मतलब वो वाली मदद ली थी, कहीं आपसे भी वही वाली मदद तो नहीं ली, ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये किसने कहा था, राकिब, ए भाई कहीं ऐसा तो नहीं, अच्छा ये वो वाला रकीब तो नहीं है जो उर्दू शायरी में आता है, असली नाम बताओ भाई क्या है, प्रोफाइल पे तो यही लिखा है। बाकी एक और ये मैसेज है, सलाम है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या नाम है आपका, नाम तो नहीं

लिखा है लेकिन सलाम। पर मजरुद्दीन कहते हैं फ्रीक्वेंसी का पता नहीं, बट वो टेलीविजन पे रेडियो एक्सेस हो रहा है। मजरुद्दीन भाई, ये इजिप्ट में कौन सा ऐसा टेलीविजन है जहां पर वो फोटो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही और रेडियो चल रहा है? भाई चेक करो, उन्होंने अपने मोबाइल का नाम तो टेलीविजन नहीं रख दिया। हो सकता है भाई। फिलहाल 6:20 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ये मैसेज किस भाई का है? जाहिद इनका नाम है, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। और जाहिद भाई ने कहा है कि मदद उनकी करो जो मदद करना डिजर्व करते हैं। भाई के दिल में कुछ तो रखा है, मैं बता सकता हूँ आपको 100% दिल में इनके कुछ तो चल रहा है। भाई पूरी बात बताओ तो मज़ा भी आए मेरा भाई। बाकी मजरुद्दीन कहते हैं वीडियो भी आती है। भाई वीडियो कहाँ आती है यार, उर्दू रेडियो। अरे इन्होंने फोटो भी भेजी है, उर्दू रेडियो लिखा भी है लेकिन वीडियो में कुछ नहीं लिखा है। वीडियो में कुछ नहीं दिखा रहा है, पूरी टेलीविजन की यानी कि टीवी की इन्होंने तस्वीर भेज दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम कौन सा टेलीविजन चला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं चला रहे और हमें पता ना हो? कैमरा तो लगा है वैसे यार स्टूडियो के अंदर। पहुंच रहा हूँ डायरेक्ट वहां पर। तो एक और ये मैसेज है एहसान साहब का, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम। फजील भाई, मदद का बदला मदद होता है, हेल्प का हेल्प हमेशा करनी चाहिए। ओके भाई, आप लैंग्वेज में कभी कभार फंस जाता हूँ मैं भी, माशाल्लाह ऐसी खतरनाक लैंग्वेज होती है ना, मुझे 4 दिन लगता पढ़। वो तो मैं पढ़ के इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ कि आपकी लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आने लग गई है, लेकिन माशाल्लाह अभी भी कुछ लोग जो है ऐसी चाइनीज़ लिख के या स्पेनिश लिख कर भेजते हैं जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। वो उर्दू लेकिन उर्दू चाइनीज़ है, वो क्या है वो अल्लाह जाने भाई। फिलहाल 6:21 स्टूडियो की घड़ी में, और ये बात बिल्कुल सही भी है। मैं मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि जिसने मेरी मदद करी या जो हेल्प कर भी रहा है तो उसका एक एटीट्यूड दिख जाता है ना। ये सोसाइटी में भी है कि अगर आपकी कोई मदद करता है, कोई हेल्प करता है, उसके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है, आपको वो हमेशा नीचा दिखाने लगता है। फिर उसके बाद ना एक अलग सी कोफ्त जो है वो छिड़ जाती है अपने ही अपने अंदर में कि अब से किसी भी शख्स की मदद नहीं लेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अक्सर वो अपने किए हुए को, अपने मदद किए हुए को ऐसा एहसान के तले हम पर दबा देते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम सह लेंगे, तकलीफ उठा लेंगे लेकिन किसी की मदद नहीं लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है। सो ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। और अच्छा ये भी है कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, फीमेल्स में मतलब ऐसा हेल्प करने के बाद तोहमत लाद देती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए फला दिन ये करा था। अरे भैया। और फीमेल्स में मैं अपनी बहन का ही नाम ज्यादा पहले लेना चाहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए उस दिन 2 रोटी बनाई थी एक्स्ट्रा। अरे भैया। आगे यूसुफ भाई ने कहा है, फजील रकीब नाम भी होता है, रकीब के मीनिंग दुश्मन होता है। या लेकिन ये रकीब तो वो शायरी वाला होता ना कि मेरे रकीब न बन, ऐसा कुछ करके होता है। रकीब होता है, कुछ और होता है, आई डोंट नो यार। मतलब वो मुझे ये पता है कि रकीब का मतलब ऐसा कि, अरे यार एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं। दुश्मन ही समझ लो, मेरे दुश्मन से दोस्ती जिसने कर ली ऐसा करके, उसको रकीब ही कहते हैं। लेकिन ऐसा नाम अगर होता है तो पता नहीं, रफीक का मीनिंग दोस्त होता है भाई, लेकिन वो रकीब ही है, उनने यही लिखा है। और रदीफ है शायरी में, अरे नहीं वो रदीफ अलग जी, वो अलग चीज़ है भाई। एक शायरी में वो रकीब इस्तेमाल करते हैं, वो दुश्मन आपने कहा, वो दुश्मन एक्चुअली में रकीब का मतलब दुश्मन भी नहीं होता है, वो मतलब होता है, यहां पर अजीब हो जाएगा, मैं बाकी मैसेज कर दूंगा, रकीब मेरी मोहब्बत जिससे जिसने कर ली वैसा है कुछ। खैर पर ज्यादा नहीं जाएंगे, सवाल पर आ जाते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा दोस्तों आज की है। सवाल यह है कि अगर आप किसी की मदद लेते हैं तो क्या आप पे बैक करते हैं? या अगर दो सवाल है इसमें, एक तरह से देखा जाए कि अगर आप किसी से मदद लेते हैं और उसने एटीट्यूड दिखा दिया, उसने घमंड दिखा दिया, उसने आपको नीचे दबाने की कोशिश करी है, तो क्या आप फिर भी उसके मदद किए को याद रखते हुए उसको सपोर्ट करते हैं आज? क्या उसे पे बैक करते हैं? क्या उससे इज्जत से बात करते हैं? क्या आप उसके लिए उसकी परेशानी में खड़े रहेंगे बावजूद इसके कि वो आपको नीचे दिखाता

हो, आपसे एटीट्यूड से बात करता हो, बदतमीजी से बात करता हो, पहले उसने एक जमाने में आपकी सही में जबरदस्त मदद करी हो। तो ये है आज का सवाल, जवाब बताइए 666-2107 पे। वैसे लोगों ने तो बराबरी का हिसाब कराया अभी तक, बाकी अपना अपना कहना है। फिर एक वीडियो अगेन शेयर करी है मजरुद्दीन साहब ने, ये वीडियो देखिए आपको समझ आएगा। भाई मैं देखता हूँ कुछ देर में ये वीडियो इंशाल्लाह। फिर एक और ये मैसेज है, सलाम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे एक रिश्तेदार ने मेरी मदद की, मतलब 2021 में खतर का वीज़ा किया था। अरे वाह, आज तक उनको दुआ कर रहा हूँ। दुआ कर रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या लिखा भाई? UTLI, ये समझ नहीं पाया भाई ये। लेकिन ठीक है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि रिश्तेदार ने मदद करी और आप 2021 में खतर के वीज़ा में आए भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तो नहीं, मतलब अब तो ऑब्वियसली 5 साल हो गए माशाल्लाह उस बात को, तो अगर उन्होंने एहसान नहीं जताया तो अच्छी बात है, वरना कुछ लोग भाई वीज़ा करा के अपनी बेटी का रिश्ता करा देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वीज़ा ना होता तो ज़्यादा सुकून ज़्यादा सुकून होता। ओके लेकिन अच्छा ओके, इन्होंने ब्रैकेट वाली जो लाइन लिखी थी उसमें आज तक उनको दुआ कर रहा हूँ और ब्रैकेट में लिखा है उल्टी, मतलब ये क्या है भाई? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, सरकाज़म है? यूसुफ भाई ने कहा, फजील हेल्प करने वाले का रवैया जैसा भी हो हमें तो उसके साथ पेश आना चाहिए, चाहे एटीट्यूड हो हर कुछ भी, और उसके हेल्प के वक्त हमें भी आगे आना चाहिए। आई वुड डू दिस, यूसुफ भाई का कहना है कि करना चाहिए। मेरा माजरा यहाँ पर अलग हो जाता है कि मदद इंसान की फितरत में होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर वही मदद करने वाला शख्स आपसे बेरुखी से पेश आता है तो उससे दोस्ती यारी रिश्तेदारी करने की जरूरत है ही नहीं। तो आपने मदद, मेरा मानना आगे नहीं यही है कि आपने फिर मदद क्यों करी? क्या आपने मदद इसलिए करी कि एक वक्त आएगा तो मैं इसे अपने इशारे पे नचाऊंगा, एक वक्त आएगा तो अपनी मर्जी चलाऊंगा, एक वक्त आएगा तो क्या मैं इसे वो दिन दिखाऊंगा जिसके लिए ये डिजर्व नहीं करता? तो मेरा यहां पर वो जाता है कि अगर आपने कितनी भी मदद करी है, आपने मुझे जान से भी बचा लिया है, तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। ओ क्या लाइन बोल दी मैंने, कि जान जाने से बचा लिया तो गुलाम थोड़ी बन जाऊंगा। फजील मियां एक अलग बात तो है यार तुम में, मतलब इस बात पे तो बनता है, मतलब मेरे पीठ तक मेरा हाथ पहुंच रहा होता ना, मैं शाबाशी दे लेता यार अपने आप को। तो सवाल पर रहेंगे, बाकी आप लोगों का ऑडियो भी है, ऑडियो कुछ देर में हम सुनने की कोशिश करेंगे किस भाई ने ऑडियो भेजा है। मजहर कुरैशी साहब ने ऑडियो भेजा है, मैं ऑडियो कुछ देर में देखता हूँ। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज

कर रखूं और या उन चुप रहता हूं और या फिर चुप रहता हूं, मैं उनके साथ कभी बुरा करना चाहता नहीं हूं, करता भी नहीं हूं। ये खूबसूरत बातों में से एक है कि कोई गुस्सा हो जाए तो मैं तो देखिए वही वाली बात है कि गुस्सा हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अपने बेटी का रिश्ते ऐसा नहीं हो जाए ना कि आपने मदद करी और फिर जो है आप गुलाम बना के रखे। मैंने कईयों को देखा है भाई, बहुत लोगों को देखा है, तो मैं इसी पर मैं पूरा 2-3 दिन शो कर सकता हूँ यार, कि लोगों ने मदद करी, एक साल मदद करी, फिर वो चाह रहे हैं कि बाकी के 4-5 साल और बाकी उम्र ताउम्र वो हमारा गुलाम बनकर रहे, जो मैं कहता जाऊं वो ये करता जाए आदमी। तो बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है कि आपने मदद किया, इस दिन के लिए करी थी, वो एक साल आपने घरों पर रख लिया। जैसे एक मेरा दोस्त था, बड़ा करीबी मेरा, उसके हालात नहीं सही थे, तो हमारे फैमिली मेम्बर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे ओहदे पे थे, तो मेरे दोस्त को उन्होंने मेरे फैमिली मेंबर ने घर पे रखा, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो जब घर पे रखा काफ़ी लंबे वक्त तक, 2-3 साल तक, तो घर के जो काम होते थे वो मेरा दोस्त भी किया करता था और ये भी किया करते थे, यानी कि रिश्तेदार थोड़ा कम, मेरा दोस्त थोड़ा ज़्यादा। अब जब मेरे रिश्तेदार जो बड़े ओहदे पे पहुंच गए थे, उनकी शादी हो गई, उसके बाद भी वो लड़का उस घर में रुका, मेहनत करी, है ना, पूरा एकदम चाचा भतीजा वाला, भाई बहन वाला हिसाब। लेकिन फिर बाद में जब मेरे दोस्त ने काम करने का सोचा तो दोनों का काम एग्जैक्टली एक ही था, है ना, जैसे कि मेरे फैमिली मेंबर और मेरा जो दोस्त था उनका काम एक ही था और दोनों फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे। तो हमारे रिश्तेदार ने कहा नहीं, तुम फैक्ट्री नहीं खोलोगे, अगर तुमने फैक्ट्री खोली तो तुम मेरे घर से जाओ, क्योंकि अगर तुमने फैक्ट्री खोली तो मैं भी फैक्ट्री वही खोल रहा हूँ और हमारी राइवलरी हो जाएगी और हमारा काम नहीं चलेगा, मेरा काम नहीं चलेगा, हमारा नहीं, मेरा काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में उन्होंने बेदखल भी कर दिया और उसके बारे में बहुत कहानियां हुई भाई, पुलिस से लेकर सारा दुनियादारी सब हो गई, और अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते भाई। तो ये एक किस्सा है, ऐसे तो मैंने ना जाने कितने कितने देखे। तो मेरा मतलब यही है कि आप कितना भी कर दे किसी के साथ, लेकिन एहसान नहीं जताइए आप, बाकी एहसान गुलाम थोड़ी बन सकते हैं। फिर इमरान साहब का मैसेज है, ये रहा रकीब, अच्छा हाँ डेफिनेशन पढ़ लूंगा भाई कुछ देर में। बाकी एक और ये सलाम का मैसेज है और फिर हम गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इनका नाम है अबीर। ओके अबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अब हम जल्दी से सवाल पर भी आ जाते हैं, क्योंकि सवाल क्या, खत पर आ जाते हैं। और 6:31 हमारे स्टूडियो की घड़ी में बैक टू बैक हम गाने प्ले करें, उससे पहले खत आपको लिखना है उस शख्स को जिसने आपकी आपके सख्त तकलीफ दे वक्त में बहुत मदद की थी। भूल जाओ, ये भूल जाओ कि उसने उसके बाद क्या किया, क्या तकलीफ दी, वो सब अलग जगह, लेकिन अगर आपकी मदद उसने करी थी तो क्या आप खत लिखना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए भी आप खत लिखें जो असल में मदद करने के लिए आगे आते हैं, बगैर किसी बैकग्राउंड की सोच के, बगैर किसी सोच के कि वो किसी का फायदा उठाएंगे, ठीक है? ऐसे लोगों के लिए भी आप क्या खत लिखेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107, उस पर हमें बताइए। फिलहाल ये गाना सुनिए, तेरा मेरा रिश्ता, FM 107 पे फजील के साथ हैं आप, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रब्ता करें,
1: आज ही रब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। तो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
4: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: हाँ जी, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का, फजील के साथ हैं आप। और सवाल बड़ा ही आसान सा था कि क्या आपने किसी के किए हुए मदद को पे बैक किया है और क्या आप पे बैक करते हैं, भले ही वो आपसे एटीट्यूड से, बदतमीजी से, या फिर आप पर किए हुए मदद के बाद आप पर एहसान जताता हो, क्या बावजूद आप पे बैक करते हैं? तो अब तो खत की बात आ गई थी, तो भाई खत लिखिए उन लोगों को जिन्होंने सही में आपकी मदद करी है। 666-22107 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और कई लोगों ने क्या लाजवाब खत लिखने में, तो यार तुम लोग बहुत ज़्यादा आगे हो भाई। एक एक दो दो लाइन में जो खत लिखकर ख़त्म कर देते हो बातों को और फिर सरकास्टिक भी हो जाते हो, लाला क्या बात है। अरे लाला से याद आया यार, एक क्रिकेटर जो पाकिस्तान का, बड़ा ही लाजवाब, मत कर लाला मत कर। अरे आपके भी फीड में आता ही होगा। खैर, इन सब बातों से पहले, सबसे पहले जो बात मुझे करनी थी वो करनी थी रकीब को लेकर, क्योंकि कई लोगों ने रकीब के बारे में बात कर ही दी है, जो मैं नहीं कह पा रहा था क्योंकि अब किसी ने डेफिनेशन भेजी है तो वो मैं बोल सकता हूँ। और वो यही बात थी कि इश्क और शायरी में जो इंसान एक ही महबूब को पाने के लिए आपस में होड़ करे उसे रकीब कहते हैं, जो आमतौर पे यू नो होता भी है। और मैं ये कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन अगर शायरी में मुझे इसे ढालना हो तो शायरी में ढाला जा सकता है। और वो कुछ दो लाइनों में कहें अगर, या रकीब का इस्तेमाल करें शायरी में, तो वो कुछ ऐसा होगा कि दिल के तसल्ली के लिए बस इतना ही काफ़ी है, वो मेरे साथ तो है पर सोचता रकीब का है, है ना। तो रकीब का इस्तेमाल ऐसा होता है, वो जिक्र रकीब का कुछ इस तरह करते हैं कि हम अपनी ही मोहब्बत पर मलाल करते हैं। तो ये है रकीब का मतलब। बाकी ये कोई नाम होता है ये मुझे नहीं पता था कि रकीब कैसे नाम हो सकता किसी का। बाकी रागिब मैंने सुना है, फिर उसके बाद रफीक सुना है, रसीद सुना है। बाकी जिनको पता है उनको पता है रसीद का क्या है। बाकी अब मैसेज की तरफ बढ़ते हैं या खत की तरफ बढ़ते हैं। और एक खत जो मुझे आया है, बहुत छोटा सा आया, प्यारा सा आया, और लिखा है डियर हेल्पर, एहसान भी नहीं किया है कोई अब तुमने हेल्प करके। ये देख रहे हैं, ये वो बंदा है जिसके अंदर खुद एटीट्यूड है, जो इतना भयंकर एटीट्यूड लेकर चल रहा है, उसको आप क्या ही कहेंगे। तो उस्मान भाई ने ये मैसेज किया है बहुत ही उम्दा कि डियर हेल्पर, एहसान भी नहीं किया अब तुमने हेल्प करके। इसको कोई एहसान की ज़रूरत नहीं। और ऐसे लोगों पर उल्टा, ये ऐसा बंदा है कि जिसके ऊपर एहसान करो और फिर एटीट्यूड भी यही दिखा रहा है, घमंड भी इसी के अंदर है। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम खलील साहब, क्या कहते हैं, डियर मददगार, तुमने एजेंट्स डॉक्यूमेंट के लिए, हाँ ये वो मतलब अलग लिखने की कोशिश करी कि एजेंट्स बनकर तुमने डॉक्यूमेंट के लिए मदद किया मेरी, फिर 10,000 रुपया मांग लिया मदद का। ये थोड़ी होता है। फिर जब आप कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तब मेरे को पता चला कि मैंने भी एक एजेंट की हेल्प ली। तो एजेंट को होता ना कि जब आप कतर आ रहे होते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो बोनाफाइड होता है, आपके अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके सर्टिफिकेट होते हैं, उन सब पर ठप्पा लगता है, फिर वो दुनिया भर का ठप्पा लगता है ना, वो SDM का लाना फलाना दुनिया भर का, MOPH का और फिर कहाँ कहाँ, तो आपके अपने मुल्क में भी लगेगा और इधर का भी। तो एक एजेंट ने मेरे से भी कहा हाँ हाँ हो जाएगा, अरे हम करा देते हैं हम करा देते हैं। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने कहा भैया कितना लोगे, तो वो कहते हैं अरे नहीं वो पैसे के कोई मसला नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, और पहले हो जाए फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि कितने कितने एजेंट्स के पास या कितने लोगों के पास गया है और कितना रुपये लगाए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ते हैं, वो 10% होता है, हम फिर आपको पेमेंट बता देंगे कितना होगा। मैं ठीक है भाई जब पेमेंट हो जाएगा तो बता देगा, बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होगा। भाईजान ने जब काम कंप्लीट हो गया तो मांगे 15,000 रुपए, मेरी खिसक के नीचे भाई। मैं भाई साहब उस दिन मेरा खून जो है हीमोग्लोबिन जो है बड़ा गाढ़ा हो गया खून मेरा जल जल के। होता है ना कि आप बहुत देर तक चाय चढ़ा कर रखें तो चाय कम हो जाती है, वैसे ही मेरा खून गाढ़ा हो गया भाई उस दिन 15,000 रुपए। फिर बहुत मांडोली करी वो 8,000 रुपये मांगने, हमने कहा तुम 10% कितना ले रहे थे भैया, तुम्हारा 10% कितना है। तो इनकी इस बात से मुझे समझ में आया। फिर एक और ही मैसेज, अच्छा लेकिन किसने लिखा है ये बताया, हाँ खलील साहब ने लिखा, ठीक है। फिर एक और ही मैसेज है, इनका नाम है जाहिदी नाम है, और कहते हैं डियर फूफा कतर में काम करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 लाख और ना दूं, 2 लाख मांगो और ना दूं तो बचपन की शरारत गिनाओगे। भाई ये तो खत मांगा भी नहीं था मैंने, ये कौन सा खत है, अजीब खत है, कोई नहीं। फिर एक और ये मैसेज है, किस भाई का है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, और साजिद साहब कहते हैं डियर हेल्पर थैंक्स ब्रो। इतना छोटा अगला भाई, ऐसे अगर थैंक यू बोलोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगी जिंदगी भर भाई, तुमसे कहेंगे ऐसा है तुम दूरी रहो हमसे। बहुत ज्यादा मतलब परेशान आदमी हैं आप। इमरान खान ने बहुत ज्यादा लंबा खत लिख दिया है, डियर आसिफ मैं ये खत तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए लिख रहा हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तुमने एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी मदद की, तुम्हारी इस इनायत और मेहरबानी को मैं कभी नहीं भूल सकता, ऐसे मुखलिस और हमदर्द दोस्त किस्मत से मिलते हैं, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा दोस्त इमरान खान। लूट ही लिया यार तुमने आज का शो। अस्सलाम वालेकुम, बस मैं यही वाले मैसेज का इंतजार कर रहा था, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम मैंने की है मदद। ये होता है ना कि अरे भाई मेरी किसी ने करी, मैंने हर इंसान की मदद करी, उल्टा मुझे ही एटीट्यूड दिखाकर चला गया। मैं देख ही रहा था किसी का तो ये मैसेज जाएगा कि भाई साहब मैंने जिसके जिसके साथ किया है ना उसने मेरे ही साथ दगा किया है भाई। कोई तो आएगा, मैं देख ही रहा था। भाई का भी खून जलता है आसिफ, अरे बहुत ज़्यादा खून जलता है। तो भाई आपकी बातों में ग्रेविटी कहाँ है, हैं कहना क्या चाहते हो भाई। ख्वाजा साहब कहते हैं बेशक सही बोले आप, ये होता है। फिर उसके बाद एक और शख्स हैं, मजहर साहब ने बता दिया था बाकायदा कि रकीब का मतलब क्या होता है, इन्होंने डिटेल में ऑडियो में ही बताया था। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:52 और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी संडे को, और आपके खत बहुत ही प्यारे होते हैं, ये जो वन लाइनर मारते हो भाई साहब, आग लगा दिया आग लगा दिया आग लगा दिया। बाकी वीकेंड है, आज थर्सडे का दिन है, खूब एंजॉय करें मज़े करें, चाहे आप बीच जाएं, हवा चल रही बीच जाया जा सकता है ट्रस्ट मी। उसके अलावा कहीं पर आपको घूमना हो पार्क जाना हो आप जा सकते हैं, माहौल लाजवाब है। अपना ख्याल रखिएगा दो दिन, फिर संडे को मैं आ जाऊँगा ख्याल रखने के लिए शाम को 6:00 FM 107 दिल से देसी।

0: 13 साल की उम्र में लोकल गो-कार्टिंग सर्किट्स का चैंपियन। उनकी प्रिसिशन, उनका फियरलेसनेस और मशीन को आखिरी हद तक ले जाने का वो हुनर सब कुछ साबित करता था ये बच्चा आम नहीं है। He was something different। लेकिन सेना को गेम चेंजर बनाने वाली चीज सिर्फ टैलेंट नहीं थी, वो था उनका नजरिया। वो रेस जीतने के लिए नहीं चलता था, बल्कि वो रेस करता था ताकि कुछ और बन जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। समटाइम आप लोगों को लगता होगा कि क्रिकेट कोई खेलता है या फुटबॉल कोई खेलता है जस्ट बिकॉज ऑफ फेम। नो नो नो, जुनून, पैशन, लाइक करना बहुत जरूरी है। उस स्पोर्ट को आप पसंद करते हैं इसीलिए आप खेलते हैं, ना कि आपको उसमें करियर बनाना है। उनके लिए रेस ट्रैक एक कैनवस था, हर कॉर्नर एक ब्रश स्ट्रोक और हर लैप एक मास्टरपीस। जब 1984 में सेना ने फॉर्मूला वन का डेब्यू किया टोलमैन टीम के साथ, तो मोटर स्पोर्ट ने एक ऐसी ताकत का सामना किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सेना का ड्राइव करना एक नज़म था, प्रिसिशन और ब्रेवरी का एक परफेक्ट मिक्स। उनके डेब्यू सीजन टोलमैन के साथ एक धमाका था, 1984 का मोनाको ग्रांड प्री। बरसात हो रही थी लेकिन सेना ने एक अंडरडॉग कार में सेकंड पोजीशन हासिल की, ऑलमोस्ट एलन प्रोस्ट को ओवरटेक कर दिया था। एलन प्रोस्ट उस जमाने का नंबर वन फॉर्मूला वन ड्राइवर। मोनाको का वो नैरो और डेंजरस ट्रैक सेना का प्लेग्राउंड बन गया और उन्होंने मोनाको 6 दफा जीता आगे जाकर। अब सोचिए इस बात को, और मिल गया टाइटल किंग ऑफ मोनाको। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं थी दोस्तों, सेना का कनेक्शन कार के साथ स्पिरिचुअल था, जैसे वो कार का हिस्सा बन जाता था। 1988 में मोनाको क्वालिफाइंग रेस में सेना ने प्रोस्ट को 1.4 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। प्रोस्ट, वही प्रोस्ट नंबर वन, फॉर्मूला वन के बेताज बादशाह थे उस जमाने में। और खुद सेना कहते हैं, जैसे मैंने ट्रांस में था, अपने जिस्म से बाहर एक और दुनिया में। मतलब उनको यकीन ही नहीं था कि उन्होंने एलन प्रोस्ट को हरा दिया। यह था सेना का तोहफा, एक मशीन के साथ वो कनेक्शन जो किसी और के पास नहीं था। एंड दैट्स द रीजन आज भी आयटन सेना को फॉर्मूला वन का लेजेंड माना जाता है। और वो सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वो इंजीनियर भी था। उनका टेक्निकल फीडबैक, कार के डिजाइन, एरोडायनामिक्स, सस्पेंशन, सब कुछ बदल देता था। कहते हैं ना कि आप गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी के ईच एंड एवरी पार्ट्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप स्टेयरिंग व्हील के स्टेयरिंग व्हील को आप संभालने के लिए नहीं बैठते हैं, यू नीड टू नो द मैकेनिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल। जो भी आपके पास गाड़ी है, जो भी है, बाइक भी चलाते हैं तो उसको भी आपको जानना जरूरी है कि उसका हर एक पार्ट्स, हर एक उसके जो यू नो वायरिंग्स है, सब कुछ यू शुड हैव दैट नॉलेज। और वही बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आयटन सेना के लिए। जो आयटन सेना, ही लव द कार मोर देन हिमसेल्फ, सो ही न्यू द कार। उनको पता होता था कि क्या फॉल्ट है, क्या डिफेक्ट है। गाड़ी अगर तेज नहीं जा रही है तो उनको फौरन पता चल जाता था। दैट्स द काइंड ऑफ कनेक्शन ही हैड विद द कार्स। सेना के स्टैंडर्ड्स मैकलारेन और विलियम्स जैसे टीमों के लिए ब्लूप्रिंट बन गए। तो समझ लीजिए इस बात को, मॉडर्न फॉर्मूला वन का बेस उनके इनपुट से बना। दिस इज सो मच फैसिनेटिंग स्टोरी। एक ड्राइवर के इस इंजीनियरिंग नॉलेज को मैकलारेन और विलियम्स जैसे कंपनियों ने भी अपना ब्लूप्रिंट बनाया कि गाड़ी यानी फॉर्मूला वन की जो गाड़ियां हैं उसको इस तरह बनाया जा सकता है। तो सेना इन ऑल द वे अगर देखा जाए वॉज अ लेजेंड। और सेना वो हुनर जिसने कवायद की किताब ही दोबारा लिख दी, यानी रूल्स को भी चेंज करने में सेना का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सेना की कहानी प्रोस्ट के बिना अधूरी है दोस्तों। जी हाँ, एलन प्रोस्ट को द प्रोफेसर कहा जाता था। और वहीं आयटन सेना इंस्टिंक्टिव, एक्सप्लोसिव और फियरलेस। 1988 और 1989 मैकलारेन के वो साल जहाँ फॉर्मूला वन एक बैटल फील्ड बन गया।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है।
2: अल्लाहू अकबर।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते, वो जानते हैं कि दूसरे लोगों का उनके साथ बर्ताव और सलूक कैसा है, लेकिन वो बार बार माफ कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। माफ करने का मतलब अपने मुखालिफ को गले लगाकर दोस्ती कर लेना नहीं होता, बल्कि ये अपने दिल के साथ एक अहद करना होता है कि जो अजियत या तकलीफ मुझे मेरे मुखालिफ ने दी है, मैं बदले में उसे उसी किस्म की अजियत नहीं दूंगा। याद रखिए, ऐसा ज़र्फ रखने वालों को दुनिया में इज्जत, अजमत और ताकत नसीब होती है। अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने और लोगों में आसानियाँ बांटने की सआदत अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107
3: 1989 जापानीज ग्रैंड प्री, दोनों टकरा गए और कंट्रोवर्सी बढ़ गई। सेना की जीत की भूख हर लिमिट से आगे चली गई। 1990 में सुजुका पे दोबारा टकरार, सेना चैंपियन बना, लेकिन दुनिया दो हिस्सों में बांट गई। कुछ ने कहा रूथलेस, कुछ ने कहा पैशन, लेकिन सब ने माना ये बंदा कभी पीछे नहीं हटा। सेना और प्रोस की ये टकरार, यानी ये जो फाइट्स, यानी फॉर्मूला वन के ट्रैक की बात करो, इसमें फॉर्मूला वन को एक ग्लोबल फिनोमेनन बना गई। और ये सिर्फ रेस नहीं थी, ये ड्रामा था, इमोशन था, और 200 माइल्स पर आवर पे चलती हुई इंसान की कहानी थी। अच्छा, ट्रैक के बाहर भी सेना एक हीरो था, ब्राजील के लिए एक उम्मीद का नाम। हालांकि ब्राजील, एज यू ऑल नो, कि फुटबॉल में ब्राजील को हर कोई जानता है, यू नो, दे वर द चैंपियन, दे आर लीडिंग टाइटल विनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप।

रेसेस में पार्टिसिपेट उन्होंने किया, तो तभी पता चला कि अच्छा फॉर्मूला वन में भी ब्राजील कैन डू सच अ थिंग। और जी हाँ बिल्कुल, यू नो लाजमी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्राज़ील अगर फुटबॉल में यू नो बेहतरीन टीमों में से एक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और स्पोर्ट्स में यू नो कैनॉट बी अ सक्सेसफुल एंट्रेंट। वहीं अगर इंडिया की बात करूँ कि इंडिया अगर क्रिकेट में सही है, इंडिया में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते होंगे तो इसका ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे स्पोर्ट में दे कैन नॉट सक्सेसफुल। वही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि आयटन सेना को, आई मीन एज फुटबॉल सपोर्टर या फुटबॉल फैन ऑफ ब्राज़ील, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हमें यू नो आयटन सेना जैसे कोई एक किरदार, कोई एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी विल कम फ्रॉम ब्राज़ील। तो ट्रैक के बाहर जैसे मैंने कहा सेना एक हीरो था ब्राज़ील के लिए और एक एक उम्मीद का नाम, एक मुल्क जो मुसीबत से गुजर रहा था उसका यू नो अगर देखें कि टिपिंग पॉइंट अगर देखें द ग्लोइंग पॉइंट एंड अच्छी वाली बात जो थी उस जमाने में वो था आयटन सेना। देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और वहीं पे एक पॉजिटिव वाइब जो है वो आयटन सेना लेकर आया था। 1991 का ब्राज़ीलियन ट्रॉफी, अपने ही मुल्क में जीत का पहला मौका और दर्द से छलकता हुआ वो लम्हा जब उनका जिस्म थक गया था लेकिन रूह जीत गई थी। विक्ट्री के बाद वो फ्लैग लहराता हुआ, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। सेना एक स्पिरिचुअल आदमी था दोस्तों, वो कहता था मेरी एबिलिटी मेरी रेस सब कुछ खुदा का तोहफा है। क्या बात है, उनका हर लैप एक इबादत था। ये समझना बहुत जरूरी है, हम ऑलवेज वी एनालाइज अ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हिज स्पोर्ट्स, आई मीन फ्रॉम हिज और हर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस, लेकिन हम कभी भी इस तरह एनालाइज नहीं करते हैं कि वो इंसान भी तो है और उनके इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स, क्या क्या यू नो उनकी इबादत है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता जब तक आप उनके बारे में गहराई से आप पढ़े नहीं। तो अगर आप पढ़ते हैं आयटन सेना को, और आई मीन मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली आयटन सेना, देर आर सो मेनी स्पोर्टिंग लेजेंड्स अराउंड अस, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम गहराई से उस नॉवल के जरिए स्पोर्ट्स हिस्ट्री के जरिए हम जब उनकी उनको हम देखते हैं और उनकी लाइफ को अगर हम थोड़ा सा ए टू जेड परखते हैं तो हमें भी पता चलता है कि भाई वो भी तो इंसान थे, लेकिन इस इंसान ने भी क्या कमाल करके दिखाया विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। आई मीन आयटन सेना जो कि कार्टिंग के रेस से शुरू करके फॉर्मूला वन का बेताज बादशाह बना, एंड दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग, समथिंग सो इनकरेजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ ड्राइवर्स हु केम एंड रियली अडोर्ड आयटन सेना। और जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि सब कुछ खुदा का तोहफा था, खुदा का तोहफा था, सच अ ब्यूटिफुल लाइन दैट ही सेड, कि वो कुछ नहीं है, वो इंसान है, ही इज जस्ट परफॉर्मिंग एंड दैट परफॉर्मेंस कि जो पीछे जो यू नो दो एनर्जी है इट कम्स फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम अल्लाह एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। दोस्तों सेना ने रेस सिर्फ जीती नहीं, उसे रिवोल्यूशनाइज भी उन्होंने किया। ड्राइवर फिटनेस, रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, फोकस, वो सब कुछ करता जो दूसरे भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि गाड़ी पर आप बैठ जाते हैं, जो आई मीन नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर्स की बात कर लें, दोहा में आपने बहुत सारे ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स देखते होंगे, आई एम नॉट कंपेयरिंग फॉर्मूला वन रेस विद द नॉर्मल ड्राइविंग ऑन द रोड्स, लेकिन ये जो फिटनेस की बात हो रही थी कि फिटनेस भी इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी ड्राइवर, और फॉर्मूला वन रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, आई मीन काइंड ऑफ स्पीड आपकी बॉडी जो है ना वो लगता है कि स्पेस में है आप, तो उस फिटनेस, उस रिफ्लेक्स ट्रेनिंग और उस फोकस को अगर आप मजबूती से, अगर आप उसको फोकस आई मीन अगर आप नहीं देखते हैं, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है हर फॉर्मूला वन ड्राइवर्स के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और यहाँ पर सिकंदर जो है आयटन सेना ही था, बिकॉज ही डिडंट ओनली फोकस ऑन ड्राइविंग, फोकस्ड ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ चैंपियन ड्राइवर, जैसे कि रिफ्लेक्स ट्रेनिंग की बात की, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे फिटनेस मॉड्यूल से आपको गुजरना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट कि आप हेलमेट पहन लिए और उस गाड़ी के अंदर आप बैठ गए हैं और आपने गाड़ी को घुमा दिया लैप बाय लैप, आप यू नो दिस समथिंग मोर इनटू बिकमिंग अ चैंपियन जो कि आयटन सेना ने दिखाया था। उनका अप्रोच मैं समझता हूँ बहुत साइंटिफिक था और नए ड्राइवर्स उनके फुटप्रिंट्स पर चलने लगे थे। लेकिन दोस्तों एक अफसोस की बात, वो दिन आया जो फॉर्मूला वन रेस की तारीख में सबसे आउट

से ब्लैक डे, सबसे ट्रॉमेटिक, सबसे ट्रेजिक डे, दैट वाज 1994 फर्स्ट मई, सैन मारिनो ग्रांप्री इटली के, और इमोला का टम्बुरेलो कॉर्नर और एक क्रैश। काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप लोग देख सकते हैं, ऑन आयटन सेनाज ट्रैजिक एक्सीडेंट एट द इमोला, जहां दुनिया ने अपना चैंपियन खो दिया, और इसीलिए आज भी लोग आयटन सेना को एक लार्जर देन लाइफ लेजेंड, क्या कहूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बारे में हम कह सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का वो ड्राइवर थे, किस तरह का लिविंग लेजेंड थे, जो इमोला के उस रेसिंग ट्रैक में बस यू नो ख़त्म हो जाते। सेना की मौत सिर्फ एक लॉस नहीं थी, वो एक अवेकनिंग थी, और उनके जाने के बाद नए सेफ्टी मेजर्स आए कि फॉर्मूला वन रेस में देयर वर सम लूप होल्स, जो बाद में पता चला इंक्वायरी में, इंस्पेक्शन में, कि देयर वर सम लूप होल्स ट्रैक में, कुछ लूप होल्स गाड़ी के इंजन को लेकर, बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए गए जिसे क्वेश्चन मार्क लग गया था कि वेदर फॉर्मूला वन रेस इज सेफ और इट इज अनसेफ। बेटर बैरियर्स, इम्प्रूव्ड कार डिजाइन, स्ट्रिक्टर रूल्स, यहाँ पे सेना गेम चेंजर था, और वो अपने जिंदगी को दाव पे लगाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग। इससे पहले एक वाक्या हुआ था, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ हिंट फॉर हिम कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार इंजिंस, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ट्रैक। आपने देखा होगा बैरियर्स होते हुए, बैरियर्स रखे जाते हैं ऑन द फॉर्मूला वन रेस ट्रैक में, तो पहले ये बहुत ही मामूली सी मतलब अंदाज से ऑर्गेनाइजर्स लेते थे, अरे चलो ड्राइवर्स हैं वो तो गाड़ी घुमा ही लेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता नहीं है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि यू नो द स्पीड ऑफ फॉर्मूला वन रेस कार, स्पीड ऑफ अ फॉर्मूला वन रेस कार, मतलब किस अंदाज से ये लोग गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होना भी चाहिए। इट्स अमेजिंग स्पीड, और इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है, स्पेशली एट द बेंडिंग। 360 किलोमीटर पीक, विच मीन्स 220 माइल्स पर आवर ऑन स्ट्रेट वेज। द हाईएस्ट स्पीड ऑफिशियली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ ग्रांड प्री वीकेंड इज 378 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स 234.88 माइल्स पर आवर, और ये रिकॉर्ड किया था वाल्टेरी बॉटस ने 2016 के यूरोपियन ग्रांड प्री में। जबकि मॉडर्न अगर गाड़ियों की बात करूं, फॉर्मूला वन की बात करूं, तो 200 से 230 माइल्स पर आवर ऑन फास्ट सर्किट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इज टू मेंटेन अ फॉर्मूला वन कार, और यहां पर देयर वर लॉट ऑफ लैक्यूने, यानी लॉट ऑफ गैप्स थे, जो कि सेना ने अपने मौत से पहले 1994 इमोला ट्रैक के हादसे से पहले ही उन्होंने सबको नॉक कर दिया था, यानी सबको अलर्ट कर दिया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन फॉर्मूला वन रेसिंग, और इसमें अगर तब्दीलियां ना लाए जाए तो खतरा ही खतरा है, और जो कि यू नो उन्होंने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि देयर वाज रियली समथिंग मिस्टीरियस, रियली समथिंग रॉन्ग इन द रेसिंग ट्रैक्स ऑफ फॉर्मूला वन। उनके जाने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आए, रूल्स में कंट्रोल कर दिया गया, रूल्स के साथ साथ रेस ट्रैक को सही तरह से सजाया गया, बैरियर्स बनाए गए, और मेडिकल यूनिट्स को हर जगह पे तैनात कर दिए, और आज के मॉडर्न रेसेस में हम वो 1994 वाली जो बात थी, जो हादसा हमें देखने को मिला था, वो होता ही नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बीन लिमिटेड, इट हैज़ बीन कट डाउन, दोज काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स हैव बीन कट डाउन। फौरी तौर पर कोई ना कोई पहुंच ही जाता होगा, देयर आर हेलीकॉप्टर्स, इमीडिएटली आपको शिफ्ट कर दिया जाता है टू द हॉस्पिटल, नियर बाई हॉस्पिटल। और जैसे कि मैंने कहा इससे पहले भी कि आयटन सेना के जाने के बाद नए सेफ्टी मेजर्स आए, बेटर बैरियर्स बने, इम्प्रूव्ड कार डिजाइंस, स्ट्रिक्टर रूल्स, और उनके जाने के बाद फॉर्मूला वन जिंदा रह गया। आयरनी है कि आज अगर आयटन सेना होते तो क्या वो कर डाक, क्या रेसेस जीतते, उस सेफ्टी मेजर्स के साथ। थोड़ा सा आप तसव्वुर कीजिए कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट के हवाले से मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब यू नो प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे उस ज़माने में, तो बैट्समैन को कितना परेशानी होती थी, क्योंकि आपको सिर्फ फ्लॉपी एक कैप पहन के बैटिंग करने जाते थे, गार्ड्स बहुत सारे ही होते थे, पैड्स तो डेफिनेटली वॉज दैट, बट एल्बो गार्ड, चेस्ट गार्ड ये सब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग ऑफ 1930।

30s, 40s, 50s, 60s की बात कर रहा हूं मैं. हेलमेट्स तो प्रिवेलेंट ही नहीं थे उस जमाने में, लेकिन अब क्रिकेटिंग गार्ड्स एंड इनफैक्ट इन फुटबॉल सो देयर आर लॉट ऑफ इफेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू सेफगार्ड द प्लेयर. और वहीं इमोला में जो हादसा हमें देखने को मिला 1994 में, वो एक यू नो अ बिग क्वेश्चन मार्क वाज पुट अप ऑन फार्मूला 1 ऑर्गेनाइजर्स, ऑन फार्मूला 1 FIA की बात कर रहा हूं यहां पे, कि आप लोग कर क्या रहे थे. एंड देयर वाज सो मच गैप्स ऑन कौन इस चीज को, इस हादसे के पहले ही somebody pointed it out and he was Ayrton Senna. सोचिए आयरनी, इट्स एन आयरनी, जिस साहब ने, जिस बंदे ने इस चीज को पॉइंट आउट किया वही खत्म हो गया. तीन वर्ल्ड टाइटल्स 1988, 1990, 1991, 41 रेसेस उन्होंने जीते ओवरऑल और उसमें 65 पोल पोजीशंस. लेकिन ये सिर्फ नंबर्स हैं, असल जो विरसा ये है कि सेना ने फॉर्मूला वन का लेवल को बढ़ा दिया, उनके पैशन, उनका जज्बा, और उन्होंने रेसिंग को एक आर्ट बना दिया. माइकल शूमाकर से लेकर लुई हैमिल्टन तक सब ने कहा सेना हमारा हीरो है. और आज भी मार्क वेस्टपन जो कि मॉडर्न फॉर्मूला वन रेस का जो वन ऑफ द स्टार्स हैं, वो भी मानता है कि आयटन सेना वाज समथिंग. और ब्राजील में इंस्टीट्यूटो आयटन सेना आज भी हजारों बच्चों की जिंदगी रोशन कर रहा है. वो चैंपियन था सिर्फ ट्रैक पे नहीं, इंसानियत में भी. इट्स अ फाउंडेशन जो आयटन सेना ने बना के गया बच्चों के यू नो मुस्तकबिल के लिए, यू नो बेटर फ्यूचर के लिए. नॉट ओनली जस्ट रेसिंग की बात हो रही है, फॉर एजुकेशन, फॉर द सोसाइटी दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू कंट्रीब्यूट, वो आयटन सेना करके गए थे. और आज इसीलिए ही इज नोन नॉट जस्ट एज अ फॉर्मूला वन यू नो रेस चैम्पियन, बट एज एज अ नाइस जेंटलमैन, एज अ पर्सन जो कि अपने समाज के लिए कुछ करके आप गए थे और आज भी लोग उसको याद करते. तो क्यों कहते हैं कि सेना गेम चेंजर था, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइवर नहीं था दोस्तों, वो एक इंस्पिरेशन था. वो सिर्फ जीता नहीं, जीत की डेफिनेशन बदल गया. उनकी राइवलरी ने स्पोर्ट को दुनिया भर में ले गया और उनकी मौत ने स्पोर्ट को महफूज बना दिया. मैंने बताया आपको कि कितना आयरनी है इस बात को देखिए, जिस इंसान ने आवाज उठाई और उसी इंसान की आवाज जो है बंद. आई मीन ही डाइड ऑन द इमोला ट्रैक. व्हाट अ ट्रेजेडी. मैं तो अभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है आई वॉच दीज डॉक्यूमेंट्रीज. ये डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं टीवी के यू नो चैनल्स पर, आप देख सकते हैं. एंड सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स पर भी आपको ये नज़र आ जाएगा, ये जो वाकया मैं बता रहा हूँ इमोला रेसिंग ट्रैक का, ये जो हादसा 1994 फर्स्ट में, एक पूरी सीरीज है और इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें गलतियां थी. एंड नॉट फ्रॉम आयटन सेना की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फ्रॉम द फॉर्मूला वन रेस ऑर्गेनाइजर्स की जानिब कि क्या क्या मिस्टेक्स उन्होंने किए थे, जिसके वजह से एक चैंपियन रेस, एक चैंपियन ड्राइवर जो है यू नो उस उनके गलतियों से एक चैंपियन ड्राइवर जो है वो जिंदगी से हाथ धो बैठता है. एंड ही वाज सो यंग आयटन सेना. आई मीन आज भी इसीलिए कहते हैं कि आयटन सेना अगर कोई लेजेंड है फॉर्मूला वन में तो आयटन सेना. 1960 से लेकर 1994 हार्डली 34 आई मीन 34 में ये एक बड़ा यू नो हादसा था, बड़ा एक यू नो लॉस है फॉर द फॉर्मूला वन रेस, फॉर द फॉर्मूला वन यू नो डिफरेंट जो जनरेशन के ड्राइवर्स आए हैं उनके लिए. ही वाज इमैक्युलेट, ही वाज समथिंग जो कि आज भी लोग एक एग्जांपल देते हैं आयटन सेना. एंड क्या क्या मूवीज बनी है इसके ऊपर, ये भी लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अ लेजेंड. अपने ही यू नो जिंदगी में जो बहुत से होते हैं ना कि स्टार्स बन तो जाते हैं, लेकिन लेजेंड के स्टेटस में पहुंचने के लिए यू हैव टू क्रॉस अ सर्टेन एज लिमिट. लेकिन वो इस कम उम्र में पीपल एक्सपर्ट्स सब ने कहा कि ही वॉज अ लेजेंड. और एट द एज ऑफ 34 आयटन सेना टाटा बाय बाय कर देते हैं इस दुनिया को, और फॉर्मूला वन रेस बिकम्स मच मोर मॉडर्न एंड मच मोर सेफ फॉर द फ्यूचर ड्राइवर्स. और इसके पीछे आयटन सेना का एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है. तो आयटन सेना एक लेजेंड, एक आइकन, और वो शख्स जिन्होंने खेल का रुख बदल दिया. तो

0: ये आर्ट एंड सेना की बात आज हमने किया टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझाने के लिए कि गेम चेंजर जो ये एपिसोड्स हैं, ये आने वाले टाइम में हम भी और पेश करेंगे ऑन मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, तो ये गेम चेंजर एक्चुअली है क्या। द गेम चेंजर बेसिकली हम इस पे हाईलाइट इसीलिए कर रहे हैं कि हम उन खिलाड़ियों के ऊपर बात कर रहे हैं जिन अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर, जिन्होंने अपने प्रेजेंस के बलबूते पर उनके उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को चेंज किया, यानी नए रास्ता दिखाया, कोई मार्गदर्शन जिसको हम कहते हैं, टू शो अ न्यू वे टू अचीव द बेटरमेंट ऑफ दैट स्पोर्ट, नॉट ओनली जस्ट विनिंग मेडल्स। जैसे मैंने कहा कि सेना मेडल्स के लिए अपनी गाड़ी को नहीं भगाता था, सेना ड्राइविंग इसलिए करता था क्योंकि उनके साथ उनका इस रेस के साथ और यू नो स्पीड के साथ एक लगाव था। और यहाँ पर ही एक यू नो वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड कतर के हैं जिनके बारे में होपफुली मैं चंद हफ्तों में ही पेश करूँगा। सेम टू सेम उनसे कई बार मैंने पूछा, ये सवाल पूछा था कि आपको क्या मोटिवेट करता होगा, ओवर द ईयर्स यू हैव बीन यू नो कॉम्पिटिंग पार्टिसिपेटिंग मेडल्स भी जीता है, तो उन्होंने एक साफ अल्फाज में कहा था कि मोहब्बत, यानी लगाओ, यानी उस खेल के साथ मोहब्बत करना। किसी की चीज़ भी आप देख लीजिए, आप पढ़ाई के साथ मोहब्बत करेंगे तो यू विल रियली गेन समथिंग, काम के साथ आप करेंगे तो यू विल गेन समथिंग, दोज आर कॉल्ड क्रिएटिविटीज, एंड यहाँ पर आयट एंड सेना वॉज वन ऑफ द क्रिएटिव आर्टिस्ट। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
1: सीजन 2 कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Smart money.
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर मेजर लाइफ गोल्स. देखिए हर इंसान के कुछ बड़े गोल्स होते हैं. अपना घर, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, बिजनेस स्टार्ट करना. और इन गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ विशेष नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है. फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है गोल डिफाइन करना. 5 साल में हाउस डाउन पेमेंट्स या फिर 10 साल में बच्चे की यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 20 साल में रिटायरमेंट फंड. जब गोल क्लियर होते हैं तो प्लानिंग इजी हो जाती है. मिसाल के तौर पे फातिमा का गोल है 5 साल में 100,000 कतरी रियाल सेव करने का. अब 100,000 कतरी रियाल अगर आप 60 मंथ से डिवाइड करें तो मंथली लगभग, मेरी मैथ्स तो पुअर है बट ऑन एन एवरेज मैं कह सकती हूँ 1667 सेव होंगे. अब टारगेट इस बंदी के पास क्लियर है. दूसरा स्टेप इन्फ्लेमेशन को समझने में मदद देता है. आज जो चीज 100 कतरी रियाल की है हो सकता है 10 साल बाद 200 कतरी रियाल की या 150 कतरी रियाल की हो. इसीलिए फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करना बड़ा जरूरी है. एजुकेशन प्लानिंग की एग्जांपल्स भी आपको देके मैं समझाना चाहूंगी कि दोस्तों आज जो यूनिवर्सिटी की फीस 50,000 कतरी रियाल है हो सकता है 10 साल बाद 75,000 कतरी रियाल हो या उससे ज्यादा. अगर पेरेंट्स पहले से प्लानिंग करते हैं तो बजट या बर्डन, बजट आपका बिगड़ता नहीं और बर्डन आपका कम हो जाता है. वहीं पर रिटायरमेंट प्लानिंग भी आज के दौर में बहुत जरूरी है. हम अक्सर यूथ में ये बात देखते हैं कि वो इस बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन रिटायरमेंट ये तो आना ही है. और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर सैलरी अगर ना हो तो बड़ा मसला हो जाता है. अगर 30 साल की एज से हर मंथ 500 कतरी रियाल इन्वेस्ट किए जाएं तो रिटायरमेंट तक सब्सटेंशियल फंड बन सकता है. वहीं हाउस परचेज के लिए भी प्लानिंग काफी मददगार साबित होती है. अचानक लोन लेने के बजाय डाउन पेमेंट्स या फंड बनाए जा सकते हैं. अब डाउन पेमेंट टारगेट्स भी आपको तय करने हैं, जैसे 200,000 कतरी रियाल और सेविंग पीरियड्स आपका रखा आपने 8 ईयर्स का. इस तरह से मंथली सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 2,2100 होगी. गोल मैनेजेबल लगने लगा ना. देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड. आपको पता होता है कि फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है और आप उस तैयारी को समझ भी रहे हैं और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. मैं तो बस एक ही चीज कहूंगी कि याद रखिए आपके जो गोल्स हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए. उन्हें आप लिख लें, टाइमलाइन सेट कर लें, मंथली अमाउंट कैलकुलेट कर लें और प्रोग्रेस मॉनिटर करें. हर 6 महीने में रिव्यू करें. प्लानिंग ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक सबसे आसान प्रैक्टिकल रोड मैप है. बस इसकी शुरुआत आपको आज से करनी है. चलिए दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107.7 पे, वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, काफी कुछ है जो आज की दुनिया में चल रहा है। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी भी हो रही है और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो एआई से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत भारी रकम अदा करनी पड़ रही है अगर वो एआई का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग अभी 2026 में इस साल से शुरू करना चाहते हैं अपना कंटेंट जनरेशन, ऑनलाइन जाके कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूं आपको जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। यू वांट टू ट्रीट देम एज योर एप्स या फिर वेबसाइट, विच एवर वे यू वांट टू, पर ये बहुत मेन रहने वाली। तो शुरू करते हैं बहुत ही मेजर मेजर अपडेट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट है आपके लिए वो वेबसाइट जो आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स देगी। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं, क्योंकि वो मैच करने के लिए, एल्गोरिथम में बिठाने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। और कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स, कुछ BGM ऐसे होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर, जो आप कहीं भी सुनते हो और आपको लगता है यार ये मैं कैसे निकालूं, फिर आप अगड़म चिगड़म इधर उधर जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, चाहे वो इंट्रो साउंड हो, चाहे वो बीच में आपको ट्रांजिशन देना हो, या फिर ये तो नॉर्मल बताया मैंने, कैसा भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए हो आपके कंटेंट जनरेशन के लिए, वो या आपको मिलेगा। अब वेबसाइट का नाम बता देता हूं, तो myinstance.com, myinstance.com, myinstance, तो उस पे जाइएगा। एंड दूसरी एक और वेबसाइट है इससे जुड़ी हुई जिसका नाम है soundbible.com, soundbible.com, soundbible.com और myinstance.com। अब यहां जो है हमने साउंड को मैनेज कर लिया, साउंड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो लोग अक्सर वीडियोस में देखते हैं और काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि यार ये कैसे किया होगा, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। वो आपने देखा है जो लाइक और फॉलो के बटन्स आते हैं बड़े क्रिएटिवली सामने आते हैं किसी वीडियो में, आप देखते हैं भाई ये बड़ा क्रिएटिव था। तो लाइक और फॉलो वाले जो बटन्स हैं अगर आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट इन एनिमेशंस के साथ, तो उसके लिए भी दो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन इज जिटर, JITTER, जिटर वीडियो, यहां पे भी आप जा सकते हैं। और दूसरी है videoeffects.com। अब यहां पे जाइए, सुकून से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां से। और तीसरी बात, अगर आपको स्टॉक इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस जिन पे कोई कॉपीराइट ना लगाए, कोई आपको टोके टाके नहीं और आपके कंटेंट जनरेशन में मदद मिले, तो इसके लिए भी दो वेबसाइट है। पहली है pixels.com, pixels.com, और दूसरी है pixabay.com, pixabay.com, pixabay.com। तो कॉपीराइट फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर मेजर वेबसाइट जो मैंने आज आपको बताई है। तो कंटेंट जनरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड ये सब आप यूज करेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द न्यूज दिस वीक। देखिए, पूरे हफ्ते आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कोई गैजेट खरीदने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर सामने से, तो आपने देखा है जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, स्पेशली वो हार्डवेयर जो एआई के साथ साथ चल रहा होता है। रिपोर्टेडली अभी बताया गया है, एनवीडिया की अगर बात करूं तो उन्होंने भी देखा कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है और उन्होंने भी बढ़ा दी है, 15% प्राइस इंक्रीज देखा गया है। जो एआई सर्वर्स हैं, लार्जली उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो है मेमोरी कॉस्ट। मेमोरी जो कॉस्ट जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी प्रेशर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल क्यों ना हो। एंड ये इंक्रीजिंगली नीड, जो इंक्रीज नीड है, बढ़ती हुई जरूरत है जो मेमोरी की, एआई मेमोरी की, इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स की शिपिंग में भी फर्क पड़ रहा है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग और प्राइस रेंज आप देख के सोच रहे हैं यार थोड़ा रुक जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है, वो प्राइस और बढ़ जाएगा। इफ यू हैव सीन अभी रिसेंटली प्लेस्टेशन भी थोड़े से महंगे हुए हैं, सो ये आप बस हम उस एरा में जी रहे हैं, मान के रखिए, जहां पर आपको हार्डवेयर जो कि एआई से जुड़ा हुआ है वो महंगा पड़ने वाला है। सो अभी मौका है भाई, ये गोल्ड वाला सिस्टम होना है, अभी ले लो। हाँ ठीक है, एक और खबर आपको बता देता हूं, वो है एप्पल से जुड़ी हुई। तो एप्पल एज अ कंपनी, उन्होंने काफी इनोवेशन तो नहीं किए रिसेंटली, बस थोड़ा डिजाइन इस बार बदला, विच इज गुड। अभी वो M6 जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेडलाइन में बार बार आ रहे हैं। रिपोर्ट से कहती है कि एप्पल ने जो है अनवील कर दिया है अपना M6 2mm चिप और साथ में M5 अल्ट्रा भी।
पर M5 Ultra जो है वो एम्फेसाइज करता है AI परफॉर्मेंस पर. सो व्हाटएवर एप्पल इज डूइंग, I can only wish all the best. बाकी एप्पल के जो फोन्स पूरी तरह से सामने आ जाएंगे फॉर द रिव्यू तो आपको उसका रिव्यू भी मिल ही जाएगा. मगर आपके पास कोई अपडेट है सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar हमें भी जरूर बताएगा. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक अपडेट. दिल से देसी.

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका इस फ्रॉड अवेयरनेस के नए एपिसोड में। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में, नए स्कैम के बारे में हर रोज हम बात करते हैं और आज भी एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे साथ हो जाता है। हमारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है लेकिन ये स्कैमर्स नए तरीके ढूंढते हैं और इस नए जमाने में उनसे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में जो एक्चुअली में हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारे साथ ये फ्रॉड हो ही जाता है, लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है। ये है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। एक ऐसी चालाकी है जहां स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एड्स के जरिए बड़े आम से भोले भाले बायर्स को फंसाते हैं। आजकल लोग इंटरनेट पर शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं, खास तौर पे घर की फीमेल्स, और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके निकालते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए इसके तरीके और इसके बड़े सॉल्यूशन को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले लेकिन हमको समझना होगा कि ये फ्रॉड काम कैसे करता है। दोस्तों स्कैमर्स अक्सर बिल्कुल असली दिखने वाली नकली शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं। ये साइट्स फेमस ब्रांड्स के होते हैं, कॉपी होते हैं ताकि आपको शक ना हो। इम्पॉसिबल लो प्राइसेस इन वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट देखी थी और ये वेबसाइट वो थी जो हमारे घरों पे खाना डिलीवर करती है, और ये वेबसाइट इतनी ज्यादा असली लग रही थी कि लोग अगर इस पर क्लिक करें तो समझ में साफ आता था कि ये बिल्कुल असली है। आप उसमें ऑर्डर डिटेल डालते हैं, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होता है, फिर आप पेमेंट अपनी डालते हैं, सारी डिटेल डालते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा हो जाता है और आपके घर खाना नहीं पहुंचता है। फिर आप सोचते हैं कि ये खाना मेरे घर पहुंचा क्यों नहीं, जरा कॉल करें। और जब कॉल पर जाते हैं, उस वेबसाइट की डिटेल्स जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में कोई फोन नंबर, कोई हेल्पलाइन इस वेबसाइट में तो है ही नहीं, तो आप कॉल किसको करेंगे। तब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो नए जमाने के नए जो स्कैमर्स हैं, नए जो थीव्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको पता भी ना चले। ये वेबसाइट्स जो फेक होती हैं इनको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी हो तो इनको पकड़ना आसान भी होता है। और इसी तरह के सॉल्यूशंस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्रॉड होते कैसे हैं। इम्पॉसिबल दिखने वाले कम या कहें लो प्राइसेस में गुड्स का अवेलेबल होना, ये लोग पॉपुलर आइटम्स पर इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं जो सच होना नामुमकिन होता है। उसके अलावा सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अट्रैक्टिव एड्स दिखाना, उसके अलावा फेक वेबसाइट पर ऐसे डिटेल्स डालना कि आपको लगे कि ये सच है, उसके अलावा फिर होता है ट्रैप। जब आप ऐसी जगह से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये स्कैमर्स आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं बेचते आपको, या फिर आपको एक बेहद सस्ता नकली प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं। इसके साथ ही वो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी चुरा लेते हैं ताकि बाद में आपके अकाउंट से पैसे निकाल सके। लेकिन इससे बचे कैसे, इनके 5 तरीके हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के, आसान। सबसे पहले पैडलॉक आइकॉन को चेक करें, हमेशा

0: वेबसाइट के URL यानी कि एड्रेस बार में चेक करें कि वहां एक पेडलॉक यानी कि ताला का जो आइकन होता है ना, वो छोटे से लॉक का जो आइकन होता है, वो अवेलेबल है या नहीं है। इसका मतलब होता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। अगर ताला लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है। उसके अलावा HTTPS ये शुरू होना जरूरी है। उसके अलावा वेबसाइट का URL इसको भी जरूर चेक करें। फिर रिसर्च अनफेमिलियर स्टोर्स फर्स्ट। अगर आप किसी बिल्कुल नए या अनजान ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, सोशल मीडिया पर रिसर्च करें, सर्च इंजन पर रिव्यूज पढ़ें। अगर बाकी लोगों ने उस साइट को फ्रॉड बताया तो वहां से दूर रहें। टू गुड टू बी ट्रू डील्स, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का। अगर कोई नया या अनवेरिफाइड स्टोर किसी 50,000 के फोन को सिर्फ 5,000 में दे रहा है तो लालच में बिल्कुल ना आए। ऐसे बड़े और अजीब डिस्काउंट हमेशा एक फ्रॉड ट्रैप होते हैं। उसके अलावा COD, नए या कम भरोसेमंद स्टोर्स पर कभी भी एडवांस ऑनलाइन पेमेंट ना करें, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। उसके अलावा एक और तरीका है बचने का, वो है अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा हुआ तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं ताकि आगे होने वाले स्कैम से भी आप बच सकें। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जो बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड पर। उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा और आपके साथ इस तरह का स्कैम कभी नहीं होगा। सुनते रहें FM 107। मुलाकात होगी नए एपिसोड में जल्द ही। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर review of the week rolling, ताकि every movie experience बने Absolute Cinema.

0: वीकेंड बनाने के लिए, या फिर ये कहें कि बेहतरीन मूवी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ इस शो में जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक। दोस्तों हर हफ्ते हम बात करते हैं मूवी के बारे में, मूवी के डिटेल्स के बारे में कि आपको वो मूवी जो रिलीज हुई है हाल ही में वो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से क्योंकि वक्त जो है बड़ा मुख्तसर सा है। सबसे पहले जब हम मूवी में बात करेंगे, रिव्यू ऑफ द वीक में बात करेंगे मूवी के बारे में, तो मूड, हाइप, कितनी रेटिंग मिली है और फिर फन फैक्ट्स, डायरेक्टर का विजन और एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर सिनेमाटोग्राफी, स्पॉइलर फ्री प्लॉट क्या है और फिर परफॉर्मेंस पर डिस्कस करते हुए क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस मूवी को लेकर, ये सारी बात जब हो जाएगी फाइनल में हम वर्डिक्ट पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले कौन सी मूवी का रिव्यू करने वाले?
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: वेल, आज एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने वाला हूं और इस मूवी का नाम है म्यूटिनी। कौन सी है ये मूवी, ये हॉलीवुड मूवी क्या आपको देती है, लेकिन सबसे पहले इस मूवी को देखने के बाद लोगों का मूड क्या है? सच बताएं तो जेसन की ये मूवी बिल्कुल जबरदस्त है। मूड के बारे में बात करें तो म्यूटिनी का मूड एकदम इंटेंस और सीरियस है।
2: Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad, investigating a human trafficking operation. So why'd he leave the UK? File goes cold.
0: अगस्त 2026 में रिलीज हुई ये मूवी एक 90s थ्रोबैक एक्शन थ्रिलर जैसी फील देती है। इसमें आपको कोई हल्की फुल्की कॉमेडी या ज्यादा रोमांस नहीं मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा इमोशनल ड्रामा है जहां मेन कैरेक्टर अपने सरोगेट फादर जैसे बॉस के खून का दुख जो है वो मनाता है, पर जैसे ही कहानी शिप पर पहुंचती है मूड पूरा बदल जाता है और ये एक ग्रिटी, रॉ और वायलेंट हाई सीज सर्वाइवल फाइट बन जाती है। वेल, साथ ही हाइप जो है वो भी बड़ी जबरदस्त थी। जेसन स्टैम की वजह से इस फिल्म का हाइप जबरदस्त था। द बी कीपर की सक्सेस के बाद फैंस उन्हें फिर से एक जबरदस्त अवतार में देखना चाहते थे। मूवी के ट्रेलर ने एक क्लॉस्ट्रोफोबिक डाई हार्ड ऑन अ शिप

0: पिंग वेसल वाली टेंशन प्रॉमिस की थी, लेकिन थिएट्रिकल रिलीज से पहले सोशल मीडिया पे या फिर कह लें ओटीटी पर ये लीक हो गई मूवी, जिसकी वजह से इसके बॉक्स ऑफिस और हाइप पर थोड़ा असर जरूर पड़ा। और किसी भी डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो यही है कि कोई मूवी रिलीज हो, यू नो, रिलीज होने के पहले ही वो लीक हो गई हो ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर।
1: So Ken, I'm here to help. I'm coming back for everybody.
2: Get back in a good center. Sir, get back in.
0: खैर, स्टार रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वो है 5 में से 3। क्यों? टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 दिए, बाकी क्रिटिक्स ने भी 5 में से 3 दिए हैं। और इसकी एक खास वजह, मेरा 5 में से 3 देने की कई ऐसी वजह है, इस फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेटिंग है मेरे अकॉर्डिंग। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड वॉच है जो बिना दिमाग लगाए बस रॉ एक्शन देखना चाहते हैं। अगर आप जेसन के डाई हार्ड फैन हैं तो ये आपको जरूर एंटरटेन करेगी, पर अगर आप एक डीप स्टोरी या नए ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद ये थोड़ी एवरेज लगेगी। इसकी वजह यही है कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, और जहां चीजें या जहां मूवी प्रेडिक्टेबल होता है तो फिर मामला ये है कि सारी जो डिपेंडेंसी है वो सिनेमाटोग्राफी, यू नो, फिर उसके बाद म्यूजिक पर, साउंड पर आ जाता है, फिर स्क्रीन प्ले पर आ जाता है, सारी डिपेंडेंसी इन पर होती है। अगर ये अच्छा काम कर गए तो मूवी अच्छी है, वरना स्क्रिप्ट तो वही प्रेडिक्टेबल ही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं फन फैक्ट के बारे में, इस प्रोडक्शन में फन फैक्ट क्या रहा। दोस्तों, ओरिजिनली ये एक सीक्वल है। ये स्क्रीन प्ले पहले गेराल्ड बटलर की 2023 मूवी प्लेन का सीक्वल होने वाली थी, जिसका नाम शिप रखा गया था। जब गेराल्ड बटलर ने इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला किया, तब राइटर्स ने पूरे स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा और इसे जेसन की एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाया गया। उसके अलावा इसमें जो जेसन है वो एज अ प्रोड्यूसर भी है। जेसन ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपनी कंपनी पंच पैलेस प्रोडक्शन के अंडर इसे खुद प्रोड्यूस भी किया है। और उसके अलावा एक्सीडेंटल स्ट्रीमिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लीक हो गई थी गलती से, लायंस गेट के थिएट्रिकल रिलीज से कुछ दिन पहले ही पूरी मूवी एक्सीडेंटली एक ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो है वो भी देखने को मिला। और अब इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं डायरेक्टर का विजन इस मूवी को लेकर क्या रहा। डायरेक्टर थे फ्रांसिस जीन फ्रांसिस रिशर्ड, जिनको इनके बारे में बहुत लोगों को पता होगा। इन्होंने प्लेन और ब्लड फादर भी डायरेक्ट की थी। बाकी इनका जो विजन एकदम साफ था भाई। तो दोस्तों, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो दो थॉट्स रखते हैं। जब वो ये सोचते हैं कि अगर ये फलाना पहले वाले थॉट से मूवी नहीं चली तो दूसरा वाला जो थॉट है उसे हम आगे, यू नो, पुश करेंगे। लेकिन इनका विजन बड़ा ही साफ था, उनके बिना किसी फालतू के ड्रामा एक लीन और मीन एक्शन मशीन बनानी थी, और वो उन्होंने करके दिखाया इस मूवी में। वो एक्शन को मॉडर्न VFX के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और क्लीन कोरियोग्राफी से दिखाना चाहते थे। उनका मकसद 1990 के पुराने एक्शन हीरो मूवीज के स्टाइल को 2026 नए जमाने के स्क्रीन पर जिंदा करना था। हालांकि उनका डायरेक्शन कॉम्पिटेंट जो है वो था, पर स्क्रिप्ट थोड़ी ढीली थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन किसी भी मूवी की जो जान है वो फिल्मिंग लोकेशन भी होती है, क्योंकि कई मूवीज फिल्मिंग लोकेशन की वजह से जानी जाती है, याद की जाती है। लेकिन फिल्म की शूटिंग, इसकी अगर हम बताएं तो फिल्म की शूटिंग को रियलिस्टिक मैरिटाइम सेटिंग देने के लिए काफी हद तक माल्टा और यूनाइटेड किंगडम के रियल शिपयार्ड्स और पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।
3: मेक श्योर दैट कोल रीड डजंट गेट ऑफ दैट शिप अलाइव, ही इज ट्रैप्ड।
0: कहानी के मुताबिक कार्गो शिप बैंकॉक से कैलिफोर्निया जा रही होती है। इन रियल वर्ल्ड लोकेशन ने मूवी के क्लॉस्ट्रोफोबिक अंदरूनी हिस्सों और बड़े सुनसान समंदर के नजारों को स्क्रीन पर बहुत अच्छे से डिलीवर किया है, जो सेट पर बनी नकली शिप जैसी नहीं लगती। तो क्लियरिटी इस बात पे थी कि कुछ रियलिस्टिक जरूर लगना है, लेकिन इस मूवी को बनाते हुए एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रही इस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है भाई साहब। तो अगर देखा जाए तो जेसन यहां अपनी यूजुअल फिजिकली रिब और इंटेंस लुक में है इस मूवी में। तो 59 बोले तो 59 ईयर्स की एज में भी उनका या उनकी मार्शल आर्ट्स जो एजिलिटी है वो कमाल की है। उनके स्टंट्स जो लचीलापन है वो बिल्कुल रियल लगता है। वहीं को स्टार एनाबेल ने अपने ग्लैमरस इमेज से हटकर एक फीस्टी रफ एंड टफ लुक जो है वो हासिल किया है, जो शिप पर डेनिम जैकेट्स और वर्क गियर में जेसन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अब बात कर लेते हैं हर बार की तरह

जैसे मैं कहता हूं ना कि किसी भी मूवी का जो असल कह लें या दिमाग और दिल कह लें वो होती है सिनेमाटोग्राफी और साउंड, और दिल और दिमाग इस मूवी का कदर है भाई साहब। सिनेमाटोग्राफर थे ब्रिंडन, उन्होंने शिप के टाइट स्पेसेस का इस्तेमाल किया, डार्क इंजन रूम्स और नैरो हॉलवेज का बहुत ही काइनेटिक और क्लीन एंगल के साथ जो है वो इस्तेमाल किया और शूट किया। फ्लाइट्स के दौरान कैमरा ज्यादा शेक नहीं होता जिससे एक्शन साफ दिखता है। साउंड डिजाइन काफी लाउड और एग्रेसिव है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि ये कहा ना कि फ्लाइट्स के दौरान कैमरा ज्यादा शेक नहीं होता, लेकिन कुछ सिनेमाटोग्राफर जानबूझ के थोड़ा शेकी चीज ना या शेकी मूवमेंट थ्रू कैमरा डालते हैं ताकि और रियलिस्टिक लगे। लेकिन कुछ अब जैसी ऐसी डिमांड है ना, और अपने अपने तरह के सिनेमाटोग्राफर हैं, उनकी अपनी सोच है। और ब्रेंडन गैल्विन का ये सोचना था कि बहुत ज्यादा एक्शन के दौरान कैमरा नहीं हिलना चाहिए। मेरा मानना है शायद थोड़ा हिलना चाहिए, तो बस यही हो जाता है यार, थोड़ा यू नो लोग यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर स्टार रेटिंग यहीं पर चेंज हो जाती है। बाकी अगर हम साउंड डिजाइन के बारे में बात करें तो काफी लाउड और एग्रेसिव है। गोलियों की आवाज, हाथ पाव टूटने के साउंड्स और मार्कस स्ट्रम का बैकग्राउंड स्कोर मिलाकर एक्शन सीन्स का मजा और बढ़ जाता है, लाजवाब हो जाता है। लेकिन ये मूवी असल में है क्या, इस पर नजर डालते हैं। छोटा सा ये छोटी सी स्टोरी क्या है, इसकी कहानी क्या है वो बता देते हैं। कहानी घूमती है कोल रीड यानी कि जेसन स्टाथम के आसपास, जो एक बिलियनर टीपू कैंपलो का हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड है। एक रात टीपू का बेरहमी से मर्डर हो जाता है और इसका इल्जाम कोल यानी कि जेसन पर आता है। अपने आप को मासूम साबित करने और बदला लेने के लिए कोल यानी कि जेसन एक बड़े कार्गो शिप पर छुपकर सवार हो जाता है, पर वहां उसे पता चलता है कि शिप का कैप्टन और क्रू एक भयानक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी चला रहा है। तो यहां से सीन जो है पलट जाता है। थोड़ी स्क्रिप्ट जानी मानी पहचानी सी है लेकिन लाजवाब है। और अपने आप को मासूम साबित करने के लिए और बदला लेने के लिए कोल यानी कि जेसन एक बड़े कार्गो शिप पर छुपकर सवार हो जाता है, पर वहां उसे पता चलता है कि शिप का कैप्टन और क्रू एक भयानक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं। यहां पर स्क्रिप्ट थोड़ी बदलती है, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आता ना कि शिप पर कोई चढ़ा और फिर हीरो चढ़ा है और वहां पर गलत काम हो रहा है, तो हीरो फिर भाई साहब कदम उठाता है, तो बस वही कदम यहां पर उठाया गया और वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। वेल, ये मूवी आपको फिर भी पसंद आएगी जेसन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो इसमें एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं या जो लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। सबसे पहले जेसन के बारे में बात कर लेते हैं। जेसन ने वही किया जो वो सबसे बेस्ट करते हैं, स्काउल करना, पंच मारना और गुस्से में डायलॉग बोलना। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सॉलिड है पर रोल में कुछ नया नहीं है, बस ये एक प्रॉब्लम है जेसन के साथ। एनाबेल के बारे में बात कर लें, एनाबेल ने कोल रीड की साइडकिक एंगी का रूप में अच्छा काम किया है और उनकी जेसन के साथ पार्टनरशिप नेचुरल लगी है। विलन के रूप में अगर देखा जाए तो रोलांड ने जो कैप्टन मार्को है इसमें वो काफी नफरत के काबिल एक्टिंग की है उन्होंने, जो एक परफेक्ट ग्रीडी बैड गाय है। और अगर कोई यहाँ पर सक्सेसफुल होता है तो वो रोलैंड ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया है उनसे अगर आप नफरत कर रहे हैं तो वो अपने काम में मुकम्मल तो हुए हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स के बारे में कि क्रिटिक्स का इस मूवी को देखने के बाद क्या कहना है। मेजर क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज दिए हैं। द हिंदू और द गार्डन जैसे कई ऐसे क्रिटिक्स यहाँ पर बैठते हैं जिन्होंने कहा है कि यार इसकी स्क्रिप्ट जो है वो प्रेडिक्टेबल है, इसकी प्लॉट की बहुत ज़्यादा प्रशंसा बोले तो बहुत ज़्यादा वाहवाही जो है वो नहीं करी है, इसे एक मैसी थ्रिलर जो है वो कहा है। मैंने भी जब इस मूवी को देखा तो इसे मुझे लगा कि यार ऐसी मूवीज ना बहुत ज्यादा हॉलीवुड में बन चुकी हैं, तब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ कि यार बॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज बनती रहती हैं जिसे हम कहते हैं अरे प्रेडिक्टेबल है, लेकिन हॉलीवुड में भी बनती है, तो मैं दोनों को बराबर देख लेता हूँ। बस क्या है, हॉलीवुड में थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है मूवी बनने की, नए स्क्रिप्ट की, वहां पर थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो जब ज्यादा खर्चा होता है ऐसे में मूवी थोड़ी अच्छी बन जाती है, तो म्यूटिनी के साथ यही हुआ। लेकिन जेसन तो वैसे भी लाजवाब, मुझे तो किसी भी मूवी में उनको दिखा दो तो मैं उनका फैन हूँ भी। बाकी क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आम ऑडियंस है, जो एक्शन एंथुसियास्ट है, उन्होंने कहा है 86-90% लोगों ने कहा है कि यार ये मूवी काफी इंटरटेनमेंट लग रही है। और इसका मुझे एक खास रीजन लगता है, वो है जेसन, क्योंकि जेसन जिस तरह से काम करते हैं ना वो बिल्कुल यूनिक है भी। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद वर्डिक्ट क्या है, क्या मूवी देखनी चाहिए या फिर छोड़ दें?
क्या करना है मूवी को, मतलब

0: पैसे खर्च करें या फिर घर पे बैठे, है ना, घर पे कोई माहौल बना लें, ओटीटी पर देख ले कोई मूवी, या फिर पैसे खर्च करके हॉल जाना है, सिनेमा हॉल, इस पर जरा बात कर लेते हैं वर्डिक्ट क्या है। तो दोस्तों इस बात को लेकर तो मैं यही कहूंगा, अगर आप एक ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें बहुत गहराई है, दिमाग घुमाने वाले ट्विस्ट हैं, या कोई नया सिनेमेटिक एक्सपीरियंस हो, एक्सपेरिमेंट हो, तो म्यूटिनी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पुरानी और प्रेडिक्टेबल है, ऐसा लगता है जैसे कोई 1990 की पुरानी एक्शन मूवीज को नए ढंग से देख लिया है, है ना। उसमें कलर ग्रेडिंग अच्छी हो गई है, उसमें पैटर्न का इस्तेमाल सही किया गया है, सिनेमाटोग्राफर और साउंड थोड़ा अच्छा हो गया, बस इतना ही फील होगा। इसकी कहानी बहुत ही सीधी और प्रेडिक्टेबल है, ये तो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं। लेकिन अगर आपको एक क्लीन सॉलिड पुराने जमाने का रॉ एक्शन देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एक पैसा वसूल वीकेंड हो सकता है। फिल्म का असली हीरो इसका एक्शन और जेसन कहें वो है, 59 की उम्र हो गई है, उसके बाद भी एनर्जी, फिजिकल फिटनेस, टर्न्स करने का जो तरीका है वो देखकर लाजवाब मजा आता है। डायरेक्टर ने बिना किसी फालतू वीएफएक्स या फेक ग्रीन स्क्रीन के रियल सेट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर काम किया है, इस वजह से कार्गो शिप के अंदर की लड़ाइयां बहुत ही रियल और धांसू लगती है। भाई साहब दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए और फुल एक्शन का मजा लीजिए। अगर आप जेसन के बड़े फैन हैं तो जाओ देखो इस मूवी को। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए और रिव्यू देते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामने किराम, हक को छुपाना अल्लाह के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा बात है। जो लोग ये रविश इख्तियार करें वो रहमत इलाही से दूर हो जाते हैं और अल्लाह की मखलूक की बददुआ भी लेते हैं। इस्लाम ही ऐसा दीन रहमत है जहां लोगों के लिए सलाह व फलाह की राहें हर वक्त खुली रहती हैं, जहां बिशारतें और खुशखबरियाँ हैं, दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ हैं, लाजवाल और अबदी खुशियों का पैगाम है। लेकिन ये किन के लिए इरशाद होता है? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ। लोगों, दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है, इसकी वसत जमीन और आसमानों जैसी है और वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। तो सामने किराम, आज जिस आयत से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वो सूरतुल बकरा, ये सूरतुल बकरा की 159 रकम आयत है। इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट, मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में मजलिस को बहुत अहम मकाम हासिल है। मजलिस सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती बल्कि मुलाकात, गुफ्तगु, माशरे और अपनाइयत का एक खूबसूरत जरिया होती है। ये वो जगह है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खैरियत पूछते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। पुराने वक्त में मजलिस घर का ऐसा हिस्सा होता था जहाँ मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था। आज भी कई घरों में मजलिस के लिए खास जगह होती है। इसका अंदाज जदीद हो सकता है लेकिन इसकी असल रूप वही है, मेहमान को इज्जत देना और लोगों को करीब लाना। मजलिस में दाखिल होते वक्त सलाम करना और वहां मौजूद लोगों से अदब के साथ मिलना रिवायती रवैया है। पहले बुजुर्गों को सलाम किया जाता है, फिर दूसरे अफराद से मुलाकात होती है। बैठने के लिए जगह पेश की जाती है और मेहमान की राहत का ख्याल रखा जाता है। मजलिस की सबसे खूबसूरत बात गुफ्तगू का सलीका है। यहाँ लोग एक दूसरे की बात तवज्जो से सुनते हैं। अल्फाज का लहजा, मोहब्बत और अल्फाज मोहतरम होते हैं। हर मुलाकात में जरूरी नहीं कि कोई रस्मी बात हो, कभी रोजमर्रा के हालात, मौसम, खानदानी खबरें या खुशगवार यादें भी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाती हैं। कतरी मजलिस में सुनने की आदत को भी बहुत अहमियत दी जाती है। जब एक शख्स दूसरे की बात तवज्जो से सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी राय और तजुर्बा कीमती है। ये रवैया खास तौर पे बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल बनता है। बुजुर्ग मजलिस का एक अहम हिस्सा होते हैं। वो अपने तजुर्बे, यादें और रिवायतें, कहानियां नई नस्ल तक पहुंचाते हैं। उनकी बात से बच्चों को अपने माशरे, शहर और विरसे के बारे में सीखने का मौका मिलता है। इस तरह मजलिस सिर्फ खूबसूरत मुलाकात की जगह नहीं रहती बल्कि तालीम और तरबियत का जरिया भी बन जाती है। कहवा और खजूर का जिक्र मजलिस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मेहमान को कहवा पेश करना मेजबान की खुलूस भरी पेशकश होती है। छोटे प्याले को अदब और मोहब्बत के साथ दिया जाता है। मेहमान की पसंद और राहत का ख्याल रखना भी अच्छे मेजबान की अलामत है। मजलिस का ताल्लुक सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, कदरी समाजी जिंदगी में लोग मुख्तलिफ जगहों पर भी जमा होते हैं। जहां मोहतरम गुफ्तगु और मिल बैठने का रिवाज नजर आता है, अहम ये होता है कि लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और रिश्ते को मजबूत करें। जदीद जिंदगी में लोग मसरूफ जरूर हो गए हैं मगर इंसानी मुलाकात की अहमियत कम नहीं हुई। फोन और पैगामात राबता रखने में मदद देते हैं लेकिन आमने सामने बैठकर बात करने का सुकून अपनी जगह रखता है। मजलिस इसी इंसानी राबते की याद दिलाता है। मजलिस में बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो देखते हैं कि मेहमान कैसे आते हैं, किस तरह सलाम किया जाता है और बड़े लोगों से किस अदब के साथ बात की जाती है। मशक्कत, सबर, नरमी और इज्जत जैसे अखलाकी उसूल अक्सर जबानी तालीम के बजाय अमल से ज्यादा अच्छी तरह समझ आते हैं। मजलिस की सजावट में भी सकाफती रंग नजर आ सकता है। फर्श, बैठक, खूबसूरत नक्शोनिगार और साफ सुथरा इंतजाम मेहमान के लिए सुकून का माहौल पैदा करता है। साथ ही सजावट का असल मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि आराम और मुनासबत भी होता है। मजलिस हमें एक अहम बात सिखाती है, बेहतर गुफ्तगू के लिए दिल में इज्जत और अल्फाज में नरमी होनी चाहिए। किसी की बात को बगैर वजह काटने के बजाय उसे पूरा सुनना, इख्तलाफ की सूरत में एहतराम का लहजा रखना और मुस्कुराहट के साथ पेश आना अच्छी सोहबती आदतों में शामिल है। قطر کی مجلس ایک ایسی روایت ہے جو ماضی کو حال سے اور بزرگوں کو نئی نسل سے جوڑتی ہے۔ اس میں قہوے کی خوشبو، اچھے الفاظ کی مٹھاس اور ملاقات کی گرماہٹ شامل ہوتی ہے۔ تو آج کے کلچر موومنٹ میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ مجلس کی خوبصورتی اس کے فرش یا کمرے میں نہیں بلکہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو وہاں محبت، ادب اور اپنائیت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجلس ایک جگہ ہی نہیں بلکہ رابطے اور احترام کی زندہ روایت ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر موومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
0: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। एनबीए की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये रिकॉर्ड्स किसी प्लेयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, कंसिस्टेंसी और लॉन्गेविटी की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड बास्केटबॉल लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार के नाम रहा। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड। 5 अप्रैल 1984, ये तारीख NBA की स्कोरिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन करीम अब्दुल जब्बार ने NBA में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनका करियर टोटल था 38,387 पॉइंट्स, एक ऐसा नंबर जो उस वक्त बास्केटबॉल की दुनिया में एक नया बेंचमार्क बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ स्कोरिंग एबिलिटी नहीं थी, इसके पीछे थी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर। थोड़ा पीछे चलते हैं और मालूम करते हैं कि करीम अब्दुल जब्बार ने अपना सफर कब शुरू किया था। करीम अब्दुल जब्बार का NBA करियर 1969 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने मिलवॉकी बक्स के साथ प्रोफेशनल बास्केटबॉल में कदम रखा। अपने पहले सीजन में करीम अब्दुल जब्बार ने सबको बता दिया कि वो आम प्लेयर नहीं हैं, यानी देयर वाज समथिंग इन हिम, द स्पार्क वाज देयर इन हिम। उनकी हाइट, एथलेटिक एबिलिटी, बास्केटबॉल इंटेलिजेंस और स्कोरिंग स्किल ने उन्हें NBA के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। और फिर उनका सिग्नेचर मूव, जी हाँ, स्काई हुक। स्काई हुक करीम अब्दुल जब्बार की पहचान बन गया। ये शॉट देखने में सिंपल लगता था, लेकिन डिफेंडर्स के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल था। करीम अपनी हाइट और रीच का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बास्केट के करीब से एक हाई आर्किंग हुक शॉट लगाते थे। साल गुजरते गए, लेकिन करीम की स्कोरिंग कंसिस्टेंसी कम नहीं हुई। वो हर सीजन अपनी टीम के लिए रिलायबल स्कोरिंग ऑप्शन रहे, और यही उनके रिकॉर्ड की सबसे खास बात थी। 38,387 पॉइंट्स एक या दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन्स का नतीजा नहीं थे दोस्तों, ये पॉइंट्स एक लंबी और कंसिस्टेंसी ब्रिलियंट करियर का नतीजा थे। करीम ने मिलवॉकी बक्स के साथ भी सक्सेस हासिल की और बाद में लॉस एंजलिस लेकर्स का हिस्सा बने। लेकर्स के साथ उनका करियर और भी लेजेंडरी बन गया। मैजिक जॉनसन के साथ उनकी पार्टनरशिप NBA हिस्ट्री की सबसे मशहूर जोड़ी में शुमार होती है।

अपने करियर में 6 NBA चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 6 NBA मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड्स भी हासिल किए, जो NBA हिस्ट्री में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इसके अलावा वो 19 मरतबा NBA ऑल स्टार सेलेक्ट हुए। ये नंबर्स बताते हैं कि करीम सिर्फ एक ग्रेट स्कोरर नहीं थे, वो अपने दौर के सबसे कंप्लीट और डोमिनेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक थे। दोस्तों यहाँ पे बताना जरूरी होता है कि उनका ये स्कोरिंग रिकॉर्ड तकरीबन 29 साल तक कायम रहा, यानी 39 years। इस दौरान NBA में कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोरर्स आए, लेकिन करीम अब्दुल जब्बार के रिकॉर्ड तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था। फिर 2023 में एक और बास्केटबॉल लेजेंड ने करीम अब्दुल जब्बार का ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेब्रॉन जेम्स। मॉडर्न बास्केटबॉल में अगर कोई स्टार खिलाड़ी है तो लेब्रॉन जेम्स के बारे में लोग एग्जांपल देते हैं। तो लेब्रॉन जेम्स ने करीम अब्दुल जब्बार के 38,387 करियर पॉइंट्स के रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिया। 3 साल पहले की बात है ये। लेकिन रिकॉर्ड टूटने का मतलब ये नहीं कि करीम की अचीवमेंट की अहमियत कम हो गई, बल्कि इससे ये और साबित हुआ कि करीम का रिकॉर्ड इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था दैट इट स्टूड फॉर 39 years। तकरीबन 4 decades तक NBA का स्कोरिंग बेंचमार्क रहना अपने आप में एक फेनोमिनल अचीवमेंट है। सो फाइनली करीम अब्दुल जब्बार एक लेजेंडरी स्कोरर, एक 6-time NBA चैंपियन, 6-time MVP और एक आइकॉनिक स्काईहुक आर्टिस्ट, और एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने NBA की तारीख में 38,387 पॉइंट्स के साथ अपनी पहचान हमेशा के लिए अमर कर दी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: घूम कर शेक अप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दो हवाला में कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती, तेरे तेरे होने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

कुछ लोग जिनों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे। इस तरह उन्होंने जिनों का गुरूर और ज्यादा बढ़ा दिया और ये कि इंसानों ने भी वही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर न भेजेगा। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो देखा वो पहरेदारों से पटा पड़ा है और शिहाबों की बारिश हो रही है। और ये कि पहले हम सुन गुन लेने के लिए आसमान में बैठने की जगह पा लेते थे, मगर अब जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करता है वो अपने लिए घात में एक शहाब साकिब लगा हुआ पाता है। और ये कि हमारी समझ में ना आता था कि आया जमीन वालों के साथ कोई बुरा मामला करने का इरादा किया गया है या उनका रब उन्हें राह रास दिखाना चाहता है। और ये कि हम में से कुछ लोग सालेह हैं और कुछ उससे फरोतर हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं। और ये कि हम समझते थे कि न जमीन में हम अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और न भाग कर उसे हरा सकते हैं। और ये कि हमने जब हिदायत की तालीम सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए। अब जो कोई भी अपने रब पर ईमान ले आएगा उसे किसी हक तल्फी या जुल्म का खौफ न होगा। और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम यानी अल्लाह के इताअत गुजार हैं और कुछ हक से मुनहरिफ। तो जिन्होंने इस्लाम यानी इताअत का रास्ता इख्तियार कर लिया उन्होंने नजात की राह ढूंढ ली और जो हक से मुनहरिफ हैं वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं।